0: कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह है बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया और फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम इस साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को उसके जरिए जिंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक ले, मगर अक्सर लोग कुफ्र और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक खबरदार करने वाला उठा खड़ा करते। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज ना मानो और इस कुरान को लेकर इनके साथ जबरदस्त जिहाद करो। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت

समीन अरबी जबान की कहावत है, जो तुम्हें मुनाफा न दे उसे अपना सरमाया न दो। मुनाफा यानी प्रॉफिट और सरमाया यानी सरप्लस।

0: اللي ما يعدك ربح لا تعده رأس مال. कहावत का मतलब है तुम अपनी कीमती सरमाया उसी को दोगे जो तुम्हें मुनाफा देता है ना। तो इस तरह अगर कोई शख्स आपकी अहमियत न समझे और आपको मुश्किल वक्त में अपना मददगार न माने तो आपको उसे अपनी मदद या सरमाया समझकर इन लोगों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता न करें। इल्ली मा युद्दक रिबह ला तुद्दह रास माल।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल. सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद. लिसनर्स, पानी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है. पानी जो बज़ाहिर आम है मगर हकीकत में जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है. तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे. पानी हमारी सेहत, हमारी स्किन, गुर्दों, दिमाग, हर चीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है. एक मरीज जो रोज़ 2 ग्लास पानी पीता था, थकावट और स्किन का खुश्क होना और इसके अलावा कब्ज जो है वो भी उसको थी. और फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आप पानी को ज़्यादा कर दीजिए. तो एक हफ्ते के बाद ही बहुत ही हैरत अंगेज फ़र्क जो है वो सामने आया. हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी है. तो नींद, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, दिल, दिमाग सब पानी से बेहतर काम करते हैं. अगर आप कम पानी लेते हैं तो थकान होती है, सर में दर्द हो सकता है, हमारी जिल्द खुश्क हो सकती है. और इसी तरह एक रिसर्च के मुताबिक जो अगर रोज़ जो शख्स जो हैं वो 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं तो किडनी की डिजीज़ का ख़तरा जो है 40% तक कम हो जाता है. उसके लिए करना फिर ये है कि सुबह उठकर 1 ग्लास नीम गर्म पानी लीजिए. खाने से 30 मिनट पहले आप पानी लीजिए और पानी की बोतल अपने साथ रखिए. पानी हमारे जिस्म की जो मशीन है उसका ऑयल है. और जब ये कम हो जाए तो फिर तमाम सिस्टम्स का जो काम है वो रुकने लगता है. तो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको जगाने के लिए भी है. तो पानी पीजिए, सेहत जो है वो बेहतर बनाइए. हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी.
3: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें. आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है. शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें. छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों. गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है. मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो. ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं. सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है. FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है.
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक किसान रहा करता था। रहीम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार था। उसकी ईमानदारी और उसके अच्छे काम गांव के हर शख्स के लिए मिसाल थे। गांव के लोग अपनी चीजें उसके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे, क्योंकि उन्हें ये पूरा यकीन था कि रहीम किसी की अमानत पे खयानत नहीं करेगा। रहीम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे गाँव में मशहूर था। एक दिन जैसे कि वो रोजाना अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था, रात की थोड़ी सी ठंड में वो चलता जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में कुछ चीज पड़ी हुई है। वो कुछ सोचता हुआ उस चीज के पास गया और देखा कि वहाँ एक पुरानी थैली रखी हुई है। उसने इधर उधर देखकर थैली को खोला और फिर उसको खोल कर देखा। जैसे ही उसने थैली खोली, वो तो हैरान ही रह गया। थैली में तो बहुत सी अशर्फियां भरी हुई थी। रहीम ने अपनी हैरत को छुपाते हुए उस थैली को अपने हाथ में लिया और सोचा, ये चीज यहाँ कैसे आई? क्या ये किसी का माल है? क्या इसे अपना बनाना चाहिए? क्या मैं इसे अपना बना के घर ले जाऊं? रहीम के दिल में तरह तरह के लालची ख्याल आने लगे, जो उसने फौरन अपने दिल से निकाल दिए। उसने थैली को अपने पास रखने के बजाय अपने घर की तरफ मुड़कर चलना शुरू कर दिया। जब रहीम घर पहुंच गया, उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, मुझे रास्ते में एक थैली मिली, उसमें बहुत सी अशर्फियां थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे रख लूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिल में ये ठीक नहीं लग रहा था। रहीम की बीवी ने सुना और कहा, अरे अगर तुम वो अशर्फियां रख लेते तो हम फौरन शहर चलकर एक अच्छा सा घर खरीद सकते थे। फिर वहाँ हम अच्छे से रह सकते थे, किसी को भी परेशानी नहीं होती। किसी को क्या पता चलता कि वो थैली किसने उठाई, और हमें क्या पता वो थैली किसकी थी। बीवी ने जैसे ही ये कहा तो रहीम का दिल थोड़ा सा लालच में आ गया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी का ख्याल किया और जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस थैली का मालिक नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि उस थैली के मालिक को ढूंढ कर वो अशर्फियां उस तक पहुँचा दूंगा। बीवी ने कहा, लेकिन वो थैली तो तुम्हें रस्ते में मिली है ना, तुमने कोई चोरी तो नहीं की? बीवी का ये कहना था कि अगर इतने पैसे मिल गए तो उसे रखना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रहीम ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी और कहा, मुझे उस थैली का असली मालिक ढूंढना होगा। रहीम ये कहकर अपने रास्ते पर निकल गया। उसने कुछ ही दूर चलकर गांव के चौधरी साहब को देखा। चौधरी साहब ने उसे देखा और पूछा, आज तुम किस काम में इतनी देर से निकल रहे हो? तुम तो सुबह सुबह अपने खेत में काम करते हो, तो इतनी रात को कहाँ टहल लगा रहे हो? रहीम ने अपनी पूरी कहानी चौधरी साहब को सुनाई और कहा, मुझे उस थैली के मालिक को ढूंढना है ताकि मैं उसकी अमानत उस तक पहुंचा सकूं। चौधरी साहब ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, मेरे भाई, वो थैली तुम्हारा इनाम है, रखो उसे अपने पास। रहीम ने हैरानी से कहा, इनाम? लेकिन क्यों? चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं गाँव में तुम्हारी ईमानदारी के बहुत से किस्से सुन चुका था। तुम्हारी ईमानदारी को जांचने के लिए मैंने ये थैली तुम्हारे रास्ते में रख दी थी। मैं जानता था कि तुम उस थैली को रखोगे तो नहीं, इसलिए ये लो, मेरी तरफ से ये वही थैली है और ये तुम्हारा इनाम है। रहीम ने बहुत मना किया, लेकिन चौधरी साहब ने वो थैली उसके हाथ में पकड़ा दी। चौधरी साहब के कहने पर रहीम खुशी खुशी अपने घर वापस आया। रहीम ने अपनी बीवी को कहा, अगर मैं तुम्हारे कहने पर इस थैली को रख लेता तो कभी भी चौधरी साहब मुझे ये इनाम ना देते। उन्होंने मुझे इस थैली का असली मालिक बनने का मौका दिया। रहीम ने कुछ अशर्फियां गरीबों को देकर अपनी बीवी के साथ शहर के लिए सफर शुरू कर दिया। शहर जाकर रहीम ने अपना एक छोटा सा घर खरीदा और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। थोड़े ही वक्त में रहीम की मेहनत रंग ले आई और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी इंसान की असली ताकत है। अगर हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ते।
अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को इनाम देता है जो अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही रखें और हर काम में ईमानदारी दिखाएं तो जिंदगी में हमेशा कामयाबी और खुशी मिलती है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
3: दोस्तों, आपने बजट वर्ड कई बार सुना होगा। बजटिंग हर लेवल पर होती है, फिर चाहे घर को चलाने के लिए बजटिंग करना हो या फिर मुल्क को चलाने के लिए बजटिंग करना हो। बजट का मतलब होता है पैसों की सही प्लानिंग करना, यानी कितने पैसे कमाना है और कितने खर्च करना है। सोचिए, आप अगर महीने के 10,000 कतरे रियाल कमाते हैं तो आप ये जरूर तय करते हैं कि हमें कतरे रियाल 3,000 घर का खर्चा, बिजली पानी रेंट पर खर्च करना है, 3,000 और मिसलेनियस खर्चे, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग वगैरह, आउटिंग वगैरह, इसके लिए आपने रख लिए। वहीं पर कतरे रियाल 2,000 फैमिली या फिर पेरेंट्स को अपने मुल्क भेजते होंगे और यकीनन 2,000 कतरे रियाल की आप बचत करते होंगे। यस, ठीक इसी तरह से गवर्नमेंटल लेवल पर भी प्लानिंग की जाती है कि कितने पैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स पर लगाने हैं और ये पैसा कहाँ से आएगा। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को टैक्सेस और दूसरे रिसोर्सेस से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जो वो इस तरह से खर्च आगे करते हैं। यानी कुल मिला के बजटिंग की बात की जाए तो खर्चे और आमदनी में गुड बैलेंस बनाए रखना ही बजटिंग है। यानी बजटिंग को और बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो पैसों की प्रॉपर बैलेंस्ड प्लानिंग बजटिंग कहलाती है। चलिए जी, आज आपने अच्छे से समझ लिया कि आपको किस तरह से बजटिंग करनी है। वेल, आज के लिए इतना ही। अगली इकोनॉमिक टर्म के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकॉनमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकॉनमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के हलके में आप सबका खैर मकदम है। गुफ्तगू जारी है। पिछले हलकों से हमारी इंसानी गलतियों के तीन बुनियादी अकसाम पर, पिछले हलके में हमने सूरह बकरा का एक हिस्सा पर गौर किया था जहां अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो ओवरऑल हमने वहां गलतियों की तीन बुनियादी अकसाम बताई थी। एक है गफलत की गलती, फिर कमज़ोरी की गलती इसी तरह, और एक है बगावत या तमर्रुद की गलती। इंसान की लग्जिशें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, मगर उनके पीछे अक्सर यही तीन जहनी या अखलाकी कैफियतें होती हैं। और कुरान सिर्फ गलती की निशानदही नहीं करता बल्कि हर किस्म के लिए अलग इलाज भी दिखाता है। इस हलके में हम गुफ्तगू को एक नहायत अहम मोड़ पर आगे बढ़ाएंगे, और वो ये कि सबसे ख़तरनाक मरहला ये नहीं समय कराम के इंसान से कोई मामूली लग्जिश हो जाए, बल्कि असल ख़तरा तो उस वक्त शुरू होता है जब वो मासीयत ज़ौफ से निकल कर मासीयत तमर्रुद में दाखिल हो जाए, यानी जब वो गुनाह करने के बाद नादिम होने के बजाय उस गुनाह को जस्टिफाई करना शुरू कर दे, हुक्म इलाही के सामने अपनी राय खड़ी कर दे और आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत को मामूल बना ले। यही वो मकाम है जहाँ इबलीसी तर्ज फिक्र शुरू होता है। कुरान हमें सिखाता है कि अगर शैतान की कोई चुभन, कोई वसवसा, कोई ख्याल दिल को छू भी जाए तो ये अपने आप में आखिरी शिकस्त नहीं। अल्लाह फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

हालत तो अचानक नहीं आती, इस सिलसिले में नफ्स को ट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे जिस्म किसी नए निजाम का आदि होता है। इब्तिदा में वर्जिश मुश्किल होती है, इब्तिदा में खाने का नज़म मुश्किल होता है, इब्तिदा में जल्द उठना मुश्किल होता है, लेकिन रिपीटिशन के बाद बॉडी एडजस्ट करती है, इसी तरह नफ्स भी एडजस्ट करता है। अगर उसे बार बार नमाज की पाबंदी पर रखा जाए, बार बार गुस्से को रोका जाए, बार बार ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह की रजा को तरजीह दी जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इताअत फितरी होने लगती है और यही रूहानी ट्रेनिंग है। यहाँ एक और अहम बात है कि इंसान अगर किसी मरहले पर तुमानीनत, इबादत की लज्जत और नफ्स पर कंट्रोल हासिल कर ले, तो ये ना समझे कि अब सफर खत्म हो गया। नहीं, चोटी पर बाकी रहने के भी उसूल हैं। दिल की हिफाजत चाहिए, जिक्र, तौबा, इल्म, सोहबत, तो नफ्स का मुहासबा, सब कुछ चाहिए, यानी तरबियत जिंदगी भर जारी रहती है। जब तक जिंदगी है, मुजाहदा है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि एक तालिबे इल्म ऐसे स्कूल या तालीमी निज़ाम से गुजरे जहाँ कुरानी तरबियत सिर्फ सब्जेक्ट ना हो बल्कि पूरा एजुकेशनल मॉडल हो। ऐसा तालिबे इल्म सबसे पहले अकल में आज़ाद होगा। क्यों? क्योंकि कुरान शख्सियत परस्ती नहीं सिखाता। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी इंसान को इतना बड़ा बना दो कि उसकी बात दलील से बालातर हो जाए। कुरान कहता है قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह एक दूसरी जगह में है قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे पेश कर सको, तो एक एविडेंस बेस्ड माइंड बनाता है। इंसानी नफ्स उमूमन मेजॉरिटी से मुतासर होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, सब तो यही सोचते हैं, सब यही करते हैं, फिर शायद यही सही होगा। लेकिन कुरान इस ज़हनी गुलामी को तोड़ता है। وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, यानी अगर तुम जमीन के अक्सर लोगों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को हकीर समझो, नहीं, लोगों का एहतराम करो, उनके जज्बात का लिहाज करो, मुआशरे की राय सुनो, मगर उसे मुकद्दस न बनाओ। एक कुरानी जहन की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि वो अपनी राय से भी आज़ाद हो सके। कुरान कहता है या अय्युहा लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलव अला अन्फुसिकुम, यानी अदल पर मजबूती से कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो गवाही खुद तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, मैं पूरे एतमाद के साथ अपनी बात रखता हूँ, फिर दलील सामने आती है और मुझे मालूम होता है कि मैं गलत था। कुरानी तरबियत कहती है कहो मैं गलत था, ये शिकस्त नहीं, ये अकल की आज़ादी है। कुरान इंसान को ये भी सिखाता है कि हर मौजू पर ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं। फरमाया वला तक़ुफ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, यानी उस चीज़ के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। ये कहने का हौसला पैदा करें कि मुझे मालूम नहीं, ये जुमला कमज़ोरी नहीं, इल्मी दियानत है। अब नफ्सियाती सतह पर देखिए, कुरान इंसान को ये सिखाता है कि खौफ की असल सिमत अल्लाह हो, उम्मीद की असल सिमत अल्लाह, लोगों के पास वसाइल हैं मगर रिज़्क का मालिक कौन, अल्लाह, लोगों के पास ताकत है मगर फैसला कुन कुदरत अल्लाह की है, लोग तारीफ कर सकते हैं मगर असल कदर अल्लाह के हाँ है, लोग मजम्मत कर सकते हैं मगर आखिरी फैसला उनके हाथ में नहीं। तो ये तसव्वुर इंसान के दिल में सुकून पैदा करता है। वो हर मुसीबत पर टूट नहीं जाता, हर तारीफ पर बहक नहीं जाता, हर तनकीद पर बिखर नहीं जाता। अब यहाँ गुफ्तगू समय कराम एक बहुत खूबसूरत नुक्ते तक पहुँचती है कि तौहीद शजाअत पैदा करती है और शिर्क ज़िल्लत और खौफ पैदा करता है। कुरान फरमाता है सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह, हम कुफर करने वालों के दिलों में रौब डाल देंगे इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। तो यहाँ बिमा अशरकू में एक सबबियत का माना समझ में आता है, यानी
جب دل بہت سی طاقتوں بہت سے سہاروں بہت سے خوف اور بہت سے معبودان باطل کے درمیان تقسیم

तो दरअसल वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग एंड मॉरली ग्राउंडेड पर्सन बनेगा। देखिए वजादिल हम बिल्लती आसन, इस आयत का जो हमने हवाला दिया है, इन्हीं अगर गुफ्तगू इख्तलाफ हो तो सिर्फ अच्छे अंदाज से नहीं बल्कि सबसे बेहतर अंदाज से बात करो। तो यहाँ अहसन का लफ्ज़ बहुत माना रखता है। अगर आपके पास दो अंदाज है, एक सही लेकिन सख्त और दूसरा सही भी है और नरम भी, तो कुरान दूसरे अंदाज को तरजीह देता है। क्यों? क्योंकि इख्तलाफ के माहौल में सिर्फ दलील काफ़ी नहीं होती, टोन भी अहम होता है। इंसान का दिल अगर बंद हो गया तो सही बात भी अंदर नहीं जाती। इसीलिए कुरान आम गुफ्तगू में भी कहता है वकूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। तसव्वुर कीजिए कि एक तालिबिल्म स्कूल से इस आदत के साथ निकले कि उसकी जबान से दूसरों के लिए बदतमीजी, तहकीर और जहर न निकले बल्कि वो डिसएग्रीमेंट में भी डिग्निटी बरकरार रखे। यही कुरानी कम्युनिकेशन है। कुरान तो हमें तारीख के साथ भी एक नहायत बैलेंस्ड रिलेशनशिप सिखाता है। अल्लाह फरमाता है तिल्क उम्मतुम कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, यानी एक उम्मत गुजर चुकी, उसके आमाल उसके लिए थे और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप माजी की हर गलती का बर्डन अपने सर पर लेकर न चलें। आप तारीख के गुनाहों के जिम्मेदार नहीं, लेकिन कुरान साथ ही कहता है फातबिरु या उलिल अबसार, यानी इबरत हासिल करो। तो कुरानी मंतिक ये है कि माजी के गुनाहों में न फंसो मगर माजी के तजुर्बात से ज़रूर सीखो। इसी तरह कुरान इंसान को पर्सनल इंटरेस्ट के दायरे से बाहर निकालता है। फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं चाहे खुद मोहताज हो। तो ये तरबियत इंसान को सेल्फ सेंटर्ड होने से बचाती है, यानी खुद को तवज्जो का मरकज बनाना। सेल्फ सेंटर्ड ये भी मतलब नहीं, वो सिर्फ ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा बल्कि ये भी सोचता है मेरे जरिए किसी और को क्या फ़ायदा हो सकता है, यही इशार है। मजीद कुरान के गैर मामूली उसूल ये है कि दुश्मनी भी आपको नाइंसाफी की इजाज़त नहीं देती। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, यानी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ छोड़ दो, इंसाफ करो यही तकवा के ज़्यादा करीब है। ये एक बहुत ऊंचा अखलाकी मैयार है कि अगर दुश्मन में कोई खूबी है तो उसे तस्लीम करो, अगर तुमने दुश्मन के बारे में गलत बात कही है तो उसे वापस लो, अगर उसका हक है तो वो हक दो, क्योंकि इंसाफ उस वक्त असल किरदार दिखाता है जब सामने वाला आपका पसंदीदा ना हो। दोस्त के साथ तो इंसाफ आसान है, दुश्मन के साथ इंसाफ कैरेक्टर का इम्तहान बन जाता है। कुरानी तरबियत हमें ये भी सिखाती है कि बिजनेस पार्टनरशिप हो, सोशल रिलेशनशिप हो या कोई मुआहदा, वफा बुनियादी उसूल है। इंसान फायदे के वक्त साथ और नुकसान के वक्त गायब ना हो जाए। मुआहदा सिर्फ लीगल पेपर नहीं अखलाकी जिम्मेदारी भी है, यानी मोमिन की शनाख्त ये हो कि अगर उसने वादा किया है तो पूरा करेगा, अगर उसने अमानत ली है तो अदा करेगा, अगर किसी ने उस पर एतमाद किया है तो उस एतमाद को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह सामिन इकराम कुरान इंसान को दूसरों की प्राइवेसी और डिग्निटी की हिफाजत सिखाता है। गीबत नहीं, नमीमा नहीं, तजस्सुस ना, इज्जत उछालना ना, लोगों की कमजोरियों को एंटरटेनमेंट बनाना नहीं। कुरानी तरबियत कहती है इंसान की इज्जत भी अमानत है। इसी तरह माल के मामले में भी देखें कि कुरान न इसराफ सिखाता है न बुखल। फरमाया कुलू वश्रबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ न करो, यानी एक तरबियत याफ्ता इंसान कभी भी फजूल खर्ची नहीं कर सकता। एक और बड़ी बात यह है कि कुरान बार बार यतीम, मिस्कीन और कमज़ोर इंसान को सामने लाता है। क्यों? क्योंकि मुआशरे में पावरफुल लोगों से ताल्लुक़ रखना आसान है, लेकिन कुरान पूछता है तुम्हारा ताल्लुक उस शख्स से कैसा है जिससे तुम्हें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, यतीम से, मिस्कीन से, मोहताज से, कमज़ोर से। तो यहाँ इंसान का असल अखलाक सामने आ जाता है। अगर कोई शख्स कहे मुझे तो कोई गरीब जानता ही नहीं, तो ये खुद एक सवाल है कि आपकी जिंदगी

हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोस्तों घर की हिफाजत आपके हाथों में है. एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें. हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं. एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है. इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें. एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें. अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है. ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है. हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं. बिजली के लोड का ख्याल कीजिए. अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते. ये छोटी सी गलती

0: शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

FM 107. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

हाँ जी हाँ जी, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आज अच्छे वाले प्यारे प्यारे मौसम को, खूबसूरत सी सुबह को आप इंजॉय करेंगे। देखिए आसमान आज जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे वाह, कितना अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है। आई मीन टू से अनएक्सपेक्टेड से बादल नज़र आए। कहीं ना कहीं ये जो बादल थे वो मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा गए। मतलब मुझे ऐसा खुशी का एहसास हुआ और शायद मेरे जहन में ये चीज़ आई कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। फिर क्या था, फिर मैंने इसी आस के साथ आज का जो वेदर है वो चेक किया तो पता चला मुझे कि नहीं, आज किसी भी तरह की कोई दूर दूर तक बारिश के चांसेस तो नहीं है। लेकिन हाँ, इन बादलों को देखकर मतलब वो जो है ना बिन मौसम बरसात की जो एक आस जागी, बिल्कुल उसी तरह मुझे लगा हमारी और आपकी ज़िंदगी भी है। अचानक से छोटी सी हमें कोई खुशी मिल जाती है और फिर हमें लगता है कि वाह, छोटी छोटी खुशियों की कितनी अहमियत है। थोड़ी देर के लिए से ही हमारे चेहरे पर एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हमारी ज़िंदगी ना इन्हीं उम्मीदों का नाम है, उम्मीदें जो हमें हर नए दिन के साथ आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, जो कहीं ना कहीं अंधेरों में रोशनी दिखाती हैं और जो ये यकीन दिलाती हैं कि हर इंतज़ार के बाद एक खूबसूरत मंजर ज़रूर आता है। तो बस आज इन बादलों की तरह अपनी उम्मीदों को भी थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए। क्या

0: पता किस मोड़ पर जिंदगी आप पर भी खुशियों की हसीन बारिश कर दे, है ना। तो बस चलिए, आज तो प्यारा सा मौसम और प्यारे से मौसम में आज के बहुत ही दिन को अभी प्यारा सा आगाज हुआ है, क्योंकि स्टार्ट इतनी अच्छी है। लेकिन हाँ, ये भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। बादल आए हैं, मिलने आए हैं, हाय हेलो कहने आए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमारे साथ कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, उसमें भी बहुत टाइम है। आई मीन जैसे बारिश वारिश की कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी देर की खुशी इसको हम इंजॉय करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर बढ़ रहे हैं मॉर्निंग अस्कार की तरफ, वापस आएंगे तो आप और हम जुड़े रहेंगे। वेल, तब तक के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 666-22-107। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बताइए कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई, सब कुछ आप मैसेज के थ्रू मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अब से थोड़ी देर बाद जब हम अपना टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, उस वक्त आपको जो है वो हमारे नंबर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर आप कॉल कर सकें। तो कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। बस आपको रहना है मेरे साथ।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और आज है मंडे का दिन 17th of August. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है. वैसे तो आते ही मैंने मौसम पे बात करी ली, बादल मुझे दिखे, आपको भी नज़र आए, थोड़ा सा अच्छा लगा है. लेकिन ये खुशी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि हाँ, आज भी मौसम जो है वो ठीक ठाक गर्म ही रहेगा. फिलहाल जो करंट कंडीशन है, जो टेम्परेचर है फिलहाल इज अराउंड 35 to 36. ये है, आपको फील होगा अलबत्ता 39 degrees Celsius. पार्शली क्लाउडी होने के बावजूद अब जो दिन है वो सनी हो जाएगा. ह्यूमिडिटी इज अगेन 67% राइट नाउ, ये बढ़ेगी वक्त के साथ. और अगर मैं बात करूँ हवा की, सो इट्स 6 km/h. विजिबिलिटी ठीक ठाक है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज जो है वो जाएगा 41 degrees Celsius तक और मिनिमम रहने वाला है 34 degrees Celsius. पर अगेन यू आर गोना फील लाइक 47 degrees Celsius. तो ठीक ठाक गर्मी आपको जो है वो महसूस होगी. सनी है, रेन के कोई चांसेस है नहीं. ह्यूमिडिटी जो है वो 75 तक हो जाएगी. एंड अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूँ, सो दैट्स अगेन वेरी हाई. तो सन एक्सपोजर का जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब अगर आप निकलते हैं सन में तो एक्सपोज करने से थोड़ा सा बचिए, स्पेशली 10 बजे से लेकर 3 बजे तक. तो इस टाइम में ये दो पीक आवर्स हैं तो इनमें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. इफ़ इन केस आपको निकलना ही निकलना है, आई मीन टू से निकल रहे हैं गाड़ी में, ऐसे डायरेक्ट सनलाइट के साथ अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही है वो मेरा मतलब है, वैसे तो निकलना ही निकलना है बिकॉज ये तो एब्सोल्यूट वर्किंग आवर्स हैं, 10 to 3 सभी का काम है. कोशिश ये कीजिए कि डायरेक्ट आप सन से एक्सपोज ना हो. अगर फिर भी है तो थोड़ा सा ख्याल एहतियात रखना है. यू कैन कैरी योर हैट्स, आप अपने सन ग्लासेस ले सकते हैं, सनस्क्रीन तो आपको लगानी ही लगानी है एंड अपने हाइड्रेशन का ख्याल तो आपको रखना ही रखना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, रोज ही बता रही हूँ मैं आपको. अच्छा, इसके साथ सनराइज की बात की जाए तो सनराइज हुआ 5:08 पर और सनसेट होगा 6:07 पर. यानी ऑल टुगेदर हमें आज कुछ 13 घंटे जो हैं वो मिल रहे हैं. बहुत हैं, बहुत सारे काम करने के लिए. और आज ही नहीं, मैंने देखा कल भी सनी है, परसों भी सनी है और उसके बाद टेम्परेचर भी, मतलब 20 को तो सबसे ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, ठीक ठाक वाली गर्मी रहेगी. अच्छा खासा सनी रहेगा तो कोई चांस दूर दूर तक फिलहाल बारिश का नहीं है. और कुछ निकल आए तो बताइएगा मुझे. तो ये तो हो गया मौसम का हाल चाल और अब आ जाते हैं आज के दिन के हवाले से. कुछ नोटेबल इंटरनेशनल और नेशनल ऑब्जर्वेंसेस होते हैं 17 अगस्त को, तो आज काफ़ी है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगा नहीं हम इस पर भी बोल सकते हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं. तो सबसे पहले इट्स अ नेशनल नॉन प्रॉफिट डे, जो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये दिन बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो वॉलंटियर्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो कंटिन्यूसली कम्युनिटी को इम्प्रूव करने और सोशल कॉज के साथ जुड़ते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज़ रियली अ नाइस डे, जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा नहीं इस पर थोड़ी सी एक लाइन तो बात होनी चाहिए. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डे है एंड दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक कैट एप्रिसिएशन डे. आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लैक कैट को ये ना उतना अच्छा नहीं समझते और बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं ब्लैक कैट्स के अराउंड. लेकिन आज इनका दिन है तो आज इनसे जो है ना डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं. अगर ये रास्ता काट जाए तो भी आप परेशान नहीं होइएगा बिकॉज ये आफ्टर ऑल इट्स लाइक कलर ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बुरा सोचने वाली बात नहीं है. तो आज इनका दिन है, आज थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, पैम्पर कीजिएगा. वैसे लोग जो है वो बहुत प्रेफर करते हैं कैट्स रखना अपने घर, देन दे मेक श्योर कि ब्लैक कैट ना हो. तो कोई है ऐसा जिसके घर में ब्लैक कैट है, वो बहुत ज़्यादा से पैम्पर करता है, पर्टिकुलरली ब्लैक कलर की वजह से उन्होंने उस कैट को पाला हुआ है, तो बताइएगा, निकल के आइए, ज़रा हाथ वाथ अपना रेस कीजिए 6622107 पर. और इसके अलावा एक और दिन है आज एंड ये है इंटरनेशनल होमलेस एनिमल्स डे. तो ये दिन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से, जहाँ लोगों को अवेयर किया जाता है जो होमलेस एनिमल्स हैं या जो अबंडेंट एनिमल्स हैं उनको किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, इस हवाले से जो है वो प्रमोट करना, लोगों को मोटिवेट करना और जो डिफरेंट अवेयरनेस है रिलेटेड टू दिस वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आज के दिन. इसके अलावा एक और दिन है एंड दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड हनी बी डे.
तो ये दिन भी खास है और आप जानते ही हैं 20 की जो बायोडाइवर्सिटी है या उसकी जो और खूबियां हैं उनको हाईलाइट करने के हवाले से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज है इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और देखा जाए तो 17th of August 1945 में इन्हें आज़ादी मिली और तब से लेकर आज तक इस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं। तो कंट्री में तो नेशनल हॉलीडे होती है, लोग अपने तरीके से अपनी कंट्री के लिए प्यार जो है वो दिखाते हैं, तो आज ये दिन भी है। इसके अलावा कुछ और डेज भी हैं लाइक नेशनल थ्रिफ्ट शॉप डे, जो कहीं ना कहीं एनकरेज करता है सस्टेनेबल शॉपिंग और उसे सपोर्ट कैसे किया जा सकता है उस हवाले से, और चैरिटेबल थ्रिफ्ट स्टोर्स को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उस हवाले से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। देयर वी हैव बेबी बूमर्स रिकॉग्निशन डे, ये भी ऑनर और कंट्रीब्यूट जो कंट्रीब्यूशन है बेबी बूमर जनरेशन का उस हिसाब से उस जनरेशन को एक ट्रिब्यूट देना, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये सारे दिन थे आज के जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो वापस आके मैं शेयर करूँगी। आपको भी कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है तो बताइए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर आप पेट्स पालते हैं, कैट्स आपको पसंद हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप में से किसी ने पर्टिकुलरली जानते बूझते ब्लैक कलर की कैट पाली और आपको अच्छी लगती है कि ब्लैक कलर की कैट्स को पालना घर पे रखना, या है किसी के पास एकदम ब्लैक कलर की कैट तो बताइए उसका क्या नाम आपने रखा है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। नंबर इज 666-22107।

0: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday,

0: दोपहर 1:30 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाज़िया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाज़िया आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले कुछ लोगों के यहाँ पे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो उन्हें यहाँ पर जो है वो शामिल कर लेते हैं। यहाँ हमें मैसेज है और इनका नाम है सुहेल जी, और कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी भी बिल्ली, मैंने काली बिल्ली पाली हुई है। अच्छा, अरे नाइस। चलिए मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आप जो है वो उन सारे मिथ्स उन चीज़ों को डिबंक करते हैं और आप नहीं पसंद करते। ओके, यहाँ पे सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं।

0: एंड टू ऑल द लवली लिसनर्स, सभी को गुड मॉर्निंग. यूसुफ शमीम ठीक है. और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल ओ ओ, आज यूसुफ जी 17th of August है ना. चलिए इसके साथ यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है और ये है शहजाद अहमद. अल्लाह पाक आपको और आपके सभी सुनने वालों को लंबी उम्र अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच. और अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. इसके साथ कुछ और भी मॉर्निंग के मैसेजेस हैं, जैसे हमारे साथ हुसैन जी हैं. गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड हु इज ही? हाँ चलिए ओके. देखिए कुछ बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और अब हम क्या इस पे जवाब दें कुछ समझ में नहीं आता. चलिए खैर, हम कुछ सोच के बता सकते हैं या आपको सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं बस, बाकी तो कुछ खास कह नहीं सकती मैं. यहाँ जावेद बाजवा जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं और सभी को विशिंग एवरीवन अ वेरी ब्यूटीफुल डे विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हैप्पीनेस एंड गुड वाइब एंड अ वंडरफुल डे अहेड. थैंक यू सो मच. बहुत ही खूबसूरत सा ये आपका मैसेज. और इस खूबसूरत से मैसेज के साथ सुरजीत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं. सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पे सलाम वाला मैसेज है अयाम खान यूसुफ जई जी का. सो वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे. एंड यहाँ पे मुझे मैसेज किया है, इनका नाम हम चेक कर लेते हैं. इनका नाम है रिजवान, गुड मॉर्निंग कहते हैं. सॉरी रिजवानी रजवान. ओके सो थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं अलखूर वक्रा से. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. इसके अलावा गुड मॉर्निंग का मैसेज है और ये है एस बी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. और अभी तक किसी खास, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया नहीं है कि ब्लैक कैट क्या आपके घर में है, आपने कभी पाली ब्लैक कैट्स को लेकर, क्या आपको भी थोड़ा सा ये लगता है कि अगर ये रास्ता काट दे तो मेरा आज का काम बिगड़ जाएगा, या यू नो डू यू बिलीव इन ऑल दिस? ज़रा बताइएगा मैसेज करके मुझे 666-2107 पर. जब तक आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तब तक मैं भी कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर कुछ चीज़ें बताते हैं आपको. ओके सो ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नूर ने कहा है तो ज़रूर. थैंक यू सो मच नूर आपके मैसेज का. और बहुत ही अच्छे वाले टाइम पे ये मैसेज आ गया मुझे, टाइम के लिए मैंने यहाँ पर चेक भी कर लिया. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खबर की जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि अगर कतर में कोई शख्स जो है वो किसी भी तरह से उसका एक्सीडेंट होता है, ज़ख्मी हालत में है या क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ऐसी सूरत में आपको उसकी फ़ोटोज़ लेना या फिर बिना इजाज़त वीडियोस लेना, शेयर करना भारी पड़ सकता है. भारी मतलब बहुत भारी पड़ सकता है. और ये सब खिलाफ अर्जी है और मना किया गया है कि आप किसी भी तरह से कोई भी वीडियोस, कोई भी फ़ोटोज़ बिना किसी इजाज़त के किसी के कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, नॉट इवन ऑन व्हाट्सएप. यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लॉयर खदीजा आपने पर्टिकुलरली इंटरव्यू में कहा कि अगर आप एक्सीडेंट होता देखते हैं या हुआ है कहीं, तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि एम्बुलेंस या फिर पुलिस को कॉल करेंगे. ये आपकी जिम्मेदारी भी है. और एक और चीज़ कही गई है जिसे हाईलाइट किया गया है कि कतर पीनल कोड के मुताबिक अगर एक्सीडेंट विक्टिम्स की फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस लिए गए और कहीं पर शेयर होते हैं तो उस केस में 2 साल तक की सज़ा हो सकती है. वहीं पर कतरियाल 10,000 तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर ये दोनों सज़ाएँ साथ में भी दी जा सकती हैं. तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये भी कहा है कि एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग के लिए मित्राश ऐप पर आप सिर्फ और व्हीकल की फोटोज डाल सकते हैं, लेकिन विक्टिम्स या फिर पैसेंजर्स की फोटोज लेना और डालना पूरी तरह से ममनू है, प्रोहिबिटेड है, मना है. लॉयर्स का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो या इंफॉर्मेशन वेरीफाई किए बगैर फॉरवर्ड करना भी आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है. सो लिहाजा आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है. जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट अगर किसी तरह का कोई खुदा ना खास्ता कहीं आप देखते हैं हुआ है, तो आप फौरी तौर पर एम्बुलेंस या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. फ़ोटो वगैरह आप नहीं ले सकते, जो कि यहाँ पे कहा गया है सिर्फ और सिर्फ व्हीकल की फोटो जो है वो डाली जा सकती है, लेकिन विक्टिम्स हैं जो पैसेंजर्स हैं उनके फोटो वीडियो लेना मना है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और इफ इन केस पकड़े जाते हैं जो कि जाएंगे आगे पीछे, तो फिर उस केस में 2 साल तक की जेल हो सकती है, 10,000 कतरी रियाल तक का फाइन लग सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं साथ में भी मिलाकर दी जा सकती है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। इसके अलावा एक और अपडेट आपके साथ, और ये है बैक टू स्कूल कैंपेन। आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने बैक टू स्कूल कैंपेन 2026-2027 जो है वो लॉन्च कर दी है, ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज जो हैं वो नए स्कूल ईयर के लिए अपनी भरपूर तैयारी कर सकें। इस साल पहली मरतबा फर्स्ट स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो तकरीबन 10,700 नए ग्रेड 1 स्टूडेंट्स की स्कूल जर्नी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। आपको बताएं कि 25 अगस्त को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी QNCC में एक एजुकेशनल गैदरिंग भी होगी, जहां पे टीचर्स, एजुकेशन लीडर्स वर्कशॉप्स और डिस्कशंस में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैंपेन्स हैं वो डिफरेंट मॉल्स में जारी हैं, और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो प्लेस वेंडोम में 21 से 27 अगस्त तक एक्टिविटीज़ रहेंगी, मशरब में 25 से लेके 27 अगस्त तक यहाँ फैमिली इवेंट्स होंगे। वहीं कुछ और स्टोर्स में भी स्कूल कैंपेन्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये स्कूल कैंपेन्स भी जो हैं वो अब तैयार हो चुकी है, मतलब लोग बच्चे अब तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, छुट्टियाँ वट्टियाँ हो गई, अब आपकी स्कूल जाने की तैयारी स्टार्ट आपको कर देनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ हो गया है, ये दोनों अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। और एक भाई ने मुझे लिखकर भेजा है, इनका नाम यूसुफ जी, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, आप बिल्कुल वो ना हो, हो जाता है कभी कभी, हम सब इंसान हैं और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। अच्छा, इनका नाम मैं चेक कर लेती हूँ, इनका नाम है सुहेल, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और कहते हैं मैडम बचपन में मैंने ब्लैक कलर की कैट पाली थी और मुझे किसी भी तरह का कोई भी काली बिल्ली से कोई मसला नहीं है, मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो ब्लैक कलर की कैट्स ही हैं। ओहो सुहेल जी, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, यहाँ कोई और भी हमारे साथ जुड़ा है, इनका नाम है मुदस्सिर बंगश जी, और सलाम कहते हैं गुड मॉर्निंग पूरी फैमिली को, और मुझे भी सलाम कहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे और ढेरों खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत से मैसेज के लिए। एम शफीक जी हैं हमारे साथ, सलाम कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग पूरी टीम को, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे मॉर्निंग, तो हमने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, अब एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊँगी तो आज का जो मुद्दा है उस पर बात होगी। बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप हमारा नंबर जो है वो लिख लीजिए जहाँ आप मुझे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, आई रिपीट 4434377, यानी 4434377। इस नंबर पे आपको मुझे मेरे साथ रहना है, और यहाँ इस टॉपिक पर हम जब वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे, डायरेक्टली आपकी कॉल्स ही लेते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कोशिश कीजिए कि कॉल के थ्रू ही आप हमारे साथ जुड़े। बाकी अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं देन ऑफकोर्स द नंबर इज 666-222-107। मोहम्मद इब्राहिम जी हमारे साथ जुड़ते हुए सलाम कहते हुए, क्या हाल चाल है मैडम सरफराज आलम जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए बस अब छोटा सा एक ब्रेक और वापस आएंगे तो आज का हमारा टॉपिक और भी बहुत सारी बातें, स्टे हुक टू एफएम 107 दिल से देसी।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
4: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफटॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटीरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
7: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड। फिल्मी गाइड, जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू।
6: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियाँ ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहाँ आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: जी गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ। देखो लाइफ में ना हम कितनी बार ये कहते हैं कि देखो फलाना कितना लकी है और मैं उतना लकी हूं नहीं, मैं उतनी लकी हूं नहीं, है ना। हम बहुत बार ये समझते हैं और मानते हैं कि कुछ लोगों की कामयाबी के पीछे उनका लक भी काम करता है। जिंदगी में इस सोच का शिकार हम सब हुए हैं कि हाय हम भी काश इतने लकी होते। कुछ लोग कहते हैं कि सही वक्त पर जो हमें मौके मिलते हैं और जो लोग उन्हें अवेल कर लेते हैं वो एक्चुअल में लकी होते हैं। ये एक बड़ा अलग सी बात है, लेकिन इस लक का किस तरह का ताल्लुक है। एक तो लकी ये है कि आपने बैठे बैठाए कुछ जीत लिया, कोई बड़ा इनाम जीत लिया, कोई बड़ी रकम जीत ली, वो तो उसमें तो आपने कोई मेहनत ऐसा सच की नहीं, फिर भी होती है मेहनत, फिर भी क्यों नहीं होती है। लेकिन हाँ, फिर भी उस तरह की मेहनत नहीं होती जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए, और फिर भी हम लकी हो जाते हैं, जो कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोगों का लक वाकई उनका जो है बहुत ज़्यादा साथ देता है, इन द सेंस उन्हें समझ में आता है कि ये कौन सा मौका है, किस चीज़ में मुझे कहाँ बोलना है, कौन से टाइम पे मुझे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे मुझे मार्केट से मनी उठा लेना है। ये मैं मतलब पैसों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, वैसे बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, मेरे ऐसे निकल रहा है मुँह से। तो मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि लोग कुछ लोगों को लकी समझते हैं, लेकिन लक की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि आपको समझ में आए कि कब किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करनी है और कैसे करनी है, और फिर उससे रिलेटेड क्या डिसीजंस लेने हैं। ये है एक्चुअल में समझदारी। अब आज का जो टी टेबल टॉक है वो इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछा जाए, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पिक करने के लिए कही जाए तो आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सक्सेस के लिए क्या होगी। आप किसे समझते हैं कि यू नो सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे फर्स्ट लक जिस पे हम बात ही कर रहे हैं, दूसरा आपके हिसाब से इंटेलिजेंस कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है, थर्ड इज स्मार्टनेस। व्हेन आई से स्मार्टनेस उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप इंटेलिजेंट होने के साथ स्मार्ट भी हैं, आपको स्मार्ट मूव्स लेने आते हैं, या फिर थॉरली आप ये मानते हैं कि हार्डवर्क। आपके हिसाब से आपको अगर मौका मिले तो आप लकी होना पसंद करेंगे या फिर आप जो हैं वो स्मार्ट होना पसंद करेंगे। क्या हार्डवर्क भी अपनी किस्मत खुद बना सकता है? जो भी हार्डवर्किंग है वो अपनी किस्मत खुद बनाता है, वो लकी हो जाता है। बस आज इसी टॉपिक पे बात होगी, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, जिससे आप कन्फ्यूजन के शिकार ना हो, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स जो हैं अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं, बट आई एम गोना स्टिक टू दिस कि आपके नज़दीक सक्सेस में ज़्यादा रोल किसका है। Do you believe लक का है या आपको लगता है स्मार्टनेस का है? स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस चलो एक ही कर देते हैं इसे। आपको लगता है स्मार्टनेस का है या आपके हिसाब से हार्डवर्क का है? सबसे ज़्यादा रोल किसी भी शख्स की सक्सेस में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? या हो सकता है आप कहें कि तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, या हो सकता है इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ आपके समझ में आया कि ये चीज़ भी मैटर करती है जो आपने मेंशन ही नहीं की, तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सवाल है वो यही है कि आपके नज़दीक सक्सेस में ज़्यादा रोल जो है वो किसका है। क्या लक का भी एक रोल होता है? क्या वाकई लक का रोल होता है? कभी आपने इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की? क्या आप ख़ुद को एक लकी पर्सन समझते हैं? आपको लगता है कि हाँ मेरा लक जो है कई बार फेवर करता है? क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लकी मोमेंट है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप कहें कि यहाँ ना मैंने हार्डवर्क किया, ना मेरी स्मार्टनेस काम आई, बट आई वॉज लाइक रियली लकी, और मैं लकी ही था, और ऑल ऑफ सडन मेरे साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसके लिए मैंने कोई एफर्ट्स भी नहीं डाले, आई एम रियली लकी इन दैट वे। तो ऐसा भी कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा मोमेंट तो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। या फिर जो हम आपसे पूछ ही रहे हैं उस पर बात तो ज़रूर कीजिए कि आपके नज़दीक सक्सेस में ज़्यादा रोल किसका है, लक का, स्मार्टनेस का, या फिर हार्डवर्क का। आज का हमारा यही सवाल है। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन द नंबर 443-443-77। देखिए, देखा जाए तो ये सवाल तो इंटरेस्टिंग है, साथ ही इसमें बहुत सारे और एंगल्स हो सकते हैं, बहुत सारे. अभी एकदम से सारी चीज़ें मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए. धीरे धीरे हम इस पर भी अपनी बातें भी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप रखें अपनी बात 6622107 पर मैसेज के थ्रू, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके नज़दीक सक्सेस में ज़्यादा रोल जो है वो किसका है, लक का, स्मार्टनेस का या फिर हार्डवर्क का? व्हाट डू यू थिंक? चलिए आप जब तक सोचिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इस पर हमारा डिस्कशन जारी रहेगा.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ। 6:53 ऑन द क्लॉक। आज मैं आपसे पूछ ही रही हूं कि सक्सेस में ज्यादा रोल किसका है। क्या आपको लगता है लक का है, या आपको लगता है स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस दोनों को मिला के समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हार्ड वर्क तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो कामयाबी हासिल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल, या फिर तीनों चीज़ों का गुड ब्लेंड भी हो सकता है, या फिर कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नजर आते हैं कि नहीं ये तो आपने मिस कर दिया, ये एंगल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाटएवर, हमारे साथ जुड़िए, हमें बताइए। वैसे ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो सक्सेस हासिल करना चाहता है, लेकिन जब बात कामयाबी की होती है तो ये सवाल हमारे जहन में ज़रूर स्ट्राइक करता है, क्या सिर्फ लकी होना ज़रूरी है, क्या स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इंटेलिजेंस में ऐसे रहता है कि आज के टाइम में स्मार्टनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, या फिर असल कामयाबी जो है वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के थ्रू ही मिलती है। देखिए, वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो हकीकत ये है कि सक्सेस जो है वो एक ऐसी चीज़ का नाम है जहाँ पर तीनों ही चीज़ों के अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर दैट मेरे साथ एक जो है कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अलैहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं
1: आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: शुक्र
0: है अल्लाह का।
1: अच्छा, सबसे पहले तो देखिए माँ बाप की दुआ होती है इंसान के लिए।
0: माँ बाप की दुआ, नाइस।
1: कोई भी इंसान होता है वो माँ बाप की दुआ से ही होता है, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है।
0: बहुत अच्छा कहा आपने, माँ बाप की दुआ। हाँ, ये चीज़ तो हमने ऐड ही नहीं की थी और आपने ऐड किया। माँ बाप की दुआ से आप लकी भी हो जाते हैं और कामयाब भी, नाइस। आपका नाम क्या आपने बताया मुझे?
1: मेरा नाम उमर शहजाद है,
0: मोहम्मद शहजाद। ओके, नाइस। तो कभी ऐसा लाइफ, उमर शहजाद, सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा ड्रॉप हो रही है। ओके, तो आप कभी, आप आई थोड़ी आपकी भरपूर आवाज़। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आप वाकई लकी हुए किसी चीज़ में, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, माँ बाप की तो दुआएं आपके साथ थी ही थी, बट आपने बहुत सारा मेहनत नहीं की, बट फिर भी आप जो है वो लकी हुए, कोई ऐसी अमेजिंग से अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपको मिला जहाँ आपने कहा रिवाव मैंने तो सोचा भी नहीं था, बट ये मुझे मिल गई, ये मौका मुझे मिल गया और मैं इस तरह से कामयाब हुआ हूँ इस चीज़ में, ऐसा कुछ हुआ कभी?
1: जी, ऐसा हुआ, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे जो से घर के हालात थे वो नॉर्मल ही थे, इतने कुछ ठीक नहीं थे।
0: अच्छा, अच्छा।
1: ऐसा ऐसा हम बड़े हुए, अल्लाह पाक ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, उनका लाख लाख शुक्र अदा करूँ फिर भी कम है। ऐसा ऐसा में ऐसे एफर्ट्स आए जिससे हम डट के हमने सामना किया उनका, तो आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने पैरों पर खड़े हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी लकी यही है। अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हमें, क्योंकि हमारे दिल की जो से तमन्ना है ना वो अल्लाह पाक ने सारी पूरी की है, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि अल्लाह से दुआ करके इंसान जो भी हासिल करना चाहे ना सच्चे दिल से।
0: बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ आना जो है वो इत्तेफाक था या आपने प्लानिंग की थी, आई मीन कतर आना आपका?
1: ये मेरी वालदा मुझे कहती होती थी कि मेरा बेटा एक दिन बाहर के मुल्क जाके काम करे, ये उनकी ख्वाहिश थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो
0: उनकी दुआओं का असर। बिल्कुल, चलिए, माशाल्लाह, जबरदस्त।
1: कहता था कि नहीं, मैंने आपके पास ही रहना है, मैंने प्रदेश में जाके क्या करना है, लेकिन वो जो माँ बाप के दिल से दुआ निकली वो अपनी औलाद के लिए तो वो तो पूरी करता है अल्लाह पाक।
0: सही, चलिए, आपकी अम्मा की, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। और शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, कि आपने ये वाला पॉइंट, माँ बाप की दुआओं वाली चीज़, ये एक एलिमेंट और ऐड किया हमारे आज के इस टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बहुत ही रेलिवेंट है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अपना ख्याल रखिए, हैव अ फैंटास्टिक डे।
1: आपकी टीम के लिए भी दुआएं, मेरी भी, अल्लाह पाक आपको भी और तरक्की दे, आपके चैनल को।
0: آمین سم آمین. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. اوکے اللہ حافظ, اللہ حافظ. آل رائٹ, تو یہاں پر عمر ہمارے ساتھ جڑے اور بہت ہی اچھی بات انہوں نے ایڈ کی, جو پیرنٹس کی جو بلیسنگس ہیں, جو دعائیں ہیں, اس حوالے سے میں کہوں گی بات تو بالکل سچ اور صحیح کہی انہوں نے. ہاں, اس کے بغیر تو شاید ہم نہ لکی ہوں گے, نہ کامیاب ہوں گے, نہ اسمارٹ ہوں گے, نہ شاید اس طرح سے ہارڈ ورک کر پائیں گے. تو بس آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سکسیز کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا کامیابی جو ہے وہ اس کا تعلق لق سے ہے, مطلب قسمت سے ہے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اسمارٹ ہونا, انٹیلیجنٹ ہونا امپورٹنٹ ہے.

0: तो हर एलिमेंट जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का एक अपना स्ट्रॉन्ग रोल है और उन सब का एक अपना एक किरदार है. लेकिन लक, लक कितना ज़्यादा हमारा साथ देता है या हम उस पर कितना रिलाई करते हैं? क्या यहाँ कतर में आना आपके लिए एक इत्तेफाक की बात थी, आप लकी हुए एंड ऑल ऑफ सडन आपने यहाँ पे लैंड किया, या फिर आपने पूरी भरपूर प्लानिंग की और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे? ये भी लक है, क्योंकि हम कई बार अपने लक को जो है ना वो उस तरह से देख भी नहीं रहे होते, उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते. हालात बन रहे हैं, सिचुएशंस बन रही हैं, लेकिन हम उसे उस तरह से अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते. तो बस ये भी आज है कि हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें. तो फिलहाल एक मेरे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप?
1: मैंने दो एक मिनट पहले मैंने ट्यूनिंग किया. मैं असल में थोड़ा सा दूसरे तरफ थोड़ा सुबह में मुतवज्जे हो जाता हूँ घरेलू.
0: अच्छा,
1: थोड़ा
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं
1: करना रहता कुछ जरूरी. तो मैं अभी जस्ट मैंने सुना कि शायद कुछ आप कामयाबी के ऊपर कुछ है आपका चल रहा है. मैंने किसी को अपने भाई को सुना भी नहीं है, बस अपने तरफ से ही फीडबैक देना है सारा.
0: नहीं नहीं, आप अपनी तरफ से जो देते हैं वो काफ़ी जेन्युइन होता है और काफ़ी अच्छा होता है. आज हम बात जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो ये कि सक्सेस में ज़्यादा रोल आपके हिसाब से किसका है, लक का, स्मार्टनेस का या हार्ड वर्क?
1: हार्ड वर्क सबसे ऊपर रखूंगा मैं. अच्छा? ये लक और ये सब जो भी है अपने जगह पे है, क्योंकि अल्लाह ताला हमको हर हर बंदे को मौका देता है. वो मतलब ये नहीं है कि मतलब हर हमेशा उसको ये कुछ ना कुछ उसको लाइफ में बहुत से मतलब सिचुएशन आते हैं, परेशानी आती है, तो उससे आदमी अगर घबरा के और अपना अपना जो उसका एक ये बना के रखता रहता है, मतलब जो भी काम करने का वो उससे अगर वो पलट के वापस चला गया तो फिर वो चींटी है देखो फिरती है, फिर उठ के वो अपना मंजिल अपना मंजिल वो मतलब बदलती नहीं है, रास्ता बदलती नहीं है और धीरे धीरे धीरे 10 बार गिर के भी वो अपने रास्ते पे उसी पे कायम रहती है. और वो अल्लाह ताला फिर लास्ट में उसको समझ लो कि वो चाहे उसके कुछ झुंड हो चाहे कुछ ये मिलके और वो लोग अपने उसको समझ लो अपना गोल वो लोग मतलब ये अचीव कर लेते हैं. तो बंदे को देखो लाइफ में बहुत किस्म के और सक्सेस कुछ वक्त में आदमी के लिए आता है. अगर वो अपने परेशानी वक्त में आता है तो उसे सीख लेना चाहिए बंदे को, किसी को भी. कोई जरूरी नहीं कि एक बार आदमी बंदा फेल हो गया मान लो तो अपनी पढ़ाई को खत्म करके कि नहीं यार अब फायदा नहीं है. नहीं, हमारी क्या कमियां रह गई हैं, क्या कमी है उसमें बंदे को मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज का और उसके लिए एक रास्ता तलाश करना चाहिए. और बंदा जिस तरीके से गुमान करता है उस तरीके से अल्लाह ताला उसके साथ में उसका मदद करता है. असल में बंदे को पता नहीं है कि हमारे आगे क्या है. वो अगर जिस तरीके से उसका थॉट अपना निगेटिव पॉजिटिव जिस तरीके से अपना बना के चलता है उसी हिसाब से उसको उसके साथ में वो उसके लाइफ में भी होता है मेरे ख्याल से. तो किसी बंदे को अपने सक्सेस पाने के लिए उसको मेहनत जरूरी है और कोई मुश्किल आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए अपने उसको. हाँ मतलब ये दूसरों को से देख के सीखना चाहिए, सीख ले के रखना चाहिए. कोई जरूरी नहीं कि खाली तालीम तो मतलब जरूरी है, लेकिन तालीम है और पढ़ाई मान लो हम नहीं कर पाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं अब हम अपने आप को ये कर लें कि यार अब दूसरे को देख के कि यार उसकी देखो कितनी अच्छी लाइफ है ये करके ऐसा नहीं. जिस लायक हम हैं उस पे हम फोकस करें. मान लो एक छोटे काम को भी किसी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए. जिस लायक अल्लाह ताला ने मतलब ये करके रखा कोई जरूरी नहीं हर बंदा अगर पायलट ही हो जाए तो जमीन पे कौन चलाएगा गाड़ी.
0: सही बात है.
1: हर बंदा अगर मतलब पढ़ा लिखा हो जाए, हर बंदा डॉक्टर ही हो जाए, हर बंदा इंजीनियर ही हो जाए तो भाई नीचे के जो काम है वो कौन मैनेज
0: करेगा.
1: तो हर काम में मतलब उसको छोटा नहीं समझना चाहिए बंदे को. अपने मेहनत और उससे मतलब ये सोचे कि मतलब हाँ कुदरत का ये तो है कि बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे नसीब में क्यों ऐसा है, मैं ही क्यों ऐसा. नहीं, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए उससे तुम सब्र करके और अच्छा उम्मीद लेके आगे बढ़ो. और ये ना सोचो कि मतलब ये मैं क्यों. जिस तरीके से कि मतलब है ना कि मतलब कभी कभी मूवी में दिखाता है कि एक पैर का लगड़ा चल के आता है तो बोलता है यार मुझे क्यों मतलब ऐसा बनाया गया. फिर देखता है दोनों पैर का लंगड़ा भी आगे पहुंचता है तो उसको देख के सेटिस्फाई होता है यार मैं तो फिर भी उससे बेहतर हूँ. तो ये नहीं सोचना चाहिए, अपने से छोटे को देखो.

0: को अगर उसके दिल में सुकून हासिल करना है तो अपने से नीचे के लोगों को देखोगे तो शायद है कि आपको मतलब सुकून महसूस होगा। अपने से ऊपर को देखोगे तो हमेशा मतलब आपको टेंशन फील होगा कि यार ऐसा ऐसा ऐसा क्यों है। तो अपने से देखो, हम लोग अल्लाह ताला ने इस तरीके से हम लोग को घर और सारी चीजें प्रोवाइड करके मतलब समझ लो कि हम लोग अपने मेहनत मशक्कत तो एक जरिया अल्लाह ने बना के रखा है। तो अपने से जो बहुत से गरीब हैं ऐसे कि मतलब एक हवा का झोंका जोर से आता है तो भी बेचारे उनका मकान उनका आशियाना मतलब उड़ जाता है और इस तरीके से बेचारे फिर उनको दोबारा ये करना पड़ता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए बंदे को कि मतलब सक्सेस कोई जरूरी नहीं है कि मतलब खाली आपके अकलमंदी से ही सक्सेस नहीं मिलता है। अगर सारे अकलमंदी से सक्सेस मिले ना तो जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं ना तो वो फिर बेचारे मतलब वो भूखे मर जाएंगे। अल्लाह ताला को पता है कि कौन बंदा किस लायक है किस तरह है तो अल्लाह ताला उसको अता करता है, मौका देता है। हाँ, सक्सेस पाने के बाद में बंदे को मैनेज करके अपने आप को ये रखना बहुत जरूरी है। कमाना ही सबसे बड़ा चीज नहीं है, कमा के अपने आप को हम मैनेज करके उसको अपने खर्च को अपने उसको अगर हम मैनेज करके रखेंगे तो शायद आगे हम बढ़ते रहेंगे। जितनी हमारी आमदनी है उस हिसाब से हम अपने खर्च को भी ये करें मैनेज करें।
1: स्मार्टनेस है, समझदारी है, इंटेलिजेंस है। बहुत ही अच्छा कहा और आपने, मुझे खुशी हुई कि फर्स्ट पे आपने रखा हार्डवर्क। आपके हिसाब से फर्स्ट पे हार्डवर्क ही आता है, देन देयर कम्स द अदर थिंग।
0: भाई हार्डवर्क के बगैर कोई बंदा मतलब ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई, मान लो कोई अगर पढ़ाई करके उस मुकाम तक पहुंचता है तो वो भी अपने लाइफ में बहुत हार्ड

0: हैं कि मतलब यार फला का लड़का इतना आगे निकल गया, हम तो पीछे रह गए, अब हमें क्या करना है, ऐसा ऐसा नहीं। आपके लायक क्या काम है, अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से मतलब काम मतलब रखे हैं, बहुत से जरिया का आमदनी कमाई का आमदनी का आपके पास रख, हमको मुस्बत सोच के साथ में हम जिस लायक है उसको लेके हम आगे बढ़े। कोई काम छोटा नहीं होता है मेरे मेरे हिसाब से। तो आपको सक्सेस पाने के लिए काम को अगर आप छोटा समझोगे कि यार मेरे उस लायक नहीं है, ये मैं क्यों करूंगा, हमारे बाप दादे इतने उसे, तो फिर वो हमारा मकाना फैसला है।
1: मुझे खुशी है कि रईस ये आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने हर तरीके से जो है वो यही कहा कि हार्ड वर्क जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है और ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, जिससे मैं भी पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। सही कहा आपने,
0: कोई आगे नहीं बढ़ सकता है बिना हार्ड वर्क।
1: हार्ड वर्क ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, हम कहते हैं ना कि
0: बिल्कुल मौका उसी उसी टाइम उसको ये होता है कि भाई बिना आप हार्ड वर्क के, आप मान लो आप आज माशाल्लाह बेहतरीन इंग्लिश बोल रही हैं या बेहतरीन बातें कर रही हैं एक जर्नलिस्ट, तो ये इसके लिए आपने मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों का ये करके और आपने उसके उसमें कि मतलब हम अपनी जहन साजी किया है कि मतलब हाँ हमें कैसे बात करना है, उसका तरीका क्या है, उसके ऊपर आदमी गौर फिक्र करता है, बहुत मेहनत करके जद्दोजहद करके तो फिर आगे बढ़ता है कोई भी उस पे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हाथ में मिल गया कि मतलब हाँ चलो हम आरजी बन के और बैठ के, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। अगर उस लायक हम पहले मेन चीज तालीम तो जरूरी है भाई, कि हम तालीम को इग्नोर ना करें। अगर तालीम है हमारे पास तो अल्लाह ताला जरूर कोई मतलब कोई तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हाँ अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये तालीम के ही ऊपर अगर हम उसको लें कि हल यस्तवील आम अवल बसीर, क्या एक अंधा और एक मतलब आंख वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो एक एक एक जिस तरह जिस पढ़ा लिखा है एक मतलब उसके सामने एक समझ लो कि रोशनी के मानिंद मतलब वो देख रहा है बिल्कुल कैसे रास्ता तय करना है, और एक बंदा नॉर्मल आदमी को एक ड्राइवर को बिठा दोगे गाड़ी के ऊपर तो ले जाके कहीं बिठोगे, और जो जिसके पास तालीम है सीखा हुआ है तो वो अपने अपना उसका जो कानून है नियम है उस हिसाब से वो गाड़ी को मतलब हैंडल करेगा।
1: बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया रईस जी। मुझे आपने बताया कि आप बिजी भी होते हैं मॉर्निंग्स में, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया।
0: और हमारे तमाम भाइयों को सलाम और आदाब, सबका मतलब जितने हमारे जानने वाले हैं।
1: दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगा।

0: FM 107. Time check. दोस्तों वेलकम बैक. टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:11.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी.
0: हाँ जी, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया आपके साथ 7:11 ऑन द क्लॉक. आज हम बात कर रहे हैं कामयाबी की और उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार आपके हिसाब से किसका होता है. क्या आप मानते हैं कि ये लक का है, या आपको लगता है कि स्मार्टनेस या फिर इंटेलिजेंस टुगेदर कर लेते हैं, या फिर हार्डवर्क किसका सबसे बड़ा रोल है, या फिर तीनों का है, या कोई और एलिमेंट आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कामयाबी में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पर जो

0: नहीं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, की हाल चाल जी?
0: बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप?
1: जब से नाजिया जी आप जैसे हार्ड वर्किंग और सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ ना, आई फील सो लकी ऑलवेज।
0: हाय, थैंक यू जी। सेम सेम, कॉपी पेस्ट करिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से मैं आप लोग के साथ जुड़ी हूँ और जब सुबह का शो कर रही हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि टॉपिक होता है और सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, एंड वी जस्ट गेट लाइक 3 आवर्स, तो इसमें वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मुझे मज़ा भी आता है इसे करने में।
1: मैडम, एक तो होता है जी स्विमिंग पूल,
0: हाँ,
1: एक होता है समंदर।
0: uh-huh.
1: ये आपका शो है ना, ये ज्ञान का समंदर है मैडम।
0: हाँ,
1: जिसको जितना चाहे उतना ले लो।
0: चलिए, मुझे खुशी है कि लोग अगर इससे सीख रहे हैं, कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी मुझे मिल नहीं सकती और इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती इस शो में, कि अगर एक दो लोगों की भी लाइफ हम चेंज कर पा रहे हैं ना, तो हम कामयाब हैं इस शो के साथ।
1: चलिए मैडम, और कुछ नहीं, एक एक्साइटमेंट तो होती है ना सभी को आपस में जुड़ने की, कॉल करने की।
0: हाँ, ये भी अच्छा है।
1: सुबह प्रोग्राम,
0: मेरी वजह से दोस्तियां भी हो रही हैं, आपके ग्रुप्स भी बन गए व्हाट्सएप के, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो गेट टुगेदर भी करें, मंगल भी करें, पार्टीज भी आपकी हो, एंजॉय करें, दोस्ती अच्छी हो। हाँ बताइए
1: जी। जी, एक सलाह लेनी थी, भी सरवर मिर्जा जी को कर सकते हैं इंक्लूड?
0: हाँ,
1: गेट टुगेदर में।
0: अरे क्यों नहीं कीजिए, जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा रखिएगा, बस ख्याल रखिए।
1: चलिए ठीक है, ठीक है जी, जरूर
0: जरूर। और हाँ, ये देखिएगा कि वो आपको वाकई टोपी ना पहनाए, कभी आप कुछ गेट टुगेदर रखे वो पहुंच जाए।
1: इसके ऊपर भी मैडम आपका एक टॉपिक हो सकता है, अगर चाहें तो आप।
0: टोपीबाज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ नहीं, अब अनकरीब जब हम और सर्वर भाई साथ में करेंगे ना शो, तो पहला टॉपिक मैं उनसे इंसिस्ट करूंगी, ये रखते हैं, इसमें बात करते हैं। हालांकि वो रखने नहीं देंगे इस टॉपिक को, कहेंगे आप घुमा फिरा के मुझे ही पहनाएंगे टोपी, ये कहते रहेंगे। लेकिन फिर भी अब उनके साथ जब शो करेंगे तब जरूर इस पर बात करेंगे, ठीक है? सितंबर से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है, क्या कहना चाहेंगे, आपके नज़दीक जो है सक्सेस में ज्यादा रोल किसका है, लक का, स्मार्टनेस का, या फिर हार्डवर्क?
1: मैं मैडम सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, एक सक्सेसफुल इंसान किसको मानते हो?
0: हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है, सक्सेसफुल इंसान कौन है, क्योंकि जो सक्सेसफुल है वो भी ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं हूँ, वो भी लगे एक रेस में, है ना?
1: जी,
0: मैं समझती हूँ कि वो इंसान जो भी गोल्स उसने अपने लिए सेट किए हैं, हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो भी हैं उन्हें वो अचीव कर लेता है तो वो कामयाब है। अब उसके क्या गोल्स हैं वो बताए, हो सकता है आपका एक गोल आपने सेट किया हो कि मैं अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगा अपने कंट्री में जाके, ये आपका गोल होगा। हो सकता है आपका गोल ये हो कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। अगर आप इन चीजों को अचीव कर पाते हैं, कर लेते हैं, तो बस आप कामयाब हैं अपनी जिंदगी में।
1: बस ठीक है जी, इतना ही पूछना था, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं और बोलना चाहूंगा सक्सेसफुल पे। अच्छा मैडम, मेरा क्या नजरिया है इस चीज पे?
0: हाँ हाँ,
1: मेरा नजरिया ये है, अभी जो हार्ड वर्किंग है ना,
0: हाँ,
1: वो कभी भी इंसान उससे भाग नहीं सकता मैडम।
0: अच्छा,
1: सपोज कीजिए आपको लक के साथ सारा कुछ मिल गया, सारा कुछ अवेलेबल हो गया आपको, पैसा, जॉब, अच्छी फैमिली, मैडम अगर आपको सारा कुछ मिल भी गया ना, फिर भी आपको रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं।
0: रिश्तों को बचाने के, हाँ ये चीज भी हो सकती है, हम इस तरफ तो सोच नहीं रहे, हाँ ये एंगल भी हो सकते हैं। बट एक चीज और आपने सुनी होगी गावा जी, कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मैं जिस हॉस्टल में पढ़ती थी तो एक लड़की थी, वो पूर्णिया से थी, बिहार से थी, और वो और मैं एक ही रूम में थे, हम दोनों रूम शेयर करते थे, वो बहुत कम पढ़ती थी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन वो नेचुरली काफ़ी इंटेलिजेंट थी, और मैं अच्छा खासा उसे देखो तो मैं ज़्यादा मेहनत करती थी, ज़्यादा पढ़ती थी, जब रिजल्ट आता था तो उसके मार्क्स ज़्यादा होते थे, मेरे हमेशा उससे कम। अब मैं उसे लक कहूँ या मैं उसे उसकी स्मार्टनेस कहूँ, क्योंकि हार्डवर्क तो मुझे उस तरह से दिखता नहीं, क्योंकि हम लोग रूममेट हैं, हम दोनों तो साथ में, हमारा रूटीन, हम सब देख रहे हैं दूसरे को, मैं उसके मुकाबले इतनी मेहनत कर रही हूँ बट मेरे मार्क्स हमेशा कम है।
1: मैडम इसकी जो एक प्राइम एग्जांपल है ना, मेरे ख्याल से हर बंदे के साथ रिलेट होगी। देखिए हाँ, जैसे मैं हूँ मैडम,
0: हाँ,
1: मैंने, मेरे पिताजी ने, हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर मैं वही अपने चाचे ताओं को देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, मैडम उन्होंने तो इतनी मेहनत ना, उनको इतनी नॉलेज है, बस उनके पास बना बनाया सारा सिस्टम आ गया।
0: देखो वो लकी है ना इस केस में,
1: वो लकी है इस केस में बिल्कुल।
0: ये है तो कुछ लोग कहीं ना कहीं लकी होते हैं। अब उन्हें उस तरह की ना मेहनत करनी पड़ रही है, ना उतनी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है, उन्हें सब कुछ बना बनाया सेट मिल गया,
1: बना बनाया सेट मिल गया। मगर मैडम उसके पीछे भी उनको ये चीज को बचाने के लिए हार्ड वर्किंग तो करना ही पड़ेगा ना।
0: हाँ, तो ये बात तो सही है आपने। उसे जो है वो मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए मेहनत अब करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ें हो सकता है, काफ़ी स्मार्ट हो, उस तरह की मेहनत रिक्वायर्ड ही ना हो उनके लिए, वो स्मार्टली चीज़ें हैंडल कर रहे हो या करते जा रहे हो कम मेहनत में।
1: बस मैडम जब आपकी जेब भारी होती है ना बंदे की, ना तो ग्रामर मैटर करती है ना आपके एक्सेंट मैटर करते हैं।
0: ये बात तो अच्छी कही आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल
1: है मैडम जिंदगी का।
0: हाँ, ये तो है।
1: अच्छा मैडम जब मैं हार्ड वर्किंग की एक एग्जांपल देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में याद आते हैं दशरथ मांझी जी, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। आपने देखी है मूवी उनकी?
0: मूवी नहीं देखी, मैंने पढ़ा है उनके बारे में
1: जी। तो उन्होंने देखो मैडम, गानों में सुनते थे भी बंदे पहाड़ को तोड़ के रोड बना सकते हैं, मगर उस बंदे ने मैडम रियल में करके दिखाया इस चीज को।
0: देखिए मेहनत, मेहनत के साथ उनका एक लेवल का डेडिकेशन है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं एक दिन का दो दिन का काम है कि आपने दो दिन लगातार मेहनत कर ली और आपका हो गया काम। नहीं, एक लंबा प्रोलॉन्ग ये सिलसिला है, और उतनी मेहनत बना के रखना, उतना डेडिकेशन बनाए रखना थ्रू आउट, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है।
1: बस नाजिया जी एक और पर्सनल एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करना चाहूंगा।
0: जी जी।
1: मैं भी अभी लक के पीछे मेरे को भागते हुए 10 से 15 साल हो गए।
0: अच्छा।
1: मगर मैंने अपनी हार्ड वर्किंग छोड़ी नहीं है बिल्कुल भी।
0: नाइस।
1: उस लक को अचीव करने के लिए मैं अभी भी पीछे लगा हूँ, और मेरे को अभी भी यकीन है मैडम
0: केबीसी पहुंचूंगा।
1: केबीसी भी पहुंचूंगा। एक और चीज है वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा जब मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें, और वो पॉजिटिव चीज है मैडम।
0: अच्छा ओके, चलिए जरूर।
1: मैं हर बार हारा ही हूँ उस चीज में, और मैडम मेरे को 1% भी वो नहीं है भी मैं हारा हूँ, मगर लगा हुआ हूँ अपनी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ।
0: नाइस, बस यही चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, लगे रहिएगा, बताइएगा लगे लगे आप लकी हुए कि नहीं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही। पता है मेहनत से भी आप जो है वो लक क्रिएट करते हैं, ये चीज है। अरे बहुत अच्छी लाइन आपने कही, और ये होता भी है कि आप जब
1: मोस्टली जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्होंने मेहनत के साथ ही अपनी किस्मत को बदला है।
0: मेहनत के साथ अपनी किस्मत बदलते हैं लोग, सही, बहुत ही अच्छी है, बड़ी खूबसूरत लाइन, और मुझे लगता है ये हमारी इस वक्त की कन्वर्सेशन का बेस्ट टेक अवे भी है कि आप वो कहते हैं ना, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, तो ये वही वाली बात है, जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा लकी होने का चांस आपका बढ़ जाता है। सो दैट्स नाइस।
1: मैडम ऑथर की लाइन समझूं या एक जर्नलिस्ट की?
0: नहीं मतलब ये तो एक जनरल है, आई डोंट नो, ये तो एनॉनमस है, पता नहीं किसने कही थी, बट अभी आपके कहने से मुझे एकदम याद आई, तो ये इस तरह से है, और बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मेहनत से जो है आप लकी हो जाते हैं, तो मेहनत जारी रखिए। थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज़, बाय। गाबा जी की सबसे अच्छी बात दोस्त पता है क्या, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदे हैं, इनकी जो जो इनकी कन्वर्सेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ही फिलोसफिकल होके नहीं बताते, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके जो रियलिटी है उसके साथ जुड़ के अपनी बात रखते हैं, तो हम हर कोई, हम में से जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा, एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद बाजवा जी हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी सुबह? पूरा नाम बोल रही हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो मैं लिसनर्स को, इसीलिए फुल
2: शुक्र गुजार हूँ। माशाल्लाह रईस भाई और गाबा भाई एज यूजुअल माशाल्लाह, इतनी मैं ये सोचता हूँ जिस तरह गाबा भाई ने कहा कि समंदर हैं आप, और उसके बाद तो हम तो छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के होते हैं, हम वो हैं बेसिकली।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, समंदर आप हैं, आप लोग हैं, हमें आप कहिए कि हम छोटे छोटे वो हैं।
2: हमें भी कुछ टिप्स दे, हम कैसे मेहनत करें।
0: आप तो कर ही रहे हैं, आप तो कितनी अच्छी, आप मेहनत भी कर रहे हैं माशाल्लाह, आप मैं कह सकती हूँ अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आप कामयाब भी हैं, है ना, जो जो चीजें आपने सोची, देखिए सब तो सबको नहीं मिलता, बट अगर आप अपने आप को खुद एनालाइज करें, पूछे क्या मैं कामयाब हूँ, और आपका दिल कहता है हाँ बहुत सारी चीजें मैंने अचीव कर ली।

0: अपनी लाइफ में आप कामयाब हैं और आई एम श्योर उसके पीछे आपका हार्ड वर्क है ही.
1: एग्जैक्टली देखिए मैं ऑन एयर इस बात को मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा कि मेरे वालिद मरहूम एक टेलर मास्टर थे और जितनी उन्होंने मेहनत की हमें जो तालीम दिलवाई उसके बाद जो हमने मेहनत की और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने फैसिलिटेट करने वाला तो रब की जात है, वो एक जरिया हम जरिया सिर्फ करने वाला वो है. तो ठीक है बाकी रही बात कामयाबी की तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज को मैंने अचीव करना था जो मैंने सोचा था उसके बढ़ के रब ने अता किया है, इससे बड़े और क्या कामयाबी होगी
0: है ना माशाल्लाह.
1: और ख्वाहिश इंसान मेहनत करे बिल्कुल देखें ये डेफिनेटली 100% ये चीज है कि इंसान अपना फोकस मेहनत पे करे और किसी चीज की जब आप ख्वाहिश करते हैं ख्वाहिश करने के बाद आप जिद में आ जाते हैं, अगर नहीं मिलेगी तो वो डिसहार्ट और रब हमेशा आपको वो अता करता है जो आपके हक के लिए बेहतर है, जो आपकी जात के लिए बेहतर है, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है. और यहाँ पर जो सबसे पहले भाई थे उन्होंने जिक्र खैर किया कि माँ बाप की दुआ इसमें तो कोई तोरा है ही नहीं ना कोई शुबा है कि मेरे ख्याल में कामयाबी का जो बेहतरीन फॉर्मूला है नाजिया जी वो नंबर वन माँ बाप की दुआ है, नंबर टू मेहनत है, नंबर थ्री सही सिमत है, नंबर फोर समझदारी और फिर कामयाबी आपको खुद दस्तक देती है.
0: मतलब आपको ने अगर इन चीज़ों को रेट किया तो फर्स्ट पे तो आप कहते हैं कि माँ बाप की जो दुआएं हैं वो हैं, जो खैर हमने इसमें इंक्लूड नहीं की थी बट हाँ बिल्कुल सही हमारे कॉलर जुड़े उन्होंने कहा. सेकंड आपने जो है नंबर दिया हार्ड वर्क को, थर्ड गोज विद स्मार्टनेस एंड लास्ट में इज लाइक लक.
1: कामयाबी आपको खुद और लास्ट बात करूंगा ये यानी कि ये बात सबसे अहम है सिर्फ सख्त मेहनत नहीं सही काम पर भी मुसलसल मेहनत ज्यादा फायदा देती है, खाली मेहनत नहीं सही काम होना चाहिए.
0: हाँ यही समझदारी भी होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंट भी आप स्मार्ट भी हो कि कहाँ मेहनत करनी है कैसे करनी है ये हमें समझ में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता और हम कहते हैं हम तो पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं.
1: यानी कि जिंदगी से जिंदगी में सबसे पहले तो अपने नीयत को अच्छा रखें, वालिदैन की दुआएं फिर वही बात करूंगा फिर मेहनत करें समझदारी से फैसले करें और मुस्तकिल मिजाज रहें, ये नहीं कि आज मैं ये कर लूं तो कल मैं वो कर लूं. कामयाबी आपकी तब होगी जिसको कहते हैं कि कामयाबी आपके कदम को चूमेगी वो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी देर से हो सकता है लेकिन होगा जरूर, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है और इंशाल्लाह कामयाबी के इम्कानात रहते हैं और बहुत बढ़ जाते हैं.
0: बहुत ही जबरदस्त, मतलब वन लाइनर में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छे से बताया कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए. तो ये सारी चीजें हैं ही लेकिन आपका कंसिस्टेंट होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्तकिल मिजाजी जो आपने कही ये बहुत मैंडेटरी और ये होता है. आई हैव सीन मेनी पीपल बहुत ही जोश से स्टार्ट करते हैं और फिर सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं, रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उन तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है ना, बार बार डिसीजंस ले रहे हैं बदल रहे हैं. तो वो जो है ना क्लैरिटी थाट्स की वो बहुत ज़रूरी लोगों पास नहीं होती, जब आपके पास ये आ जाती है तो आप सही फैसले लेने लगते हैं.
1: देखिए यहाँ पर कल रात को बल्कि गाबा जी को मैंने कॉल की थी तो मतलब एक रूटीन जिस तरह रईस भाई और शहजादा सलीम भाई कहते हैं कि मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग इनको 4:45 मैसेजेस करता हूँ, मतलब वेरी गुड थिंग अच्छी चीजों को दुनिया के हिसाब से. तो उसके बाद मैं ऑफिस के लिए नमाज पढ़ के निकल आता हूँ तो मैं कल मेरी उनसे जब डिस्कस मुस्तकिल मिजाजी की बात कर रहा हूँ तो एंड गाबा भाई ही वॉज रियली शॉक्ड जब उन्होंने कहा कि यार आप ड्यूटी से आके इतने थके टूटे इतना डिस्टेंस करने के बाद मैंने उनको कहा कि इतना जो टाइम है वो मेरी जाती जिंदगी का है जिसमें मैं जॉगिंग या वॉकिंग करता हूँ, दैट इज ओनली फॉर मी. तो हम आप ये मुस्तकिल मिजाजी है जिसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है.
0: सही,
1: तो इसी तरह आपकी मुस्तकिल मिजाजी कि आप प्लीज जस्ट गो जिम, हम इंतजार कर रहे हैं.
0: सही, बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. ऑलवेज अ प्लेजर.
1: थैंक यू
0: मच. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, यहां पर दोस्तों जिस टॉपिक पे बात चल रही है इज अबाउट लाइक सक्सेस के लिए आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स आपको लगता है कि ये एलिमेंट्स वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रेट करने का मौका मिलेगा तो आप 1 2 3 रेटिंग क्या करना चाहेंगे. मैंने आज जो तीन एलिमेंट्स यहां पे ऐड किए हैं वो है लक, स्मार्टनेस एंड हार्डवर्क. सो आप रेटिंग अपनी कीजिए और मुझे बताइए कि आपने इन्हें इस तरह से क्यों रेट किया है, या कुछ और एलिमेंट्स भी आपको लगता है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं. फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक ले लेते हैं. पहला गाना जो हमें अब बजाना है अपने शो का वो है बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक बप्पी लहरीती नेहा भसीन की आवाज़ में सलाम इश्क. फिलहाल इसे मिलकर इन्जॉय करते हैं, वापस आएंगे तो हमारा और आपका जो डिस्कशन इस टॉपिक पे जारी रहेगा. Stay hooked to FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ। 7:36 हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हो चले हैं। फिलहाल एक कॉलर मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अहमद जी हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली सही पहचान है आपने,
0: सही पहचान।
1: अगर जी कैसे हैं आप, तमाम ऑडियंस कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं। आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको सुना स्टार्टिंग से। हाँ। भाई जावेद बाजवा जी और भी और एक दो जिन थे टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड एज यूजुअल। मैं भी अपना इनपुट कुछ देना चाह रहा था,
0: प्लीज गो अहेड बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कुछ लोग उसमें एग्री करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को जो इंटेलिजेंस दिया है या इक्यू लेवल दिया है सबको डिफरेंट दिया है।

0: इमेजिन करें कि सबका IQ लेवल एक ही होता, सबका इंटेलिजेंस एक ही जैसा होता, तो ये दुनिया कैसी होती, ऐसा मैं सोचता हूँ. तो सबको अलग अलग इंटेलिजेंस दिया हुआ अल्लाह ताला, और तमाम लोग अपने इंटेलिजेंस का उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. और जैसे कि आपने बताया कि आपकी क्लासमेट भी जो थी वो जैसे कुछ ब्रिलियंट चाइल्ड होते हैं, हर क्लास में होता है कि दूसरे काफी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक बच्चा जो होता है वो अनोइंगली वो इतना ब्रिलियंट होता है पहले से ही कि वो थोड़ी सी स्टडी करेगा और वो अचीव करता है या अच्छे टॉप ग्रेड ही करता है.
1: ये तो है, सही बात है.
0: उसी तरीके से अगर एक बंदा है, जैसे आप मिसाल के तौर पे लॉटरी का एग्जांपल लक के मामले में बहुत सारे लोग देते हैं कि वाला बंदा लकी था इसके लिए उसको लॉटरी लग गई. जैसा मैं सोचता हूँ कि लॉटरी कितने लोगों को लगती है, जैसा मैं सोचता हूँ तकरीबन थाउजेंड्स लाख में किसी एक या दो बंदे को लगती है लॉटरी. ये प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, यानी किसी किसी की लक चलती है, किसी किसी की
1: सही,
0: किसी किसी सबको तो लॉटरी नहीं लगती. अगर 10-100 लोगों ने लगाया तो सब लोगों की नहीं, उसमें से एक या दो जन विनर होते हैं जो अमाउंट के हकदार होते हैं बड़े अमाउंट के.
1: सही.
0: उसके अलावा हर बंदा, सॉरी मैं थोड़ा ब्लैंक आउट हो गया था अपने.
1: नहीं, आप लक की बात कर रहे थे, फिर शायद स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस की बात करेंगे. और लक से मुझे याद आया कि लक के पीछे जो इनकी लॉटरीज निकलती है, अगर हम इसकी बात करें तो लोग जो है ना बड़ा मेहनत कर रहे होते, पता चलता है 2 साल से लगे थे, किसी ने कहा अरे मैं तो 2-2.5 साल से लगा था, फिर मेरी जेएमसी, मतलब कोई भी गाड़ी निकली या कुछ भी, तो मुझे पता चला अच्छा इतने टाइम से वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लगे हुए थे.
0: अच्छा, कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं बस लॉटरी की टिकट खरीदते जाते हैं आप, यानी कई सालों तक और उनको नहीं लगती.
1: सही है.
0: अभी इसमें मैं कुछ एक एडिशन ये भी देखूंगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो रिस्क टेकर होते हैं. अगर आप जिंदगी में कुछ जगह पर रिस्क ले सकते हैं तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हो. अगर आपने रिस्क नहीं लिया है तो आप उस तरफ, यानी आपने आपका पहला स्टेप भी नहीं लिया है. बहुत सारी जगहों पर आपको रिस्क लेना होता है. अभी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर एक बंदे ने लॉटरी पे टिकट खरीदा है तो उसने एक छोटा सा रिस्क लिया कि भाई मुझे ये ट्राई करना है. तो लाइफ में आपको बहुत सारी जगह पर रिस्क लेना, अगर आपने प्रॉपर्टी में, स्टॉक में, कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक रिस्क माइंड में रखना है, ये बैक ऑफ द माइंड. क्या हो सकता है कि मैं इसमें कामयाब ना हो. वो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी या वो जो एक माइंड सेट होता है वो भी मेरे ख्याल से काफी जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छी बात है.
0: और फिर कुछ बंदे होते हैं जिनको जेनेटिकली बोलूंगा मैं, यानी फोर फादर्स की तरफ से उनको थोड़ा बहुत वेल्थ वगैरह मिल जाता है. वो बंदे क्या करते हैं, वो अपने लाइफ में, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी सेफ है, तो बहुत सारी जगह पर है ना वो रिस्क लेने के लिए डरते नहीं है. कुछ जो मिडिल क्लास होते हैं हम जैसे
1: है,
0: कि भाई वो थोड़ा कभी कभार कुछ चीजों में झिझकते हैं कि यार यहाँ पर मैं इतना अपना इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ.
1: सही बात.
0: वो झिझक कभी कभार उस चीज में उनको थोड़ा सा बिहाइंड रख देती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और हम जो है ना फटाक से रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करते पहले.
0: उनको पता होता है मेरे पीछे जो मेरे बाप हो और व्हाटएवर, यानी उनके पास अच्छा खासा वेल्थ है, मुझे अगर उसमें नुकसान थोड़ा हो भी जाता है तो इट डजंट मैटर, उनको एक दूसरी चीज में फिर इन्वॉल्व हो जाएगी.
1: बिल्कुल सही कहा. और शायद इसीलिए कहते भी है ना मनी अट्रैक्ट्स मनी, तो जिसके पास पैसा है तो वो उस पैसे से पैसा कमाता चला जा रहा है. और कुछ लोगों के पास इतना है ही नहीं
0: एक्स्ट्रा. सिटिंग मनी कभी भी मनी शुड फ्लो. मनी शुड फ्लो. आइडियल मनी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है. आपको उसको इन्वेस्ट करना है, आपको उसको कहीं ना कहीं लगाना है.
1: सही बात है. हम लोग सिर्फ सेविंग्स तक रहते हैं. मिडिल क्लास का जो सोच है वो सेविंग्स पे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स पे कम है. और शायद वही है कि लोगों के पास इतना बचता भी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें.
0: सिर्फ बैंक में रहने से ओके, कुछ लोग जिसमें इंटरेस्ट वो भी जो भी 4-5% व्हाटएवर जिसको चाहिए वो लेता है, अदरवाइज वो इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है.
1: सही.
0: तो मैं ज्यादातर मैं यही सोचूंगा कि इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपने इंटेलिजेंस का काफी होता है. अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप उस सही रास्ते में उसको इन्वेस्ट करो. सिर्फ ये नहीं कि भाई मैं लक पर डिपेंड करूंगा. लक में बार बार मेरा ऐसा मानना है कि प्रोपोर्शन बहुत कम होता है. काफी कम लोग जो होते हैं वो लकी होते हैं, काफी कम. लेकिन उसके मुकाबले में अगर जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट या अपना रिस्क कहीं पर लिया है सोच समझ कर, वो काफी काफी हद तक वो लोग सक्सेस होते हैं.
1: मतलब आप ये कह रहे हैं. हाँ
0: जी जी जी
1: जी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लक से आपको एक मौका मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है,

0: लेकिन आप इंटेलिजेंट स्मार्ट हो कि क्या डिसीजंस लेने हैं और फिर आपके पास हार्ड वर्क हो कि आप उसको गुड रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो ये एक चीज है।
1: नाजिया जी, मैं हार्ड वर्क में थोड़ा सा बिलीव नहीं करता हूँ, सॉरी टू से लाइक दैट।
0: ओके,
1: आप हाँ बिल्कुल देखिए, आप मैं नहीं बार बार ये बोलता हूँ कि आप आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए या मेरे ऑफिस में एक बंदा होगा जो काफी हार्ड वर्क करता होगा, यानी मैं फिजिकली हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ या कुछ भी जो अपने जॉब में, वो बिल्कुल जेन्युइन है, ऑनेस्टली कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिलता अप्रिसिएशन।
0: हाँ, नहीं मिलता, ये बात सच है।
1: लेकिन जो थोड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो कहीं कहीं पर रिस्क लेना चाहता है कि भाई मैं इस चीज को थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, शायद मैं ये प्रोजेक्ट मेरा मैं कम्प्लीट कर पाऊँ इतने ड्यूरेशन में, तो हार्डवर्क को इतना तरजीह नहीं मिलती है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ।
0: नहीं, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो ब्लू कॉलर वर्कर्स करते हैं, क्या उन इस तरह से
1: हार्डवर्क वाले मैंने देखा, वो हर जगह पे सक्सेस नहीं होते। आपको थोड़े इंटेलिजेंस, आपको स्मार्टनेस, वो थोड़े होनी ही चाहिए,
0: सही। बहुत ही अच्छी बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपने कही, स्मार्टनेस आज के टाइम में जरूरी है।
1: कड़ी है जब मैं लोग बोल रहा हूँ मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ मेरी कंपनी में, अरे भाई तो हार्डवर्क कर रहा है बट क्या तो इंटेलिजेंट है, क्या तो स्मार्ट है? सिर्फ आप अपने जॉब में लगे हो 9 to 5 व्हाटएवर आपका ड्यूटी आवर्स 8 to 4 आप कंटिन्यू बस वही कर रहे हो, लेकिन आप में स्मार्टनेस ने आपको एक, जैसे स्कूल लाइफ में मैं बोलते ना ये बच्चा बुक वॉर्म है, तीसरी मेरी किताबों में घुसा पड़ा है, बट एक एक्स्ट्रा स्किल्स जो होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है,
0: इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सही बात। तो मतलब आपके हिसाब से स्मार्टनेस कम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट? देयर कम्स द लक एंड देन हार्ड वर्क।
1: जी जी जी, मैं स्मार्टनेस के ऊपर ज्यादा मैं अपना वोटिंग करना चाहूंगा, क्योंकि हार्ड वर्क के देखिए हर इंसान हार्ड वर्क करता है, हर इंसान हार्ड वर्क अपने आप से सोचता है यार मैंने तो सुबह से लेकर शाम तक जितना करना था मैंने कर ही दिया अपनी एबिलिटी के अनुसार, फिर लेकिन जब उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो फिर उसको वो किस कैसे ब्लेम करेगा किसी को, क्योंकि उसने तो हार्ड वर्क किया है।
0: सही।
1: लेकिन जो अथॉरिटीज होती है ना, जो आपके ऊपर होती है, वो सिर्फ हार्डवर्क को ऑब्जर्व नहीं करते, वो आप में स्मार्टनेस भी देखते हैं, ये बंदा स्मार्ट भी है तो ये सिर्फ हार्डवर्क ही किया जा रहा है।
0: बहुत ही अच्छी बात, बड़ा डिफरेंस आपका जवाब, और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सही और सटीक आज के टाइम को देखते हुए, कि हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट वो एप्रिसिएशन उन्हें कभी नहीं मिलता, उनको उनका सही हक भी नहीं मिल पाता उस तरह से, कुछ लोग स्मार्टली काम करते हैं।
1: जी, उसी जगह पे एक दूसरा बंदा होगा जो हार्ड वर्क भी कर रहा है लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्मार्टनेस भी है,
0: वो स्मार्टनेस ज्यादा है।
1: बॉस वगैरह भी ये थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं यार ये बंदे में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है, तो वो उसको फिर कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट देंगे या काम देंगे कि चल लेट्स सी यार ये बंदा कर पाता है क्या, और लेट्स सी उस बंदे ने रिस्क लिया और वो कर लिया तो उसको एक पॉइंट ज्यादा हो जाता है फ्यूचर में, अगर उसको कुछ सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह व्हाटएवर नहीं मैं ही के ना
0: कंसीडर करेंगे। सही बात है, प्रमोशंस के लिए उसे ही ऑफ कोर्स कंसीडर किया जाएगा, जाहिर है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल फैक्ट।
1: मैं लक्ष्मी ज्यादा इतना बिलीव नहीं करता हूं, यू कैन डू इट योरसेल्फ, लेकिन आपको आपके तरीके आने चाहिए और उसमें यानी आपका यानी अल्लाह की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अल्लाह ने आपको एक जहन दिया हुआ है वो उसमें उसका भी यानी इस्तेमाल होना चाहिए कि आपके पास कितना है और आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो। ये काफी इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं लेकिन कोइंसिडेंटली बाय चांस उनको वो इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो सिचुएशन में उस जगह पर भी नहीं होते।
0: सही। कुछ लोग बताए ये भी कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ लेकिन मेरा लक उस तरह से मेरा साथ नहीं देता, है ना? ये भी होता है कि लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बट वो लकी ही नहीं हो पाते उस तरह से, उनको वो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं मिलती है। हाँ, ये बोलते हैं लोग, तो ये बात भी सच है।
1: उनको यही नहीं समझ में आता कि भाई लक जो होती है वो सब लोगों की नहीं चलती है, सब लोगों की नहीं चलती। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि कौन बनेगा करोड़पति में, अभी आपने देखा होगा कितने कंसिस्टेंट आते हैं, ठीक है, कोई एक बंदे को हॉट सीट के चांस मिलता है।
0: सही बात है,
1: उसमें तमाम लोगों का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो यानी एक डिफरेंस होता है, किसी का 0 to 10 अभी आप काउंट करेंगे, किसी का 0 है, किसी का 10 है।
0: सही बात है, कुछ मेहनत भी करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लक का भी ऐड हो जाता है आपके साथ।
1: जितने भी कौन बनेगा करोड़पति में मेरे ख्याल से जो कंटेस्टेंट होते हैं उनका इंटेलिजेंस पहले टेस्ट किया जाता है कि ठीक है ये बंदा कितने लेवल तक इसका IQ है, कितना इसकी नॉलेज है, तभी तो वो उन सिलेक्टिव यानी कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद होते हैं।
0: शॉर्टलिस्ट होने में भी कितने लोग, हजारों शॉर्टलिस्ट होते हैं सोचिए, और वो भी वही होते होंगे जो वाकई वहां पे हॉट सीट तक बैठने के लायक होंगे, तो जाहिर है बिल्कुल इनका सर्टेन क्राइटेरिया तो है जो फुलफिल करना है।
1: कोई कंपनी में देखिए ना कि अगर इंटरव्यूज होते हैं तो वो बंदे के हार्डवर्क को लोग पहले ऑब्जर्व करते ही नहीं, वो उसके इंटेलिजेंस, IQ, नॉलेज, अच्छा मैं क्वालिफिकेशन तो भूल गया जो जिस वक्त मैं ब्लैंक आउट हो गया था कि अगर आपके पास थोड़ी सी क्वालिफिकेशन होती है

0: तो इट हेल्प्स, इट हेल्प्स,
1: इट हेल्प्स.
0: अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके डैडी पप्पा व्हाटएवर कि भाई अगर आप कहीं पर अब्रॉड जाकर स्टडी करके आते हो और फिर आप अपनी कंट्री में या कहीं पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है बनिस्बत इसके जो बंदे ने लोकली स्टडी किया है. तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी उसमें एडिशन होती है कि आपको आपके फ्यूचर के स्टेप के लिए आपको और एक एक कदम आगे बढ़ने मिल जाता है.
1: कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ता है क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनते हैं, तो वो कहीं एडिशनल एक हल्का सा एज तो मिलता ही है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में हल्का सा जो है वो कहीं ना कहीं स्लाइट इंप्रूवमेंट नजर आता है. वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है द मोमेंट यू एंटर द रूम, जो भी जहाँ पे भी इंटरव्यू होता है. हाँ, तो ये तो आपने
0: सही कहा, उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मैंने जितना ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो अलग एनवायरनमेंट में छोटे से बड़े सॉरी अलग एनवायरनमेंट में इन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया हुआ रहता है तो उनको उसका बेनिफिट होता है.
1: हाँ, उन्हें फायदा मिलता है, वो कुछ अलग सोच भी पाते हैं और प्रेजेंट भी उस तरह से कर पाते हैं जो शायद हम हमारी तो एक एक ट्रेडिशनल सोच है उसी के साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपोजर भी कम हुआ है. तो जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा वाइडन सोच के साथ आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से वो करेगा. सो वेरी वेल सेड. और मुझे अच्छा लगा कि आपने थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइटली और डिफरेंट आंसर दिया. यू आर नॉट लाइक कम्प्लीटली आफ्टर हार्ड वर्क. आपका मानना है कि इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस इट रियली प्लीज इम्पॉर्टेंट रोल अगर आप चाहते हैं कामयाब होना. सो या दैट्स नाइस, वेरी वेल सेड, जबरदस्त. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं. ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू वंस अगेन. अपना ख्याल रखें. यू टू टेक केयर. हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम. ऑलराइट, सो यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट सी अप्रोच, मैं कह सकती हूँ डिफरेंट सी सोच जो हमारे साथ जुड़े अहमद जी. उनका कहना है कि ठीक है हार्डवर्क तो सब करते हैं, बहुत लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं बट उस तरह के उन्हें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते, अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता और कोई उनके उस हार्डवर्क को उतना उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं करता. तो ये तो है रियालिटी. अच्छा, एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: हाय, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अज्जू जी. पहले तो आपको मैं ये बताऊं कितने लोग आपके नंबर मांग रहे हैं, तो क्या आपका नंबर मैं उन्हें पास ऑन कर दूं?
2: नो नो नो नो नो, डोंट शेयर माय प्राइवेसी.
1: ओके, तो भाई लोग सुन लीजिए, जिस जिसने भी पूछा है ना, तो अब मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं अपनी फैमिली टाइम जो है ना उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. तो ठीक है,
2: मैंने पर्सनली आई एम कीपिंग माय प्राइवेसी.
1: चलिए, गुड, वी अप्रिशिएट. ठीक है ठीक है, डन. तो पहले मैंने कहा मैं आपसे परमिशन लूँ एंड देन पास ऑन करूँ. सो आज का हमारा जो टॉपिक है इज अबाउट कि सक्सेस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ का है. डू यू बिलीव इट्स लाइक लक और इट्स अ स्मार्टनेस और अ हार्ड वर्क?
2: नाजिया, यू अप्लाई 369 टेस्ला थ्योरी. लाइक the luck is 3 circle and 6 is the intelligent and 9 is a hard work. Okay. So it comes with one circle. For example you have a blade in your hand and you are going to cutting a tree. Okay. But your blade is not sharp. So aap jitna hard work karo you will not cut the tree. So the blade is your hard work and the sharpness is your intelligence. And nice. kabhi aapka hard work bahut zyada ho ke kabhi kabhi wo tree itna weak hai to it was fell down. So it depends on your luck. That is very kam percentage, maximum you can say 3. So mere khayal se aapko teeno hona chahiye.
1: अगर आप 1-2-3 नंबर रेट करें तीनों को, तो फर्स्ट पे, सेकंड और थर्ड पे किसे रखेंगे?
2: Yeah, the first, I would like to say, the hard work is first.
1: Okay.
2: And the intelligent is number 6 and the luck is number 3.
1: Okay, so hard comes first and foremost.
2: Yeah, of course. For example, you want to become successful, so first the hard work is coming first, and then you have to learn so many things about how become success. And finally, thoda sa luck hona chahiye, become success.
1: थोड़ा सा लक भी जो है वो भी मैटर करता है, क्योंकि कई बार आप अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, सारी चीजें प्लान

0: करें बट स्टिल वो उस तरह के अचीवेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे. सो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लक का भी है कि आप उस मैटर में, मतलब उस सिचुएशन में वहाँ लकी नहीं हो रहे. सो नाइस, सो गुड. सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स लाइक हार्ड वर्क. ओके, वेरी नाइस. और बहुत अच्छे से आपने समझाया. आप एक दो दिन से जुड़े नहीं तो हम सब लोग आपके लिए जो थे वो परेशान थे कि खैरियत से हैं अज्जू, कहाँ हैं. बट ग्लैड कि आज आप जुड़े और हम उम्मीद करें आप बिल्कुल खैरियत से हैं.
1: Yesterday I am trying to call but I didn't get line because very very busy.
0: Okay. चलिए उस केस में if you want you can just drop me a message so that I'll get to know कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, और अगर हमें जैसे लाइन फ्री मिलेगी I'll call you back in that case. ठीक है. ओके जी, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. हैव अ फैंटास्टिक डे. बाय बाय. तो देखिए अभी तक मेजॉरिटी लोग जो है हमारे साथ जुड़े और उनका कहना और मानना यही था कि भाई इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द हार्ड वर्क. वैसे आपको क्या लगता है, क्या हार्ड वर्क सबसे पहले आता है, या आप मानते हैं कि स्मार्टनेस बहुत मैटर करती है, या कुछ लोग ये भी मान के चलते हैं कि हार्ड वर्क स्मार्टनेस तो सब साइड में करो. कुछ लोग वाकई लकी हैं, वो मतलब उस तरह के काम भी नहीं कर रहे होते हैं बट वो लकी होते हैं, वो बॉसेस की हमेशा गुड बुक में होते हैं, या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट है तो उनको कह दिया जाता है कि आप इसे लीड करेंगे, या कुछ और सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपने देखा महसूस किया कि मैं तो स्मार्ट भी हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट भी हूँ, मैं तो हार्ड वर्किंग भी हूँ, बट लकी ये बंदा है. तो क्या वजह है कि ये लकी क्यों है, कभी ऐसा सवाल आपके जहन में आया? फिलहाल सोचिए, रिकॉल कीजिए, कोई इंसिडेंट है शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए 443-443-77 पर. एक और कॉलर मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: अस्सलाम वालेकुम नासिया.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं शिमोना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आज हमारी बहस का मुद्दा
2: तो लक, आप क्या है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ये बता.
0: इंटेलिजेंट तो मैं खुद को कह नहीं सकती, हाँ हार्ड वर्किंग तो हूँ, मेहनत तो अच्छा. करती हूँ. लक मेरा बहुत ज्यादा, मैंने ये नहीं देखा कि मैं लकी हो जाऊँ एकदम से, बिना मेहनत के मैंने कुछ अचीव कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता. बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम. मुझे ज्यादा करके मेहनत करनी है. I'm not lucky that way. I'm saying कि मुझे हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, मुझे मेरे साथ मेहनत से ही कुछ अचीव करना पड़ता है. मैं ऐसे लकी बहुत कम हुआ होगा कि मैं बहुत लकी कहूँ कि हुई हूँ इस केस में. नहीं, ऐसा नहीं.
2: Then you should be thankful also, I guess.
0: अच्छा क्यों?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छा क्यों?
2: भाई आप लकी हैं ना, आप लकी हैं जैसे.
0: अच्छा
2: आपके,
0: मैं तो ये नहीं कि मैं हार्ड वर्किंग ज्यादा हूँ फिर भी मैं लकी हूँ. हाँ वही ना, मेरे साथ लक. अच्छा हाँ वो तो है, लेकिन आपको कभी कभी थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है शिमोन. क्या होता है कि कुछ लोग आप देखते हैं कि वो लकी हैं, वाकई लकी हैं, वो डिजर्व नहीं कर रहे होते वो चीजें, मतलब आई मीन टू से वो प्रोजेक्ट है या कोई उन्हें असाइनमेंट ऐसा मिला, वो उस तरह से डिजर्व नहीं करते. वो शायद उतने आपको लगता है कि अगर मैं खुद को और उसे कंपेयर करूँ तो आई एम लाइक फार बेटर, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हूँ दैट वे. बट वो बंदा जो है वो लकी है, उसको वो मिल गया, मुझे नहीं मिला.
2: ऐसा ही एक्चुअली यही बात है एक्चुअली. आपने जो डिस्कशन आज स्टार्ट किया है कि उसमें बीच में एक चीज आई थी कि भी एक और फैक्टर भी आया था, लाइक यू स्टार्टेड विद यू नो लक और स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क, ये सारी चीजें थी राइट. बट देन इन बिटवीन देयर वाज वन मोर फैक्टर एडेड टू इट कि भी वालदेन की दुआएं करें.
0: हां जी हां जी.
2: तो मैं उसको तो निकाल दूंगा अभी इसमें से, बिकॉज यू नो आई विल नॉट टॉक ऑन दैट, बिकॉज वो जो है ना वो ये जो बाकी की ये सारी चीजें हैं, ये सब जो है वेरिएबल्स हैं. लक, आपका इंटेलिजेंस, आपका हार्डवर्क, ये सारी चीजें वेरिएबल्स हैं. बट वालदेन की जो दुआएं हैं वो कंसिस्टेंट हैं. वी विल नॉट कंपेयर कंसिस्टेंट वैल्यू विद वेरिएबल वैल्यू. वो तो सभी के साथ होंगी. वो ऐसा कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जिसके साथ जो है वो वालदेन की दुआएं ना हो.
0: बिल्कुल.
2: तो वहाँ तो हम खाली बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह. मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इसमें आप बात कह सकूं.
0: I'm excited. तो
2: इसमें जो है देखिए, यू कैन नॉट यू नो ओवर रूल लक. आप लक को वो जो है वो ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग लकी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. आप कोई भी जो है आपसे, मतलब व्हेन आई से व्हेन यू आई मीन ऑल ऑफ अस, तो लक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर आई विल गिव एन एग्जांपल, आप जो है कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली से आप बिलोंग कर

0: रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों से आपका मिलना हुआ, ये आपके आपके इख्तियार में नहीं है ये बात। आप जिस घर में पैदा हुई, मैं जिस घर में पैदा हुए और मुकेश अंबानी के बच्चे जिस घर में पैदा हुए, ठीक है, ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, ये इट इज आवर लक दैट वी वर बॉर्न इनटू दोस फैमिलीज। तो जब हमने ये चीज डिसाइड नहीं की है, और जैसे ही जो है वो आप और मैं किसी दूसरे घर में पैदा हुए और मुकेश अंबानी के बच्चे उस घर में पैदा हुए, बिल्कुल अलग केस हो गया, सिनेरियो ही अलग हो गया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आप कितनी भी मेहनत करते रहे, ठीक है, कितने भी स्मार्ट हो आप, बट 99% चांसेस ये है, मैं आई एम नॉट रूलिंग आउट 100%, ठीक है, बट 99% चांसेस ये है कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे।
1: ये मुद्दे की बात कही आपने, सही, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कट लक का रोल देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया।
0: बहुत इम्पोर्टेंट, इसी आप कहाँ पैदा हो रहे हैं ये आपके हाथ में इख्तियार में
1: है ही नहीं, सही बात है,
0: है ही नहीं। अच्छा, आप इसी एग्जांपल में एक दूसरी एग्जांपल है अंदर छुपी हुई कि लक तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, उसके बाद लेकिन लक बहुत इम्पोर्टेंट है, लक लेकिन उसके बाद वो लक क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराता है, ठीक है। अब उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपका आप कितने स्मार्ट हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे जो है उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से उनको यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वो दूसरा फैक्टर आ गया। तीसरा फैक्टर आता है कि अब आप हार्डवर्क कितना कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, देन यू आर इंटेलिजेंट एनफ स्मार्ट एनफ टू आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटीज। आपको चार मिली, उसमें से आपने यू आइडेंटिफाई टू अपॉर्चुनिटीज, राइट अपॉर्चुनिटीज, देन यू डिड हार्ड वर्क ऑन दैट, ठीक है, अब आपने उसके ऊपर हार्ड वर्क किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं चौथा फैक्टर विच आई मीन वी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस मिस एंटायरली आई गेस, बट नॉट ऑल, एंड दैट इज परसिस्टेंस। आप लकी भी थे, ठीक है, आप स्मार्ट भी थे, आपने यू चोज द राइट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आप यू डिड द स्मार्ट वर्क आल्सो, हार्ड वर्क आल्सो, ठीक है, बट यू डिड नॉट डू इट परसिस्टेंटली, तो आप फेलियर हो जाएंगे, ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: अब इसी एग्जांपल में जो है, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी की फैमिली में आप कोई बच्चा पैदा हुआ वो ठीक है, लेकिन यही एक पीढ़ी पीछे चले जाइए आप, तो धीरूभाई अंबानी की फैमिली में दो बेटे हुए, मुकेश अंबानी और
1: अनिल
0: अंबानी, करेक्ट, तो दोनों को एक सा ही लक था, सेम लक, सेम अपॉर्चुनिटीज,
1: सही बात है,
0: लेकिन आज मुकेश अंबानी कहाँ है और अनिल अंबानी कहाँ है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि लक से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा।
1: सच बात है, सही,
0: यू वर बोथ बोथ वर लकी एट द सेम लेवल, ठीक,
1: सही, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वाह,
0: हाँ, तो ये लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हार्ड वर्क से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है,
1: हाँ,
0: और करते हैं लोग, हाँ, ऐसा नहीं है, नॉट डिनाइंग दैट, बट यू कैन नॉट रूल आउट, यू नो कि लक आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग जैसे एग्जांपल, इसका काउंटर एग्जांपल ये दे सकते हैं कि भाई देखिए आप जैसे जेफ बेजोस है या मस्क है, वो तो बड़े घराने में पैदा नहीं हुए, बड़े घर में पैदा नहीं हुए वो, बट अगर आप उनको देखेंगी, वो जिस जगह पैदा हुए, वो घर में नहीं हुए भले ही, लेकिन जिस जगह पैदा हुए वहां उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली हुई। अगर वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होते तो आप आज जेफ बेजोस या एलन मस्क नहीं होते हो,
1: ये भी
0: वो क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा हुए जहां पर की अपॉर्चुनिटीज थी, जहां वो एक्सप्लोर कर सकते थे बेहतर तरीके से,
1: और मुझे लगता है वो स्मार्ट इनफ भी रहे,
0: स्मार्ट
1: इनफ कन्वर्ट कर पाए उन अपॉर्चुनिटीज को रिजल्ट्स में, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: तो अब बहुत से लोग, यही मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर लकी है कि बहुत से लोग जो है वो अमेरिका में या बड़े या डेवलप कंट्री से पैदा हुए, लेकिन हर कोई जेफ बेजोस और एलन मस्क
1: नहीं है,
0: नहीं,
1: तो वो भी
0: तो वहां पर उनका जो है हार्ड वर्क, उनका परसिस्टेंसी, उनका स्मार्टनेस वो रोल कर प्ले करता है, लेकिन वो वहां पैदा हुए ये लकी थे, वो
1: ये लक था, सही,
0: ये लक था,
1: सही कहा। वहां पहुंचना मतलब कुछ लोग जो हैं किसी बड़ी एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हो सकता है उनके लिए लक हो, बट देन अगेन सक्सेस को कन्वर्ट करने के लिए यू आर सेइंग कि आप स्मार्ट भी हो इक्वली एंड हार्ड वर्किंग भी हो,

0: दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट लक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दैट्स नाइस. इसको पूरी तरह से हमने साइड में कर रखा था, बट आई एम ग्लैड किसी ने इसके ऊपर स्ट्रांग दलील दी.
1: लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है.
0: हां, लक बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: बस बहुत बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका, जो आप ऑलरेडी मतलब लक की वजह से आप या तो प्लस में होते हैं आप या माइनस में होते हैं.
0: सही.
1: तो ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट इग्नोर लक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कंसीडर, मे बी आई एम रॉन्ग 100%, दैट्स फाइन.
0: नाइस.
1: बट फॉर मी आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि लक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेहनत देखिए ना. आप एक जस्ट अ वेरी नो बेसिक एग्जांपल, आप एक रिक्शा वाले के बच्चे की मेहनत देखिए या रिक्शा वाले की मेहनत देखिए, ठीक है, और उसके साथ में आप अपने घर में अपनी या किसी अपने बच्चे की मेहनत देख लीजिए.
0: सही बात.
1: मेहनत तो दोनों कर रहे हैं.
0: सही बात है. और शायद वो ज्यादा ही कर रहे हैं.
1: शायद वो ज्यादा कर रहा है, बट क्योंकि वो हम लकी हैं इस ताल्लुक से कि हम इस घर में पैदा हो गए. हमारा कोई रोल नहीं था इस घर में पैदा होने.
0: सही बात है. बहुत
1: तो इसलिए जो है वो लक इज वेरी इम्पोर्टेंट. बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि भी लक के बाद देन यू हैव टू बिल्ड अप ऑन ऑल द अदर थिंग्स. वो जो है वो आपको काम करना पड़ेगा. खाली लक से काम नहीं होगा. खाली लक से यू विल बी अनिल अंबानी ओनली.
0: आप बैंकरप्ट हो गए और कुछ नहीं होगा. आपको लोगों ने पता है क्या डॉक्टर शिमोन कहना शुरू किया है? मैंने कहा आप PhD वाले डॉक्टर हैं. नहीं नहीं, आप इतना अच्छा लेकर आते हैं, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो कई बार हमें शक होता है कि डॉक्टर नहीं, कम से कम ये प्रोफेसर तो है ही.
1: नहीं नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज्यादा, कोई खास ऐसा ही है बस.
0: अरे ये तो कोई नहीं मानेगा, ये तो कोई मान ही नहीं सकता.
1: नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बात है. देखिए पढ़ाई लिखाई होना,
0: आप इतने स्मार्ट हैं, इतना अच्छे से बात कर पाते हैं. सो या इतनी प्रैक्टिस हो गई आपको इस तरह से, या आई एम श्योर आप बुक्स वगैरह तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, अदरवाइज इस तरह की इतनी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होना और किसी भी टॉपिक पर इस तरह से रख पाना is altogether different art. And let me adulate you for this. आप बहुत कमाल तरीके से जो है वो explain कर पाते हैं. It's really hard.
1: I am happy कि मैं कुछ add on कर पाता हूँ. Otherwise इसमें खैर कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो खास हो, but just कि भी मेरा कोई भी point है अगर.
0: I think ये point हम सब miss कर रहे थे लक वाला, और अब और शायद मैंने भी नहीं incorporate किया था अपने conclusions कि मैं जब बोलूँ तो मैंने लक को शायद उस तरह से नहीं डिफाइन करना था. मैंने भी नहीं समझा कि लक का इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा. दो आई बिलीव यहाँ है उसका परसेंटेज, बट अगेन मेरे हिसाब से भी एक स्मार्टनेस या फिर हार्ड वर्क ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन लक कम्स इन द लास्ट. बट नहीं, यहाँ तो लक पहले है, देन अदर थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद इट. तो ये चीज़ें भी एक अलग ही डिफरेंट
1: हायरार्की चेंज हो गई थोड़ी.
0: हाँ, टॉप और बॉटम मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो गए. चलिए, लेकिन जबरदस्त. थैंक यू सो मच. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू कि आप टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं, और मेरे लिसनर्स के लिए इतना अच्छा है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे. सो रियली थैंक यू सो मच. प्लेजर टॉकिंग टू यू.
1: हैव अ गुड डे.
0: यू टू. टेक केयर. वालेकुम अस्सलाम. दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, वापस आऊंगी तो कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करनी है. आपको भी मेरे साथ शेयर करनी है, बिल्कुल कीजिए. 443-443-77 इज द नंबर एंड आई विल बी राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजिया आपके?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी अल्लाह का शुक्र है, डूइंग वेरी वेल
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका नाम पूछूं, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम है रेहान, बहुत पहले कॉलिंग एंड देन देयर इज अ गैप, ज्यादा तो नो सो बट समटाइम्स आई फील लाइक सो आई जस्ट कॉल।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ग्लैड आज फाइनली आपसे बात हो पा रही है हमारी मॉर्निंग शो
2: में। जी पहले भी दो दफा हुई है मॉर्निंग में भी, बट लॉन्ग टाइम बैक।
1: ओके ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं कि कामयाबी में ज्यादा बड़ा रोल किसका है, क्या लक को आप समझते हैं, स्मार्टनेस को आप मानते हैं या फिर हार्डवर्क?
2: आपने एक आधे से पूछा भी लाइक हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज सक्सेस, ये एक बहुत डिफरेंट एक चीज आ जाती है पहले। जस्ट मैंने समवेयर रेड के जी किसी टाइम लाइक एट 8 year old और अ 5 year old इफ ही कैन गो टू अ वॉशरूम ऑल अलोन सो इट्स अ सक्सेस फॉर हिम। इसी तरह फॉर अ 12 year old

0: चिकन कम बैक होम घूमे बगैर अगर वो घर आ जाए तो ये उसके लिए सक्सेस है. लाइक एक 20-30 के लिए एक अच्छी जॉब सिक्योर करना एक सक्सेस है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट पीपल हु आर इन 70s तो अगर वो कहीं बाहर हैं और बगैर घूमे घर आ जाते हैं तो अगेन उनके लिए वो एक सक्सेस है. एंड इफ समवन इज इन 80s एंड दे कैन गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक बाय देमसेल्व्स तो ये उनके लिए एक सक्सेस है. तो सक्सेस डिफर करती है बट आई प्रिज्यूम जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाली सक्सेस इज काइंड ऑफ मॉनेटरी बी एट अ गुड सिक्योरिंग अ गुड जॉब बिकमिंग सक्सेसफुल मे बी पैसे में जैसा किसी ने इलॉन मस्क की बात की किसी ने जेफ बेजोस का कहा. तो ये सब कुछ मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो हमारा फोकस यही सक्सेस है कि जी जो कमा अच्छा रहा है किसी अच्छी पोस्ट पे है उसके पास रिसोर्सेज है तो अगर हम सिर्फ उसके बारे में मेरे ख्याल में बात करें सक्सेस बिकॉज सक्सेस हर एक के लिए डिफाइन करना भी बहुत एक डिफरेंट चीज है.
1: पैरामीटर्स हैं लोगों के. दैट्स ट्रू. बात कही कि हर किसी के लिए सक्सेस का एक अलग पैरामीटर है. यहाँ हम शायद थोड़ा सा यू नो सक्सेस को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जोड़ देते हैं बट मैंने कहा कि यू नो समटाइम्स यू फील कि आपके लिए सक्सेस इज अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. जो भी आप अपने अपनी लाइफ के लिए गोल्स सेट किए हैं और वो आपने अचीव कर लिए सो यू आर सक्सेसफुल. हो सकता है आपने अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए कर रखी हूँ एंड वही आपने अचीव कर लिया.
0: मैंने आपको वही कहा देखिए इसमें सारी चीज वही आ जाती है कि लेकिन फिर भी हमारा फोकस मटेरियलिस्टिक वे ही में ही है. बच्चे के लिए आपने कहा कि जी डॉक्टर बन गए तो मतलब क्या अच्छी जॉब मिलेगी अच्छी पोस्ट है डॉक्टर CSS कर ले एंटरप्रेन्योर बन जाए अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर ले तो अगेन ये सारी चीजें तो वही जा रही है ना. तो मतलब इवन इन चीजों में भी आप वही कह रही मेरा गोल है घर बना लेना अगेन इट हैज टू डू समथिंग विद द मनी. पैसा होगा तो घर अच्छा बनेगा ना.
1: तो
0: अगेन अगर आप ये कहें अगर आप इसको बिल्कुल दूसरे पर्सपेक्टिव में ले जाएं कि जी सक्सेस है कि मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूं तो फिर उसमें तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. फिर लक नहीं आती. तो आप जिस मामले में हम फोकस यहाँ पे जितनी भी कॉल्स में हो रहा है वो हम अगर मेरे ख्याल में आप अगर माने या ना माने इट इज मटेरियलिस्टिक. तो आपने कोई भी आप मुझे बताएं आप क्या गोल कह रही थी. किसी की एक बुक बहुत फेमस हो गई तो भाई उसको रॉयल्टी मिलेगी. मतलब सक्सेसफुल एक्टर क्या है अच्छी पे मिलती है अ गुड RJ आपको पर आवर ज्यादा मिलेगा जो नहीं है तो मतलब सब कुछ अभी हम जहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं
1: रेहान
0: उस सारा मॉनिटरी जा रहा है.
1: ये तो सच है बट एक चीज है रेहान जी कि हमारी नेसेसिटी भी तो है.
0: मैंने इससे इनकार नहीं किया. आई एम नॉट सेइंग मैं इससे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आजकल के जमाने में यही सक्सेस का मायार है. लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि मे बी थोड़े से नॉन्सेंस चेंज करके हम अभी भी फोकस उसी पे ही कर रहे हैं तो आई स्टे आउट देयर बिकॉज अगर आप बिल्कुल इससे अलहदा चले जाते हैं और सक्सेस ये है कि यार ये समझना कि मुझे बनाया किस लिए गया है. अगर आप ये सक्सेस समझते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेहतर करूं इन नॉर्मल डे टू डे उसको सक्सेस समझते हैं या ये सक्सेस है कि मैं अपने दीन को अच्छी तरीके से समझ सकूं तो फिर कॉनोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी. फिर लक नहीं आती कि वहां पे दरमियान में कहीं पे फिर वहां पे हार्डवर्क ही रह जाता है. लेकिन जो बात हम जिस मौजू पे जो सब कह रहे हैं उसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन.
1: इट्स अ कॉम्बिनेशन.
0: आप किसी चीज को ऊपर नहीं कह सकते हैं. मे बी अगर आप कहीं सक्सेस अचीव करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अपने ग्रेड्स अच्छा लेना चाहते हैं जिसका आपने जिक्र किया था अपना कि अ फ्रेंड ऑफ योर्स इंटेलिजेंट थी पढ़ती कम थी तो वो आप देखें तो एक आपका एक इक्विलिब्रियम बनता है कि जो जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कम हार्डवर्क करके भी एक चीज अचीव कर सकेंगे और जो शायद जिनका इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस लेवल दूसरों से थोड़ा सा उसकी निस्बत थोड़ा सा कम है तो उनको बाकी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा. एंड देर आर पीपल आई हैड अ फ्रेंड जिससे बाद में हम पूछा करते थे वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था और हार्ड वर्किंग भी नहीं था.
1: अच्छा।
0: और लेकिन उसका क्या था कि एग्जाम्स होते थे तो वो एक दिन कुछ पढ़ रहा होता था एंड वो कहता था बस मैं और नहीं पढ़ रहा. एंड वी वर लाइक देयर आर सो मेनी चैप्टर्स व्हिच आर लेफ्ट. कहता बस ठीक है. एंड अल्टीमेटली ये एक दफा नहीं दो साल हमारे साथ हुआ कि जो चैप्टर्स उसने पढ़े हुए थे उनमें से पूरा एग्जाम आ गया.
1: अरे उसे पेपर आउट तो नहीं
0: हो जाता था? सॉरी
1: मैंने कहा उसे पेपर आउट तो नहीं हो जाता था?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं

0: बिल्कुल नहीं. एंड देन वी वुड गो टू हिम और हम उसको एट द लास्ट डे वी विल आस्क हिम कि भाई तू छोड़, तूने कौन कौन से चैप्टर्स प्यार किए, जस्ट टेल अस द चैप्टर्स यू हैव डन सो दैट हम उनको रिवाइज करें, पेपर उन्हीं में से आना है.
1: तो इसका मतलब वो लकी था, है ना?
0: या ही वाज लकी, ही वाज लकी. कुछ उसकी चीजें ऐसी हो जाती थी कि ही वाज लकी और उनमें फायदा होता था. लेकिन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि हम किसी भी चीज में किसी एक चीज को ऊपर लाना मुश्किल हो जाता है. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. पहली के सक्सेस क्या है हम, और मेरे ख्याल में हम आजकल यही चल रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट, अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब, मे बी इलेक्शन में कामयाबी, मे बी कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाना, सारी चीजें कहीं पे भी हम कहीं ना कहीं इसमें मॉनेटरी आंसर है या मेटेरियलिस्टिक आंसर है. तो उनमें आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन. अगर किसी के पास अच्छा वो है, लक अच्छी है, या उसके पास अल्लाह ने उसको हुनर दिया हुआ है, तो मे बी उसको फिर मेहनत कम करनी पड़ती है, उसको कुछ हार्डवर्क कम करना पड़ता है. जो वहां पे कुछ डेफिसिट होता है जिनको, उनको हार्डवर्क से उसको पूरा करना पड़ता है. तो ये हर एक पे डिपेंड करता है कि वो देखे कि व्हाट इज देयर, उसका अपना इनबिल्ट क्या चीजें उसके पास अवेलेबल हैं और क्या नहीं है. तो जहां कहीं ये इक्विलिब्रियम बन जाता है या मिक्स होके एक खास रेशियो पे आप पहुंच जाते हैं तो सक्सेस आपको मिल जाती है. समवन मेंशन्ड अबाउट इलॉन मस्क, वो बहुत गरीब था. इलॉन मस्क गरीब नहीं था बचपन में, वो बहुत रीजनेबली उसके जो फादर थे ही वाज गुड. जबकि उससे जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको $1 million दिए थे उन्होंने कि तुम इन्वेस्ट करो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हां ही वाज नॉट फिल्थी रिच,
1: उनके फादर फैमिली से नहीं थे,
0: बट ही वाज हाई एवरेज थे. तो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल गरीबों, बट देयर आर एग्जांपल्स कि बहुत लोग गरीब होते हैं एंड दे वो चले जाते हैं.
1: तो मेरे ख्याल
0: जी बिल्कुल ऐसे ही है जी. प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, यूएस प्रेसिडेंट्स बने हैं जो कुछ भी नहीं थे पहले. तो इवन आप जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, जो सब लोग कहते हैं चाय वाला था, तो चाय अगर वो बेचते थे तो कहीं से तो आए हैं ना. So there are success stories इस तरह भी हैं कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता.
1: अब आपने मुझे बहुत ही अच्छा एक टॉपिक दिया है कि सक्सेस है क्या. अभी मैं सोचने में मजबूर हूँ कि सक्सेस इज ऑल अबाउट माय पीस. मेरा सुकून किस चीज में है, दैट इज माय रियली सक्सेस. अगर मुझे इस चीज में सुकून मिल रहा है तो मैं कामयाब हूँ, या उस चीज में मिल रहा है तो मैं कामयाब हूँ, और नहीं मिल रहा है जो मैं कर रही हूँ तो स्टिल मैं कामयाब नहीं हूँ, है ना?
0: बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसा है. क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे लोग हैं जो इतने इतने हायर अप जगहों पे होते हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज उनको सुकून नहीं है. तो इट डिपेंड, मतलब सब कुछ है. दे हैव सो मेनी, मतलब 40s में 30s में दे हैव वर्ल्ड एट देयर फीट, बट उनको वो सुकून नहीं है. तो मेरे ख्याल में हमारी हमारी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो आजकल के जमाने में काफी चेंज हो गई है. इट इज मोर फोकस्ड के यार मिल क्या रहा है, ना चाहते हुए भी हम किसी भी चीज में कर लें, बट स्टिल उसी को अगर हम सामने रखें तो आई फील के इट्स अ कॉम्बिनेशन. किसी में कोई चीज अच्छी होती है, किसी में कुछ अच्छा होता है, बट तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कि एक डेस्टिनी क्या है उसकी, लक एफर्ट कितनी दे रहे हैं जिसको आप वर्क कह लें, हार्डवर्क कह लें, और ये सारी मिलके कहीं ना कहीं एक अल्केमिस्ट की तरह एक परफेक्ट फॉर्मूला बन जाता है. और उसके बाद आपके पास सक्सेस आ जाती है.
1: सक्सेस आती है, बहुत ही कमाल की बात आपने कही, बहुत जबरदस्त. आई रियली अप्रिशिएट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री. ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन. दैट्स
0: पर्सन टू पर्सन. किसी के पास कुछ चीज अच्छी है तो उसको दूसरे में वो थोड़ा सा कम हो सकती है, और किसी के पास कोई एक चीज ज्यादा है. मतलब आपने कहीं ना कहीं उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं. अगर आपके पास लक कम है तो आप हार्ड वर्क ज्यादा करें और अपॉर्चुनिटी देखें राइट टाइम की. और अगर आपके पास लक ज्यादा है तो मे बी बाकी चीजें कम भी हो तो गुजारा हो जाता है.
1: नाइस, बहुत ही कमाल की कॉल. थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह कि आपने टाइम निकाला और आप जुड़े हमारे साथ. बहुत शुक्रिया. थैंक यू, एंड वी होप कि आगे भी आप जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज. तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, मैं वाकई में सोचने में मजबूर हूँ कि कितने सारे लोग हैं और अलग अलग तरीके से हर किसी ने अपनी बात रखी. और जितनी भी बात अभी तक हमने सुनी समझी, हमें समझ में आया कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. हालांकि मैंने थोड़ा सा लक को साइड में ही रख रखा था, बट देन शिमोन टोल्ड मी कि हाँ लक का भी इंपॉर्टेंट रोल है. और यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए लक के साथ साथ हर इंसान के ऊपर ये तीनों चीजें जो हैं वो

अलग तरीके से काम करती हैं, ये डिफर होती हैं. हालांकि तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट वही चीज़ है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. बहुत ही अच्छी बात कही. चलिए अब मेरे पास तो ऐसा सच नहीं लगता कि कुछ खास बचा है कि मैं आऊँ और मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड करूँ, बट हाँ कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी या यही चीज़ें जो आपने बताई हैं उसे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में आप तक वापस से पहुँचाऊँगी. आज हमने बहुत कुछ सीखा और आज का सबसे पावरफुल टेक अवे क्या है वो वापस आकर आपको बताएंगे. बट बिफोर दैट, मोहित चौहान की आवाज़ और मसा के लिए आपकी राहों में. एंजॉय कीजिए, स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल सीधी सी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे इस शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नाजिया आपके साथ 8:33 ऑन द क्लॉक। एंड यस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे। हम आपसे पूछ ही रहे थे कि सक्सेस में ज़्यादा रोल किसका है, आपको लगता है लक का है या आपके हिसाब से इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस का है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं हार्ड वर्क ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी कॉलर्स जुड़े, मैं कह सकती हूँ मेजॉरिटी जो है वो हार्ड वर्क के साथ गई। उनका मानना ये था कि हार्ड वर्क जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, वो मैंडेटरी है, जो कि मैं भी कहूँगी। परसिस्टेंस की बात की शिमोन ने, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इट रिमाइंड्स मी कि जावेद बाजवा जी ने भी कहा कि यू नो कंसिस्टेंट रहना या परसिस्टेंस की बात या मुस्तकिल मिजाजी की बात की उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर हाल में हमें जहन में रखना ही रखना है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि तीनों चीज़ों का गुड कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है कामयाबी के लिए। दो कामयाबी की सबकी डेफिनेशंस भी अलग अलग हैं, उस हिसाब से ये वेरी भी करेगा कॉम्बिनेशन। किसी को आप फर्स्ट पे रखें, किसी को सेकंड, किसी पे थर्ड, बट हाँ तीनों ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब हम किसी भी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना, ये हमारे मुंह से बेसाख्ता ही निकल जाता है। लेकिन शायद हम ये नहीं समझ पाते, हमने गौर नहीं किया कि उसे बनाने के लिए क्या मेहनत की होती है। मैं आपको बताना ये चाहूँगी एक छोटी सी मिसाल देकर। मान लेते हैं कि दो लोग हैं, चलिए ऐसे मान लेते हैं कि अली हैं और अहमद हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं। उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, इस बड़े से इवेंट में बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस बिजनेसमैन से मिलने की, ठीक है, दोनों के पास भरपूर अपॉर्चुनिटी, दोनों इस तरह से लकी हैं और उन्हें मौका मिल रहा है कि इस इवेंट में, कॉर्पोरेट इवेंट मान लेते हैं, और आप दोनों ही ऑफिस में हैं और दोनों को भरपूर मौका मिल रहा है कि वो जो है इसमें बड़े बिजनेसमैन या कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलें। अब होता क्या है कि एक शख्स जो है, फॉर एग्जांपल अली, उसे जब पता चलता है कि उसे इस बड़े बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो वो स्मार्टली एक स्ट्रैटेजी बनाता है और स्ट्रैटेजी में रिसर्चेस करता है कि किस तरह से मैं इनिशिएट करूँगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ जिससे मैं बहुत इंप्रेसिव दिखूँ और एक लास्टिंग इंप्रेशन मैं छोड़ पाऊँ, जैसे हमने कल फर्स्ट इंप्रेशन की बात की, वो चीज़ उसके लिए वो मेहनत करता है, स्मार्टली स्ट्रैटेजी बनाता है फिर वो मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ अहमद है, वो एक्साइटेड है, इतना खुश है कि वो लकी है, उसे मौका मिलेगा कि वो इस बड़े बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ऐसे ही होता है कि दोनों उस इवेंट में उस बड़े बिजनेसमैन से, सो कॉल्ड बड़े बिजनेसमैन से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो बंदा अली है इसे उस बिजनेसमैन ने बुलाया है और अपनी कंपनी में जॉब दे दी है। अब अहमद के मुँह से बेसाख्ता क्या निकलेगा, हाय ये कितना लकी है, बताओ मैं भी मिला लेकिन मेरा लक उस तरह से नहीं है, इसका लक कितना अच्छा है, कितना किस्मत वाला है, इसने किस तरह से किया होगा, पटाया होगा जो वर्ड लोग यूज़ करते हैं कि ये कामयाब हो गया। अब असल में लक दोनों का दिख रहा है, दोनों लकी थे, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन अली की पीछे की जो प्रिपरेशन है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो उसकी स्मार्टनेस है, वो नज़र नहीं आई, उसका हार्डवर्क जो है वो नज़र नहीं आई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जो है वो लक को क्रिएट करता है। इंटेलिजेंट लोग हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं, रिस्क को समझकर डिसीजंस लेना समझते हैं, और प्रॉब्लम्स को किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करना है वो ये समझते हैं, क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है कि कभी भी उसे मौका ना मिले इतने बड़े बिजनेसमैन से इस तरह वन टू वन इंटरेक्ट करने का। तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी मुझे उसे इम्प्रेस करना है, और उसके लिए उसने तैयारी की, भरपूर तैयारी की, जबकि दूसरे

0: शख्स ने, उसने सिर्फ लक को ही जो है वो सब कुछ समझा। वहीं पर एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क भी लक को क्रिएट करता है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको अपने ही प्रोफेशन से जुड़ के दूंगी कि कोई प्रेजेंटर है, रोज़ अपने स्किल्स पे काम कर रहा है, कंटेंट पे काम कर रहा है, अपने प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहा है, अपनी वोकैबुलरी पे काम कर रहा है, और एक दिन उसे एक बहुत बड़ा शो मिल जाता है होस्ट करने के लिए। अब बाकी कलीग्स का क्या कहना है, अरे देखो ये कितना लकी है, इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, और हम में क्या कमी है, हम तो कितने अच्छे हैं। लेकिन उन लोगों ने शायद उस शख्स की, उस प्रेजेंटर की वो पीछे जो मेहनत है ना वो नहीं देखी, क्योंकि दिखती भी नहीं है ना, वो तो सिर्फ वही शख्स जानता है जो कर रहा होता है। तो हार्ड वर्क असल में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा लोग आपको नोटिस भी करते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए डोर्स अपॉर्चुनिटीज ओपन भी होती हैं, उतना ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि लकी मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। इसको लेट्स जनरलाइज दिस, मतलब अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल एंगल ना दें तो मैं उस सिनेरियो में बात कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी कि सक्सेस के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी, आपकी स्मार्ट बनिए, सबसे पहले स्मार्ट बनिए, फिर हार्डवर्क कीजिए, और फिर स्मार्टनेस और हार्डवर्क आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी उन्हें अवेल करते हुए लकी बनिए। ये सही हायरार्की हो सकती है। देखिए कुछ लोग होते हैं लकी, जैसे एग्जांपल दिया कि कोई अंबानी के घर में, कोई और एक्स वाई जी रिच फैमिली, बहुत ही वेल्दी फैमिली में जो है वो पैदा हो गया। लेकिन अगेन Persistence is a key. अभी आप हुए हैं बहुत ही वेल्दी फैमिली में, लेकिन अगर आप उस तरह से ना हार्डवर्क करें, ना स्मार्टली डिसीजंस ले रहे हैं, तो हो सकता है बैंकक्रप्ट हो जाएं। क्योंकि किस्मत आसमान से ऐसे नहीं गिरती, अक्सर ये हमारी जो छोटी छोटी choices हैं, जो हमारी छोटी छोटी तैयारियां हैं हर रोज़, जो हमारी थोड़ी थोड़ी मेहनत हर रोज़ है, उससे स्ट्रांग बनती है। स्मार्टनेस हमें ये सिखाती है कि किस तरह से हमें वर्क को करना है, आगे बढ़ना है, और हार्डवर्क हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है, और हम कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल के कामयाब हो सकते हैं, जो भी आपने अपने लिए पैरामीटर डिसाइड किया है कामयाबी का। क्या आप लकी इंसान हैं? जब भी ये सवाल आता है आपके जहन में, तो बस एक चीज़ रखिएगा जहन में खुद ही कि लक हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटीज। तो आपको तैयारी करनी है, लक को क्रिएट करना है, और प्रिपरेशन हमेशा इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से आती है। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमेशा इंटेलिजेंट, स्मार्टली सोचिए, डिसीजंस लीजिए, प्लानिंग कीजिए, और हार्डवर्क भी कीजिए, और फिर अपने लिए लक क्रिएट कीजिए। वेल विद दिस, इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप जब वापस आएंगे तो असली चैलेंज है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज का जो गेम है वो होगा, यहाँ पर मैंने आज इसको सिंपल रखा है, मैंने सोचा कि अभी मेरे पास उतना एडिट करने के लिए भी उतनी चीज़ें नहीं है, तो बस टॉपिक भी लंबा हो गया। तो आज हम आपको कुछ वॉइसेस सुनाने वाले हैं, और ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की ही वॉइसेस रखी, बहुत ही सिंपल रखा है। तो बस आपको मुझे जो है वो कॉल करना है 4434377 पर, इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, और आप 30 सेकेंड्स में देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। सो आज का गेम इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ आपको वॉइसेस पहचाननी है एक्टर और एक्ट्रेसेस की। सो प्लीज गिव योरसेल्फ अ गुड ट्राई, एक चांस जरूर दीजिए अपने आप को, कॉल जरूर कीजिएगा मुझे 4434377 पर, एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि कोई मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गया है। क्या बात है। हेलो,
1: हेलो,
0: हाय, गुड मॉर्निंग।
1: हाय हाय, गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं और क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम इरफान है।
0: इरफान,
1: आई एम गुड।
0: इरफान, आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे?
1: यस मैम, नो प्रॉब्लम।
0: ओह नाइस, क्योंकि मैं डर डर के पूछा, मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ टॉपिक पे बात करने के लिए आए हो, लेट हो गए।
1: नहीं, एक्चुअली मैं जस्ट लगा तो सडन कनेक्ट हो गया हूँ, तो आई एम जस्ट जी।
0: टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी ब्रीथ, डीप ब्रीथ लीजिए, और मैं आपको कुछ वॉइसेस सुनाऊंगी।
1: वो आपको पहचानना है। ऑफिस को भी, ऑफिस को भी लेट हो गया था।
0: हाँ,
1: तो वो रश में थोड़ा पूरा मिक्स्ड इमोशन हो गया।
0: तो आप खेलना वाकई चाहेंगे? मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी दैट वे। अरे नाइस, जियो, क्या बात है। चलिए फिर आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ। 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है, इफ इन केस कोई वॉइस आपको समझ में नहीं आए तो आप नेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है?
1: नो प्रॉब्लम।
0: चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: मुझे लगता है कि एक आध सीन करने के बाद भी आई वाज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग एंड सो आई वाज आस्किंग वन ऑफ हिज वेरी गुड असिस्टेंट मिताक्ष कि मीता तुम्हें लगता है कि कोई रेफरेंस है क्या
3: हाँ.
2: तो मीता ने मुझे बोला हाँ. कि मनीषा वॉच पीकी
1: पास पास so,
0: पास पास
4: आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है क्या है तुम्हारे पास
5: मेरे पास माँ
1: अमिताभ बच्चन
0: इज द राइट आंसर
4: एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी
0: एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो चलिए कोई बात नहीं आप एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट माइंडसेट से कॉल कर रहे थे बट ग्लैड कि आप मेरे साथ जुड़े और आपने कहा कि हाँ मैं खेलना चाहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है सो थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का अपना ख्याल रखिएगा हैव अ फैंटास्टिक डे ओके बाय Alright, कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं देखो बेचारे उस तरह से खेलने के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे बदन ही सेट के चलिए खेल लेते हैं अब हम आ ही गए तो बस ये वाली बात होनी चाहिए आ गए हैं तो बस खेल नहीं खेलना एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं चलिए इनसे बात करते हैं हेलो
6: हेलो अस्सलामुअलैकुम
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आरिफ जी है ना हमारे साथ नाइस मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है मैं पूछूंगी ही नहीं कुछ स्ट्रेट आपके साथ गेम खेलने वाली हूँ ठीक है चलिए तो फिर आपके साथ हम गेम स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड्स हैं आपके पास और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब
2: मुझे लगता है कि एक आध सीन करने के बाद भी आई वाज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ
4: पास आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
0: Is the right answer?
4: Excellence, excellence का पीछा करो. Success.
0: Is the right answer?
7: हारने का डर और जीतने की उम्मीद. इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना. हाँ. कमाल का.
0: चलिए पास किया आपने.
8: गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बनके.
0: पास.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: अमिताभ बच्चन क्या बात है आपने दोनों वॉइसेस अमिताभ जी की नहीं आपने आमिर की भी पहचानी ना
6: हाँ.
0: क्या बात है तो इस तरह से आपका 3 का स्कोर हुआ क्या बात है आरिफ जी सुपर नाइस नॉट एट ऑल बैड आपने एटलीस्ट 3 का स्कोर किया 3 वॉइसेस पहचाने जो कि अच्छी बात है अच्छी कोशिश आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये आपका हार्ड वर्क है आप लकी होंगे एक दिन लकी होके चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे बट थैंक यू सो मच कि आप जुड़ते हैं मेरे साथ और गेम खेलते हैं उसके लिए तो एक्स्ट्रा थैंक्स आपको बनता है तो थैंक यू बहुत शुक्रिया बात होनी चाहिए हाँ ये बात है कि बात होनी चाहिए चलिए जी थैंक यू वंस अगेन हैव अ फैंटास्टिक डे अपना ख्याल रखिएगा ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ ऑलराइट यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट होते होते डिसकनेक्ट होते होते भी बचे कनेक्ट होते होते भी बचे और डिसकनेक्ट भी होते बचे तो फिलहाल कनेक्ट हो गए हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आपका नाम वेरी गुड मॉर्निंग सॉरी आई डिडंट गेट यू प्लीज कम अगेन फिर से बताइएगा सदरे आलम जी अच्छा अच्छा अच्छा वेलकम मुबारक मबरूक क्या आपने इतने घर लिए कि आप कॉल कर रहे हैं मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पहली नहीं होगी आगे अब आप करते रहेंगे इंशाल्लाह हाँ तो बोलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं
6: अभी टॉपिक पे आप जो बात कर रहे थे
0: हाँ
6: तो मतलब कि मैं एक्सपायर हुआ हूँ मतलब अच्छा लगा है ये सुन के
0: अच्छा लगा आपको
6: तो मैं बहुत ही इंस्टाग्राम किया हूँ आगे मतलब अभी 10 साल सऊदी में भी रहा कुवैत में भी रहा अभी कतर में पहली बार आया हूँ तो ये बात मतलब हमको अच्छा लगा है
0: चलिए मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा और आपने कहा जैसे आपने स्ट्रगल की है तो आप मेहनत तो कर रहे हैं उसे स्ट्रगल मत कहिए आपका हार्ड वर्क है तो जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अब यहाँ आप आए एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है हो सकता है ये लकी हो आपके लिए कंट्री और आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर पाए इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं तो क्या आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे कि नहीं?
6: चाहेंगे
0: ओके चलिए जी, थैंक यू सो मच. तो मैं आपके साथ गेम स्टार्ट करूंगी. कुछ वॉइसेस आपको पहचाननी है, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
7: हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, रहा कमाल का होता है.
0: नहीं, नेक्स्ट
8: गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के.
0: इज द राइट आंसर.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: बिल्कुल सही
6: जी सर. आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज.
0: अरे ये पास कर दिया आपने, टाइम भी पास हुआ, ये तो आप पहचान सकते थे. खैर कोई बात नहीं, सजय आलम जी आपने 2 का स्कोर किया है. ऐसा हुआ ही नहीं कि आप कुछ भी स्कोर ना कर पाते, तो बहुत ही अच्छी कोशिश आपकी. एंड आई एम श्योर आगे भी जब आप जुड़ेंगे खेलेंगे तो और भी इससे अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने आज हमें कॉल किया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नए नए कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमारे टॉपिक को पसंद करते हैं. एंड दैट्स हाउ वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग. कौन है मेरे साथ? आज मेरे कानों को प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है? मुझे आवाज़ पूरी पूरी क्यों नहीं आ रही आप लोग की? फिर से बोलिएगा अपना नाम प्लीज.
3: हेलो मैम, मेरा नाम है आसिफ खान.
0: आसिफ खान, देखिए कितना अच्छा नाम है, कितनी प्यारी आपकी आवाज़ है. इतनी लो थी कि मुझे सुनाई नहीं दे रही थी. कैसे हैं आसिफ आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरा ड्यूटी इधर है कतर एनर्जी में. अच्छा. तो ऐसे रेडियो लगाया था, पहली बार कॉल मेरा है, कभी मीडिया में ऐसा बात नहीं हुआ है.
0: अरे वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो बहुत ही कमाल का दिन है, कुछ नए नए कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, क्या बात है. और आगे भी कभी भी आपको मौका मिले तो प्लीज जुड़िएगा आगे भी हमारे साथ इंशाल्लाह. ठीक है, तो चलिए हम गेम यहाँ पे खेल रहे हैं. 30 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे, कुछ वॉइसेस मैं प्ले करूँगी, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की हैं, आप देखिए कितना पहचान पाते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें आपके साथ.
3: ओके मैम.
0: चलो जी, वेरी गुड. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
6: जी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज.
3: पास.
0: पास.
5: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे.
0: सॉरी अमिताभ. नो.
9: बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल.
3: सॉरी
0: नहीं वाला नहीं. चलिए फिर ट्राई कीजिए.
5: मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे.
0: पता है क्या, पहली बार जब कोई आता है तो थोड़ा सा हो ही जाता है कंफ्यूजन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आसिफ जी, नेक्स्ट टाइम आप फिर जुड़िएगा, कुछ और आपके साथ बात भी करेंगे और गेम भी खेलेंगे. ठीक है, बट थैंक यू सो मच कि आज आप जुड़े मेरे साथ और आपने हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.
3: आपका, टीम का, आपका बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू जी, शुक्रिया आपका भी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आई थिंक अभी हम जो है बस ये लास्ट कॉलर के साथ कनेक्ट होते हैं. लेट्स सी कौन है हमारे साथ. हेलो.
10: वालेकुम
0: अस्सलाम. क्या नाम है आपका?
10: मैं मंसूर अली बोल रहा हूँ.
0: मंसूर अली जी, कैसे हैं आप?
10: नहीं मंसूर नहीं, सॉरी मकसूद अली.
0: आप बड़े अच्छे इंसान है, अपना नाम ही भूल गया. मकसूद या मैंने गलत सुना? मैंने गलत सुना होगा. हाँ आपने तो सही बोला होगा, ये तो नहीं है. तो कैसे हैं मकसूद जी, कैसी जा रही है आपकी सुबह?
10: अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपकी दुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है.
0: तो मौसम भी अच्छा है ना आज, ये अच्छी बात है. चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करूंगी और 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे, आप कुछ वॉइसेस मैं प्ले करूंगी, पहचानी है. ठीक है?
10: ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम.
0: चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
6: जी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश.
0: बिल्कुल सही.
5: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले.
0: बिल्कुल सही.
9: आपका, दादा का, भाई का,
10: नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
0: बिल्कुल सही.
5: मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे.
10: रणवीर कपूर.
0: नहीं रणवीर नहीं.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख.
0: सानी इज राइट आंसर.
8: ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा.
0: क्या बात है पृथ्वीराज कपूर, यहाँ पे आपका टाइम भी अप हुआ बट आपने 5 का स्कोर किया विच इज हाईएस्ट अभी तक का. कमाल की बात है भाई मकसूद जी, आज के आप ही हमारे इस गेम के चैंपियन है. जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है. आपने 5 वॉइसेस पहचानी, बस एक आप नहीं पहचान

0: पाए, बताए वो कौन सी वॉइस थी, ये वाली आपने नहीं पहचाने थे ना?
1: मुंबई का किंग कॉन्ग विकू
2: मात्रे, इसका नाम,
0: इनका नाम है मनोज वाजपेयी, सत्या मूवी का. चलिए, लेकिन बहुत अच्छा खेला, बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच आपने कॉल किया इसके लिए और खेलने के लिए. थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए. यू टू टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. ऑल राइट, आज तो हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए भाई गेम में, एंड मकसूद जी का हाईएस्ट स्कोर है 5 का, तो क्या बात है, आज के हमारे गेम के अल्टीमेट विनर इज मकसूद जी. बहुत ही अच्छा खेला. कुछ और मैसेजेस हैं आप लोगों के जो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ. आज पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम हम खेलेंगे, बट आज अब क्या हमारे पास टाइम ही नहीं बचा. मोहम्मद नफीस जी, थैंक यू सो मच. और शिमोन जी, ओके, लाला जी ने कुछ पूछा है, मैं आपको भी बताती हूँ. एंड कॉन्टैक्ट डिटेल शिमोन जी की मिल सकती है, पूछना पड़ेगा अहमद जी मुझे, तो मैं पूछ लूँ सबसे कि क्या करना चाहिए मुझे कि नहीं. अहमद जी हमें मैसेज करते हैं, थैंक यू. मोहम्मद नफीस जी, थैंक यू, नेवर गिव अप इन लाइफ, बिल्कुल सही कहा, ये नाम बस इंडिया लिखा हुआ है. आई डोंट नो, इन्होंने अपना नाम नहीं मैंशन किया. ओके, और कॉल कर रहे हैं और शायद मिल नहीं पाए. मोहम्मद समद हमारे साथ थी. समद जी, मैं समझ सकती हूँ, आई एम सो सॉरी. इंशाल्लाह कल आपसे मैं ज़रूर बात करूँगी, अभी मैंने मैसेज देखा मेरे पास टाइम नहीं है. फ़ोन लगाइए सरफराज जी, अब तो सबको कल ही कहा जाएगा. आरिफ जी बेचारे रोज़ एक सवाल मुझसे करते थे, आज मैं आपको ये मैसेज अपनी टीम को दिखाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच मोहम्मद यूसुफ जी, मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही है, उम्मीद कर रही हूँ आपकी भी मॉर्निंग अच्छी जाएगी. और टॉपिक के हवाले से जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा. इसके अलावा कॉल कर लीजिए, यहाँ पर है यूनुस एंड राज जी भी कह रहे हैं मैं कॉल कर रहा हूँ, बट कॉल नहीं मिली. हाँ, आज कॉल नहीं मिल पाई शायद. और सलाम कहा है, ये है नसीम हिना, वालेकुम अस्सलाम. सो इसी के साथ अब वक्त आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल आपकी हमारी मुलाकात होगी सुबह 6 बजे इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो इसराइल को माहदे की पाबंदी पर मजबूर करे और रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनाने, जबकि किसी भी फरीक की जानिब से रुकावट डालने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा।

बनाना है, जिससे सरकारी स्कूलों में तकरीबन 10,700 नए पहली जमात के तलबा मुस्तफीद होंगे। नए तालीमी साल की तालीमी और पेशा वाराना तैयारियों के सिलसिले में वजारत 25 अगस्त को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में अपना सालाना तालीमी फोरम मुनक्किद करेगी। फोरम में तालीमी रहनुमाओं, उसातजा और शराकत दारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा, जहां आइंदा मरहले की तालीमी तरजीहात और समतों पर तजुर्बात का तबादला और राबते को मजबूत बनाया जाएगा। फोरम में 15 से ज़ायद तरबियती वर्कशॉप्स के अलावा लोग सबसे पहले असल शनाख्त हमारी ताकत, डिजिटलाइजेशन हमारा इख्तियार के उनवान से एक मुकालमाती नशिस्त भी होगी। नशिस्त में तालीमी अमल में फ़र्द को मरकज में रखने, तालीमी माहौल में शनाख्त, इकदार और हकीकी सकाफत को मजबूत बनाने और उसातजा व तलबा की मुआवनत और तालीमी तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तब्दीली और जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने जैसे मौजूदात पर गुफ्तगू की जाएगी। मुहिम के तहत वजारत 21 से 27 अगस्त तक प्लेस वेंडम में मुवासलात के साथ अपनी शराकत दारी भी जारी रखेगी। खसूसी पवेलियन में बच्चों और ख़ानदानों के लिए तालीमी, तफरीही और इंटरेक्टिव सरगर्मियों के साथ स्टेज पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वजारत 15 अगस्त से 15 सितंबर तक अलमीरा की मुख्तलिफ ब्रांचेस में मुनक्किद होने वाले स्कूल वापसी मुहिम में भी शिरकत कर रही है, जिसका मकसद नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों और तलबा तक रसाई हासिल करना है। इसी तरह वजारत 25 से 27 अगस्त तक मुशेरब में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में भी शरीक होगी, जहाँ बच्चों और ख़ानदानों के लिए तालीमी, तफरीही और इंटरेक्टिव सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा। कतर फाउंडेशन ने कल एजुकेशन सिटी के यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले 800 से ज़ायद नए तलबा का खैर मकदम किया। इस मौके पर नए तालीमी साल के आगाज़ के सिलसिले में कतर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना इस्तकबालिया तकरीब मरहबा मुनक्किद हुई। ये तकरीब मुल्तका यानी एजुकेशन सिटी स्टूडेंट सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसका मकसद नए तलबा को एजुकेशन सिटी और यहाँ दस्तयाब वसाइल और मौके से मुतारिफ कराना था, ताकि वो अपनी तालीमी, समाजी और ज़ाती सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना सकें। कतर फाउंडेशन में आला तालीम के सदर और तालीमी मुशीर डॉक्टर फ्रांसिस्को मार्मोलेखो ने कहा कि नए तलबा अब एक मुनफरिद बरादरी का हिस्सा बन चुके हैं, जहां मुख्तलिफ शोबों, सकाफतों और पसे मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा एक साथ तालीम हासिल करते हैं। ये माहौल उन्हें सीखने, तआवुन और तजुर्बात के तबादले के मौके फराहम करता है। कतर फाउंडेशन के मुताबिक उसके आला तालीमी निज़ाम ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान एजुकेशन सिटी के जामियात से 12,000 से ज़ायद तलबा को फारिग उल तहसील किया है, जहां तलबा को एक ही तालीमी निज़ाम के तहत दुनिया की मुतअद्दिद मुमताज़ जामियात में तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाते हैं। सामीन, ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने गज़ा तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जामे मंसूबे पर अमल दरामद मुकम्मल करने से मुतालिक रोड मैप को इसराइल की जानिब से मुस्तरद किए जाने की शदीद मजम्मत की है। ये मंसूबा अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसल की करारदाद 2803 के तहत मंजूर किया गया था। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने फ़लस्तीनी रियासत के क्याम को मुस्तरद करने के इसराइली मौक़ की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया कि इसराइल का ये मौक़ बैनुल अक्वामी कवानीन और अक्वामे मुत्तहदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफवर्जी की पॉलिसी को बरकरार रखने और अमन के हसूल की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। गज़ा की पट्टी के जनूबी और वस्ती इलाकों में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों और घरों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में कल इतवार को मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक जनूबी गज़ा के खान यूनस में अलमवासी के इलाके में अलक्सा यूनिवर्सिटी के करीब बेघर अफराद को पनाह देने वाले एक खेमे को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब वस्ती गज़ा की पट्टी में नसेरात के मगरब में वाक़ नए कैंप के इलाके में एक घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में भी मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी पर जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 73,391 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,74,280 तक पहुँच गई है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे अहमद फती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अहमद फती कतर के एक तजुर्बेकार फुटबॉलर हैं जो मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते हैं। उनका पूरा नाम अहमद फती मानसी अब्दुल्ला है और डोमेस्टिक फुटबॉल में अल अरबी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कतर की नेशनल टीम का भी अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कतर में अपना फुटबॉल करियर डेवलप किया है और धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वजह से टीम में मजबूत जगह बनाई। अहमद ने अपनी खेलने की सलाहियत से हमेशा कोचों का भरोसा जीता है। उनकी पासिंग रेंज, डिफेंसिव अवेयरनेस और गेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी उन्हें एक कंप्लीट मिडफील्डर बनाती है। वो अक्सर मिडफील्ड में बैलेंस बनाए रखते हैं और टीम के अटैक और डिफेंस के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। अच्छा देखा जाए तो क्लब लेवल पर अल अरबी के साथ उन्होंने कई सीजन्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और कतर स्टार्स लीग में अपनी कंसिस्टेंसी से पहचान बनाई है। कतर की कौमी टीम के लिए भी उनका रोल काफी अहम रहा है, जहां वो एशियन कॉम्पिटिशन में कतर की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। अहमद फती उन खिलाड़ियों में से हैं जो फ्लैशी स्टाइल के बजाय सिंपल और इफेक्टिव फुटबॉल पर यकीन रखते हैं। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट उन्हें कतर फुटबॉल के एक रिलायबल नाम बनाती है। आने वाले सालों में भी उनसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खाने को सेहतमंद तरीके से पका सकते हैं। आज हम दो ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो दुनिया भर में सेहतमंद खाना पकाने के बेहतरीन तरीकों में शुमार होते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग है और स्टीमिंग है। ग्रिलिंग में खाना बराह रास्त जो हरारत पर पकाया जाता है और इसमें बहुत कम या बिल्कुल कम ऑयल इस्तेमाल होता है। इसके बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि जो हम जायद जो चिकनाई है या एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम हो जाता है और खाने का जो कुदरती जायका है वो भी बरकरार रहता है। चिकन है, फिश है और जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही लजीज होती हैं और गजाइत से भरपूर होती हैं, और जो अफराद अपना वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन इंतखाब है। अलबत्ता एहतियात ज़रूरी है कि खाना ज़्यादा ना जलने पाए, क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि जला हुआ हिस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा तरीका है स्टीम करने से, यानी भाप में जो खाना पकाया जाता है उसके बेशुमार फवायद हैं, जैसे कि विटामिन सी है, फोलेट है और दूसरे जो अज़ाई अज्जा हैं वो ज़्यादा महफूज रहते हैं। इसी तरह इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, खाना बिल्कुल लाइट होता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बच्चों, बुज़ुर्गों और जो मरीजों के लिए बेहतरीन तरीका है। वेजिटेबल्स, फिश या चिकन और यहाँ तक के बस जो चावल की डिशेज़ हैं वो भी स्टीम में या भाप में बेहतरीन तैयार की जा सकती हैं। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हफ्ते में चंद बार भी ग्रिलिंग या स्टीमिंग को शामिल कर लें तो दिल, आपका वेट और जो मजमूई सेहत है उस पर बहुत ही पॉजिटिव जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: सलाम आदाब एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड कतर बिजनेस 360। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। दोस्तों, ये शो कतर की बिजनेस कम्युनिटी की इंस्पायरिंग लीडर्स, सक्सेसफुल ब्रांड्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करता है। आज भी इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिटेल और होम फर्निशिंग इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, क्वालिटी सर्विस और ट्रस्ट एक ब्रांड को मार्केट लीडर बना देता है। पर देखा जाए तो आज का टॉपिक इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आज हम रिटेल बिजनेस की दुनिया से एक बहुत ही डायनामिक लीडर लेकर आए हैं। रिटेल बिजनेस की दुनिया सबसे ज्यादा डायनामिक इंडस्ट्री भी मानी जाती है। इस बिजनेस का फोकस कस्टमर की जरूरियात को समझना और उन्हें बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। दोस्तों, आज के इस दौर में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्वालिटी, कन्वीनियंस

0: ऑप्शंस और अच्छी सर्विस भी एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर बात की जाए कतर की, तो कतर जैसे ग्रोइंग मार्केट में रिटेल सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। फर्नीचर हो, होम डेकोर हो, फैशन हो, लाइफस्टाइल ब्रांड्स हो, कस्टमर ट्रेंड्स के साथ चलते हैं और इंडस्ट्री को भी ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है। इस बिजनेस में कामयाबी का असल राज स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं। जी हाँ, इसके अलावा प्रोडक्ट की राइट टाइम पे अवेलेबिलिटी और एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। आखिर में रिटेल बिजनेस सिर्फ चीजों को बेचने का नाम नहीं है, बल्कि कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी का रिश्ता बनाना भी है। इस रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर रमेश बूलचंदानी, जो कि एलटीसी इंटरनेशनल कतर के टेरिटरी हेड हैं। एलटीसी इंटरनेशनल, जो कि लाल्स ग्रुप का हिस्सा है, 2004 से कतर में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। उनकी लीडरशिप में कंपनी के तीन मशहूर ब्रांड्स यानी होम्स आरस, कार्टर्स एंड डाइसो जापान कतर के रिटेल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। देखा जाए तो ये ब्रांड्स कतर के एक लीडिंग ब्रांड्स हैं, और फर्नीचर हो, होम डेकोर हो या फिर कस्टमर की और जरूरियात, उन्हें बखूबी पूरा कर रहे हैं। मिस्टर रमेश का मानना है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ सक्सेस की स्टोरी प्रोडक्ट के थ्रू नहीं लिखता, बल्कि ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ये रास्ता होकर निकलता है। उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी और मजबूत स्ट्रेंथ है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने कस्टमर्स की ट्रस्ट को, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मेंटेन किया है, और किस तरह से जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वेलकम कहते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर रमेश मूलचंदानी को ऑन कतर बिजनेस 360 एंड ऑन दिस एपिसोड ऑफ कतर बिजनेस 360। हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107। कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया नाजिया जी, और सभी 107 FM सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू, मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हैं, इतने बिजी और मसरूफ होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, तो ट्रूली मींस अ लॉट टू अस।
1: माय प्लेजर, इसको बोल सकता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है।
0: सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस शो में देखकर, सुनकर। अच्छा, अगर मैं आपके बारे में कहूँ तो आई मीन यू आर a tycoon in this retail industry, and we know that you oversee three successful brands. Aur agar aapki main leadership philosophy ke bare mein baat karun, so how do you keep your team motivated and keep yourself motivated and aligned across these different business segments?
1: Mere team ko main ek prakar se team to manta hi hu, plus mere boss ne mujhe sikhaya hai ki ye hamare assets hain, to jo apne asset ka ध्यान रखते हैं ना, उसी तरह सबका ध्यान रखते हैं। और ऊपर वाले की मेहरबानी से जितनी भी टीम है जो पहले दिन से मेरे साथ है लीडरशिप में और साथ में, वो आज भी मेरे साथ में है 22 सालों से।
0: वाओ, तो इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि आप जो हैं वो इनके प्रति कितने आपका रवैया कितना अच्छा है। अच्छा, मैं जो हूँ आपको इस तरह से भी मैंने देखा कि आप जो हैं पर्टिकुलरली हर चीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड जब हम बात करें आपके ब्रांड की और स्पेशली होम्स आरस की, तो दैट हैज अर्न द ट्रस्ट ऑफ बोथ द लोकल एंड एक्सपैक्ट कम्युनिटी, दिस वी नो। सो व्हाट वुड यू से द सीक्रेट बिहाइंड बिल्डिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड यू नो द लास्टिंग कस्टमर लॉयल्टी?
1: हम लोगों ने एक ही मोटो रखा हुआ है कि कस्टमर, मतलब हमारे शोरूम में स्टाफ को है कि सीधा कहा गया कि कस्टमर इज गॉड, इवन इज रॉन्ग इज राइट, उसके हिसाब से उनको ट्रीट करो और उन्हीं के हिसाब से। कस्टमर है तो अपन है, आपकी सैलरी कस्टमर देता है, तो एक प्रकार से कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर अस। और उस मामले में हम लोग कस्टमर को दिलो जान से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग एक प्रकार से कहें कि जीत गए हैं कतर में, और कतरियों के दिल का और सबके कस्टमर्स के दिलों को हम लोगों ने अपना बना लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जब कस्टमर्स को ये एहसास होता है कि उनकी वैल्यू की जा रही है, तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। और इस इंडस्ट्री में तो खैर ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है।
1: कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस में कोई भी हो, कस्टमर का लॉयल होना बहुत ही जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉयल होगा तो एक पार्टनरशिप बनेगी और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप।

0: अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम टू कॉप अप इन द मार्केट एंड द न्यूनेस विल बी देयर इन द शोरूम. वी आर ओपनिंग इन दोहा मॉल, 75,000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा शोरूम जल्दी ही आने वाला है और उसमें फिर नई चीजें लेके आएंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा.
1: ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और आपने इस पे काम शुरू कर दिया है. अच्छा, आपकी जो सर फ्रंट लाइन टीम है वो रोज कस्टमर्स के साथ डील करती है, प्रोडक्शन सिलेक्शन है, इन्वेंटरी प्लानिंग है, उनमें फीडबैक जो है वो कितनी अहमियत रखता है?
0: वो कस्टमर के हिसाब से ही है, उनकी फीडबैक के हिसाब से ही है और उनकी कस्टमर्स की चॉइस जो होती है उसी के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट अरेंजमेंट होता है. और मेनली हम लोग क्वालिटी पे बहुत बहुत फोकस करते हैं,
1: मतलब क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. अच्छा, आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस के पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है?
0: इसमें चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलरली चैलेंज नहीं कह सकते. हम लोग तो कॉम्पिटिटर को वेलकम करते हैं कि जैसे भी कॉम्पिटिटर हो तो अच्छा है कि कस्टमर्स को चॉइस मिल जाए और कुछ हो जाए. तो इसमें चैलेंज तो बिजनेस हर बिजनेस में होते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप कि कुछ लाइन होती है जो मिसिंग होती है. जैसे अभी फर्नीचर की लाइन में हम लोग होम ऑफिस में पुअर है, मतलब इतने ऑफिस बनाते हैं जैसे घरों में तो हम लोग उसमें नहीं है इतना, क्योंकि वी आर ए होम सारस. तो होम सारस मतलब होम फर्निशिंग, तो वो भी एक प्रकार से होम फर्निश ही है, लेकिन उसको हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि कुछ स्पेस की प्रॉब्लम, कुछ अलग वैरायटी की डिटेल में जानना, तो ये सब होता है. तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत चैलेंज है.
1: ये चैलेंज अभी है. अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आपका जो है कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन और एंगेजमेंट बनता है, जबकि आप इतने बिजी भी हैं. हाँ, आपके लीडरशिप
0: कोई भी हो, मैंने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि कस्टमर की कंप्लेन इनडायरेक्टली मेरे पास ही आती है और मैं ही कस्टमर को फोन करता हूँ या हमारे किसी मैनेजर को बोल के उनको फोन करवाता हूँ कि क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको तकलीफ अगली बार नहीं होगी, या वी सॉल्व द सेम टाइम प्रॉब्लम एंड वी मेक कस्टमर टू बी हैप्पी.
1: बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टली आप वो क्वेरीज जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं और
0: और क्या, कंप्लेंट सीधा मेरे पास ही आएगी कोई भी, ऐसा मैंने सिस्टम बना रखा है.
1: दैट्स नाइस. ये मेरे ख्याल से और जो आपके एम्प्लॉइज है उनको एक हेडेक, एक टेंशन भी होती होगी कि हम
0: नहीं, उनको टेंशन नहीं होती है, उनको मालूम है कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा के अंदर है.
1: ओके, तो इससे उनकी जो काम करने की क्षमता है वो ज्यादा बेहतर होती है या फिर डर की वजह से काम थोड़ा सा खराब?
0: नहीं नहीं, डर के नहीं, डरने की कोई उसमें है ही नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि ये अच्छा है कि कस्टमर्स का केयर हो रही है कंपनी में, तो उनको भी अच्छा लग रहा है और उनके अंदर कॉन्फिडेंट हम लोग भरते हैं कि जो तुम बेच रहे हो वो बिल्कुल सही चीज बेच रहे हो, तो उनमें कॉन्फिडेंट होगा तो आगे चीजें बिकेगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर. अच्छा, क्या कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहेंगे जहां एक कस्टमर इशू बना और बाद में वो एक बहुत ही यादगार सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट हो गया?
0: बहुत सारे केसेस हैं जो आज हमारे लॉयल कस्टमर है, किसी को कुछ हो गया. एक हम लोगों ने एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कस्टमर ने हम लोगों से एक बहुत बड़ी चीज खरीदी थी.
1: okay.
0: तो उसमें स्टाफ के मुंह से गलत प्राइस निकल गई थी जो कि इम्पॉसिबल वाली प्राइस थी. okay. समझो 1,000 रुपए की चीज 100 रुपए बोल दिया था तो कस्टमर अड़ गया था. तो हम लोगों ने उस कस्टमर को, मैंने खुद ने अटेंड करके उसको उसी प्राइस में दे दिया कि कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर हो, आप ले जाओ, स्टाफ की गलती हो गई है, कोई बात नहीं. और स्टाफ को बोला कि अगली बार ध्यान रखना और कस्टमर को हम लोगों ने दे दिया, तो आज हमारे लॉयल कस्टमर है. ये पे हम लोगों ने किया था और ऐसा हो गया. फिर लॉयल्टी को क्रिएट करने के लिए कस्टमर बोला एक कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, 3 बजे फ्लाइट है, हमको फर्निश चाहिए, तो 3 बजे भी हम लोगों ने उनका घर बना के दिया उनको और वो लोग आज भी खुश हो के हमारे
1: साथ. ये तो वाकई एक्सेप्शनली बहुत ही, जो पहला आपने जो इंसिडेंट बताया वो तो मुझे लगता है इट्स

0: वेरी रेयर, इट्स क्वाइट रेयर कि 1000 की चीज कोई 100 में दे दे. अब क्योंकि निकल गया था उनके मुंह से,
1: वो मुंह से निकल गया था तो कस्टमर भी थोड़ा अड़ गया कि हमको चाहिए क्या, हमको बोला है ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं. समझाने की कोशिश की थी कस्टमर को, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं आप हमारे कस्टमर हो ले जाए.
0: वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात सर, हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी कि हमने शॉपिंग किया.
1: आप आ जाओ, किसी स्टाफ को बोल दूंगा कि आपको गलत प्राइस बता दे.
0: बस सही है सर, अब मैं जरूर आ रही हूँ, जरूर आऊंगी. अच्छा सर, आज का जो दौर है हमारा वो ऑनलाइन शॉपिंग का है और ये ट्रेंड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके ख्याल में जो फिजिकल स्टोर्स हैं उनकी अहमियत क्या रहेगी आने वाले टाइम में?
1: बिल्कुल रहेगी. देखो कतर में अगर मुझसे कोई पूछे तो जितने भी एम्प्लॉयज है, एक्सपेक्ट है, लोकल्स है, कोई भी हो, जैसे आप हो, आप 6 बजे के बाद क्या करोगे? फैमिली के साथ मॉल्स में जाओगे, गर्मी का वजह होती है और पार्किंग ये वो, तो आप मॉल्स में जाते हो और वहां जाके विंडो शॉपिंग कर रहे हो, या फिर चलो आज घर के लिए ये चीज देखनी है, छोटी बड़ी कोई भी है, तो वो देखने निकलते हो. तो ऑनलाइन का क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में ऑनलाइन में आप एक्सेसरी ले सकते हो कि भाई छोटा मोटा लैंप ले लिया, छोटी चीजें ले ली, वो हो गया. लेकिन आप सोफा कभी भी आप बैठ के उसके ऊपर खुद देख के कलर कॉम्बिनेशन सब देख के साइज सब देख के फिर आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए फिजिकल स्टोर में ही जाना पड़ता है. और आपको वो चीज ऑनलाइन भी है अवेलेबल, लेकिन उसको आप खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज मैं लूं, इससे अच्छा मैं एक बार देख के ले लूं. तो वहाँ पर ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन का महत्व रखता है,
0: इसीलिए शायद लोग अभी भी जो है वो पसंद करते हैं. और एक चीज आपने बहुत अच्छी ये वाली बात कही कि यहाँ पे जो है फैमिली टाइम है और जब लोग निकल जाते हैं और स्पेशली समर्स में तो वो मॉल्स वगैरह जा रहे हैं तो घूमते घूमते कई बार माइंड मेकअप नहीं होता, लेकिन कोई अच्छी ऑफर दिख गई,
1: हाँ, कोई अच्छी कुछ हो गया तो लोग खरीद लेते हैं. तो ऐसा ही है, चाहे आप सुपरमार्केट की चीजें भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीजें मिस हो रही है तो आप बेहतर है कि भाई जाके उधर फिजिकली घूम रहे हो तो उसमें 1-2 चीज ऐड हो जाती है, ऐसा होता है. लेकिन अभी जो बिजी वर्ल्ड है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत बहुत ही इजी और बेस्ट है उनके लिए. वो हो रहा है, जैसे मैंने दूसरे वर्ल्ड में देखा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में और यूएई जैसे बिजी वर्ल्ड में, वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों महंगाई की वजह से काम कर रहे हैं तो वो लोग ऑनलाइन ही है एकदम, कुछ भी चीज आदत हो गई है कि हर सेकंड में ऑनलाइन दो, और वहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है.
0: स्पेशली अगर आप कह रहे फर्नीचर है या और कोई चीज है बड़ा,
1: फर्नीचर तो आपको मैं भी सजेस्ट करूंगा, और कोई भी हो कि देख के ही लेगा, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेनी है तो देख के ही पसंद करके ही लेगा.
0: सही बात है. अच्छा आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि AI का भी हम इस्तेमाल करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को भी लेके आएंगे. आने वाला दौर ऐसा है जैसे हमने कहा कि ना पर्सनलाइज शॉपिंग, तो क्या आने वाले दौर में AI की वजह से ये भी होगा कि आप जो है यू नो कस्टमर्स को दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट उनके घर में इस तरह से फिट होकर ऐसा लगेगा एंड देन उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे
1: वो चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे कि आपको अगर आपका घर बनाना है तो कैसा बनाना है, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए AI बताएगा वो. और अभी हम लोगों ने AI मार्केटिंग में करना शुरू ही कर दिया है.
0: नाइस, तो ये भी आपने चीज शुरू कर दी, बहुत जबरदस्त. अच्छा जो यूथ है, जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं कतर में, अगर वो रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका उनके लिए क्या मशवरा, क्या एडवाइस हो?
1: हाँ बिल्कुल करें, कतर मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है और कतर इट्स बीइंग ए कंट्री, उसको अंडर द अमीर शेख तमीम के अंडर में बहुत ही अच्छी तरह चल रही है कतर, और कतर आगे और भी बढ़ेगी, उनका 2030 का विजन भी है. और बहुत ही मैंने तो देखा है कि 0 टावर से आज तक की लाइफ कतर में देखी है मैंने, जो इन्होंने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, बहुत बहुत ही अच्छी तरह से, जिसको कह सकते कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके बहुत अच्छा बनाया है कतर. आज कतर का नाम पूरे दुनिया में अच्छी तरह गूंज रहा है.
0: बिल्कुल. अच्छा सर, रिटेल में यानी रिटेल बिजनेस में कामयाबी के लिए

0: सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या इंग्रेडिएंट एक क्या हो सकता है?
1: एक तो जो भी आपके साथ काम कर रहा है उनको लॉयल बनाओ, उनको लॉयल बना के वो आपके एसेट्स हैं, आपके अपने हैं। तो मेरे पास जैसे मेरी खुद की पॉलिसी है कि मैं टर्मिनेट किसी को भी नहीं करता हूँ,
0: कभी भी नहीं। मतलब कोई
1: मेरे ख्याल से 22 सालों में से एक आध बार किसी ने गलत काम किया है तो एक आधे को किया होगा कि जो वो एक्सट्रीम लेवल पे गलत काम करते हैं, बाकी मिस्टेक्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो ये हम लोगों की मतलब मेरी अपनी तो पॉलिसी है कि किसी को टर्मिनेट नहीं करो, उनके पीछे उनकी फैमिलियां हैं, उनके पीछे बहुत कुछ है। तो ये मैं ध्यान रखता हूँ तो उसका मुझे फल भी मिलता है। जैसे हम लोगों ने कोविड में हम लोगों ने ना सैलरी स्टॉप की ना कुछ, 3 महीने हम लोग जीरो बिजनेस पे थे, तो उसका बेनिफिट मिला हमें कि वो स्टाफ ज्यादा लॉयल हो गया, कि हम लोगों का ध्यान रखा गया, अगर किसी को कोविड हुआ उसका भी ध्यान रखा गया पर्सनली। तो ये सब चीजें बहुत फर्क कर मायने रख।
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम हो और उसके लिए आपको भी उनके साथ उसी तरह का रवैया अख्तियार करना होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बिजनेस को अब हम देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी सामने आ गई हैं जिसके बाद कस्टमर्स जो हैं वो अब स्पेंड करने या खरीदने से थोड़े रिलक्टेंट हो रहे हैं, थोड़ा परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। तो ऐसे हैबिट्स के चलते जो रिटेल बिजनेस है उस पर किस तरह का असर पड़ता है और किस तरह से
1: आगे टाइम बिन है? ये मैं इसको टाइम बिन मानता हूँ।
0: अच्छा,
1: कि हम लोग अभी भी कस्टमर के प्रति होप रखते हैं। अच्छा, और वो ठीक है, टाइम बिन सिचुएशन है, लोग खरीदने में पैसे सोच रहे हैं 10 बार कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, तो वो ठीक है। इसमें हम लोगों ने तो मैंने तो बहुत सारे क्राइसिस देखे, ब्लॉकेट देखा मैंने, कोविड देखा मैंने, 2008 का इकोनॉमी देखा, तो उसके बाद में वापस सुबह के बाद रात के बाद सुबह आती है, तो डेफिनेटली अगेन मॉर्निंग विल कम।
0: तो मतलब आपको है कि अब उम्मीद है कि चीजें जब बैक टू नॉर्मल होंगी तो लोग उस तरह से स्पेंडिंग भी करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कतर के नेशनल विजन की बात करूँ 2030, तो उसका बहुत ज्यादा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे। आजकल सस्टेनेबिलिटी पे जब इतना जोर दिया जा रहा है तो आपके बिजनेस में एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है?
1: हम लोग तो पूरा ही कर रहे हैं अभी, जैसे बायोग्रेडेड बैग अगर यूज करना, वो हम लोगों ने कब से स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो उसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जैसे हम लोगों के पैकिंग मटेरियल है वो कस्टमर के घरों में ना छोड़ते हुए हम अपना उसका सिस्टमेटिकली रिसाइकलिंग को देते हैं, और जैसे बॉक्सेस है एम्प्टी हम लोगों ने कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है जिसको रिसाइकल करने के लिए हम उनको देते हैं। तो वेस्टेज का भी हम लोग ध्यान रख के करते हैं कि उसका इन्वायरमेंट पे कोई असर ना हो, उनको भी रिसाइकल करवाते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत ही सही। अच्छा, आज का दौर इतना कॉम्पिटिटिव दौर है और कॉम्पिटिटिव रिटेल मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, किस तरह से डिसाइड की जाती है, क्या आप कस्टमर्स के फीडबैक को भी ध्यान में रखते हैं, एम्प्लॉयज भी जो आपके हैं टीम के वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में उनका भी कोई क्रूशियल रोल होता है या फिर आउटसोर्स किया जाता है?
1: हम लोग फीडबैक नीचे के स्टाफ से लेके ऊपर के मैनेजर से लेके मार्केटिंग मैनेजर सबसे कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उसका प्लानिंग करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। तो हमारे पास मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो लोग सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग का ध्यान रखते हैं।
0: नाइस। अच्छा, आज मैं देखती हूँ बहुत बार ना एक स्पेशल प्रमोशंस चल रहे हैं, सीजनल कैंपेन्स चल रहे होते हैं, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं कस्टमर एंगेजमेंट को लेकर?
1: ये बहुत ही इफेक्टिव है और कतर में आज का ट्रेंड हो गया है कि आपको बिना ऑफर के आपका कुछ भी चलेगा नहीं। तो ऑफर से कस्टमर्स को फायदा हो रहा है और बिजनेस हो रहे हैं, तो जहाँ पे अच्छी ऑफर हैं हम लोग लगभग

0: कभी हाफ बैक कर देते हैं, कभी 20-50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये सब चीजें कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और वो खरीदने की चाहत में रहते हैं,
1: चाहत भी रहते हैं। बट जैसे कतर एक डाइवर्स मार्केट है, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, तो हर एक कंट्री, मतलब मैं ये कहूंगी कि जैसे किसी के लिए ईद इम्पॉर्टेंट है, किसी की दिवाली, लेकिन इसके अलावा दूसरी नेशनलिटीज हैं तो उनके अलग अलग इवेंट्स हैं, कुछ हैं, तो अलग अलग तरह की आप लोग क्या मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो
0: हम लोग मार्केटिंग बाकायदा अलग अलग करते हैं। कि आज रमादान है तो रमादान का पूरा स्टोरी चलाते हैं कि ये रमादान का हम लोग ऐसा कर रहे हैं, रमादान में ये चीजें कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं हम लोग। और कुछ भी बैक टू स्कूल है अभी जैसे, तो बैक टू स्कूल के पूरे प्रोडक्ट होंगे और उनका ऑफर होगा, उसके ऊपर अलग से ऑफर रखते हैं बैक टू स्कूल के लिए। तो बच्चों को एक गेम खिलाते हैं कि आओ आप गेम भी खेलो और गेम खेल के कुछ विन करो बैक टू स्कूल में। उसमें बेसिक बैक टू स्कूल के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप चूज करके उसी को खरीद के, तो उससे आपको आप अपने स्कूल की लाइफ अच्छी बना सकते हो।
1: बहुत ही अच्छी बात की। अच्छा एक और सवाल फर्नीचर में मैं आपको जानूंगी कि जो फर्नीचर रिटेल इंडस्ट्री है वो तेजी से बदल रही है, तो आपके नजदीक वो कौन से इनोवेशंस हैं या फिर जो ट्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर को शेप करेंगे?
0: हम लोग फर्नीचर के साथ अभी टेक इन्वॉल्व कर रहे हैं। टेक मतलब आप जैसे आप सोफा पे बैठे हो तो आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे चार्ज करो। और आपको अगर पांव सीधे करने हैं तो आपका इलेक्ट्रिक टेक है, तो वो सोफा आपका रिक्लाइनर बन जाएगा। और उसके बाद अगर आपको साउंड सुनना है तो स्पीकर एडेड है सोफा में, तो आप साउंड का मजे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें टेक हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं फर्नीचर में। टच लैंप है, जैसे ही आवाज के साथ लैंप है, तो ये सब चीजें है, अभी टेक हम लोग इन्वॉल्व करते जा रहे हैं फर्नीचर के साथ
1: करते जा रहे हैं। वाकई में टेक्नोलॉजी और चेंज जो है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक हो, उन्हें कंफर्ट दे, तो फिर कोई क्यों नहीं नए प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अच्छा आपकी लीडरशिप को तो पूरी कम्युनिटी जो है वो एडमायर करती है, अगर आप खुद को सिर्फ एक लफ्ज में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो कौन सा वर्ड होगा
0: मेरे लिए?
1: जी एक तो मैं कह सकती हूँ कि डाउन टू अर्थ, पॉजिटिव। दो तीन तो मेरे दिमाग में बहुत इंस्टेंटली आए, बट आई जस्ट,
0: मैं पॉजिटिव हूं एंड कीप स्माइलिंग, दैट इज द मेन मोटो ऑफ माय लाइफ। तो ठीक है, सबको परेशानी होता है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग सबको परेशानियां होती है, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसको परेशानियां नहीं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो उसको मैं जैसे स्टाफ को भी बोलता हूँ कि दो बैग होते हैं, एक सोरो बैग एक हैप्पीनेस बैग, so please keep sorrow bag at home and bring happiness back। so जो smile करता रहता है उसके पास सब लोग आते हैं, रोने वाले के पास कोई आता नहीं है। so keep smiling।
1: ये बात तो सही कहा।
0: I keep smiling।
1: हाँ, that's what we have seen you always smiling, चाहे कितना भी stress हो, कितनी भी परेशानी हो, that really differentiates you from other। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इतने सारे roles और responsibilities तो आप निभा रहे हैं, तीन brands को manage कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो आप पे आते ही, भले से आप स्माइल करके अपने आप अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें,
0: स्माइल से वो प्रॉब्लम कम हो जाता है ना।
1: उसके अलावा और आपके स्ट्रेस बस्टर्स क्या हैं? मतलब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, वो डू यू डू क्या करते क्या है?
0: एक चीज और करनी चाहिए लाइफ में किसी को भी, ये पर्सनली है कि यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर नियर बाय डियरेस्ट डियरेस्ट, उनके साथ शेयर करनी चाहिए आपको अपनी प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम आधी वहीं हो जाती है। चाहे कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी हो, डियरेस्ट नियरेस्ट, उनको शेयर करो तो आपको आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी,
1: भले से सलूशन मिले ना मिले, एटलीस्ट आप जो है ना।
0: लेकिन आपने बताते ही, शेयर करते ही आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई समझो।
1: दैट्स नाइस। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को दूर करने का, कि कह दो जो भी आपका करीबी है, आप उससे अपनी बात कह दीजिए। That's nice. अच्छा अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में ना होते तो आप किस प्रोफेशन को चूज करते और क्यों?
0: मैं शुरू से ही रिटेल में हूँ, पढ़ाई के बाद मैं रिटेल में ही हूँ और आज तक एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक ही जगह हूँ, कोई सीवी नहीं है मेरी, तो रिटेल ही समझो सब कुछ है।
1: तो हमेशा से आप इसी इंडस्ट्री में आना चाहते थे, चलिए बेस्ट है। अच्छा आपको आई एम श्योर आप तो खैर एडवाइस देते ही हैं लोगों को, लेकिन किसी ना किसी ने कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी होगी, तो वो कौन सा शख्स था जिन्होंने आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी, और वो क्या दी जो आपको लगता है कि आज भी आप उस एडवाइस को अपने साथ रखते हैं?
0: मैं मेरे लिए आइडियल मेरे बॉस मिस्टर लाल गनवानी है और उनके पुत्र मिस्टर जयंत गनवानी है, उनकी एडवाइस हमेशा मैंने अपने साथ बांध के रखती है कि रमेश जो भी स्टाफ तेरे पास काम कर रहा है और जो भी स्टाफ है वो अपने एसेट्स है और वो अपने ही लोग हैं, अपनी फैमिली है, ये ध्यान रखो। तो वो चीज मैंने समझो एक प्रकार से स्टार्टिंग से ही गांठ बांध के रखती है।
1: ये बेस्ट एडवाइस आपको मिली आपके बॉस से और आप इसको आगे फर्दर जो है वो मुझे लगता है कि बढ़ा भी,
0: मैं चलाता रहता हूँ ये।
1: वेरी नाइस। अच्छा जब आप अपने रिटेल सफर को देखते हैं तो अगले जनरेशन के रिटेल लीडर्स के लिए किस किस्म की लेगेसी आप छोड़ना चाहेंगे खास तौर पे कतर में?
0: यंग जनरेशन के लिए एक चीज है कि नथिंग कम एज यू वांट, यू हैव टू हैव पेशेंस, you have to have the mainly honesty and main thing is required in your life, intention is neat and clean and tidy. Believe me, God will also help you in this matter. If your intention is neat and clean, किसी के लिए भी आप कुछ ना गलत सोच रहे हो ना कुछ, जो करना है उसने सामने वाले ने करना, लेकिन आप अपनी तरफ से intention neat and clean करो कि आज मेरे को ये काम करना है तो आप अपने लिए करो। You should have the satisfaction, not the other to it. जैसे कोई काम करता है, आज मैंने कोई काम किया तो शाम को मेरे को लगता है अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, वो अगर आपके मन में आ गया तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए क्योंकि आपको खुद को खुशी मिली, किसी ने बोला नहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको खुशी मिली कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया,
1: बहुत ही अच्छा।
0: तो वो जो चीज है ना बहुत फर्क ला देगी आप। तो आप अपना इंटेंशन नीट एंड क्लीन रखें, ऊपर वाला भी आपको मदद करेगा।
1: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। वी थैंक यू सो वेरी मच, हमें आपकी लीडरशिप से, आपकी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच से, टीम बिल्डिंग अप्रोच से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आप एक विजनरी हैं जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम ढेरों हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ।
0: नादिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और 107 FM का जिन्हें मुझे मौका दिया कुछ अपने बातें शेयर करने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते और पॉजिटिव रहिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है।
0: थैंक यू,
1: हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। वेल दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए, इस वादे के साथ कि नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107,
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
6: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: लीजिए साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:01।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम एलन वसेलन, खुश आमदीद और स्वागतम। भाई सफा और सरवर आ गए हैं और अब ये दो घंटे जो है ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक
3: जागे नहीं है,
1: कॉफी के सहारे जिंदा है।
3: यानी कि मेरे लिए सुबह से कॉफी। देखिए, हम कॉफी और बिस्कुट।
1: इशारा आपकी तरफ था, इशारा आपकी तरफ था मेरा, तो मैंने कहा शायद ये सुन के सफा थोड़ी सी जाग जाए। और इस वक्त सफा जो है बिल्कुल फ्रेश होके आई है, इतनी फ्रेश कि आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि तकरीबन 14 घंटे सोकर आ रही है, आंखें सूज चुकी है और अब दिख नहीं रहा कि माइक किधर है, हेडफोन किधर है।
3: अपने आपको देखा,
1: अदालत सबूत मांगती है और सबूत ये खुद ही इस वक्त पेश कर रही है। आप लोग
3: बात होता हूँ, हकीकत होता हूँ। जो गार्ड थे ना हमारे ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, वो मेरी शक्ल देख करें, उक्ति यू डू नॉट स्लीप।
1: आगे से पूछेंगे आप आ रही हैं या जा रही हैं। ये तो बताइए। तो साहब, हफ्ते का दूसरा दिन मंडे यानी वीकेंड तो अभी दूर है, बट यकीन जानिए ये दूरी हम दोनों आपको बिल्कुल भी महसूस होने नहीं देंगे। और प्रोग्राम में तो आपको बताइए, आपके बेहतरीन गाने, अपडेट्स, खूब सारी प्यारी प्यारी कन्वर्सेशन, आपके मैसेजेस और कुछ ना कुछ सफा जो है आज शोशा भी छोड़ेंगी आगे आने वाले टाइम में।
3: मतलब मैं क्या कोई कोई वो फिल्म का जोकर होता है ना।
1: शोशा इज वेरी इम्पोर्टेंट। बात किस पे करेंगे वरना हम लोग मिलके, और बात करने के लिए आपको पता

0: ही है कि करना क्या है भाई।
1: अरे भाई सरवर भाई, बाकी सब छोड़ो, खुशखबरी है, खुशखबरी।
0: जी हाँ, जल्दी सुनाइए।
1: टेम्परेचर नीचे आ रहा है भाई।
0: अच्छा, मैं ये कहने वाला था माइक पे सुनाने वाली है या नहीं है। तो टेम्परेचर तो नीचे आ रहा है बिल्कुल। हम बढ़ेंगे वेदर की जानिब। उससे पहले ये जानिए कि हमसे ताल्लुक बनाना और रखना, ये दोनों चीजें सेम है वैसे तो, और वो कैसे हो सकता है? वो इस तरीके से कि दो नंबर है भाई, व्हाट्सएप का नंबर है 666-222-107, और वहीं हमारा जो फोन करने का, राबता करने का नंबर है वो है 443-443-77। तो आइए बढ़ जाते हैं वेदर की जानिब।
2: वेदर का हाल 107 दिनाल।
0: और वो क्या है सफा, क्या कहती है वेदर, क्या कह रहा है?
1: अच्छा भाई, वेदर ये बता रहा है कि इस वक्त जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब लोग कहेंगे, कुछ लोग जो ना मेरे साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, फौरन अपनी गाड़ी की तस्वीरें खींच कर भेज देते हैं टेम्परेचर की। देखो मेरी गाड़ी का टेम्परेचर 36 बताता है मुझे, अब क्या बाहर के 36 हो रहा है टेम्परेचर।
0: सफा की गाड़ी तो बाकी ठंड मान रही है भाई, और ये खुद भी ठंड मानती है। मैंने कल भी बताया था, इस वक्त भी ये जो कौन सी वो इग्लू होता ना, इग्लू उसकी हाँ, वो मोटी वाली जो जैकेट होती है ना, जिसके अंदर फर भरे हुए होते हैं, वो पहन के बैठी है भाई जून जुलाई की गर्मी के अंदर। अब बताइए, अब आप लोग खुद समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो टेम्परेचर तो इस वक्त कितना बताया,
1: 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अच्छा हाँ हाँ, जो फील हो रहा है वो 46 डिग्री सेल्सियस तक का फील आ रहा है।
0: 46 ही फील हो रहा है, तो मैंने सही बताया, इसका मतलब कि 46-50
1: का फील हो रहा है ये कह लेंगे।
0: होई होई होई होई होई।
1: अच्छा अगर देखा जाए तो आज का अगर वेदर रिपोर्ट दी जाए तो भाई 41 डिग्री सेल्सियस जो है वो हाईएस्ट जाने की उम्मीद है, और उसी के साथ साथ अगर लोएस्ट जाएगा तो वो 33 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हवाओं की रफ्तार सरवर भाई अच्छी चल रही है, मतलब मूड में हवाएं अच्छी अच्छी चल रही हैं, 10 से 13 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो हायर देन यस्टरडे है, यानी कि 45-49% के बीच में है।
0: इसके पीछे भी वजह क्या है वो बताता हूँ मैं। फिलहाल जैसे कि सफा ने बताया, इस वक्त जो सूरत हाल है वेदर का, QMD ने क्या कहा है, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, महकमाए मौसम ने कहा है कि भाई धुंध की वजह से जो हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है वो 2 किलोमीटर से भी कम हो सकती है, ऐसा QMD का कहना है। और ये कल की रिपोर्ट में बताया गया था, आज क्यों बता रहा हूँ ये भी आगे सुनिए, क्योंकि कुछ जो मकामात हैं उन पे लगभग जो विजिबिलिटी है वो कम भी होगी, ख़त्म भी होगी। मेरे ख्याल में जो लोग सुबह सफ़ा उम सईद और रास लफान वगैरह गए होंगे तो उन वो हमें ज़्यादा, हाँ वो ज़्यादा बता सकते हैं कि भाई खोरा वगैरह आपको मिला या नहीं मिला, जैसे कि QMD ने हमें बताया था। तो QMD ने तमाम मोटरिस्ट से और तमाम रोड यूज़र्स को हिदायत दी है भाई कि गाड़ी चलाते वक्त पूरी एहतियात इख्तियार करें, रफ्तार कम रखें जब कभी भी ऐसी सूरत हाल आपके सामने आ रही है, और ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी हादसे से खुदा ना खास्ता और इंशाल्लाह ताला हम महफूज रह सकें। मजीद ये कि QMD ने यह भी बताया कि रियासत कतर में जो मैंने आपको बताया कि कल से लेके और 18 अगस्त यानी कि आज 17 है ना सफर,
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: तो कल तक तो मतलब ये 3 दिन, तो कल आज और कल, आहा अरे ये फिल्म का नाम है, ये फिल्म का नाम है यार, ये तो ऐसे ही निकाला होगा किसी डायरेक्टर ने मुझे लगता है। तो बहरहाल आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो ह्यूमिडिटी वगैरह का बताया है, इस वक्त सफर ने बताया इतनी ज्यादा है, वो इसीलिए है कि इस वक्त बादल वगैरह रात में भी आपको देखने के लिए मिले होंगे, इवन सुबह फजर में भी काफी बादल थे। एनी हाउ कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आवाम को खासतौर पर ड्राइवर्स को एहतियात बरतने के लिए कहा है भाई, और जब भी ऐसा कोई मौसम हो, वेदर हो, उसमें खासतौर पर एहतियात बरती है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते दूसरे की भी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी चलाते हैं, और वो हमारे लिए, हम सब के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो प्रोग्राम में आगे इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होने वाला है, 2 घंटे हमारा आपका साथ रहने वाला है, और कॉल करने के लिए नंबर आपको बता ही दिया है हमने 443-443-77, प्लस ये कि व्हाट्सएप मैसेजेस शुरू हो गए हैं ऑन द नंबर 666-222-107। अगर किसी ने अभी तक मैसेजेस नहीं भेजे हैं तो वो हमें भेज सकते हैं।
1: लगवाओ को भी दें, फुल्लो अटेंडेंस लगवाओ, और प्लीज खुशबू लगा के, प्लीज अच्छा। खुशबू लगा के अटेंडेंस लगवाना, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना खुशबू के बगैर काम नहीं चलता।
0: यार क्या कहती है दफा, क्या बात कही आपने, क्या शेर सुनाया। ब्रेक पे जाने वाले थे बट चलिए यहाँ पर, क्योंकि अब 3-4 कॉल आ रही थी तो मैंने कहा एक कॉल तो हम अटेंड करें जाने से पहले पहले, और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम अंकल जी।
0: ओह माय गॉड, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम।

0: इसमें कोई शक नहीं।
1: बीच में गायब हो गए थे कतर के किसी
2: बीच में?
0: हाँ इधर ही यानी आपके इर्द गिर्द थे। मैंने कहा यार कभी तो मुलाकात होगी, लेकिन आपकी गैस का दीदार रोज कर रहा था।
2: पीछा कर रहे थे आपका पीछा?
1: चलिए यार सब खैर है वैसे करीम भाई।
0: बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर, और माशाल्लाह आप दोनों के बहन भाइयों की जोड़ी बहुत एकदम प्यारी।
1: बहन भाई चचा भतीजी कहिए, मैं नहीं सॉरी गलत कह दिया, खाला और भांजा कहिए, मैं छोटा हूँ मैं छोटा।
2: सच पहला जो मुंह से पहली दफा निकलता है वो सच होता है।
1: नहीं वो एक्चुअली नाजिया जहन में आ गई थी, तो इसलिए वो
2: ने सुन लिया ना, बता देंगे आप।
1: बड़ी है ना मुझसे तकरीबन 10-15 साल, तो वो याद आ गया था। यहाँ तो मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे भी छोटा हूँ करीम।
0: आप कहाँ छोटे हैं यार,
2: अभी अभी पैदा हुए हैं, अंडे से निकले अभी,
1: मतलब छोटे हो।
0: सबसे बड़े माशाल्लाह
2: ऑस्ट्रिच का अंडा,
1: सबसे बड़े
2: डायनासोर का अंडा।
0: आपके ना मौजूदगी में हम लोगों ने काफी तारीफ किया है कि जो ये एडवर्टाइज है और ये जो कुछ जो बातें होते हैं ना, ये बड़े मसलन जिस हिसाब से आप कर रहे हैं माशाल्लाह।
2: करीम भाई ये जो है ना ज्यादा तारीफ मत कीजिएगा। आपने कभी वो देखा है हाथी को पड़ लगे हुए, वो वाला मामला हो जाएगा।
1: आप मतलब इतने बड़े बड़े ही मखलूकात से क्यों मुझे मिला रही हैं? सिस्टर व्हाट डू यू मीन टू से, मैं दावा अदालत जा सकता हूँ मैं इसको आपको बता दूं। चलिए साहब
0: वजन वाली साहब है ना वो यार। हाँ बताऊं आप आए कब खैर से?
1: मैं कल ही आया हूँ करीम भाई आपकी खिदमत में, अब इंशाल्लाह ताला हम दोनों हाजिर हैं।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे सिर्फ इसी चीज के लिए कॉल किया कि आपको वेलकम करें, और
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
2: करीम भाई बहुत बुरी बात है, ये मेरी वेलकम के लिए तो ढोल पताशे ना आए थे कोई मिठाइयां ना बटी थी?
1: नहीं नहीं यार देखिए एहतराम एहतराम
0: सफा बेन, आपको भी भाई के साथ कहता हूँ कि वेलकम। आप भी
2: नहीं, मुझे अकेले वाला वेलकम चाहिए था, मुझे ये भाई के साथ वाला नहीं चाहिए था।
1: तो भाई काम करिए, आप पहले छुट्टी जाइए, वापस आइए फिर करीम भाई आपको वेलकम करेंगे।
0: कहते हैं ना फारसी में के देर आमदी शेर आमदी,
1: देर आए दुरुस्त आए। हमारे यहाँ इसको
0: आपके लोगों के लिए वही मोहब्बत है ना कि ये बढ़ेगा कम नहीं होगा।
1: सही सही सही सही,
2: कम नहीं होगा।
1: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी प्यारी बातें आपकी, और हम इंशाल्लाह ताला कनेक्टेड रहिए, आपका इंतजार रहता है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच,
0: खुश रखे।
1: आमीन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो भाई ये थे करीम भाई हमारे साथ, और अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कॉल आपकी आ रही है, मैसेजेस आपके आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इनको हम शामिल करेंगे, कॉल भी आपकी लेंगे जरूर। फिलहाल क्या है अपकमिंग ये बता

0: सर भाई इस उम्र में लव की बातें जच जी नहीं है।
1: आगे सुनिए आगे। आप तो लव की बात कर रही थी, सुनिए अरिजीत क्या कह रहे हैं।
0: ये दिल फेंक शख्स है बहुत ज्यादा, हर जगह गिरे पड़े मिलते हैं
1: यार, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अरिजीत गा रहे हैं फिल्मों के गाने, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ अपकमिंग ट्रैक्स आपके लिए, मेरी तारीफ सफर करती रहेगी।
0: अब भाई अपने दिल का हाल बता रहे थे।
1: चलिए साहब तो एक छोटा सा ब्रेक बढ़ते हैं आगे, इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद बातचीत जो है जारी रहेगी। फिलहाल एंजॉय कीजिए सॉन्ग, शान शिवरा पंडित और

0: भाई समझ में नहीं आया मामला कि ये मशवरा दे किसको रहे हैं, हुआ किसके साथ क्या है।
1: देखिए आज से तकरीबन 20 साल पहले अगर ये बात मुझे बताई गई होती तो मेरे काम आ जाती लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
0: अब बालों में जब ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी है तो ऐसे मशवरों का कोई फायदा नहीं है।
1: देखिए दांतों की जगह टूथपेस्ट बालों में लगा लिया हमने।
2: सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: हाँ जी वेलकम बैक हेलन वसेलन खुशांदी स्वागतम। बिल्कुल सन एंड साउंड पे इस वक्त सरवर और सफा आपके साथ हैं। बहुत सारे सीन जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं और सरवर सफा सफा सफदर
1: और सफा नूर
0: कि सफा नूर की कहानी तो मुझे कल पता चली। खैर नाम बदलता रहता है और देखिए खुशी
1: ने कोई नाम दिया जाए। नहीं सुनाया किस्सा सफा नूर का, किस दिन सुनाऊंगी बैठकर।
0: खुशी से कोई नाम दिया जाए तो वो हमेशा एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि मोहब्बत वाले जब मोहब्बत से नाम देते हैं तो फिर जिंदगी
1: वो मुझे अपने शहजाद सलीम याद आते हैं ना, कहते हैं मुझे शहजादा नाम जो है फरजाना जी ने दिया था तो मेरा नाम सलीम है तो उन्होंने ऐसी वो सलीम के तौर पर ना वो शहजादा सलीम।
0: मैंने कहा ये अच्छा सलीम अगर आप हमें सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, कहां है अगर सुनाने वाले
1: नहीं, नहीं, सुना वो तो सुनते हैं भाई
0: तो वो अरे ये वाकई इस वक्त सामने है यार कसम से ये देखिए
1: अरे दूसरा मोबाइल अरे हां मोबाइल
0: शहजादा सलीम साहब का क्या
1: इसे कहते हैं क्या दिया जाए। दो मिसालें होती हैं, एक ये कि माशाल्लाह से उम्र बड़ी लंबी है और दूसरा ये होता है कि याद किया और हाजिर हो गए।
0: हाँ नहीं आप कुछ और तो नहीं कहना चाह रहे कि फलाना को याद करो तो फलाना सामने आ जाता है।
1: एग्जैक्टली मैंने कहा अभी दो मिसालें इनके ऊपर कौन सी अली सूट करेगी
0: ये तो अब ये खुद ही बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सरवर भाई और कहाँ हैं आप?
0: अरे हम तो आपके दिल में हैं शहजादा साहब। और पता नहीं आप इस वक्त रेडियो सुन रहे थे या नहीं, मैसेज आपका देखा और बात आपकी चल रही थी एक्चुअली।
1: शहजादा सलीम भाई देखें ये बगैर रेंट पे रहने के आदी हैं आपके आपके दिल में धरना मार के बैठे हुए हैं ये बगैर रेंट के।
3: एफएम हमारे साथ ही हमेशा क्योंकि हम हैं आपके साथ एफएम 107।
0: वाह क्या शेर सुनाया क्या बात है। कैसे हैं आप और
1: बकरी कब सुनाएंगे?
0: कैसे कैसे गुजरे दिन आपके अभी तक, मतलब जो मैं गायब था उस दरमियान?
3: हाँ बहुत यानी ये मेरे कान तरस गए अतरोर भाई की आवाज सुनने, ये आंखें थक गई आपको देख मैंने ना फोटो देख कर ना फिर जैसे तैसे मैंने ना
1: देखे मेरे
0: जो 45 दिन झूठ नहीं बोल पा रहे थे कि ये सारा इस वक्त
1: मैं जो ना मैं रिफ्रेन कर रही हूँ बात करने से, मेरे मेरे दिल और दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं रेडियो पे बोल नहीं सकती।
0: चलिए
3: अपना सरवर भाई सुबह के प्रोग्राम में आपको गाबा जी बहुत मिस करते हैं आपको।
0: अच्छा गाबा भाई हाँ बिल्कुल अच्छा मिस कर रहे हैं सुबह, तो आप क्या कहना चाहते हैं मैं सुबह आ जाऊँ? ऐसी दुआ मत दीजिए और ऐसी ऐसी बात नहीं करते खुले आम तो बिल्कुल नहीं करते
1: अगर किसी ने अगर मैनेजमेंट ने सुन लिया तो
0: मसला हो जाएगा। तो शेखू भाई की हुई आमद और बड़ी अच्छी आमद भाई, उम्मीद कर

0: हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो चलिए भाई, अब लगे हाथों इनसे आज का शोशा भी छोड़ देते हैं। सफा क्या कहती हैं आप?
1: अच्छा शहजाद सलीम भाई, ये तो बताएं जरा कि अगर जिंदगी में आपको एक मौका दिया जाए कि दो चीजों में से एक चीज आपने चूज करनी है, ठीक है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि भाई खाना पीना कैसा भी हो, हल्का फुल्का हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे को रहने को ना 7-star होटल चाहिए, एकदम लग्जरी, अच्छी दिखने में अच्छी जगह होनी चाहिए।
0: मेरा जवाब आपको ऑलरेडी मिल गया।
1: हाँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोग कहते हैं भाई रहना वहना कैसा भी हो, मेरे को कोई बस प्रॉब्लम नहीं है, एक एक कुर्सी लगी हो, एक बेड हो, इसके ऊपर रह लूंगा मैं, गुजारा कर लूंगा, लेकिन खाना ना टशन का होना चाहिए।
0: देखिए, अगर मैं शहजाद भाई को रोकूंगा और मैं अपनी अगर बात करूं तो मर्द हजरात के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो खाना और सवारी, ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पे खर्चा करना चाहता
1: गाड़ी
0: हूं मैं,
1: होई होई
0: और करता भी हूं मैं और करना चाहता भी हूं मैं। बाकी तो ये दुनिया का क्या मामला है, रहना घर बनाना।
1: यहाँ पे ऑप्शन गाड़ी वाड़ी का नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अगर आपको रहने को एक लग्जरी जगह चाहिए या आपको लग्जरी खाना चाहिए, इन दोनों में से आपको क्या चूज करना होगा, मतलब आप क्या चूज करेंगे?
0: खाना
2: अगर हाँ, वो तो उसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, जान है तो जहान है सारा कुछ, रहने का तो क्या कहीं भी है गुजारा हो जाता है, रहने का कोई मतलब नहीं। अगर लग्जरी रहने के साथ, लग्जरी फैसिलिटी के साथ और एकदम लग्जरी अगर खाने की डिशेस भी हो ना उसके अंदर,
0: बट थोड़ी रहा, हम दे ही नहीं रहे इतना कुछ, हमने सवाल इसीलिए छोटा करा,
1: लंगर की देख होती है ना वो वाला हिसाब हो गया, सब लूंगा, सब कुछ चाहिए, चार और बोटी डाल दो।
0: तो इन शॉर्ट ये है कि खाने पे ही फोकस है शहजादा भाई का।
1: खाने पे फोकस करेंगे, रहने पे नहीं।
2: बिल्कुल, यहाँ भी आए ना परदेश, अपना अपना वतन छोड़कर ना, और सबका एक ही मकसद है ना कि घर वाले पेट भर के खा ले, सही है, थोड़ा गुजारा कर लेंगे।
1: लेकिन घर वालों को रखो साइड पर, घर वालों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने लिए भी जीना सीखो ना, खुद जियोगे, खुद खुश रहोगे तभी तो घर वालों को प्रोवाइड करोगे।
0: वही तो बता रहे
1: हैं, जान है तो जहान है, सिर्फ खाने से नहीं होता।
0: तो कह रहे हैं कि अच्छा खाऊंगा और फिर
1: नहीं ना, आप समझ ही रहे, सिर्फ पेट नहीं होता, इंसान की मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मेंटल हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं आती, वो एक एनवायरमेंट से आती है, वो एक लाइफस्टाइल से आती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ ही मैं, हमारे कई साथी है ना कंपनियां मैंने देखा हुआ है, उनकी जो भी सैलरी आ जावे, जो भी मिल जावे उनको, लेकिन वो जो है ना बेहतरीन खाते हैं और वो बोलते भी हैं बड़े सीना तान के, यार खुद भी खाओ और घर खिलाओ।
1: ये कहीं आप सरवर भाई के बारे में बात तो नहीं कर रहे?
2: खुद भी खाओ और घर वालों को।
1: सरवर भाई को बात, सरवर भाई को बोले सरवर भाई चलें जिम चलते हैं, सरवर भाई कहते हैं कि भाई ऐसे भी ऊपर ही जाना है, वैसे भी ऊपर ही जाना, खा पी कर जाऊंगा ना,
0: और टाइम पे जाना,
1: अपने टाइम पे जाना, उससे पहले भी नहीं जाना,
0: ना पहले ना बाद में,
1: तो मैं अपने आप को क्यों सिसकाऊं।
0: तो इन शॉर्ट शहजादा भाई की बातों से ये निकला कि इनको
1: खाना,
0: हाँ मतलब ये अच्छे खाने की तरफ, लग्जरी क्या फूड ऐसे ही।
1: अच्छा खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, सी फूड या गोश्त, मटन, चिकन, सब्जी, क्या चीज पसंद है आपको?
2: सी फूड में बिरयानी, सी फूड बिरयानी और सी फूड कुछ भी, प्राउन और फ्राई मछली और बस सी फूड जो भी हो ना,
0: बस बस बस आज के लिए बस इतना ही, भूख जो है वो टाइम भी हो रहा है,
1: बिरयानी याद दिला दी,
0: आज भी ऐसी हो रही है
1: मुझे, अब मुझे मुझे मुझे घर जाना है, मुझे घर।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जी जी जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं?
2: वैसे अपना एक हसरत रह जाएगी दिल में,
0: अच्छा
2: कभी ना मुझे ना दीदार करना है कि सरोवर भाई का दस्तरखान कैसा लगता है।
0: अच्छा
1: माशाल्लाह, सरवर भाई का दस्तरखान बहुत बहुत वैरायटी वाला होता
0: नहीं
1: है।
0: तो दस्तरखान का क्या है? कहीं भी लग जाए आप लगा लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मसला क्या था?
2: बिल्कुल, हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है, कभी आइए अपना समीर 16 नंबर में, आपको चपड़ी कबाब खिलाएंगे ना और रोटी।
0: अच्छा मैंने कहा शायद ये कहने वाले, आप कभी भी आइए अपना दस्तरखान साथ लाइए।
1: अच्छा मजे की बात ये, एड्रेस भी बता रहे हैं, बस सरवर भाई के अलावा बाकी सब पहुंचे हुए हैं।
0: नहीं और बता भी ये रहेंगे खिलाऊंगा क्या।
2: बेहतरीन, चूंकि ना मैं 19 में हूँ, 16 में अपना मेरे पाकिस्तानी पठानों भाई का इतना बेहतरीन तवा लगता है और ऐसे बड़े बड़े ऐसे,
1: ये मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना सनाइया 16 नंबर की, यहाँ पे आसपास एक एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत मजे के चपली कबाब मिलते हैं जो कि बहुत मशहूर है, मुझे पता है उसका,
0: मेरे ख्याल में उसी का ही फिक्र हो रहा है यहाँ पे। चलिए साहब इंशाल्लाह ताला कभी उस तरफ भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: इस तरफ आए ना तो आप जरूर आप तक रहे, इंशाल्लाह डबल एक्सएल क्या ट्रिपल एक्सएल वाले आपको खिलाएंगे।
0: क्या बात है, पूरा तवा।

0: पर चपली कबाब चल रहे पता चला हुआ। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई वक्त निकालने के लिए और बात करने के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थे शहजादा सलीम भाई।
1: हाँ भाई, खाने से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो मुझे अपना फन ट्रिविया याद आया, खाने से रिलेटेड ही हमारा एक फन ट्रिविया है। मजे की बात ये है कि सर भाई, मैं अगर आपसे बोलूँ हवाइन पिज्जा, आपके दिमाग में क्या आएगा?
0: तो वही आएगा जो आप बोल रहे हैं।
1: हाँ, हवाइन पिज्जा आएगा ना। हाँ, वो पाइनएप्पल, वो चीज, हाँ, वो
0: तो कुछ और क्यों आएगा?
1: ठीक है, अच्छा हवाइन पिज्जा की आपको पता है बात क्या है, मजे की बात क्या है हवाइन पिज्जा की?
0: ये है
1: उसका ट्विस्ट है।
0: ओके,
1: कि हवाइन पिज्जा जो है ना, वो एक्चुअली आपके दिमाग में तो ये डाल रहा होता है कि भाई आपके दिमाग में आ रहा होता है बीचेस, आपके दिमाग में आ रहा होता है कोकोनट, पाइन एप्पल, ये वो, ठीक है। हवाइन पिज्जा असल में हवाइन नहीं है। अब ये बिल्कुल वो वाला मामला है कि आप कह लें कि भाई किसी के पास जो पिज्जा है ना, उसके पास कनाडा का पासपोर्ट हो लेकिन फैमिली बैकग्राउंड उसका ग्रीक से ताल्लुक रखता हूँ। मजे की बात ये है, जबरदस्त ट्विस्ट ये है कि हवाइन पिज्जा असल में हवाइन नहीं है, कनाडा में पैदा हुआ पिज्जा है ये। 1962 में ऑन्टेरियो के एक शहर में एक ग्रीक इमिग्रेंट था, उसने क्या किया, उसका नाम कुछ बड़ा मुश्किल सा सैम पैनोपोलियोस करके उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मजे का किया कि उनके पास कैंड पाइनएप्पल था, उस जमाने में होता ही था कि जो चीज मिले वो डाल दो आप पिज्जा के उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, और वो पिज्जा बन जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ आ गया कोई कैंड पाइनएप्पल, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या किया कि पिज्जा शिज्जा बनाया और डेकोरेशन के तौर पर उसके ऊपर वो कैंड वाला पिज्जा, वो मीठा वाला भाई, वो डाल दिया। मजे की बात ये थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था लेकिन वो दुनिया का फेमस तरीन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस तरीन पिज्जा बन गया। जैसे आजकल होता है ना, हर चीज ट्रेंड में आ गई है, हर चीज ट्रेंड में आ गई है, तो उस टाइम पर ये चीज ट्रेंड में आ गई। और सबसे फनी बात ये है कि इसका नाम हवाई पिज्जा इसलिए नहीं है कि ये किसी बीच पे पैदा हुआ था या इसको किसी ने ऐसे ही बीच पे बना लिया था। नो, इट डज नॉट हैज एनी बैकग्राउंड ऑफ दैट, बल्कि जिस कैन कंपनी का उन्होंने कैन खोला था ना, उसका नाम हवाई था।
0: ओके,
1: तो उसकी वजह से उन्होंने उसका नाम ही हवाइन पाइनएप्पल पिज्जा रख दिया, ठीक है। और फिर हुआ ये कि एक ऐसा पिज्जा जिसके पास पासपोर्ट कैनेडियन था लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड ग्रीक था, उसका नाम हवाइन रख दिया गया। और भाई एक बात बताऊं, उस दिन से लेकर आज तक ये डिबेट चल रही है
0: कि कहां से
1: पाइनएप्पल वाला पिज्जा खाओगे कि नहीं खाओगे, बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुनने में बहुत बहुत मिथिकल लगता है और बहुत बहुत अजीब सा लगता है कि सब, मैं बोलूं ना, मैं अपने घर में बोलती हूँ हवाइन पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, तो भाई अच्छे अच्छे मुझे घूम कर देखते हैं, सबके सर घूम जाते हैं और मुझे कहते हैं क्या हुआ, ये कौन सी, ये कौन कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं ये लोग।
0: इसके अंदर जो जितनी मालूमात मुझे है, मर्द हजरात को कम पसंद आता है और लेडीज को ज्यादा पसंद आता है।
1: मैं एक बात बताऊं, मुझे किसी ने ऐसे ही खिला दिया था, मेरी एक फिलिपिनो फ्रेंड थी, वो कुलीग थी एक, तो उन्होंने ऐसे ही खिला दिया था और भाई वो इतना जबरदस्त लशपश पिज्जा था भाई।
0: मैंने बताया ना कि खिलाया भी आपको, देखिए लेडी फ्रेंड ने ही। तो आइए यहाँ पर कौन है हमारे साथ जुड़ते, उनको देखते हैं कि वो क्या खाना पसंद कर रहे हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा,
1: मैं भी हूँ।
2: कैसे हैं आप? भी ठीक
1: है? अच्छा जी, सरवर भाई आए तो हमसे तो सलाम दुआ भी ना हुई, हमें तो मक्खी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर साइड पे कर दिया गया।
0: हमजा है हमारे साथ, क्या हाल चाल है हमजा आपके?
2: बोल ही रहा था, आप पहले बोल पड़ी।
1: मैं याद रखूंगी हमजा भाई, याद रखूंगी मैं। पता है मैं भूलती नहीं हूँ, इस मामले में नहीं भूलती मैं, मेरा लेडी वाला सर्किट
0: ये तो कराची तक मैं आपको नहीं छोड़ेंगी पीछे। हमजा भी कराची से है ना, है हमजा राइट? हमजा क्या हाल चाल, घर पे सब खैरियत, तबीयत सेहत, ड्यूटी ऑल ओके? निकल लिए,
1: चलो भाई
0: हैं के गए,
1: वो अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करने गए होंगे कि सामान आ जाए कहीं भी।
0: यार आपने तो वाकई डरा दिया सामान।
1: देखें ये दहशत है, ऐसी दहशत होनी चाहिए मार्केट में,
0: या शायद मैंने ये याद दिला दिया कि सफा के राजी से।
1: उन्होंने कहा मैं अपने शनाख्ती पार्ट में एड्रेस वगैरह चेंज करा कर आता हूँ।
0: अच्छा चलिए कुछ जल्दी से मैसेजेस फिर बढ़े आगे, क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है, कॉल आ रही है बराबर आप लोगों की, क्या करें?
1: दो मिनट
0: में बात ही नहीं हो पाती ना अच्छे से। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, से कुछ सर्विस इशू हुआ था इसलिए

0: कॉल कर।
1: अच्छा नहीं, हमने कहा शायद
2: कुछ, मैंने कहा मेरा इतना रोब दबदबा डर का, ये रोब दबदबा तो सिर्फ मेरे स्पाउस के ऊपर होता है, मियां के ऊपर होता है, ये नहीं हुआ मार्केट में कैसे फैल गया।
1: चलिए साहब, वेरी गुड। तो हमजा क्या कहते हैं आज का जो शोशा है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जल्दी बात इसलिए करेंगे क्योंकि अजान भी करीब है। लग्जरियस लाइफ के हवाले से बात करें तो लग्जरियस फूड और
2: लग्जरियस होटलिंग
1: लिविंग, लेट्स
2: हाँ, तो इन दोनों में क्या चीज चूज करेंगे
1: और क्यों?
0: भाई फूड का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लग्जरियस हो चाहे वो नॉर्मल हो,
2: फूड का टेस्ट
0: बेटर होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऊंचे पकवान,
1: क्या बात है यार, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता मगर ये मुहावरे में समझने वाले समझ गए तो अच्छा। चलिए ये तो एक बात हो गई, और फिर लिविंग के हवाले से आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि भाई,
0: वो तो भाई हम लोग तो लड़के ऐसे हैं जहाँ रहते हैं वहीं
1: जहाँ चार यार मिल जाए वहीं।
2: अच्छा लड़कों का ये बड़ा, लड़कों का आदमियों का ये बहुत, मैं कहूंगी बहुत मजे की चीज है ये, जहाँ बैठते हैं ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। अब हम औरतें ना हम कहेंगी भाई एम्बियंस होना चाहिए, एम्बियंस, हम 50 रैल की 70 रैल की कॉफी पीकर आएंगे सिर्फ एम्बियंस के चक्कर में। आदमी कहते हैं भाई वो ढाबे वाली चाय पियो एक रैल वाली और बस, हाँ वो बैठो एक टेबल एक कुर्सी मिल जाए कहीं पर भी, बस अपना दोस्त होना चाहिए बाकी सब खैर है। ये अच्छी बात है भाई, इस चीज पर आकर ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत मजे की बात है, यहाँ पर आकर मुझे फील होता है कि नहीं।
1: तो चलिए, हमजा ने अपनी चॉइस तो बताई दी है और इंशाल्लाह ताला भाई अल्लाह ताला हर चीज से नवाजे मुझे ऐसा लगता है। हमजा हमारे साथ हैं आप? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। और कुछ कहना चाहते हैं?
0: नहीं शुक्रिया, बस आपको वेलकम बैक करना था।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बात करें आपसे, कल भी ट्राई करता रहा,
2: मिलेंगे कराची में हमजा भाई
1: अल्लाह ताला, अब बिल्कुल आपसे मिल रहे हैं और
2: कराची में मिलेंगे, कराची में हमजा भाई कराची में मिलेंगे।
1: चलिए,
0: मुश्किल नहीं, आपको स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे क्योंकि कराची के स्टार्ट में ही रहता हूँ।
1: चलिए,
0: कराची जहाँ से शुरू होता है वहीं पे रहते हो,
2: बस सही है, अभी मैं बता दिया आपने।
1: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, इंशाल्लाह ताला बात होती है आपसे। तो भाई ये थे हमजा भाई।
3: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: चाहे तुम कुछ ना, एंजॉय करिए ये सॉन्ग पहला नशा, और मैं और सफा आपके साथ बने हुए हैं। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, इंशाल्लाह ताला अभी अजान सुनेंगे इस गाने के थोड़ी सी देर बाद और वापस आएंगे और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए FM 107।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: हेलो,
5: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
4: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ।

0: वेलकम बैक गोभी दया फुल्लो, आ जाओ जरा खुशबू लगा के। इस वक्त एफ एम 107 की घड़ी में हो रहे हैं 11:47। और भाई हमारा आज का मुद्दा ये चल रहा है, सौरभ भाई क्या चल रहा है आज का मुद्दा ये चल रहा है, देखो कि साथियों देखो जिंदगी में ना कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला ऑप्शन तो हम आपको ये दे रहे हैं कि जिंदगी भर लग्जरी ट्रैवल, हर साल ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, 5-star होटल, अमेजिंग व्यू, कंफर्टेबल रूम, स्विमिंग पूल्स, बीचेस, माउंटेन्स, रूम सर्विस और पता नहीं क्या क्या, मतलब सुबह आंख खोली और समंदर सामने भाई। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे लेकिन हर दिन आपको मिलेगा लाजवाब खाना और परफेक्ट कॉफी, मतलब ये कि कॉफी बिल्कुल आपके टेस्ट के मुताबिक, या कह लो देसी लोग हैं तो भाई चाय तो अपनी होनी चाहिए ना कड़क वाली, और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो, उसका अरोमा परफेक्ट हो, टेस्ट परफेक्ट हो खाने का, और ब्रेकफास्ट लंच वाह वाह भाई वा, डिनर,
1: बस 12 बजने वाले,
0: क्या चूज करोगे भाई,
1: अभी एक घंटा रह गया, उससे पहले कुछ खा पी भी नहीं सकते, तो
0: भाई ट्रैवल चाहिए सर भाई।
1: सारी चीजें बताने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 666-22107 पे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77। तो हमारे साथ कोई कनेक्टेड है,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम साद है।
0: साद, साद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो ये बताएं साद भाई कहाँ से सुन रहे हैं हमें, इस वक्त कतर के कौन से कोने में हैं?
2: मुझे तो पहले एक क्वेश्चन पूछना आप लोगों से कि आप जो है जुबिन नौटियाल का गाना क्यों लगाते हैं?
0: सर भाई क्यों लगाते हैं, क्यों
2: हर गाने की रूह कब्ज की है उन्होंने, चाहे वो नुसरत फतेह अली खान के हो, अभी ये पहला नशा।
1: अच्छा मतलब कहने का मतलब
2: मैं समझा कि ओरिजिनल वाला लगाया।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: मैंने जुबिन नौटियाल की आवाज सुनी,
2: बहुत ही ऑफेंडेड है, ऑफेंडेड चल रहे हैं जुबिन नौटियाल से।
0: पहले तो सलाम की अर्ज किया मैंने साथ भाई आपको।
1: वालेकुम सलाम।
0: सरवर मिर्जा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: बताना पड़ रहा है।
0: नहीं, मेरी भी दुश्मनी है, दो चार ऐसे हैं, मतलब सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि उनको हम सुने नहीं,
2: किनारे लगा दें, हाँ, दीवार से लगा दें।
0: अब ये डिबेट शुरू हो जाएगी, ये डिबेट शुरू हो जाएगी। जुबिन के बहुत चाहने वाले हैं और पाकिस्तान में तो बहुत हैं।
1: बेशक सिंगर बेशक अच्छे हों, लेकिन वो गाने की रूह कब्ज़ कर
2: रहे हैं। साद भाई का मकसद
0: अच्छा
2: ये कहने का
0: कर रहे हैं
2: कि जब तक अपने गाने, अपने ओरिजिनल गाने अपने तक रखे ना, दूसरों को क्यों कब्जा ग्रुप बनाया हुआ कि दूसरों का गाना छप्पड़ कर करके गा रहे हैं।
0: चलिए, ये
1: सोलफुल कवाली होती है नुसरत फतेह अली खान की, वो बेचारे को एकदम
2: मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अगर इस वक्त हमने कवालियां लगा दी ना तो हमारी हमारा आखिरी शो होगा फिर। ये
1: पहला नशा जो उन्होंने परफॉर्म किया है,
0: आपका पैगाम जो है साथ भाई बॉलीवुड तक पहुंचाऊंगा और उनसे कहूंगा जरा परहेज करें भाई, क्योंकि साथ भाई को बिल्कुल बहुत ज्यादा दुश्मनी लग रही है। खैर, अपनी अपनी चॉइस है और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं, और थोड़ा सा ये है कि जब जुबिन आ जाया करें तो बर्दाश्त कर लिया करें जैसे कि मैं भी करता हूं जो मुझे पसंद नहीं है सिंगर। बाहर हाल सात भाई, कैसी हुई?
2: बहुत बुराइयां करनी जुबिन नौटियाल।
1: सवाल का जवाब ये है कि ट्रैवल करना।
2: अरे भाई, ये अपनी पार्टी का बंदा मिल गया मेरे को।
0: ट्रैवल करना
2: और वो भी अच्छे 5-7 star होटल में।
1: जो आप कहते हैं ना स्टैग्नेंट वाटर जो है वो पीने के लायक नहीं होता है, लेकिन जो फ्लोइंग वाटर होता है वो आप बेटर ट्रैवल करते।
2: मेरी सोच इनके साथ मिलती है भाई कि मैं कहती हूँ ट्रैवल करना चाहिए इंसान को, खाना पीना तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन लग्जरी ट्रैवल जो है ना उसका मजा कुछ और होता है भाई, दुनिया देखने को मिलती है।
0: क्या शेर सुनाया है आप दोनों ने भाई, वाह मजा आ गया, क्या कहने भाई। तो साथ भाई कोई इसके पीछे खास वजह या यही जो आपने इस वक्त मिसाल दी हमें?
1: लग्जरी अगर आप स्टे करते रहेंगे तो आप कुएं के मेंढक की तरह हो जाएंगे, तो उसका सेफ प्लेस वही है।
0: ओके, अगर यही ऑप्शन दो दिए जाए उनको जिंदगी में तो ये प्रेफर करेंगे। क्या बात है भाई साथ भाई, और भी कुछ कहना चाहते हैं जुबिन के अलावा?
1: नहीं, बहुत मैंने बोल दिया।
2: मैंने बोल दिया। अच्छा ये बताएं, पिज्जा और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आपको?
1: बिल्कुल भी नहीं,
2: मर्द दिल तोड़ देता।
0: हाँ, नहीं मुझे तो नहीं लगता, शायद कुछ हो भी।
1: अब ये है कि जो ओरिजिनल इटालियन पिज्जा है आप वो समझे उदित नारायण है और पाइनएप्पल जो है वो
2: बस हो गई, खत्म हो गई।
0: साथ भाई
2: आई विल कॉल इट अ डे। शुक्र है जुबिन नौटियाल स्टूडियो में नहीं है हमारे साथ
0: और सुन नहीं पा रहे हैं हमें, ये बहुत अच्छी बात है। वल्ला तो आज वो छोड़ देते हैं अपना जितना भी काम धंधा, वो घर रहेंगे नहीं भैया,
2: दुकान बंद करो घर चलो।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
2: सर भाई मुझे याद आया, एक टाइम ना अपना वो हिमेश रेशमिया का भी ऐसा ही था कि लोग कहते थे हिमेश रेशमिया जो है ना वो नाक से।
0: यार आप हिमेश की बात कर रहे हैं, अब शायद मैं आपको बताऊं, इवन और जीत अरिजीत जब शुरू में आए तो लोगों को नहीं समझ में आए थे, और जो उनके शुरू शुरू के एक दो गाने थे उन लोगों को समझ में नहीं आए थे।
2: अच्छा, अरिजीत सिंह का मैंने एक दफा इंटरव्यू सुना था, अरिजीत भी यही कहते मैंने अपनी आवाज ट्यून की है।
0: हाँ, उन्होंने
2: मेरी आवाज पहले मुझे भी नहीं समझ में आती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था,
0: बिल्कुल सही,
2: एंड देन आई वर्कड ऑन इट एंड आई चेंज्ड इट।
0: एग्जैक्टली, जैसे कि ये वाली आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं सफा मैडम?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरे भाई, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं सरव भाई का पड़ोसी हूँ।
2: सरव भाई की पड़ोसी, मतलब भाई नाम तो होगा ना, कोई पहचान होगी, कोई नाम हो, मैं बोलूँ सरव भाई के पड़ोसी?
0: जी ये बोलते हैं, लेकिन मेरा नाम मुदस्सर है। मुदस्सर
2: भाई, मैंने कहा मुदस्सर भाई पहले आज सफा से बात कर लेने दूँ
3: आपको,
2: सर भाई आप भी भूल गए इनका नाम,
0: क्या कह रहे हैं कि आपने
2: आप मेरा नाम भूल गए थे कह रहे
0: हैं, यही कह रहे हैं
3: शायद, नहीं कह रहा हूँ।
2: ये जो

0: आप कह रहे हैं यही है
1: क्या बात है यार मुदस्सिर भाई, और कैसे हैं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बिल्कुल भाई
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: तो मुदस्सिर भाई एक बात बताएं, जहाज चला रहे हैं क्या?
3: नहीं।
0: आपकी आवाज़ बिल्कुल पायलट की तरह आ रही है, जैसे पैसेंजर्स को पायलट की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसे हमें आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं नहीं, वो जहाज में ना वो ऐसा कंप्रेशन कुछ होता है, कुछ हवा का मामला होता है, जब पायलट बात करता है ना।
1: जहाज की बहुत बुराई कर रही हो, अल्लाह ना करे अगर जहाज किसी दिन बुरा मान गया ना तो मसला हो जाएगा जिंदगी
0: में। हवा में जहाज बंद,
1: कल भी जहाज के पीछे लगी हुई थी, आज भी। एनी हाउ, तो मुदस्सिर भाई खैरियत के बाद ये बताइए कि क्या पसंद करेंगे जिंदगी में अपनी, लग्जरियस रहना या लग्जरियस खाना?
3: नहीं सर भाई, सवाल ऐसा है, लग्जरी रहना या लग्जरी सफर करना?
0: लग्जरी खाना,
1: खाना सफर की हम बात ही नहीं कर रहे।
0: लग्जरी खाना
1: रहना मतलब आपको वो अच्छा सा गद्दा हो, लाइटें टिमटिमा रही हो,
0: चार छह नौकर चौकर आसपास हो, लग्जरी मतलब लग्जरी बिल्कुल आपको, लेकिन खाना आपको न्यूट्रल सा मिले जैसे होता है।
1: बना ही नहीं पा रहे, छह आदमी मिलके भी नहीं बना पा रहे, जो छह आदमी अभी सफा ने आपको भेजे हैं वो मिलके भी नहीं बना पा रहे वो।
3: ठीक। अच्छा मैं सवाल समझ गया, सवाल के मुताबिक मैं जवाब दूंगा, लेकिन खाना मुझे पसंद नहीं, खाने का इतना मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो सवाल है, मेरे ख्याल में खाना मुझे अगर अच्छा मिल जाए तो ठीक है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाकी जो रिहाइश है, और चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो 7 स्टार का हो, चाहे वो 5 स्टार का हो, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। हम रात जमीन पर भी गुजार सकते हैं, चारपाई पर भी गुजार सकते हैं,
4: घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं
1: हो गया है तो
3: दुनिया की।
0: ये मुदस्सिर भाई मतलब ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही ऑफ रोड चल रहे हैं, कह रहे हैं खाने का कोई मसला नहीं है, रहने का भी कोई मसला नहीं है।
1: यार एक्चुअली ये जो
0: खाना बदोष लोग,
1: ये मुंतजा और नोएडा की तरफ वाले जो लोग हैं ना, बड़े सीधे सिंपल लोग हैं, है मुदस्सिर भाई सही कहा मैंने, मंसूरा वाले है
3: चपली कबाब होगा बिल्कुल सफा मैडम, मैं उनको ये कबाब खिलाऊंगा सरोर भाई, इंशाल्लाह आप इनकी लाजिब तारीफ करेंगे, जो मैं आपको जो कबाब की मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो मैं
1: लाइफ में कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, खाना खाना खाना तो है ही, अब मैं देख रहा हूँ कि उस खाने का क्या। अब जैसे मुझे अभी बात करते में याद आया कि अगर चपली कबाब का केक बनाया जाए
0: सरोर भाई, मैं इस स्टूडियो को छोड़कर जाने वाली हूँ।
3: आपका कहना यह है कि मतलब खाना मैं छोड़ देता हूँ, मतलब स्टॉप करता हूँ तो
1: नहीं, नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रहे हैं।
0: देखिए वो चीज कहें जो प्रैक्टिकल हो, सर्वर भाई जो चीज काम कर ही नहीं सकते
1: खाने में, अब कुछ नया मतलब जैसे चपली कबाब सुबह से हो रहा है तो चपली कबाब का केक
0: सोचे, लोगों ने वाटरमेलन का केक बनाना शुरू किया।
3: सरोर भाई आप ये काम करिए, वही मैं आपको कहानी की दावा देता हूँ, बिरयानी की जगह आप ग्रीन टी शुरू कर दे, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ का ही बस आपका
0: मेरे भाई मुदस्सिर भाई मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, सुबह कोई ग्रीन टी पी रहे थे और ऐसी तो कोई इन्होंने कड़वी शक्ल बनाई थी कि जैसे अल्लाह माफ करे इनको, पता नहीं क्या पी रहे हैं, पता नहीं कोई सिरप पी रहे हैं। मैंने कहा है क्या चीज, कहते आए हाय हाय पता नहीं कैसे पीते हैं लोग ग्रीन टी।
1: वो असल में छुट्टी से आने के बाद जरा होता है ना कि यार ज्यादा खाया है, वेट बढ़ गया, ये कर लिया वो कर लिया, तो एक दो दिन जरा सा वो
0: गलती से
1: हाँ वो रहता है कि यार चलो
0: जोश
1: हाँ कि अब ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो बहरहाल ठीक है,
0: ग्रीन टी आकर दम तोड़ जाती है, दम तोड़ जाती है इनके ऊपर आकर ग्रीन टी।
3: चलो अल्लाह बस आप दोनों को
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। लाइक वाइज कुछ और कह रहे हैं,
3: बहुत शुक्रिया। नहीं
1: नहीं
3: शुक्रिया बाकी लोगों को
1: मौका दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो सफा मैम क्या कहती हैं आप, कॉल ले लूं या मैसेजेस की तरफ बढ़ जाऊं?
0: हाँ मैसेजेस की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा मैसेज वाले माशाल्लाह से
1: अभी इस वक्त दोनों लाइन हमारी बिजी आ रही हैं,
0: चलें कॉल ले लेते हैं फिर, मैसेज वालों को थोड़ा सा सबर और तहमल देखें, सबर शुक्र से रहें, सबर का फल मीठा होता है।
1: अच्छा चलिए ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
5: मैं काशिफ फ्रॉम कश्मीर।
0: काशिफ फ्रॉम
1: कश्मीर, क्या बात है, कश्मीर क्या क्या शायरी हो रही है, क्या बात है। के कैसे हैं काशिफ भाई,
5: बताएं कैसे,
1: के कहेंगे हम आपको, कैसे हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
5: बस गुजर रहा है, आज कुछ गर्मी ज्यादा ही परेशान कर रखा है लेकिन गुजर रहा है।
0: ना करो काशिफ भाई, मुझे तो ये वेदर रिपोर्ट से पता चल रहा है कि टेम्परेचर नीचे आ रहा है थोड़ा,
1: टेम्परेचर कहीं भी जा रहा है
5: नीचे आ रहा है। पिछले दो तीन दिन से तो नॉर्मल था लेकिन आज जो हवा ऐसी गंदी सी है ना।
0: अच्छा मैं एक बात बताऊँ काशिफ भाई, मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, मुझे एकदम से याद आया कल भी ना, मैं शाम को थोड़ा बंदा हो जाता है ना, बोर हो जाता है घर के अंदर बैठ बैठ के, मैंने कहा चलो एक एक राउंड मार कर आते हैं। मैं सिर्फ यूं एक राउंड कॉर्निश का मारने गई भाई, हालत बेंड हो गई भाई, हालत बुरी हो गई। मुझे लग रहा है मुझे शायद अभी भी उसी का माइग्रेन हो रहा है कि जो मैंने 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, मैंने कहा मुझे ना एसी पसंद नहीं है, मैंने कहा बैठते हैं गाड़ी के अंदर ही बैठते हैं, अपना थोड़ा सा सुकून लेते हैं। मैंने खिड़कियां खोल दी गाड़ी की और वो आधा घंटा बैठी हूं मैं सिर्फ, और उस आधे घंटे में जो बैंड बाजा बजा है ना मेरा, वो अभी तक भुगत रही हूँ मैं।
5: अभी का मौसम ऐसा है ना कि अगर बाहर निकलना है तो आपको पहले नींबू पानी की एक बड़ी बोतल पी लेनी चाहिए ताकि जो बाहर निकले ना।
0: नहीं भाई तो मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मुझे एकदम से अंदाजा हुआ, मैंने कहा अच्छा मुझे शायद जो है ना डिहाइड्रेशन हो रही है। मैं गई, मैंने पेट्रोल पंप से उठाया, जूस शूस वगैरह उठाया, मैंने कहा अच्छा कुछ ताजा वाजा पीते हैं, कुछ पानी शानी पीते हैं, लेकिन वो सही ना हुआ। वो जो एक हिट हो गया ना वो हो गया,
1: जूस तक सही था मगर जो शूज उठा लिया ना आपने, वहां पे एक मसला जो है। चलिए साहब, तो के ये बताइए कि लग्जरी लिविंग और लग्जरियस फूड क्या इसके में
0: क्या चूज करेंगे आप,
1: तय करेंगे, चूज करेंगे?
5: मेरा तो यही रहेगा कि मैं तो भाई खाने पीने का शौकीन बंदा हूँ।
1: वाह,
5: आज तक जितना कमाया
1: हमें कैसे पता चलेगा?
5: आया ही है।
0: आपने दावत दी नहीं सरवर भाई को? सरवर भाई को कैसे पता चलेगा?
5: सरवर भाई को पता चलेगा कि सरवर भाई अगर मिल जाए ना कहीं
0: तो फिर पता चलेगा,
5: खिलाते हैं कभी मंदी वंदी।
1: क्या बात है यार, ये हुई बात, देखिए बेहतरीन, मजा आ गया।
0: सरवर भाई मुझे भी साथ ले चलना प्लीज, एक फोन कर देना, आ जाऊंगी।
5: पता तो चलेगा ना, फिर खाने पीने का शौकीन किसे कहते हैं।
1: क्या बात है यार, वाह वाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे
0: अपने अपने खर्चे पे
1: तरीके से, आपका अल्लाह ताला दस्तरखान भी और वसी करे, और दुआओं में याद रखिये। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ फ्रॉम कश्मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू सो मच,
1: मोस्ट वेलकम। और

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम बैक गोविंद फुल्लो। इस वक्त बज रहे हैं 12:03 और आ जाओ जरा खुशबू लगा के। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर्व भाई के बारे में। सर्वर भाई के बारे में इसलिए मैंने बोला क्योंकि भाई खाने के बारे में बात कर रहे हैं कि खाना लग्जरी अच्छा है लाइफ में। दो ऑप्शन है ना आपके पास,
3: दो
2: ये बताओ कि पूरी जिंदगी लग्जरी खाना एंजॉय करना चाहोगे या पूरी जिंदगी लग्जरी रहना।
3: अब मैसेजेस से शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि कॉल भी लेनी है फिर आगे। एहतराम है यहाँ पे और कहते हैं मौसम अच्छा है, आगे लिखते हैं रूम का।
2: मैं तो इतने मजे से बोल रहा हूं, मौसम अच्छा है,
3: मजा आ गया यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग सफा जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। दिल से देसी यूसुफ भाई और मंडे मॉर्निंग सभी को,
2: मंडे मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं।
3: कहते हैं आ गया मैं सफा नूर, कैसा है आप? सरवर भाई आप कैसे हो? कौन है रोहेल?
2: मुझे नाम याद हो गया इनका।
3: रोहेल साहब बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह से। मुबीन भाई, मुबीन भाई किधर है यार? और सफा जी कैसी हो?
2: मुबीन भाई के मैसेज आप पढ़ लेते हैं?
3: ये जगह तो मैं
2: डीकोड नहीं कर पाती।
3: मैंने इसके अंदर पीएचडी करी, फिर मैंने कोर्स लिया बकायदा कि मुबीन भाई के जो मैसेजेस है वो मैं पढ़ सकूं। तो कहते हैं आप मस्त और जबरदस्त बातें आपकी उनको लग रही है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून एमबीबी की तरफ से।
2: सब इज्तिमाई सलाम करो मुबीन भाई को। मुबीन भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कौन है हमारे साथ मैसेज में? सरो भाई
3: कहते हैं कि कभी अकेले बैठकर जरूर सोचना एक लापरवाह शख्स क्यों तेरी इतनी परवाह करता है। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन जरा करम कर मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर तेरी ये अनायतें मुख्तसर मेरा दर्द दिल और बढ़ा ना दें। क्या आपके लिए खादिम भाई?
2: कहते अब रोना था कि हंसना था या वाह वाह करनी थी?
3: हम सरूर भाई हमजा से बात हो चुकी। कहते हैं ये तो वही बात हो गई कि इंसान के पास सब अशिया हो मेरे ख्याल में कहते हैं और समझ गए ना। मैं अभी पढ़ लूँ जरा हम तक क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई एंड सफा सिस्टर, आपका क्वेश्चन बहुत सख्त है। ओके, क्योंकि हमें अच्छा खाना और लग्जरियस रिहाइश दोनों पसंद है।
2: अच्छा मजे की बात ये वाकई में है।
3: कौन है किसने इतनी हिम्मत करी? इमरान खान, इमरान भाई ने इतनी हिम्मत करी। यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक अब कॉलर को ले लेते हैं, बहुत सारी लाइन बिजी हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
3: रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
4: अज्जू।
2: अज्जू भाई हाउ आर यू?
3: अज्जू भाई कैसा है? अज्जू भाई
4: ठीक है? सरोज भाई कैसे है?
3: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अज्जू भाई आज का टॉपिक सुना आपने अभी तक?
4: या सुना सुना।
3: ओके
2: सो व्हाट वुड यू प्रेफर अज्जू भाई?
4: आई प्रेफर द गुड फूड यू नो।
2: गुड फूड?
3: अरे मेरा भाई कैसा अज्जू भाई जैसा गुड फूड। चलो अच्छी बात।
4: आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी फूड इन द वर्ल्ड।
3: हां देन तो फिर तो ट्रैवल भी करना पड़ेगा।
4: और या आई कैन ट्रैवल नो प्रॉब्लम।
3: माशाल्लाह
2: सब सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन खाना प्रायोरिटी, खाना प्रायोरिटी।
4: प्रायोरिटी इज फूड।
2: खाने के लिए मैं ट्रैवल भी करेगा। सही
4: जो दैट इज रोड साइड फूड इवन द फाइव स्टार होटल फूड।
3: ढाबा ढाबा
4: एक्सप्लोर द फूड।
3: ढाबा ढाबा ढाबा। ओके वो फूड एक्सप्लोर करेगा तो मजा आएगा अज्जू भाई, बिलीव मी।
4: एग्जैक्टली
3: एग्जैक्टली।
4: मेरे लिए आई प्रेफर गुड फूड।
3: चलो भाई अज्जू भाई प्रेफर गुड फूड।
4: लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा फाइव स्टार फूड मेरा माम का।
3: हाय हाय हाय हाय हाय हाय मार दिया अज्जू भाई, क्या बात कह दी वाकई साहब। वो तो फाइव स्टार भी कुछ नहीं।
4: यू नो माय लंच एवरी डे फॉर स्पेंड माय कंपनी ऑलमोस्ट 45 इयर्स। तो उसमें से मेरे को टेस्ट नहीं है लेकिन मेरा माम का खाना मेरे को बहुत पसंद है।
3: आई अंडरस्टैंड, हम सबको ही पसंद है और अल्लाह ताला सबकी अम्माओं को, वालदा को
2: खुश रखे, सेहत दे, हमारे लिए खाने बनाते हुए रखे।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
4: स्मॉल स्मॉल इंग्रेडिएंट्स बट द टेस्ट इज
2: या एग्जैक्टली
3: बिकॉज़ मेड बाय मम्मा ना जो है, मेड बाय मम्मा। चलिए साहब, थैंक यू सो मच अज्जू भाई फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू सो मच।
3: वेलकम।
2: अज्जू भाई ना इमोशनल कर दिया,
3: भावुक कर गए, भावुक कर गए अज्जू भाई, भावुक कर गए। देखते हैं कि दूसरे साहब कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय,
2: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? हिना खान बोल रही हूँ। हिना खान बोल रही है। पहली दफा बात हो रही है या हिना दूसरी दफा बात हो रही है? कितना बात हो चुकी है हमारी पहले?
5: पहली बार हो रही है लेकिन नाजिया के शो में मेरी काफी बात होती है क्योंकि वो टाइमिंग मैच करते हैं।
2: सही सही सही सही।
3: तो कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छी होंगी हिना जी।
5: जी मैं बिल्कुल अच्छी।

0: सकते हैं तो लग्जरी खा भी सकते हैं।
1: नहीं, नहीं अगर नहीं मिले
0: आपका वेट ज्यादा ना हो।
2: अच्छा मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं इनको एक बहुत प्रॉपर मिसाल देती हूँ। मैं गई थी छुट्टियों में यूएस, ठीक है। अब यूएस में मैं कुछ ऐसे एरियाज में घूमी, कुछ ऐसे स्टेट्स में घूमी जहाँ पर हलाल फूड वॉज एन इशू फॉर मी, ठीक है। मैं रह रही थी 7-star होटल में, इट वॉज वेरी वेरी कन्वीनियंट, इट वॉज ऑसम, लेकिन मैं खाने को तरस गई भाई। तो देर आर टाइम्स वेन यू आर स्पेशली वेन यू आर ट्रैवलिंग और वेन यू आर एट अ प्लेस विच यू डू नॉट नो देर वुड बी हलाल फूड ओवर देर, लेकिन मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं मिल रहा था, चाहे वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू क्यों ना हो।
0: हाँ, वो सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा
1: हम आपको ऐसी ही सिचुएशन में लेके जा रहे हैं,
2: आपको ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। हमारी मर्जी, हम ऐसी सिचुएशन में रखेंगे आपको, लटकता वायु खजूर के दरख्त के साथ।
1: नहीं, वैसे बड़ा अच्छा लगा है ना आज आप इतने दिनों बाद तशरीफ लाई, और जैसा कि आपने बताया कि टाइम मैच नहीं होते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे टाइम में फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मशगूलियत में,
2: हिना क्या करेंगी, हिना से मुझे पूछना है, हिना क्या करेंगी अगर ऐसी सिचुएशन में आप कोई फंसती हैं तो आप क्या करेंगी, आपको आप क्या प्रेफर करेंगी कि नहीं मुझे तो ऐसी जगह पर ही है कि मैं या तो फिर मुझे अच्छा दिखने वाली चीज चाहिए या अच्छा खाना चाहिए, क्या चूज करेंगी?
0: लग्जरी होटल में रहूंगी, वहीं से खाऊंगी।
1: कैसे ही
2: मिले,
1: कैसे ही
0: मिले, 7-star अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं 7-star में खा भी सकती हूँ।
2: अरे भाई, अफोर्ड की बात ही नहीं थी ना, अफोर्ड थी अवेलेबिलिटी की।
1: अरे वो मैं करवाऊंगी अवेलेबल कैसे भी करके, क्यों रखा मुझे 5-star से,
2: रहेंगी एक जगह पर, मंगवाएंगी दूसरे जगह से दूसरा खाना।
0: एक्चुअली क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो हम लोग को पता नहीं होती कौन सी चीज कहाँ कैसी है और हलाल है या हराम है, तो वहाँ ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ ये होता है जो भी मिल रहा है आपको वही खाना है।
1: ये बात
2: तो
1: ये
2: कुछ
1: बात।
2: लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना, कुछ लोग अपनी अपनी पूरी आइटनरी बदल देते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर हमें इस चीज का मसला होगा तो हम ये नहीं करेंगे।
0: लेकिन हम जब घूमने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम जब थके आए तो एक अच्छा सा एनवायरमेंट हो, हमें आराम से नींद आए, लग्जरी जो है वो होना चाहिए। लेकिन जब आप घूमने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये होती है कि हम उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, तो खाना इज नॉट अ मैटर ओवर देयर। आपको जो मिल रहा है अच्छा मिलना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन हम उसे फिर प्रेफर कर लेते हैं।
1: सही सही सही, क्या बात है भाई।
0: क्योंकि हम लोग टर्की जब गए थे तो हमें ऐसे ही था, हम खाना ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे। अगर रास्ते में हमें कोई भी चीज ऐसी मिल जाती
1: थी, वैसे क्योंकि जगह भी ऐसी थी कि कोई परेशानी नहीं होनी थी। बट एनी हाउ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ जुड़ी और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच,
0: ओके।
1: तो भाई हिना जी का ये था कहना, और देखते हैं अब कौन है हमारे साथ अगले खिलाड़ी, किधर गए। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
2: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बात कर रहा है? करीम भाई है।
1: करीम भाई है
2: कौन बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे
1: हैं? करीम भाई है। एक बार इनसे मैंने सुनील शेट्टी का डायलॉग बोल दिया, वो क्यों? क्योंकि ये सुनील शेट्टी से मिलते बहुत है, मैं सभी को बता दूं जो भी हमें सुन रहे हैं।
2: मैं कहीं डेजा वू में तो नहीं हूँ? करीम भाई इनसे पहले बात हुई थी हमारी।
1: हाँ आज सफा इतनी ज्यादा साईफाई मूवीज देखने लगी है कि अपनी जिंदगी में हम इसको यही सारी चीजें पता चल रही है।
2: मैं वाकई में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन
1: अच्छा अच्छा मजा आया मुझे, मैंने प्लान किया था करीम भाई के साथ आज।
2: करीम भाई वैसे मुझे बातें याद नहीं रहती, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि या तो फिर करीम भाई की बहुत ही शिद्दत से याद आ रही थी कि मुझे वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, रेजा वो हो गया, क्या क्या हो रहा है।
1: नहीं दोबारा
3: वही बात है, वो मूवी में जो कहता है कि प्रभु सपना है।
2: मैं बिल्कुल वही, मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये तो मुझे ऐसा लग रहा है करीम भाई से बात, मैं चुप, मैंने कहा बोलूं कि ना बोलूं,
1: तो क्या कहते हैं करीम भाई से? जवाब हमें मिल ही गया था, मेरे ख्याल में खाने के हवाले से कहना चाहते हैं। करीम भाई
3: देखिए, मैं जो आपने सवाल किया ये तो मैं दिल का, बल्कि एक ऐसे सवाल आपने किया कि इसका हेल्थ के साथ, लोगों के एक अच्छी लाइफ के साथ इसका बहुत ज्यादा, यानी कि मैं बोलूं 90.9% इस चीज का जरूरत हर बंदे को है।
2: वो चीज क्या है? खाना के रहना।
3: वो चीज है देसी खाना, खुद पकाओ और खाओ।
1: वाह क्या शेर सुनाया भाई आपने, कब आ जाऊं और कहां आ जाऊं?

0: पकाते पकाते तो उम्र गुजर गई, जिंदगी पक गई करीम भाई।
1: इतना पकाया,
0: इतना पकाया कि जिंदगी पक गई है, पॉपकॉर्न हो गए हम पका पका के।
2: चीज है ना
1: बहुत पकाया।
2: हाँ, वो क्यों सही होता है? वो इसलिए सही होता है कि जो चीजें आप कर रहे हैं आप ही, वही जो चीजें आप काट रहे हैं, जो आप डालना चाहते हैं उसमें, सब्जी मसाले में जो जो भी चीज, तो वो अपनी अपनी माइंड के हिसाब से जो वहाँ से जो मैसेज आपको आ रहा है कि जी मैंने ये खाना है, ये टेस्टी कर रहा है, तो वो चीजें जो आपको जरूरत पड़ती है, यकीनन वो कभी कभी बंदे को उस चीज की चाहत भी होती है कि यार आज ये खा लेता, वो यूं बना होता, यूं बना होता, तो जब अपने हाथ से बनता है ना, अपने हाथ से जो चीज, और वो भी खास करके ज्यादातर वेजिटेबल, यकीन जाने क्योंकि
1: बहुत हल्का चेहरा था भाई, मजा नहीं आया। बहुत हल्का चेहरा था,
2: नहीं गोश्त
1: हल्का मिश्रा था, मजा नहीं आया।
2: वो मजे वाली चीज का नाम मैं लेने वाला था थोड़ी देर के बाद, कि कभी कभी गोश्त भी होना चाहिए, कबाब।
1: हाँ, ये हो रही है शायरी, देखिए क्या मतलब उठाया भाई, वाह वाह वाह।
2: वो अपना एक दोस्त था ना, वो कभी जब कोई बात करता था ना, पहले उस बात को इस तरह करता ना कि वो तकलीफ वाली चीज सुनाती थी ना, कि बंदा बोले यार जल्दी बोले, जल्दी बोले, आखिर में बोलता था यार वो काम मैंने कर दिया। मैंने कहा भाई खुदा को मान, जब भी बात शुरू करो बोलो भाई वो काम कर दिया, फिर डिटेल बताओ।
1: अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
2: खास करके ये वेजिटेबल जो है इसमें यूरिनियम भी है, फौलाद भी है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन कबाब भी खानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को इस चीज का भी पता होना चाहिए भाई लोग, कि कबाब जो आग के ऊपर पकता है ना वो बड़ा नुकसानी होता है।
0: सुन लिया आपने,
2: जिस हिसाब से वो पकता है
0: ना, खा रहे
2: आप इसके बारे में,
1: तो क्या करूं बिना पका खाऊं?
0: ये खाना तो है,
2: उबाल के जो गोश्त
1: उबाल के खाऊं कबाब को, वो कबाब कबाब खा रहे गया फिर बेचारा।
2: असल गोश्त का ताकत उस पानी में है सर, जो गोश्त आप उबालते
1: हैं, यखनी कह रहे हैं, यखनी खाने के लिए। कबाब को कैसे उबालूं?
2: कबाब तो जिस प्रेशर से पकता है ना सर, जो आग का जो प्रेशर है ना,
1: इस कदर भूख लगने लगी कबाब और यखनी के चक्कर में
0: करीम भाई मुझे
1: परेशान कर दिया।
0: खुदा का खौफ करे, मुझे बारबेक्यू याद आ रहा है, मेरे जान जो है ना यूं चिलचिला रहे हैं इस खुशी में कि मुझे बारबेक्यू याद आ रहा है।
1: वाह क्या बात है यार करीम भाई,
2: आपने सवाल ही जो ऐसा लाया है कि अगर सवाल में तो हकीकत बोलनी चाहिए ना कि इसमें किस चीज में ज्यादा फायदा है।
1: क्या कहने भाई, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजे की बातें हैं। 12 बजे
0: के बाद ना ऐसी बातें ना किया करें, मेरा दिमाग
1: बंद कराता है। थैंक यू सो मच करीम भाई हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह
2: अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।
0: सरवर भाई मुझे एक बात याद आई, हमारे वो बॉक्सर है ना मोहम्मद अली लेजेंडरी बॉक्सर, उनकी एक मैंने मूवी देखी थी, उसके अंदर मतलब उन्होंने बायोग्राफी बनी थी ना उनकी, तो उसके अंदर मुझे
1: खाने पीने से आपको घुसे क्यों याद आ गए?
0: मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था यू बिकम व्हाट यू ईट।
1: वाह,
0: तो जो आप जैसा आप खाते हो ना
1: आप वैसे हो,
0: तो आप वैसे हो जाते हो।
1: मतलब जैसे नाजिया ब्रोकोली ज्यादा खाती है इसलिए उनकी शक्ल वैसी होती जा रही है, आप ये कहना चाहती हैं?
0: नाजिया मैंने कुछ नहीं कहा,
1: गोभी ब्रोकोली
0: मैंने कुछ नहीं कहा नाजिया, ये जो शख्स सामने बैठा हुआ है ना।
1: माई गॉड, तो कॉल्स आपकी आ रही हैं भाई, फिलहाल एक ब्रेक तो बनता है और गाना भी बनता है और वो भी बड़ा अच्छा गाना।
0: ओए मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स।
1: आईवा कुछ लॉस्ट सिंगर्स रहे हैं बॉलीवुड के, उसमें से राशिद भी एक हैं।
3: कभी-कभी
1: एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त साउंड पे सर्वर और सफा आपके।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: भाई मत जाना है, पैसे वापस दो, पैसे वापस।
2: और कितना मतलब जबरदस्त है,
1: कितना नहीं भाई, नहीं, नहीं, नहीं, कुछ चीजें ना ओल्ड इज गोल्ड होती हैं, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ये वाला जो गाना था ना
2: तू, वो अभी यही तो हो रहा था। कौन साहब थे जो जुबिन
1: नौटिया?
2: नहीं वो
1: जुबिन
2: नौटिया।
1: इधर आकर ना ये गाना सुनने के बाद अब मैं आपकी पार्टी में आकर शामिल हो गई हूँ कि हर गाने की टांग मरोड़ी नहीं जा सकती, मेहरबानी करके कुछ को ओरिजिनल ही रहने।
2: वो सिर्फ मुर्गे की मरोड़ी जा सकती है और जो दोपहर में काले में अच्छी भी लगती है, तंदूरी हो तो फिर कुछ और ही बात हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं मोहम्मद आलम हूँ।
1: मोहम्मद आलम भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
3: जी बढ़िया।
1: ये बताएं आलम कैसा चल रहा है?
2: हाँ, एक तो इतना प्यारा नाम और इतनी हल्की आवाज इस वक्त आलम भाई की, कैसे?
3: जी
1: आलम भाई की कल भी हल्की आवाज थी।
3: जी
1: आलम भाई बात ही ऐसे करते हैं कि खाना वाना नहीं खाया?
3: जी नहीं, वो ऐसी ऐसा
1: ऐसी ऐसी बात करते
2: हैं। कहाँ से ताल्लुक है? अच्छा बिहार से है ना आलम भाई ने कल बताया था मुझे। यार बिहारी आदमी इतना हल्का बोल रहा है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा यार। है आलम भाई?
3: जी
1: आलम भाई मैंने तो जहाँ तक मूवीज में भी देखा, वैसे मैं इंडिया से हूँ नहीं, लेकिन मैंने मूवीज में देखा है
2: हमारे
1: बड़े भारी भरकम होते हैं बिहार वाले।
2: बिहार के बबुआ इतना हल्के कैसे बोल रहे हैं? चलिए खैर, हो सकता है कि कुछ मसला हो और छुप के बात कर रहे हो शायद कोई किसी से इस वक्त, तो वो बता नहीं पा रहे या फिर कोई जबरदस्ती बात करवा रहा हो एकदम। आप समझ रहे जबरदस्ती बात करो मेरी तरफ से, ऐसे ही है क्या आलम भाई?
3: नहीं ऐसा कुछ भी नहीं।
1: मैंने कहा भी कहेंगे जी जी।
2: शर्माते हैं, शर्मीले हैं असल में, बहुत ही प्यारे हैं जैसे भी हैं यार आलम भाई। तो आलम भाई क्या कहते हैं, बेहतरीन
1: बेहतरीन खाना या बेहतरीन रहना क्या होना चाहिए जिंदगी में?
3: जी रहना
1: रहना
2: रहना मुझे बताइए, पहना बेहतरीन पहना तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं अपनी तरफ से है आलम भाई।
1: बेहतरीन रहना, आलम भाई मेरे साथ हैं। आलम भाई कह रहे हैं बेहतरीन रहना चाहिए, खाना पीना तो चलता रहेगा।
2: मुझे पीछे से आवाज आ रही, मुझे पीछे से आवाज आ रही, आवाज आ रही पीछे से, चंद से ये डर के बात कर रहे हैं
1: चुप कर डर के
3: नहीं डर के बात नहीं कर रहे सर, ये
2: भाभी है क्या? अरे भैया
1: बेगम के सामने वैसी आवाज कम हो जाती है। अच्छा भाई ये बताएं आलम भाई कि पिज्जा कभी आपने पाइनएप्पल के साथ खाया है, अनानास के साथ पिज्जा खाया कभी?
3: नहीं।
1: कभी खाकर देखिएगा फिर रिव्यू दीजिएगा हमें कि कैसा लगता है।
2: क्यों बेचारों को परेशान कर रही हो?
1: नहीं आलम भाई एक बात बताएं। अच्छा एक बात बताएं आलम भाई, लोग आम वाला पिज्जा खा लेते हैं, मैंगो मैंगो वाला पिज्जा खाया है आपने कभी?
3: नहीं,
1: मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हुई, मेरे अंदर भी कभी हिम्मत नहीं, लेकिन जब मैंगो फेस्टिवल लगता
2: अच्छा
1: है ना तो उसके अंदर ना लोग आम का पिज्जा खा रहे होते हैं। तो मतलब जब आम का पिज्जा खा सकते हो भाई तुम लोग, तो क्या ही बुराई है कभी खा कर देखो पाइनएप्पल वाला पिज्जा।
3: कोशिश करेंगे
2: कोशिश करेंगे हलक से उतारने की उसको। आप अपनी बातें हमें जबरदस्ती खिलवा रही हैं, तो हम ये कोशिश।
1: आलम भाई ना मुझे वैसे वाले मासूम से बंदे लग रहे हैं, खाना बदोश आदमी, जिसको आप कुछ भी जबरदस्ती खिला दो वो कहेगा मुरव्वत में आकर ना।
2: अच्छा देखो बात नहीं चाह रहे, फकत जबरदस्ती करवाई जा रही है। ठीक है आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम सुनते हैं आप हमें लग रहा है, और सुनते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है
1: थोड़ी सी मैं भी ले लेता हूँ।
2: वैसे सरवर भाई को कोई दावत मत देना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह,
1: 3 महीने का राशन खा जाएंगे बता रही,
2: वरना कर्ज लेना पड़ेगा। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा नसीम भाई, ये भी तो हमारे बिहार के हैं गालमन। आप दोनों को मेरा आदाब, आदाब
1: आदाब,
2: लखनऊ से आए हैं क्या? लग्जरी खाना चाहिए, रहे तो कैसे भी लेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम तूचा। इमरान इमरान खान क्या बात है भाई। यूसुफ भाई कहते हैं आई वुड चूज अच्छा खाना, क्यों? सरवर भाई जवाब देंगे।
1: अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।

0: अच्छा जवाब तो मैं आज सुबह से दे रहा हूँ आपके बदले में। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। ओके वालेकुम अस्सलाम। सफा भी थी यहाँ पर यार, वहाँ तक भी पहुँचा।
1: देखिए ये बहुत ये पर्सनल दुश्मनी।
0: आसिफ वापस आ गए क्या छुट्टी से? मेरे साथ ही साथ गए हुए थे। ये जो भाई थे कॉल पर, ये कह रहे हैं वेजिटेबल्स में एक्चुअली सिद्दीक मैंने भी वो नोटिस किया था। अब कौन किसने क्या कहा मैं सफा को तो बता दूंगा, और मैंने
1: भी रिपीट नहीं करूंगा अभी।
0: अभी नहीं कह सकता ना क्योंकि वो जरा पर्सनल मैसेज भेजा है सिद्दीक ने। अस्सलाम वालेकुम, खाना अच्छा होना चाहिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद मुशीर आलम साहब कहते हैं। अच्छा भैया कॉल ले लेते हैं वरना बहुत डांट पड़ेगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, आए के गए।
0: हाय
1: हाय हाय
0: हेलो
2: हाय हाय सलाम ले लो।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
2: मैं मुदस्सर बात कर रहा हूँ।
1: मुदस्सर भाई बात कर रहे
0: हैं? दिस इज दूसरा मुदस्सर भाई।
1: हाँ
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुदस्सर भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे भाई। और कैसे गुजरे आपके दिन मेरे बगैर ये बताइए।
1: बहुत गर्म गर्मी खा खा कर, सूरज की धूप खा खा कर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे। तो क्या कहते हैं मुदस्सर भाई, अच्छा रहना अच्छा खाना।
2: एक है, अच्छा।
0: एक है बताना है? क्या बोले?
2: अच्छा रहना है।
0: मुदस्सर भाई आपसे इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सही बताऊं
1: खाना हम खा लेते हैं कुछ भी खाना।
2: आप मुझे दावत पे बुलाएंगे तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है?
1: अच्छा ये अच्छा था, ये डिफरेंट था। अच्छा खाना तो हम कहीं पे भी कोई और बुला लेगा तो उसके पास भी जाके खा लेंगे, कोई मसला नहीं है।
2: मिलता है लेकिन अच्छा रहना घर जो मिलता है वो बाहर जगह पे नहीं मिलता है ना।
1: हाँ घर की अपनी सेटिंग होती है भाई, घर का अपना सुकून होता है।
0: हाँ नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, और सही सही फरमाया वाला भाई ने। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा वो जी ने भाई के वो पाइनएप्पल वाला पिज्जा।
1: हाँ
2: हम तो पिज्जा ऐसे नहीं खाते हैं, जब पाइनएप्पल के साथ होगा तो कैसा लगेगा?
0: और भी नहीं
1: ठप्पा लग गया तो ठप्पा लग गया खाने का ही नहीं।
0: अरे वैसे ही नहीं खाते हैं पाइनएप्पल के साथ, तो वैसे ही नहीं खाते हैं।
1: मुदस्सर भाई मैं बता रही हूँ, कभी अपने अपनी जेब से नहीं, लेकिन कभी जब चार दोस्त यार मिलकर बैठते हैं तो खर्चा थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, जेब थोड़ी सी।
0: मोहम्मद अहमद भाई से कहिएगा कि भैया जरा मंगाइयो पाइनएप्पल वाला पिज्जा।
1: तो वो जो पाइनएप्पल पिज्जा ना, कभी किसी से ऐसे शेयर करके एक पीस या जो खाएं भाई दोने वाले खाकर देखिएगा, वो इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बुराई की जाती है।
0: नहीं नहीं हम नहीं,
1: देखो भाई खुश रहो अपने अपने खर्चे पे। देखो आज इस ये महीना जो है ना मेरा पता नहीं इस महीने क्या हुआ, 12 तारीख से ही मेरा 25वीं तारीख आ गई है। मैं बता रही हूँ
0: ना, पाइनएप्पल दिख रहा है ना पिज्जा दिख रहा है।
1: पाइनएप्पल ना पिज्जा, कैन वाला पाइनएप्पल तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम।
0: चलिए
2: पहले से पूरा से पूछा है ना कि पाइनएप्पल पिज्जा पाइनएप्पल।
1: अच्छा चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी, ठीक है?
0: चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।
1: देखो जो जो मुझसे खर्चा करवाने की कोशिश में ना, मैं उसको बता दूं पहले ही, मेरी इस वक्त 28 तारीख के ऊपर ऐसी नजर है, 12 तारीख से मेरी 28 तारीख के ऊपर नजर है, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये इस महीने का मामला हुआ कि अच्छा किस किस की जेब के साथ ऐसा मामला हुआ, कैसा लग रहा है जेब कट गई है अपनी। आपके साथ ऐसा हुआ है सर भाई इस महीने?
0: क्या मतलब है 12 महीने की बात करिए आप, इस महीने से क्या मतलब है भाई। फिलहाल एंजॉय कीजिए इमरान खान की आवाज में एम्पलीफायर।
1: अरे भाई क्या याद दिला दिया,
0: ऐसा ही है ऐसा ही हो जाता है। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक 12:40 हमारी स्टूडियो की घड़ी में। सर्वर और सफा आपके साथ दिल से
1: देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: भाई इनका तो मुझे नहीं पता, मगर आज सफा आप लोगों के पीछे पीछे चल रही है, पाइन एपल पिज्जा खा लो खा लो खा लो खा लो करके
1: अपने खर्चे पर।
0: ये भी लगाना जरूरी है साथ में। देव ने की निकिता गांधी एंड एमबी।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: अंजी वेलकम बैक हैनन वसहलन, खुश आमदीद स्वागतम। बिल्कुल इस वक्त आज खूब सारी बातें हुई और खूब सारा पेट जो है भरा नहीं, बस बातें ही बातें
1: बातें बातें हुई
0: इस वक्त पे आके। पिज्जा क्या, पाइनएप्पल क्या, और तंदूरी क्या, और चपली क्या, और लग्जरी क्या, और लग्जरी रहना क्या, और लग्जरी खाना क्या? तो ये सारी बातें अभी तक की रही भाई। और चलते चलते अभी हमारे पास कौन है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे, ठीक ठाक?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं कमरान कमाल बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह लोगों का।
0: अच्छा आज डबल नाम के बहुत आ रहे हैं, मैं कामरान भाई को भी नहीं, वो आए थे काशिफ फ्रॉम कश्मीर, कामरान कमाल, तो के चल ही रहे हैं हमारे साथ आज। कैसे हैं कामरान भाई?
3: शुक्र है जी, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत बहुत एंजॉय कर रहा हूँ।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम कामरान भाई। तो क्या कहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, ज्यादा अच्छा रहना या ज्यादा अच्छा खाना?
3: बस सर जी खाना तो है इधर इस कंट्री में, थोड़ा लेवल के साथ खाने चाहिए, यानी डाइट प्लानिंग के साथ, क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है।
0: हल्के से हंस दिए ताकि मैं समझ जाऊं कि इशारा किस तरफ है। ठीक है कामरान भाई, समझ गया मैं आपकी बात, इस बात पे भी ख्याल करेंगी सफा और मैं ऐसी कैसी रहूंगा।
1: मैं सिर्फ टेढ़ी आंखों से वो बॉम्बास्टिक साइड आए करके ना सरो भाई को देखूंगी, सरो भाई समझे हो कि नहीं समझे हो?
0: चलिए साहब,
3: नहीं असल में ऐसा है कि इधर बस थोड़ा डेटिंग प्लानिंग के साथ खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेहत हाँ। बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा मतलब यही था कि यानी अलतूल गोश्त खाना और सब्जी खाना, यानी एक मेन्यू लेवल जैसा खाना चाहिए सेहत के लिए।
0: ओके समझी सफा, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
1: देखिए मुझे तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं ना, मैं खुद खाने की बड़ी शौकीन हूँ, मैं खुद खाने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप कहोगे ना सफा खाने का शौक है, मैं पागल हूँ खाने के पीछे, मेरी जेब में से आप पैसा सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए निकलवा सकते हो, और मुझे इतना शौक है खाने का, लेकिन मेरी क्वांटिटी ना खाने की कम है।
0: तो अभी देंगी आप
1: पंजाबी
0: वाला, मुझे आज दोपहर
1: पंजाबी वाला हिसाब है,
0: कब देंगी पैसे जो मुझे अभी खाना जाके आपके पैसे निकलवा सकते हो?
1: नहीं अपना ना वो पंजाबी वाला हिसाब
0: कामरान भाई
1: नहीं है, क्यों कहते हैं ना बट साहब रज गए हो के बस हो गई है, तो वाला नहीं है।
0: आपका कहाँ से ताल्लुक है कामरान भाई?
3: जी हम तो पिशावर से।
1: पिशावर से? अरे भाई पिशावर के लोग खाने के शौकीन होते हैं,
0: माशाल्लाह
1: माशाल्लाह, खाना सेट वाला खाना,
0: और क्या खाने भाई, क्या बात है। चलिए तो फिर भाई का कहना है कि खाने पे तो किताब सही रखे हैं, मगर लग्जरी लाइफ।
1: पिशावर वालों की एक बात, मुझे मेरे अपने कुछ दोस्त रहे पिशावर से, तो उनका खाना बड़ा सादा होता है लेकिन सेहतमंद होता है।
0: एग्जैक्टली, वाह क्या शेर सुनाया सफा आपने, कामरान भाई को अच्छा लगा सुन के,
3: बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्रोग्राम हम बहुत एंजॉय कर रहा है, हम तो ड्यूटी भी कर रहा है।
0: अच्छा।
3: और आप लोगों का प्रोग्राम हम नहीं सुनेगा दिन में, तो यानी वो दिन हम पे चनी गुजरता है।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, कह रो साथ है। अब इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला सुनते रहिए, और आगे फिर जब लंच वगैरह पे जाएं तो भी याद करिएगा, ठीक है?
3: इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई।
3: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर,
0: थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा सर भाई।

0: मैं जो ना काफी देर से एक बात शेयर करने की कोशिश कर रही, देखिए आप लोग से सवाल मैंने जो किया था ना कि आप क्या प्रेफर करेंगे, लग्जरी ये जो लिविंग होती है, लिविंग के अंदर सिर्फ वो कि आपका आर्किटेक्चर अच्छा हो, घर एक अच्छा सा हो आपका, या आप प्रेफर करेंगे कंफर्टेबल और अच्छा
1: food.
0: खाना, ठीक है. मामला पता है क्या है
1: जी?
0: बात ये है कि लग्जरी जो ट्रैवल होती है ना, या आप कह लें कि कुछ ऐसे कर लें कि बात सिर्फ लग्जरी ट्रैवल या परफेक्ट फूड और कॉफी की नहीं हो रही यहाँ पे, बल्कि इस बात की है कि हम हैप्पीनेस को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं. कुछ लोग ना, कुछ लोग हैप्पीनेस को आपके लिए मटेरियलिस्टिक रखते हैं, इन द सेंस कि एक्सपीरियंस, एडवेंचर, एंटिसिपेशन होती है, मेमोरीज, सालों की मेमोरीज जो होती है ना वो हम क्रिएट करते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अपने. और कुछ लोग बड़ी अलग तरीके से उनका दिमाग डिजाइंड होता है कि वो जो है ना दुनिया जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में कंफर्ट देखते हैं. आपने कभी सुना होगा कंफर्ट ईटिंग के बारे में? वो जो कंफर्ट है ना वो सिर्फ खाना लेकर दे सकता है. हम डिफरेंट लोगों का दिमाग डिफरेंटली प्रोसेस करता है. कुछ लोग एक्सपीरियंसेस के ऊपर जीते हैं जिंदगी अपनी, अपने आप को खुश रखने के लिए, जो हम लोग कहते हैं ना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट एक अलग होता है. और कुछ लोग, उनका दिल और दिमाग का कनेक्शन खाने से होता है.
1: वाह,
0: सर भाई मुंह में पानी आ रहा है.
1: वाह.
0: अच्छा, लेकिन सर भाई बताए, साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंसान अक्सर लग्जरी की आदत डाल तो लेता है, जिसे हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल वर्ड एक यूज होता है, एक फ्रेज, हेडनिक एडेप्शन होती है एक.
1: अच्छा.
0: यानी होता है कि हर चीज को ना आप नहीं यानी कि होता है कि आप हर चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
1: अच्छा.
0: कुछ लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चीजों को, जैसे खाना पीना हो गया, नॉर्मल ले लिया उसे भाई. कुछ लोगों के लिए वही खाना पीना अलग से एक लग्जरी प्रोवाइड करता है. अब वो आपका दिमाग और आपका दिल है कि वो किस चीज के ऊपर आ जाए, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या आपको लग्जरी पेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो असल बात ये होती है कि कुछ लोगों को एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं.
1: और
0: वो छोटी छोटी खुशियां जो है ना वो खाने पीने से ही.
1: और बड़ा वाला
0: एक्चुअली
1: अब बात हो जाएगी मेरे. भाई वाह, क्या कहने कहते हैं. मिस गुड आफ्टरनून, मेरी तो पॉकेट वैसे ही किसी ने काट दी हो जैसे ये हालात हैं इस मंथ के.
0: अरे मैं बता रही हूँ, इस महीने मेरे साथ पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, पॉकेट के अंदर छेद हो गया और पैसे कहीं निकल गए. भाई
1: इकराम हसन है जो आपका साथ निभा रहे हैं इस चीज के लिए. मतलब
0: वैसे
1: मैं तो
0: हर महीने ऐसे ही होता है,
1: मैं तो हर महीने निभाता हूँ.
0: नहीं, हर महीने सबके साथ ही होता है, लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जल्दी टाइम आ गया भाई अपने ऊपर.
1: अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू डूइंग ग्रेट जॉब. टुडे इज के डे एज यू सेड, ऑल के पीपल कॉलिंग. बिल्कुल, आप भी कैसे हैं के एम खान? वाह क्या बात है. पूरा नाम क्या होगा? पूरा का नाम वसीम अकरम है. नहीं अच्छा, ये तो कोई अमीन भाई को जवाब दे रहे थे, ये तो कल का कोई मैसेज पढ़ दिया. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप दोनों? सब ठीक है. दिलबर आली आ गए हैं. दिलबर दिलबर दिलबर वाले
0: इनके लिए गाना चला कर जाएंगे हम, दिलबर वाला.
1: यार बात तो अच्छी गई. तो भाई आज का हिसाब किताब तो इसी पे ही बैठा सफा के,
0: ये याद रखें कि ट्रैवल. अच्छा. जो है ना वो जिंदगी को अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दे सकता है.
1: अच्छा.
0: और एक परफेक्ट कॉफी एक ऑर्डिनरी दिन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है. तो इसके अंदर कोई भी आप कह लेंगे बुरी बात नहीं है कि किसी को ट्रैवलिंग अच्छी लगती हो या किसी को अच्छा रहना इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अच्छा लगता हो. जैसा कि मैंने कहा कि मैं गई थी ट्रैवल करने, मुझे वहां पे हलाल फूड का इशू हुआ, तो मुझे वो ट्रैवलिंग अच्छी लगी. मुझे खाने से कुछ नहीं था, मैं तो चीज सैंडविच भी खाकर गुजारा कर रही थी वहां पर 11 दिन.
1: सही.
0: मुझे उससे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर्ड मोर ओवर देयर एट दैट सिचुएशन.
1: तो सिचुएशन भी मैटर करती है.
0: हाँ, सिचुएशन मैटर करती
1: लाइफ में.
0: हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई आपका कहीं पे घर, अच्छा मेरे लिए यहाँ पर भी क्योंकि घर है ना, वी कॉल कतर आर होम, सेकेंड होम. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर भी रहकर घर ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे घर की खूबसूरती, डेकोरेशन, उसका जो थोड़ा बहुत, बेशक आपके पास मिनिमम फर्नीचर हो लेकिन अच्छा हो, मुझे अच्छा लगता है घर अच्छा. वो जो आपकी ईंटें लगी हुई हो अच्छी वाली लगी हुई हो, अच्छा.
1: वाह, सोने की लगी हो तो फिर बात ही
0: कुछ और. नहीं, सोने की नहीं चाहिए भाई.
1: और मैं निकाल रहा हूँ हर रात में आके थोड़ी थोड़ी, दो ईंटें ले गए तरुण मिर्जा, काम पूरा हो गया.
0: साथ पूछते आराम से.
1: क्या
0: नहीं, एक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ मेल और फीमेल जो जेंडरिज्म अगर किया जाए तो खातीन को भी ब्यूटिफिकेशन पसंद है. घर के अंदर फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, अच्छा सा साफ सुथरा सा माहौल अच्छा लगता है, लाइटनिंग अच्छी लगती है, कर्टन्स जो रेशमी से होते हैं वो अच्छे लगते हैं।
1: वाह,
0: इन कुछ लोगों को ये मैटर नहीं करते, मेरे ख्याल से मर्द आजाद को मैटर नहीं करता, मर्द आजाद बेगम खाने में कोफ्ते बना दो।
1: तो इसी नोट पे बात अपनी पूरी करते हैं और आज के लिए आपसे इजाजत भी ले लेते हैं कि भाई वो लम्हे वो बातें आतिफ असलम कह रहे हैं, ये तो खैर याद इनको बहुत आती है फिलहाल,
0: मुझे बहुत याद आती है।
1: आज सफा ने तो अपने आप को ट्रैवल में रखा और मैंने अपने आप को वहीं रखा जहां मैं था, खाने पे, खाने से आए खाने पे गए।
0: देखिए ये डेडिकेशन है, ये लॉयल्टी है, कमिटमेंट है सरवर भाई का, इससे इसे कोई नहीं खरीद सकता।
1: तो फिलहाल छोड़े जा रहे हैं आपको आतिफ भाई के साथ, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात आपसे होगी खैरियत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखते सुनते रहिए FM 107
0: दिल से देसी।

0: आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, और बहुत ही खूबसूरत दिन की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 विद सफा। हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं दुनिया भर की उन खातीन एथलीट की कहानियां जिन्होंने सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड ही हासिल नहीं किए, बल्कि अपनी हिम्मत, मेहनत और अज़्म से दुनिया की सोच को भी बदलने की कोशिश की। ये वो कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता, बल्कि इंसान की हिम्मत, रेजिलियंस और खुद पर यकीन का दूसरा नाम होता है। भाई, आज हम जिस एथलीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही दुनिया भर के एथलेटिक फैंस के जहन में एक ही तस्वीर उभरती है। एक रनर जो ट्रैक पर उतरती थी तो लगता था जैसे हवा से बात कर रही हैं। एक एथलीट जिसकी स्पीड ने रिकॉर्ड्स बनाए, जिसकी कंसिस्टेंसी ने मेडल्स जितवाए, और जिसकी जिंदगी ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के सबसे मुश्किल और अहम डिबेट्स में से एक को जन्म दिया। भाई साथियों, आज की हमारी स्पॉटलाइट आती है साउथ अफ्रीका की लेजेंडरी मिडिल डिस्टेंस रनर कैस्टर सेमेनिया पर। साथियों, हर एथलीट की कहानी सिर्फ उस दिन शुरू नहीं होती जब वो ओलंपिक मेडल जीतता है। हर चैंपियन के पीछे बचपन की कहानी होती है, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं भाई, घर वालों की हिम्मत अफजाई होती है, कभी कभी भाई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी मौजूद होते हैं, कभी फैसिलिटीज की कमी होती है, और कभी सिर्फ अपने आप पर यकीन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। साथियों, कैस्टर सेमेनिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी जिंदगी हमें सिर्फ एक एथलीट की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाती कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी रेस मेडल जीतने की नहीं होती, बल्कि अपनी पहचान के साथ मजबूती से खड़े रहने की होती है। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया में अक्सर हम रिकॉर्ड्स, टाइमिंग्स और मेडल्स के बारे में बात करते हैं कि नहीं, पर देखें, हम सेकंड्स और मिली सेकंड्स का हिसाब रखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, लेकिन कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉपवॉच का हिस्सा नहीं बनते, भाई वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। कैस्टर सेमेनिया भी उन्हीं एथलीट्स में से शामिल हैं। भाई, आज का एपिसोड सिर्फ एथलेटिक्स के बारे में बात नहीं करेगा, ये करेज के बारे में है, ये डिटर्मिनेशन के बारे में है, ये उस कॉन्फिडेंस के बारे में है जो एक इंसान को मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में भी अपना सफर जारी रखने का हौसला देती है। जब हम किसी एथलीट को पोडियम पर खड़े हुए देखते हैं ना, तो भाई हमें तो सिर्फ वो चंद मिनट्स ही नजर आ रहे होते हैं जब उनके गले में मेडल डाला जा रहा होता है, लेकिन उस मेडल के पीछे सोचें जरा, उस एक मेडल के पीछे हजारों घंटों की ट्रेनिंग होती है, सुबह से पहले उठना होता है, थकान के बावजूद प्रैक्टिस करनी होती है, इंजरीज का सामना करना होता है, और कभी कभी क्रिटिसिज्म का बोझ भी उठाना ही पड़ता है। कैस्टर सेमेनिया की कहानी भी इसी हिम्मत का दूसरा नाम है। उन्होंने भाई दुनिया को ये दिखाया कि एक्सेलेंस सिर्फ फिजिकल एबिलिटी का नाम नहीं होता, एक्सेलेंस डिसिप्लिन का नाम होता है, कंसिस्टेंसी का नाम होता है, और सबसे बढ़कर अपने मिशन से वफादारी का नाम होता है। भाई, आज जब हम दुनिया भर की लड़कियों और एथलीट्स को ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं ना, वो स्कूल कॉम्पिटिशन में भाग रही होती हैं या पहले रनिंग मेडल जीतने के ख्वाब देख रही होती हैं, तो उनके पास बहुत ही इंस्पायरेशनल एथलीट्स होती हैं जिनसे वो सीख रही होती हैं। कैस्टर सेमेनिया उनमें से एक बहुत अहम नाम है, लेकिन उनकी कहानी दूसरी कहानियों से आप कह लें कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका सफर सिर्फ कॉम्पिटिशन तक महदूद नहीं रहा, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स पर उन रेगुलेशंस का भी सामना किया जिन पर पूरी स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत बहस हुई। भाई, ये एक ऐसा आप कह लें कि मौजू था जिसने एथलीट्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, लॉयर्स और यहाँ तक के फैंस सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, हमारा मकसद आज किसी डिबेट का फैसला करना नहीं है, हमारा मकसद एक एथलीट की जर्नी को समझने का है। हम बात करेंगे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी मेहनत की, उनकी स्ट्रगल्स की, और उन लम्हों की जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर भी किया और सोचने पर मजबूर भी किया। ये भी याद रखना जरूरी होगा साथियों कि स्पोर्ट्स सिर्फ रूल्स का नाम नहीं होता और सिर्फ रिजल्ट्स का भी नाम नहीं होता, स्पोर्ट्स इंसानी कहानियों का मजमुआ है। हर एथलीट अपने साथ एक अलग सफर लेकर चलता है और हर सफर हमें कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है। कैस्टर सेमेनिया का सफर जो है वो हमें रेजिलियंस सिखाता है। ये हमें बताता है कि जब जिंदगी आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस देती है ना, तब पता चलता है कि इंसान कितना मजबूत है। और इसीलिए आज का एपिसोड सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है, ये कोचेस के लिए भी है और उन तमाम यंग गर्ल्स के लिए भी है जो किसी ना किसी फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हैं। भाई अगर आप किसी स्कूल की स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं, अगर आपको रनिंग पसंद है या फिर आप सिर्फ अपनी जिंदगी में किसी चैलेंज का सामना कर रही हैं, तो आज का ये एपिसोड शायद आपके लिए है। क्योंकि ये एपिसोड एक नई सोच लेकर आया है, क्योंकि हर रेस सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने का नाम नहीं होती। कुछ रेसेस अपनी पहचान बचाने की होती हैं, कुछ रेसेस अपने ख्वाबों को जिंदा रखने की होती हैं और कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया की कन्वर्सेशन को बदल कर रख देती हैं। कैस्टर सेमेनिया का नाम आज भी एथलेटिक्स की हिस्ट्री में इसीलिए याद रखा जाता है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अपना लोहा मनवाया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी स्पीड का जादू दिखाया, लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ मेडल से नहीं बनी, उनकी लेगेसी उस रेजिलियंस से बनी जो हर चैलेंज के बाद भी नजर आई। साथियों आज हम उनके बचपन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक का सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव की एक लड़की किस तरह इंटरनेशनल एथलीट्स का सबसे बड़ा नाम बन गई। हम उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, उनकी स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि स्पोर्ट्स किस तरह सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि सोसाइटी में कन्वर्सेशन शुरू करने का एक जरिया भी हो सकता है। और जैसे कि हम हर एपिसोड में करते हैं, इस बार भी हम आपको कन्वर्सेशन का हिस्सा जरूर बनाएंगे। सोचिए अगर आपको सिर्फ एक लफ्ज में ये बताना हो कि एक ग्रेट एथलीट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, तो आप क्या कहते हैं वो क्या होगी? स्पीड, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस या कभी हार ना मानने का जज्बा? हमें जरूर बताएं। अपने वॉइस नोट्स भी आप हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, या आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है FM 107 कतर। कहीं मत जाइए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कैस्टर सेमेनिया की असल कहानी। एक ऐसी कहानी जो साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और ओलंपिक पोडियम तक पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं है बल्कि हिम्मत, सबर और खुद पर यकीन की कहानी है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और आज की स्टोरी ऑफ द वीक एक ऐसी एथलीट के नाम करते हैं जिसका सफर जितना इंस्पायरिंग है उतना ही इमोशनल भी है। ये कहानी सिर्फ जैसा कि मैंने बताया मेडल्स की नहीं है बल्कि हिम्मत, सबर, मेहनत और अपनी पहचान के साथ मजबूती से खड़े रहने की है। भाई आज हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड फेमस मिडिल डिस्टेंस रनर कैस्टर सेमेनिया के बारे में। चलिए आपको बताती हूँ कि कैस्टर सेमेनिया की पैदाइश हुई 7 जनवरी 1991 को साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रोविंस के एक छोटे से गांव में जो पुलक पानी के करीब वाकई है। ये इलाका बहुत सादा था, ना कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम था और ना ही कोई मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अक्सर हिस्ट्री इसी तरह की जगहों से तो निकलती है और फिर ऐसे ही लोगों पे बनती है। बहुत से ग्रेट एथलीट्स की तरह कैस्टर का बचपन भी लग्जरी में नहीं गुजरा। उनका बचपन मिट्टी के रस्तों, खुले मैदानों और सिंपल सी जिंदगी के दरमियान गुजरा। बचपन से ही कैस्टर बहुत एनर्जेटिक थी। अच्छा वो घर के बाहर रहना पसंद करती थी क्योंकि उन्हें रनिंग पसंद

अच्छा, उस वक्त किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़की एक दिन ओलंपिक चैंपियन बन जाएगी भाई। साथियों, कैस्टर ने अपनी तालीम नथीमा सेकेंडरी स्कूल में हासिल की। अच्छा, स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर उनके नेचुरल टैलेंट को पहचानना और उन्हें एथलेटिक्स की तरफ एनकरेज किया करते थे। अच्छा भाई, जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है तो भाई ये एनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कभी कभी एक टीचर का एक हल्का सा यकीन एक स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। उनके कोचेज बाद में बताते हैं कि भाई कैस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी नेचुरल स्पीड नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी उनकी लर्निंग एबिलिटी। अगर कोचेज कोई टेक्निक सिखाते तो भाई वो उस पर बहुत मेहनत करती थी। अगर कोई वीकनेस होती तो वो उसे इम्प्रूव करने की पूरी पूरी जान लगा देती थी, कोशिश करती थी। अच्छा, कैस्टर का डिसिप्लिन भी लाजवाब था। वो प्रैक्टिस मिस करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। साउथ अफ्रीका के कई एथलीट्स ने बाद में इंटरव्यू में ये बताया कि कैस्टर ट्रेनिंग के वक्त बहुत फोकस्ड रहती थी भाई, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहती थी। उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका जूनियर कॉम्पिटिशन्स में शानदार परफॉर्मेंस देना शुरू की। अच्छा भाई, नेशनल लेवल पर ना कोचेज और एथलेटिक्स ऑफिशियल की नज़रें उन पर गड़ गईं। अब क्या था, अब लोग सिर्फ एक टैलेंटेड स्कूल गर्ल को नहीं देख रहे थे, अब उन्हें फ्यूचर इंटरनेशनल चैंपियन नजर आने लग गई थी। फिर क्या होना था भाई, 2008 और 2009 यानी कि 2008 एंड 2009 कैस्टर की जिंदगी के बहुत अहम साल साबित हुए। अच्छा, सिर्फ कुछ ही अरसे में उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। उनकी टाइमिंग हर कॉम्पिटिशन के साथ साथ बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। कोचेस भी हैरान थे कि भाई इतनी यंग सी लड़की, छोटी सी टिड्डी सी, और इतनी तेजी से इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती है भाई। फिर आया वो साल जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, यानी के 2009 बर्लिन जर्मनी। भाई ये वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का स्टेज था जहां सब कुछ बदला। दुनिया के बेहतरीन रनर्स एक ही ट्रैक पर जमा थे और उन्हीं के दरमियान सिर्फ 18 साल की एक साउथ अफ्रीकन एथलीट भी खड़ी थी जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे। भाई क्या होना था, फाइनल रेस शुरू हुई। भाई जब स्टार्टिंग गन बजी तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 2 मिनट में एथलेटिक्स की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। कैस्टर सेमेनिया ने भाई शुरू से ही कॉन्फिडेंट रनिंग की। रेस के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपनी स्पीड और भी बढ़ा दी। एक एक करके तमाम रनर्स पीछे रह गए और जब वो फिनिश लाइन क्रॉस कर रही थी तो पूरा स्टेडियम उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने 800 मीटर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीत लिया था। भाई उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं बल्कि अपना पर्सनल बेस्ट भी इम्प्रूव किया और दुनिया भर के एथलेटिक एक्सपर्ट्स को हैरान कर रख दिया।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: भाई उस दिन एक नई सुपरस्टार पैदा हुई थी. साथियों, साउथ अफ्रीका में खुशी की लहर दौड़ गई थी. न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और स्पोर्ट मैगजीन्स भी हर जगह कैस्टर सेमेनिया का नाम छाप रहे थे. लोगों ने उन्हें नेशनल हीरो कहना शुरू कर दिया था भाई. लेकिन इसी कामयाबी के साथ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर भी शुरू हुआ. भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी रूल्स और मेडिकल असेसमेंट्स के हवाले से सवालात उठाए जाने लगे. अच्छा, ये प्रोसेस दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइंस बन गया. बहुत से रिपोर्ट्स पब्लिश हुई और इसी वजह से कैस्टर की प्राइवेट जिंदगी भी इंटरनेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गई. अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि एथलेटिक में एलीट कॉम्पिटिशन के लिए कुछ मेडल्स और एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस मौजूद होते हैं. इन रेगुलेशंस का मकसद विमेंस कैटेगरी के लिए कुछ रूल तय करना होता है. कैस्टर सेमेनिया का

केस इसी फ्रेमवर्क के अंदर डिस्कस किया गया और बाद में इस पर बहुत सी लीगल साइंटिफिक डिस्कशंस भी हुई। नेक्स्ट रेस की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस उम्र में कैस्टर को इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन, पब्लिक क्रिटिसिज्म और बहुत मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, ये किसी भी एथलीट के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन कैस्टर ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी। पता है वो क्या थी? रनिंग। भाई उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी, प्रैक्टिस जारी रखी और अपने स्पोर्ट से मोहब्बत जारी रखी। अच्छा, ये चीज चैंपियंस को सबसे अलग बनाती है। और फिर क्या होना था? अलग तो वो थी। तो भाई 2010 यानी 2010 और 2011 के दौरान उन्होंने वापस कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिदम हासिल की। भाई 2011 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में उन्होंने 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये दुनिया को एक मैसेज था क्लियर कट कि चैलेंजेस के बावजूद वो एलीट लेवल की एथलीट है। फिर आया भाई लंदन ओलंपिक गेम्स 2012 यानी लंदन ओलंपिक गेम्स 2012। देखिए, ओलंपिक हर एथलीट का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, ये तो एक मानवी जानवी बात है। कैस्टर ने विमेंस 800 मीटर फाइनल में शानदार रेस लगाई और फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। बाद में एंटी डोपिंग रूल वायलेशन की वजह से एक दूसरी एथलीट के रिजल्ट में तब्दीली हुई और कैस्टर सेमेनिया को ऑफिशियल तौर पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तस्लीम किया गया। अच्छा, साउथ अफ्रीका में खुशी की एक और लहर दौड़ पड़ी भाई ये बात सुनकर, यानी कि एक छोटे गांव की लड़की अब ओलंपिक चैंपियन बन चुकी थी। भाई लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। भाई देखिए, 2016 रियो ओलंपिक गेम्स में कैस्टर सेमेनिया ने अपने करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंसेज में से एक दी। देखिए उन्होंने क्या किया कि 800 मीटर फाइनल में उन्होंने शुरू से ही रेस को बहुत इंटेलिजेंटली कंट्रोल किया। लास्ट लैप में उन्होंने अपनी खास स्पीड दिखाई और क्या होना था भाई, गोल्ड मेडल जीत लिया। ये उनका दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल था। अच्छा, इसी ओलंपिक्स में उन्होंने 800 मीटर में साउथ अफ्रीकन नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया जो उस वक्त दुनिया के फास्टेस्ट टाइमिंग में से एक था। भाई और भाई, कैस्टर सिर्फ ओलंपिक चैंपियन ही नहीं रही, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मल्टीपल मेडल्स जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल्स हासिल किए, अफ्रीकन चैंपियनशिप्स में भी कामयाबी हासिल की। भाई अच्छा, डायमंड लीग कॉम्पिटिशन में भी उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। मुझे लगता है उनकी कंसिस्टेंसी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एक रेस जीतना इम्प्रेसिव होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन 10 साल तक दुनिया की बेस्ट रनर के साथ कम्पीट करना और मेडल्स जीतना, मेरे ख्याल से तो भाई ये ग्रेटनेस होती है। अच्छा, कैस्टर सेमेनिया इसी ग्रेटनेस की मिसाल है, लिटरली अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अक्सर ये कहते हैं कि भाई मिडिल डिस्टेंस रनिंग सिर्फ स्पीड का गेम नहीं होती, नो, इसमें एंड्योरेंस भी चाहिए होती है, रेस स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है, मेंटल स्ट्रेंथ और परफेक्ट टाइमिंग भी इसी का हिस्सा होते हैं। और कैस्टर भाई इन तमाम क्वालिटीज की बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गई थी। उनका रनिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक था भाई। उनका मामला पता है क्या था? उनका मामला ये था कि वो रेस के शुरू में अपनी पोजीशन संभाल कर रखती थी और फिर आखिरी हिस्से में अपनी एक्सप्लोसिव फिनिशिंग स्पीड से ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ दिया करती थी। और हाँ, इसी वजह से उनकी रेसेस देखना फैंस के लिए हमेशा एक्साइटिंग होता था कि भाई अब लगेगा नॉस और अब आएगा मजा। कैस्टर के कोचेस ने कई मर्तबा कहा कि भाई उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी सिंपल थी, हार्डवर्क, रिकवरी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। उन्होंने कभी शॉर्टकट्स पर यकीन किया ही नहीं, उनका फोकस हमेशा परफॉर्मेंस इंक्रीज करना या आप कह लेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने पर रहा। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ हो रहा था ना, वहाँ एक बात तो तय थी, साउथ अफ्रीका के लिए भी कैस्टर सेमेनिया एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन बनी। स्कूल्स में बच्चियां उनका नाम लेकर रेसेस में हिस्सा लेने लगी, कोचेज उनकी एग्जाम्पल्स देते थे, पेरेंट्स अपनी बेटियों को एथलेटिक्स ज्वाइन करने की हिम्मत देते थे। ये किसी भी एथलीट की सबसे बड़ी लेगेसी होती है साथियों, सिर्फ मेडल्स नहीं होते, नई जनरेशन को इंस्पायर करना होता है। और आज भी एथलेटिक

हिस्ट्री लिखी जाती है तो भाई कैस्टर सेमेनिया का नाम उन एथलीट्स में शुमार किया जाता है जिन्होंने मिडिल डिस्टेंस रनिंग पर गहरा असर छोड़ा। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भाई चैंपियन बनना सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना या सबसे पहले पहुंचना नहीं होता, चैंपियन वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटता, जो क्रिटिसिज्म के बावजूद भी मेहनत जारी रखे और जो प्रेशर के बावजूद अपना डिसिप्लिन ना छोड़े और जो हर रेस के बाद फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पर वापस आ जाए। ये कैस्टर सेमेनिया की असल पहचान है और शायद इसीलिए उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के एथलीट्स को इंस्पायर करती है। तो साथियों आपको याद दिलाती चलूं कि आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। और आज के इस खास एपिसोड में अब हम आ पहुंचे हैं बियॉन्ड द गेम्स में। हम बात करेंगे कैस्टर सेमेनिया की कहानी के उस पहलू पर जो सिर्फ उनके मेडल्स और रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं है। उनकी एथलेटिकल जिंदगी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि उन्होंने कितने रेसेस जीती, बल्कि ये भी बताती है कि उन्होंने मुश्किल वक्त का सामना किस तरह किया और अपने सफर से दूसरों के लिए क्या सीखने का मौका पैदा किया। साथियों कैस्टर सेमेनिया की जर्नी हमें ये समझाती है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान को ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाता है बल्कि मेंटली और इमोशनली भी मजबूत करता है। ट्रैक पर दौड़ने वाली एक एथलीट अक्सर सिर्फ अपने पैरों की स्पीड से नहीं जीतती, वो अपने डिसिप्लिन, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से भी जीतती है। और कैस्टर सेमेनिया की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक थी उनकी रेजिलियंस, यानी मुश्किल हालात के बावजूद दोबारा खड़े होने की सलाहियत। भाई अच्छा साथियों, एक एथलीट की जिंदगी बाहर से देखने में ना बहुत ग्लैमरस लगती है। स्टेडियम में हजारों लोग उनका नाम लेकर चीख रहे होते हैं, चीयरिंग कर रहे होते हैं, कैमराज उनकी तरफ होते हैं और मेडल उनके गले में होते हैं, लेकिन इसके पीछे अक्सर बहुत खामोश सी मेहनत होती है। वो सुबह के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, वो दिन होते हैं जब बॉडी थकी हुई टूटी हुई होती है लेकिन एथलीट्स फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। वो मोमेंट्स होते हैं जब क्रिटिसिज्म और प्रेशर के बावजूद फोकस बनाए रखना पड़ता है। कैस्टर सेमेनिया ने इसी डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया। साथियों उनकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ तारीफ से नहीं बनता, कभी कभी कॉन्फिडेंस चैलेंजेस का सामना करने से बनता है। जब एक एथलीट किसी सिचुएशन में होते हैं जहां लोग उन पर सवाल उठा रहे होते हैं, तब उनका अपने आप पर यकीन और भी मजबूत हो जाता है। साथियों ये समझना बहुत जरूरी है कि कैस्टर ने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सीख लिया कि भाई दुनिया आपको समझने या एक्सेप्ट करने में जल्दी नहीं करती, लेकिन आप अगर अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कंसिस्टेंसी से अपना लोहा मनवा सकते हैं। भाई देखिए स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को सबसे पहले लेसन यही देता है, किस चीज का? कॉन्फिडेंस का। जब एक लड़की एथलेटिक ग्राउंड पर खड़ी होती है ना, जब वो रेस के स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशन लेती है, तो वो सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा नहीं होती, वो अपने अंदर के डर को चैलेंज कर रही होती है। वो सीख रही होती है भाई कि प्रेशर के वक्त कैसे काम रहना है। वो ये सीख रही होती है कि हार के बाद दोबारा कैसे उठना है। कैस्टर सेमेनिया की कहानी भी इसी कॉन्फिडेंस की मिसाल है। भाई देखिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक स्टेज पर कम्पीट किया, ओलंपिक गेम्स का प्रेशर देखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का प्रेशर देखा, मीडिया अटेंशन का प्रेशर देखा भाई, लेकिन फोकस हमेशा अपनी परफॉर्मेंस और अपने स्पोर्ट्स पर ही रखा। साथियों स्पोर्ट्स का एक और इम्पोर्टेंट लेसन पता है क्या है? वो है डिसिप्लिन। एथलेटिक्स में टैलेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ टैलेंट किसी को चैंपियन नहीं बनाता। चैंपियन बनने के लिए रोजाना की मेहनत चाहिए होती है। भाई देखिए एक रनर को ना अपनी आप कह लेंगे फिटनेस, डाइट, रिकवरी और ट्रेनिंग स्केड्यूल पर बहुत फोकस करना पड़ता है। कैस्टर सेमेनिया की सक्सेस का एक बड़ा सबब उनकी डिसिप्लिन की अप्रोच थी। 800 मीटर्स जैसी रेस बहुत यूनिक होती है, ये ना सिर्फ स्पीड का टेस्ट होती है और ना सिर्फ एंड्योरेंस का, इसमें दोनों का परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। भाई देखिए एथलीट को पता होना चाहिए ना कि कब अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब एनर्जी बचानी है और कब फाइनल पुश देना है, और कैस्टर इसी स्ट्रेटेजी में बहुत माहिर थी। उनकी रेसेस देखने वाले फैंस अक्सर ये नोटिस किया करते थे कि वो रेस के शुरू में अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखती थी और फिर फाइनल मोमेंट्स में अपनी पावरफुल फिनिशिंग स्पीड का इस्तेमाल किया करती थी। ये सिर्फ फिजिकल एबिलिटी नहीं थी बल्कि रेस इंटेलिजेंस भी थी, और यही तो स्पोर्ट्स की खूबसूरती है। भाई स्पोर्ट्स इंसान को सिर्फ कम्पीट करना नहीं सिखाता बल्कि खुद को समझना भी सिखाता है। कैस्टर सेमेनिया की स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लीडरशिप बनती है।

0: जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे ये ख्याल आता है कि जब कोई एथलीट सक्सेसफुल होता है तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मेडल्स तक नहीं होती, वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। यंग एथलीट्स उन्हें देखते हैं और उनसे ही सीखते हैं, और यंग एथलीट्स का फिर ड्रीम भी यही होता है कि वो उन्हीं की तरह काम करें। अच्छा, साउथ अफ्रीका में कैस्टर सिमेनिया बहुत सी यंग गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। देखिए भाई, एक छोटे से गांव से आने वाली एक लड़की जब ओलंपिक चैंपियन बनती है ना, तो वो सिर्फ अपनी फैमिली का नाम नहीं रोशन करती, वो अपने पूरी कम्युनिटी को ये मैसेज देती है कि बैकग्राउंड आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता, आप कहां से आते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहां तक जा सकते हैं ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है। और यही मैसेज कैस्टर सिमेनिया की जर्नी हमें देती है। साथ ही देखिए, कैस्टर की कहानी ने विमेन्स स्पोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो इनकी कहानी ने दुनिया भर में बहुत सी डिस्कशंस भी शुरू की। उनका केस एथलेटिक के रूल्स, फेयरनेस, इंक्लूजन और एथलीट राइट्स के बारे में एक ग्लोबल कन्वर्सेशन का सबब बना। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने विमेन्स कैटेगरी में पार्टिसिपेशन के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, और कैस्टर सिमेनिया का केस इन्हीं रेगुलेशंस के हवाले से दुनिया के सामने आया। अच्छा, इस टॉपिक पर एथलीट्स, एक्सपर्ट, लीगल प्रोफेशनल्स और स्पोर्ट्स फैंस के दरमियान मुख्तलिफ ओपिनियंस भी सामने आए, लेकिन एक बात जो सब मान सकते हैं वो ये थी कि भाई, कैस्टर सिमेनिया की जर्नी ने स्पोर्ट्स की दुनिया को बहुत से इम्पोर्टेंट सवालात पर सोचने पर मजबूर किया। स्पोर्ट्स सिर्फ रिकॉर्ड का नाम नहीं होता। साथियों, एक छोटे से गांव से निकलकर ओलंपिक स्टेज तक पहुंचना कोई आम मामूली बात नहीं होती। इसके लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए होता, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत, डिसिप्लिन और अपने आप पर यकीन चाहिए होता है। कैस्टर सिमेनिया ने अपनी जर्नी से दुनिया भर को ये दिखाया कि बैकग्राउंड आपके ख्वाबों की लिमिट नहीं डिसाइड करता। भाई, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब लोग अपनी कैपेसिटी पर सवाल उठाने लगते हैं, अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं। भाई, कभी लोगों को समझने में वक्त लगता है, कभी आपको अपनी जगह बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी हमें यही सिखाती है कि आपका फोकस अपने मिशन पर होना चाहिए। कैस्टर सिमेनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी में से आप कह लें कि एक उनकी डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने ट्रैक पर अपनी परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने ये दिखाया कि एक एथलीट की असल ताकत सिर्फ उनकी स्पीड में नहीं होती, बल्कि उनके माइंडसेट में होती है। साथियों, स्पोर्ट्स हमें बहुत से वैल्यूएबल लेसंस देता है। जब एक यंग गर्ल रनिंग ट्रैक पर खड़ी होती है ना, जब वो अपनी पहली रेस के लिए तैयारी कर रही होती है, या जब वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा नहीं होती ना। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होती है। मुझे ये भी लगता है कि वो सीख रही होती है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, फेलियर से कैसे सीखना है और अपने गोल्स के लिए कैसे कंसिस्टेंट रहना है। यही स्पोर्ट्स की असल पावर होती है। तो भाई, इसी के साथ आपको याद दिलाती चलूं कि आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107। मैं हूं सफा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहिए और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर भी करते रहिए, क्योंकि जब एक विमेन अपनी स्ट्रेंथ को पहचानती है तो भाई, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि अपनी आसपास की दुनिया पर भी असर डालती है। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ये भी याद रखिए कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो किसी और का क्या ही ख्याल रखेगा। तो भाई, सफा को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107. Time check.
1: चेक चेक चेक टाइम चेक. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30, यानी ये वक्त हो चला है.
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस माय देसी ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सब? हाँ जी हाँ जी, 3-2-1 कहते हुए ना बिल्कुल सिग्नल मिल जाता है कि भाई आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर सकते. ऑब्वियसली क्योंकि हमारा शो ही कुछ ऐसा है. एस्केप रूम की गलियों में जब आप आए तो बस दिमाग का सही हाल ही हमें इन गलियों से बाहर निकाल सकता है कि नहीं. तो चैलेंज तो एक से बढ़कर एक होते हैं. आज का चैलेंज क्या होने वाला है? अच्छा एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग MRI जो मशीन होती है उसका एक्सपीरियंस आपने कभी लिया है? मतलब मैं तो नहीं चाहती कि इसे खुदा ना खास्ता किसी को लेना पड़े, बट कभी ऐसा इसका एक्सपीरियंस लिया है क्या? बड़ा डेंजरस सा फील होता है. मतलब एक बड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक टनल जैसी जगह और उसके अंदर आप जाओ और फिर जूम जूम करके आवाज़ें आती हैं. उफ, वहाँ अगर हमें फंसना पड़ जाए और वहाँ से निकलना पड़ जाए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं हम, तो कैसा होगा? हाँ, आज का चैलेंज बड़ा ही कमाल का है. सोचने और समझने की बात है. बस कुछ ही देर में एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज के एस्केप रूम का चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और देखते हैं कि आज आप में से कितने लोग हैं जो इस चैलेंज को पार कर पाएंगे. फिलहाल नंबर नोट कर लीजिए, 666-22-107, 666-22-107. इसके जरिए आप और मैं बातचीत अपनी कंटिन्यूसली कर सकते हैं. और अभी के लिए हो जाए झलक दिखला जा का रीलोडेड वर्जन. आई एम श्योर यू गोना लव इट. तो बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, my desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। और इससे पहले कि अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे एक टैक्सी के जनाब का जिनका नाम है हमज़ा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब भी मैं टैक्सी लेती हूँ और कभी बातचीत होती है, उस दौरान मुझे पता चलता है कि किस तरह से हमारे जो कहते हैं लिसनर्स या हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो हमें सुन रहे होते हैं, एंड सच में बड़ी खुशी होती है। सो हमज़ा भाई हमसे मिले एंड द मोमेंट ही स्पोक कि अमिता आपको हम सुनते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है शो पर, तो बस अच्छा लगा एंड ही वॉज रियली हेल्पिंग मी अलॉट। तो मैंने कहा चलो आज एस्केप रूम में आपका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी, और इतने प्यार से जो आपने मदद की मेरी कल उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तालियाँ तो बनती हैं आपके लिए। चलिए इसी बात के साथ अब हमजा भाई आगे बढ़ते हैं। एस्केप रूम के चैलेंज का वक्त हो चला है, तो एस्केप रूम का चैलेंज आज हम कहाँ जाने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत अट्रैक्टिव है, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो आपको अभी क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा ना स्टेबल करना है, ठीक है, क्योंकि हम अब एक बहुत बड़ी MRI मशीन के अंदर हैं।

आलम एक जायंट डोनट शेप्ड मैग्नेट के अंदर बैठे हैं, जिसकी ताकत धरती या यूं कहें अर्थ की मैग्नेटिक पुल से 30,000 गुना ज्यादा है। अगर आपकी पॉकेट में एक छोटा सा पेपर क्लिप भी होगा ना, तो वो किसी बुलेट की रफ्तार से भागेगा। तो समझ लीजिए हमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड से घिरे हैं, जो हमारी बॉडी के टाइनी एटम्स को बिल्कुल एक लाइन में सोल्जर की तरह अलाइन कर रहा है। हमें इस एग्जिट डोर को डी मैग्नेटाइज करना है, वरना हम इस टनल की दीवारों में ना किसी फ्रिज मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। तो शोर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये साउंड आपको सुनाई दे रहा है? ओ हो, इस तरह का साउंड आता है इलेक्ट्रिक कॉइल से, जो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर की तस्वीरें ली जा सके। लेकिन अगले चेंबर में जाने के लिए हमें MRI के इस M को, या यूं कहें M का मतलब पहचानना होगा। ठीक है, तो चले क्लू नंबर वन आपके लिए ये है। मैं एक इनविजिबल फोर्स हूं, मैं कार को खींच सकता हूं, आपके फ्रिज पर फोटो चिपका सकता हूं, और मैं हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता हूं। बताएं मैं क्या हूं? अंग्रेजी के अल्फाबेट M से इसकी शुरुआत होती है। तो ये वर्ड क्या है, ये क्या चीज है जो एक इनविजिबल मैग्नेटिक पुल है? देखिए, हर एक चीज मैंने आपको बड़े प्यार से बता दी है, और शुरुआत के एपिसोड में ही आपको जवाब पता है। पता चल गया यार? देखो, इतना आसान कर दिया मैंने, उसके बावजूद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आई कैन सी द मैसेजेस। कम ऑन, एक बार फिर से क्लू नंबर वन ध्यान से सुनो। मैंने अभी अभी जो भी कुछ कहा है ना, उस पर जवाब मैंने दे दिया है, बट आप नहीं समझ पाए तो सुने। मैं एक इनविजिबल फोर्स हूँ, मैं कार को खींच सकता हूँ, आपके फ्रिज पर फोटो चिपका सकता हूँ, और मैं हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता हूँ। बताएं मैं क्या हूँ? अंग्रेजी के अल्फाबेट M से ये वर्ड है। क्या है ये? सोचे 666-22107, 666-22107 पर इस नंबर के जरिए आप हमें व्हाट्सएप करें, अपने नाम के साथ सही जवाब दें, और देखते हैं कि फिर आप में से कितने लोग पहला पड़ाव पार कर पाते हैं। और अभी अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हम इस शानदार सा गाना एंजॉय करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और अभी इस वक्त हम एस्केप रूम के चैलेंज के अंदर हैं और आज का चैलेंज हम एक एमआरआई मशीन के अंदर हैं जिसकी ताकत जो है वो धरती के मैग्नेटिक पुल से 30,000 गुना ज्यादा है. ये सिचुएशन देने से पहले मैंने हमारे लिसनर से पूछा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन कभी आपने एमआरआई मशीन का एक्सपीरियंस किया? तो हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने कहा कि हाँ ऐसा महसूस हुआ है कि थोड़ा सा अंदर जाके ना घबराहट सी होती है, थोड़ा डर लगता है. तो जनाब आज हमारा चैलेंज यही है कि हम एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं जो कि हमारी बॉडी के टाइनी एटम्स को बिल्कुल एक लाइन में कर दे रही है. समझ रहे हैं आप? तो एग्जिट डोर को हमें डी मैग्नेटाइज करना होगा. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक करके सारे क्लूज को सॉल्व करें. तो क्लू नंबर वन आपके लिए था कि मैं एक इनविजिबल फोर्स हूं. मैं कार को खींच सकता हूं, आपके फ्रिज पर फोटो चिपका सकता हूं और मैं हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता हूं. बताओ मैं क्या हूं? वैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट एम से इस वर्ड की शुरुआत होती है. तो ज़्यादातर हमारे लिसनर्स ने लिखा है मैग्नेटिक. देखो मैग्नेटिक इज बेसिकली अ फोर्स, लेकिन ये फोर्स किस चीज़ से आता है? हाँ, इट कम्स थ्रू मैग्नेट. तो जिन्होंने मैग्नेट लिखा है बिल्कुल सही जवाब है भाई. जोरदार तालियां आपके लिए. क्या बात है, मज़ा आ गया. हमारे लिसनर्स ने जिस तरह से सही जवाब दिया है. सो कौन कौन है जिन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया सबसे तेज हमें जवाब देकर? तो अनवर नाम है उनका, निषाद है और फातिमा है हमारे साथ, सोहेल है, रोहेल भी है. क्या बात है, बिल्कुल राइमिंग हो गया आपका नाम तो. हाँ, और मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, इरफान भी हैं और मनदीप भी है हमारे साथ, हैदर भी हैं. सो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है. कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू. जब आपने सही जवाब दिया तो क्या हुआ? पहला दरवाजा खुल गया. चले शुक्र है. अब ये मशीन रेडियो वेव्स भेज रही है. ओहो, ये वेव्स हमारे अंदर कुछ ढूंढ रही हैं. क्या आप जानते हैं एमआरआई असल में हमारी बॉडी के अंदर का जो वाटर यानी पानी उसे डिटेक्ट करती है. ये किसी डिटेक्टिव की तरह काम कर रही है जो नमी तलाश कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लू नंबर टू हमारे लिए आ गया है जो कि बहुत सिंपल क्लू है. अगर आपने सही पहचान लिया तो दूसरा पड़ाव पार हो जाएगा, बस बाहर निकलने के एक स्टेप पीछे रहेंगे हम. ठीक है, सो क्लू नंबर टू आपके लिए है कि एमआरआई आपके ब्रेन और मसल्स को देख सकती है क्योंकि आपका शरीर मुझसे बना है. मैं आसमान से बारिश बनकर गिरता हूँ और जब आपको प्यास लगती है तो आप मुझे पीते हैं. मैं क्या हूँ? बताएं क्या हूँ मैं? इसका जवाब सबको पता है, आई एम वेरी श्योर. तो सही जवाब भेजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ और इस दूसरे पड़ाव को पार कीजिए. चलिए एक बार फिर से क्लू नंबर टू आपके लिए दोहरा दूंगी कि एमआरआई मशीन जो है वो आपके ब्रेन और मसल्स को देख सकती है क्योंकि आपका शरीर मुझसे बना है. मैं आसमान से बारिश बनकर गिरता हूँ और जब आपको प्यास लगती है तो आप मुझे पीते हैं. तो मैं क्या हूँ? बताएं, सही जवाब दीजिए और सोचने के लिए मैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ. दिल्ली सारा बड़ा शानदार गाना है, इंजॉय करते हैं फुल वॉल्यूम पे. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। यस जनाब, एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:01। ये वो टाइम होता है जब हम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए हमें एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकलना ही है।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज जनाब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम कैद हो गए एक MRI मशीन के अंदर। उफ, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक साउंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, यहाँ से निकलना उतना आसान नहीं है, बट आसान तब है जो अपने दिमाग का हम सही इस्तेमाल करें। सो सबसे पहला पड़ाव हमने पार किया। क्लू नंबर वन का सही जवाब था मैग्नेट, जो हमने दिया और इससे पहला दरवाज़ा खुला। और उसके बाद मशीन में रेडियो वेव्स आना शुरू हो गई। ये वेव्स हमारे अंदर कुछ ढूंढ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह। सो क्लू नंबर टू हमारे सामने आया कि MRI आपके ब्रेन और मसल्स को देख सकती है, क्योंकि आपका शरीर मुझसे बना है। मैं आसमान से बारिश बनकर गिरता हूँ, और जब आपको प्यास लगती है तो आप मुझे पीते हैं। तो मैं क्या हूँ? इसका जवाब तो सबको पता है, आई एम वेरी वेरी सर्टन। अब जिन्होंने थोड़ा गलत जवाब दिया है तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर सोचें, पर हम सीधा सही जवाब की तरफ चलेंगे। तो सही जवाब है पानी, या यूँ कहें तो वाटर। ज़ोरदार तालियां हमारे सारे रॉक स्टार्स के लिए जिन्होंने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। आइए ज़रा आपके नाम देख लेते हैं जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब देने की कोशिश की है। सो मंदीप ने हमें सही जवाब दिया है, इरफान ने हमें सही जवाब दिया है, निषाद ने हमें सही जवाब दिया, अनवर है हमारे रेगुलर लिसनर, मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद अदील ने भी हमें सही जवाब दिया है, निसार अहमद खत्री ने भी हमें सही जवाब दिया है, नितुराम ने भी हमें सही जवाब दिया है, और खादिर अब्दुल हादी ने भी सही जवाब दिया है, दिलवर अली, वाह क्या नाम है आपका, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, और सादात ने भी हमें सही जवाब दिया है। सो फैंटास्टिक, आप सब ने सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया। हाँ जनाब, तो कैसा लग रहा है ये दूसरा पड़ाव भी पार करके? अब हम एग्जिट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन एक अलार्म पीछे ना बज रहा है, बीप बीप बीप। अब लगता है किसी ने ना पॉकेट में हमारे कुछ छोड़ दिया था। उफ, हम ध्यान नहीं दे पाए, और मैग्नेट उस चीज़ को छीनने की ना हमसे कोशिश कर रहा है। फाइनल हैच खोलने के लिए हमें उस चीज़ का नाम बताना होगा जो इस रूम में सख्त मना है या फॉरबिडन है, ठीक है? सो क्लू नंबर थ्री आपके लिए है, मैं वही हूँ जिससे कीज, कॉइन्स और पेपर क्लिप्स बनते हैं। अगर आप मुझे इस जायंट मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैं रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगूंगा। क्या है ये मटेरियल? जवाब दीजिए 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजिए। बिल्कुल हम एग्जिट के करीब आ चुके हैं, बस एक सही जवाब और सारे दरवाजे खुल जाएंगे, हम MRI मशीन से बाहर निकल जाएंगे। एक बार फिर से क्लू नंबर थ्री आपके लिए कि मैं वही हूँ जिसे कीज, कॉइन और पेपर क्लिप्स बनते हैं। अगर आप मुझे इस जायंट MRI मशीन के पास लाएंगे या इस मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैं रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगूंगा। तो क्या है ये मटेरियल? थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द राइट आंसर 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। और अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं चरण एंड बादशाह की आवाज में ये बेहतरीन सा गाना सुन के। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की। हम एमआरआई मशीन के अंदर कैद हो गए। बहुत बड़ी सी एमआरआई मशीन है, उसके अंदर है हम। हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमको किसी तरह एग्जिट से निकलना है। पहला पड़ाव हमने पार किया। क्लू नंबर 1 का सही जवाब था मैग्नेट। क्लू नंबर 2 तक भी पहुँचे हम, सही जवाब हमने दिया जो था वाटर। अब इसके बाद अब एग्जिट के बिल्कुल हम करीब आ चुके हैं, लेकिन एक अलार्म बज पड़ा। ठीक है, बीप बीप बीप ऐसी आवाज़ आने लगी और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पॉकेट में ना किसी ने कुछ डाल दिया था, कुछ छोड़ दिया था। और मैग्नेट ना उस चीज़ को ना अब छीनने की हमसे कोशिश कर रहा है। शायद कोई ऐसी चीज़ हमारे पॉकेट में रह गई है जो कि इस जगह पर फॉरबिडन थी, मना थी, टोटल मना थी। सो क्लू नंबर 3 हमारे पास ये रहा कि मैं वही हूँ जिससे कीज़, कॉइन्स और पेपर क्लिप्स बनते हैं। अगर आप मुझे इस जायंट मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैं रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाऊँगा या उड़ने लगूँगा। तो मैं क्या मटेरियल, क्या हूँ मैं, कौन सा मटेरियल हूँ? तो आई कैन सी हमारे लिसनर्स अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई आयरन लिख रहा है, आयरन लिख रहा है, कोई लिख रहा है लोहा, कोई लिख रहा है स्टील, कोई लिख रहा है गोल्ड। ओके, मैं आप सबके जवाब कंसिडर करूंगी, लेकिन ये बताएं कि ये सारी चीज़ें है क्या? इसका एक कॉमन नाम है, सोचें, वो नाम बताएं मुझे। 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ ये जो आयरन, गोल्ड, स्टील, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है जो एमआरआई मशीन के पास ले जाना मना है? ओके, सो गिव मी द राइट आंसर। हम एग्जिट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। एक सही जवाब और दरवाजा जो बंद है वो हमारे लिए खुल जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। सो गिव मी द राइट आंसर। और अभी सोचिए, समझिए, जब तक मैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे ले जाती हूँ और वापस आके देखते हैं कि आप में से कितने लोग मुझे सही जवाब दे पा रहे हैं। तो बस बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी, दिल से
3: देसी। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: यस, वेलकम वंस अगेन FM 107, सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी A फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम की सिचुएशन, हम एक MRI मशीन के अंदर थे जहां पर इलेक्ट्रिक साउंड्स ने हमें थोड़ा परेशान कर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ थी, परेशानी बहुत हमारी बड़ी हुई थी, लेकिन एक एक करके हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश की। क्लू नंबर 1 हमने सॉल्व किया, सही जवाब था मैग्नेट। क्लू नंबर 2 का सही जवाब था वाटर, और उसके बाद क्लू नंबर 3 पर हम आ गए। तो क्लू नंबर 3 में वही हूँ जिससे कीज, कॉइन्स और पेपर क्लिप्स बनते हैं। अगर आप मुझे इस जायंट मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैं रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगूंगा। तो ये मटेरियल क्या है, मैं क्या मटेरियल हूँ? तो हमें काफ़ी जवाब आए, कुछ ने लिखा आयरन, कुछ ने लिखा स्टील, गोल्ड, इस तरह के हमें जवाब आए हैं, एल्यूमिनियम भी किसी ने लिखा है। सो आई विल टेल यू, वो सारे जवाब सही है, लेकिन इनका एक वर्ड होता है एंड दैट इज़ मेटल। हाँ जी,

ये सब मेटल है या मेटल के अलॉय है? बट सही जवाब है. आइए जरा देखें जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए. उनके नाम है अनवर, निषाद. क्या बात है, एक एक करके सबने सही जवाब देने की कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की एस्केप रूम की सिचुएशन से. निसार अहमद ने भी हमें सही जवाब दिया है. मोहम्मद अदील ने हमें सही जवाब दिया है. कुछ हमारे लिसनर्स नाम नहीं लिखते, प्लीज़ नाम लिखा करें. सो हैदर ने हमें सही जवाब दिया है. और अमीर नवाब, वाह क्या बात है, इन्होंने सही जवाब दिया है. मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है. सुहेल ने हमें सही जवाब दिया है. शिबा राज ने सही जवाब दिया है. नितू राम ने भी हमें सही जवाब दिया. दैट्स सो गुड. सादत ने हमें सही जवाब दिया. मतलब सब यहाँ से निकलना ही चाहते हैं. हाँ फिर अच्छा, हमें कुछ तारीफ़ों वाले मैसेज आए हुए हैं. ये जनाब कौन है? मोहम्मद है, कह रहे हैं कि आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, लेकिन हम मैसेज नहीं करते हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. खलील ने हमें सही जवाब दिया है. और सलाम आया है सैयद भाई का, तो आपको भी सलाम. क्या बात है. और कौन कौन रह गया है भाई जिन्होंने हमें फटाफट से जवाब दिए हैं? अच्छा, इनकी प्रोफाइल में अभी ग्रीन टी लिखी हुई है. नाम ज़रूर लिखा करें जब जवाब देते हैं. ऑल राइट, आप सबके सही जवाब. और इसी के साथ आपने आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया. जैसे ही आपने सही जवाब दिया, जो मेन डोर था MRI का बंद था, वो आपके लिए खुल गया. अब आप नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुके हैं. तो कैसा लग रहा है जनाब? चलिए इसी बात के साथ आज के लकी विनर कौन है. तो आज के हमारे लकी विनर है मिस्टर निशाद. जोरदार तालियां आपके लिए भाई, मुबारक. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. नॉन स्टॉप आप हमारे साथ जुड़ते रहे और फटाफट से आपने जवाब दिया और एस्केप रूम के आज आप लकी विनर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे सारे लिसनर्स का जो हमारे साथ नॉन स्टॉप जुड़ते रहे भाई. इसी के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का. कल आपकी मेरी मुलाकात होगी 1:30 PM एक नए चैलेंज के साथ. तब तक के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के, और अपनी परमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं. और अब जाते जाते कहना तो बनता है, हम हराही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. तो आप कहाँ जाएंगे, यहीं बने रहेंगे हमारे साथ. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, हमारे घर में रोजाना बहुत सी चीजें खत्म होती हैं, हो जाती है ना। जैम की बोतल हो गई, सॉस की बोतल हो गई, अचार का कंटेनर हो गया, कॉफी का डब्बा या किसी और ड्रिंक की बोतल हो गई। अच्छा, अक्सर हम इन्हें खाली करने के बाद सीधा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये खाली जार्स और बॉटल्स सिर्फ कचरा नहीं होते, बल्कि दोबारा काम आने वाली यूजफुल चीजें भी बन सकती हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं।

0: क्रिएटिविटी और एक छोटी सी आदत के साथ हम इन कंटेनर्स को नई जिंदगी दे सकते हैं साथियों। अच्छा तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि आज का इको स्विच हम रीयूजिंग जार्स एंड बॉटल्स के ऊपर कर लेते हैं बात, यानी पुरानी बॉटल्स और जार्स को दोबारा इस्तेमाल करके वेस्ट कम करना। अच्छा यहाँ पर ना पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। आजकल हम बहुत सी पैकेजिंग वाली चीजें खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट के साथ एक कंटेनर या पैकेजिंग होती ही होती है। जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो अक्सर औकात क्या होता है, हम कंटेनर को फेंक देते हैं बेकार समझकर। इससे वेस्ट बढ़ता है और नए कंटेनर्स बनाने के लिए मजीद रिसोर्सेज और एनर्जी का यूज होता है। साथियों ग्लास जार्स और बॉटल्स खास तौर पर ऐसी चीजें हैं जो अक्सर मजबूत होती हैं और अगर साफ करके रख ली जाएं तो तकरीबन कई चीजों में मैं कहती हूँ रीयूज हो सकती हैं। अब मसला ये नहीं है कि हमारे पास चीजें कम हैं, मसला ये है कि हम अक्सर उनकी दोबारा यूज की वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई इस मामले में सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जार और बॉटल्स को रीयूज करने के कुछ सिंपल आइडियाज हैं। देखें पहली चीज तो ये जो मैं खुद भी करती हूँ, किचन स्टोरेज के लिए इन्हें यूज करें। खाली जो ग्लास जार्स होते हैं उनको आप मसाला रखने के लिए, ड्राई फ्रूट्स स्टोर करने के लिए या पास्ता या ग्रेन्स रखने के लिए, मतलब जो ड्राई चीजें होती हैं उनके लिए आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इससे नए प्लास्टिक कंटेनर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भाई दूसरी चीज ये है प्लांट पॉट्स बनाएं, मतलब ये कि छोटी बॉटल्स और जार्स को क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट करके छोटे छोटे प्लांट्स या हर्ब्स जो होते हैं ना उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन हर्ब्स जैसे कि आपका हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, उनके लिए आप यूजफुल तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आप ऑर्गेनाइजिंग के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं, ये मेरी फेवरेट चीज है भाई। घर में छोटी चीजें जैसे बटन्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, क्राफ्ट मटेरियल्स हो गए, या वो छोटी छोटी हेयर एक्सेसरीज होती हैं लड़कियों की, पोनी और मजे मजे के क्लिप्स या पिंस, आप इनको इन जार्स में रखकर उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चौथी चीज ये है कि भाई आप इन्हें डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। अपने अंदर के पिकासो को जगाओ भाई। क्रिएटिविटी के साथ पुरानी बॉटल्स को कैंडल होल्डर्स, फ्लावर वास, डेकोरेटिव पीसेस, ये इन चीजों में बदले जा सकते हैं। ट्रस्ट मी मैंने करके देखा है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीफिल कल्चर अपनाएं। अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सेम बॉटल्स या जार्स को रीफिल करना पॉसिबल होता है, इससे पैकेजिंग वेस्ट कम हो सकती है। अच्छा अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाना साथियों, तो बहुत से लोग अब अपने घरों में रीयूज कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज कॉफी जार्स को किचन ऑर्गेनाइजर्स बना लेती हैं, मेरी तरह। कुछ लोग पानी की बॉटल्स को प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, हाँ ये भी मैंने कर देखा है, बहुत यूजफुल है। कुछ क्रिएटिव लोग जार्स को डेकोरेट करके बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर आइटम्स बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक सिंपल ग्लास जार जो पहले डस्टबिन में जा रहा था अब किचन की डेकोरेशन या स्टोरेज का हिस्सा बन सकता है। भाई यही तो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है, पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसे नई पर्पस देना। तो साथियों आज का हमारा इको स्विच चैलेंज ये है, आज आप अपने घर में ये झांकें, जरा देखें कि कितने एम्प्टी जार्स या बॉटल्स मौजूद हैं। उनमें से कम अज कम एक चीज को तो रीयूज करने की कोशिश की जा सकती है। और हमें जरूर बताएं आप अपनी पुरानी बॉटल्स और जार्स को किस तरीके से यूज करना पसंद करेंगे, स्टोरेज में, प्लांट्स या डेकोरेशन में, किस चीज के लिए। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए हर खाली जार कचरा नहीं होता, कभी कभी वो एक नया मजबूत सॉल्यूशन होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिस इज देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे गुस्से के रिएक्शन को कंट्रोल करने के बारे में। गुस्सा एक फितरी जज्बा है, लेकिन असल हिकमत ये है कि हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं। अक्सर इंसान गुस्से में फौरन रिएक्ट कर देता है, जो बाद में नदामत का सबब

0: बनता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से वक्त सब्र और खामोशी इख्तियार करें, थोड़ा रुक जाना, पानी पीना या जगह बदल लेना भी मददगार होता है। रिएक्शन को कंट्रोल करना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है। जो इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकता है। गुस्से में दिया गया रिएक्शन रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि कंट्रोल उन्हें बचाता है। आज का अमल यह है कि जब भी गुस्सा आए फौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा सा रुक के सोचें और फिर रिएक्ट करें। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बरा का FM 107 पे RJ मावश के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
3: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ रोबोटिक्स की। क्या रोबोट्स फ्यूचर बिजनेस, क्या फ्यूचर का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगा? जी हाँ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर और रिटेल इंडस्ट्री तक एंट्री ले चुके हैं। इनकी एंट्री घरों में भी हुई है लेकिन उतनी कॉमन नहीं है। लेकिन फ्यूचर में रोबोट्स रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैंडल करेंगे, जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव रोल्स पर फोकस रखेंगे। यहाँ वेयरहाउसेस में रोबोट्स प्रोडक्ट पिक करने, पैक करने का काम तो कर ही रहे हैं। होटल्स में रोबोटिक असिस्टेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक सिस्टम सर्जरीज में डॉक्टर की मदद कर रहे हैं। वहीं फ्यूचर के टाइम में रोबोट्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट लोकेट करने, उन्हें हेल्प करने, शेल्फ करने में और रीस्टॉक करने में भी मदद करेंगे। लॉजिस्टिक कंपनीज AI पावर्ड रोबोट्स के जरिए ऑर्डर्स को पहले से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस कर सकेंगी। एक बड़ा सवाल भी मेरे जहन में आया, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के बढ़ते हुए रोल को देखते हुए बिजनेस को ह्यूमन वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी के दरमियान बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? देखिए, आज हम AI की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, रिटेल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की बात करते हैं। अगर आप 2035 की दुनिया को सोचें, इमेजिन करें, तो आपके नज़दीक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या सामने होगी? कौन सी ऐसा चेंज है जो हमें और आपको डरा सकती है, घबरा सकती है? तो उसमें एक बड़ा चेंज है रोबोट्स का। दोस्तों, आज हम जिस दौर में रहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो करी और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। पहले रोबोट सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज में हमें दिख रहे थे, आज जैसे मैंने कहा बैंक्स हो, होटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स के साथ हर जगह नज़र आते हैं। देखिए, ऑटोमेशन का मकसद रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को जो है वो परफॉर्म करवाना है। इससे कंपनीज की एक तो टाइम की बचत होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है और एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स कंपनीज का वेयर हाउस में रोबोट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, शेल्फ से उठाना, पैकिंग करना कितना कंपनी के लिए यूजफुल होता है। जो काम पहले घंटों में होता था अब मिनटों में होता है। रिटेल सेक्टर में भी रोबोट्स का रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, होटल्स हो या एयरपोर्ट्स हो। आपने देखा है कि रोबोटिक असिस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ होटल्स में रोबोट्स गेस्ट को रूम तक गाइड करते हैं या फिर रूम सर्विस डिलीवरी करते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटिक पैसेंजर्स को क्विक चेक इन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जब रोबोटिक और ऑटोमेशन की बात होती है तो अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या रोबोट्स ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस कर देंगे? हकीकत ये है कि रोबोट्स उन कामों को ऑटोमेट करेंगे जो रिपीटेटिव और रूटीन नेचर के हैं, जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसे रोल्स पर फोकस करेंगे। फ्यूचर में नए प्रोफेशंस भी क्रिएट होंगे, रोबोटिक इंजीनियर्स होंगे, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट होंगे, AI ट्रेनर्स होंगे, स्मार्ट सिस्टम मैनेजर्स होंगे। ये टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करेगी लेकिन साथ ही नई जॉब्स भी पैदा करेगी। आने वाले 10 सालों में हमें ऐसी कंपनीज देखेंगे जो ह्यूमंस और रोबोट्स के कॉम्बिनेशन से काम करेंगी। रोबोट्स स्पीड और एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे, वहीं ह्यूमंस इमोशंस और डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे।

0: तो उस तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन का इस्तेमाल नहीं है बल्कि बिजनेस एफिशिएंसी और इनोवेशन का एक नया चैप्टर भी है जो ऑर्गेनाइजेशंस इन टेक्नोलॉजी को समझकर अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा प्रोडक्टिव कॉम्पिटिटिव फ्यूचर रेडी होंगी फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्कप्लेस वो होगा जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट मिलकर काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि

चलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: टाइप के बच्चे खाते भी नहीं है
1: जी जी,
0: तो इनको कैसे आपने मतलब उस चीज से कैसे डील किया कि क्या क्या एडवाइस रही उस टाइम?
1: इसके टाइम पे एडवाइस ये रही कि बिजी रहती हैं और मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत रोल है।
0: तो ये दूर कैसे रखा है इन बच्चों के?
1: दूर तो लेकर कोई भी नहीं है,
0: कोई रखे
1: ये मैं झूठ नहीं बोलूं,
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ, ये तो हम वैसे ही कहेंगे, दूर कोई भी नहीं है।
0: वेरी नाइस, ओके।
1: लेकिन ये है कि इन्हें पता है कि इनको बता दिया है कि तुमने अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करना,
0: फन बता दिया,
1: फन भी करो आप, अपने दोस्तों से बात भी करो, लेकिन अपना टाइम ये नहीं कि एक ही जगह सब खत्म कर दो जिससे कि दिल भी हट जाता है उस चीज से। लेकिन मेरे हस्बैंड का ये रूल है कि रात को 11 o'clock पे इनके सब गैजेट्स वो ले लेते हैं, इवन टीवी का रिमोट भी।
0: ओहो, अच्छा, ओके।
1: जी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कितनी भी बोलती रहे कि हमारा ये अर्जेंट वो अर्जेंट, ये तो एक फैक्ट है।
0: अच्छा, ठीक है,
1: उससे इनको आदत पड़ गई है।
0: हाँ, सही फैक्ट भी है।
1: और कभी कभी वीकेंड पे लोग करती है तो हमारे सामने सब इंजॉय करना, जो भी फ्रेंड्स के साथ बातचीत है वो सब सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो देखिए, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।
0: हाँ, वो तो मैं तो।
1: और ये सोशल मीडिया का जाल ऐसा है बना हुआ पूरी दुनिया में कि आप
0: बच नहीं सकते।
1: बच्चे जो उल्टा है, बच्चे मुझे रोकते
0: क्या चल रहा है?
1: मेरी बेटी मुझे समझाती है।
0: सारा कितना रहती है मम्मी सोशल मीडिया की, रहता है इनका मतलब?
2: ये जो न्यू रील्स शुरू हुई है इसके कुछ ज्यादा एडिक्शन है, हर कुछ भी आता है रील्स पे तो जी बिलीव कर लेते
0: हैं।
1: मेरा तो भैया
2: टोट के है, लाइक रेसिपीज है, फूड रेसिपीज और ना इन्फ्लुएंसर्स, इनकी लाइफ वगैरह।
0: अच्छा, वैसा सीन है क्या? वो आजकल एक वो टिपिकल AI आवाज में भी,
2: जी जी जी, वो जो बेबीज होते हैं उनके ऊपर AI वॉइस ओवर, वो बहुत
0: नहीं मिलता। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट वैसे भी आते हैं ना बोलने वाले, और माँ बाप का अक्सर कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आई थिंक उससे डील करना पड़ता है। बट आप पे, अच्छा आप बताइए।
1: मैं एक्चुअली ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर, जेन्युइन डॉक्टर, उनको फॉलो करती हूँ। वो घरेलू नुस्खे भी बताते हैं और वो वर्क भी करते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ये स्कॉलर्स हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स,
0: अच्छा, ओके,
1: इस तरह की चीजें, और अपना फन भी, कॉमेडी,
0: थोड़ा फालतू भी देख लीजिए,
1: कॉमेडी। हाँ, मैं कॉमेडी देखती हूँ ना, मुझे हंसी, जब मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत फन फील हूँ।
0: अच्छा, ओके,
1: क्योंकि फन फील होना चाहिए ना लाइफ में, सारी चीजें हों।
0: हाँ, तो
1: है कि नहीं?
0: ये बात तो देखिए बड़ी जरूरी है, और आपको तो पूरा खुली छूट है, आपको कौन
1: काम कर रहा है? मैं तो वहाँ
0: घर की हेड है। और सारा आपके पेयर, पूरे जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे, लाइक हैव यू सीन?
2: जी, मेरी बहुत फ्रेंड्स है जो मतलब पूरे टाइम दे लिव ऑन सोशल मीडिया, रील्स पे, लाइक यू नो, सब हर चीज का अपडेट होता है उनके पास, हर चीज उन्हें पता होती है, दूसरों की जिंदगी क्या चल रहा होता है, तो इस तरीके से गॉसिप भी मिल जाती है मुझे उनके थ्रू।
0: हाँ, ये कुछ लोग ना स्नैपचैट पे पैर के नाखून भी डाल देते हैं,
2: जी जी,
0: स्ट्रीक बढ़ाने के लिए,
2: कुछ ज्यादा ही, जी
0: कुछ ज्यादा ही है, राइट। तो डू यू फील लाइक एवर कैसा होता है कि नो आई शुड कम आउट एंड टेल माय पोस्ट कर देंगे इसमें क्या एक कसम का पेयर प्रेशर है?
2: नहीं, इतना नहीं,
0: नहीं,
2: मुझे प्राइवेट रहना ज्यादा पसंद है, बिकॉज आई बिलीव इन नजर बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग
0: बिलीवर,
2: स्ट्रॉन्ग बिलीवर नजर में, और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अब AI का जमाना है, यू नेवर नो, हर चीज, यू नेवर नो, कोई आगे वाला बंदा कुछ भी स्क्रीनशॉट कुछ भी बना सकता है।
0: अरे लोग किसी को चैन से कॉफी नहीं पीने देते
2: जी, वो कॉफी में किसी को खड़ा कर देंगे एडिट करेंगे, यू नेवर नो।
0: अच्छा, और घर पे ज्यादा कन्विंस करना किसे आसान है, अब्बा को या फिर अम्मा को, कौन ज्यादा?
2: मम्मा को, अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है।
0: ठीक है, तो एक देखो गुड कॉप बैड कॉप खेलना पड़ता है, तो आई थिंक वो सही खेल,
2: आई थिंक वो नेसेसरी है, बैलेंस जरूरी,
0: बैलेंस जरूरी। तो ये डिसाइड होता है ना, जैसे माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि देखो मैं गुस्सा करूंगा, तुम संभाल लेना,
1: ऐसा होता है। वो कहते हैं कि अम्मा से पूछो,
0: अम्मा से
1: मैं लेकर जाती हूँ इनका प्रपोजल। अच्छा। फाइनल वही करते हैं कि अब्बा से पूछो, और वही छोड़ के आते हैं, कहीं जाना होगा, आना होगा, कुछ ये प्लान्स होते हैं तो सब बताते हैं कि हम फ्रेंड्स के जा रहे हैं, इतनी देर में आना है, ऐसे जाना है।
0: और वेरी नाइस, ये सिचुएशन सही है।
1: और इनको जैसे हम मेट्रो से ज्यादातर, जैसे अक्सर होता है ना खुद ड्रॉप करना, वो हस्बैंड का भी करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप मेट्रो से जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खतर गवर्नमेंट की सर्विसेज, मैं कहती हूँ, मैं दिल से दुआएं देती हूँ, इतनी जबरदस्त यानी सिक्योरिटी, क्या बाहर निकले तो पुलिस है हर जगह, आउट ऑफ सडन आ जाती, कोई किसी को उसकी परमिशन के बगैर ऐसे ऐसे भी नहीं देख सकता। मेट्रो सेफ, सब सेफ है, बसेस सेफ है, हर जगह कैमराज बहुत जबरदस्त। तो मैं दुआ देती हूँ इस खतर गवर्नमेंट को कि इसने ना हमें बहुत सुकून दिया, अल्लाह पाक इस पे नजर का साया न बना रहे, और बिल्कुल ये सेफ रहे कंट्री, और बस बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह हम लोग बहुत सुकून से हैं यहाँ।
0: बेशक, वो बात तो है। और जब ये स्कूलिंग थी, स्कूलिंग यहाँ पे हुई है तुम्हारी?
2: जी जी।
0: अच्छा, तो यहाँ पे स्कूलिंग हो रही थी, तो कितना घर से कितना दूर था स्कूल?
2: 15 minutes, 20 minutes।
0: कैसे जाना होता था?
2: अबू ड्रॉप करते थे, कार से जाते थे।
0: कभी मन में आया कि बस से चले जाओ?
2: बस से मैं पहले जाती थी, पर बहुत हेक्टिक होता था, लाइक यू नो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता था, वो बहुत जल्दी आ जाती थी, एंड मेरी इतनी बार बस मिस हुई है, मेरे अब्बू लाइक बस के पीछे जाते थे कार लेके।
1: और मेरी एक बेटी अभी बस से ही जा रही, क्योंकि वो सिंगल अभी जा रही है, इनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई तो इनका रूट अलग है, तो वो बस

0: से जा रही हूं।
1: पर आपको लगता नहीं, मतलब जैसे मैं एक चीज मानता हूं यहां पे बस का एक ऐसा मसला रहता है, जैसे भी सारा ने बताया कि बहुत अर्ली उठना पड़ता है, आने जाने में एक घंटा आपको ऐड करना ही पड़ेगा, बट वो जो बस में जो दोस्ती होती है ना,
0: जी जी जी,
1: वो बड़ी कमाल की
0: है
1: ना, वो क्योंकि वो दोस्त आपके क्लास वाले नहीं है, यू माइट एज वेल फाइंड समबडी जो आपका जूनियर से ना कोई भी हो सकता है, और बड़ी कमाल की दोस्ती होती है, तो उस पे एक रहता है नहीं। तो कभी आपने इन्हें पूछ के बेटा बस से क्या अब्बा को छोड़ने के लिए?
0: हाँ नहीं, ये तो लिंक से इससे जाती है, मेट्रो से जाती है।
1: अच्छा, नहीं पहले जब था
0: तो पहले तो ये था, अभी जैसे सामिया है ये जाती है मेरी बेटी, तो ये बहुत फन करती है, नाश्ता लेकर जाती है, लोग नाश्ता करते हैं, रोल्स की अम्मा आपके रोल्स बहुत पसंद है सबको, इस तरह
1: के हमें कब खिला रही हैं आप रोल्स?
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: कौन से रोल बनाती हैं आप?
0: बस ये टेंडर्स होते हैं और जो ये पीता ब्रेड होती है, बस इसमें चीज और थोड़ा टेंडर्स, होममेड होते हैं सब, थोड़ी सी
1: दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? हम भी तो नॉर्थ,
0: इंशाल्लाह खिलाऊंगी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, कभी भी आप लोग आइए।
1: ये मैंने मैंने अपनी अपॉइंटमेंट यहीं फिक्स कर ली है। अच्छा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ मदर आपके जहन में होता है जब बच्चे होते हैं, तो आपको लगता है फैमिली को एक साथ रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हर किसी का अपना एक तरीका है
0: जी, सबका तरीका होता
1: है। कुछ लोग कहते हैं कि घर के कुछ सर्टन रूल्स हैं, डिनर हम साथ में करेंगे या फिर साथ में करेंगे या फिर विल वॉच समथिंग, तो आपका क्या घर में क्या रूल है, हाउ टू सब एक साथ कैसे रखती हैं?
0: एक्चुअली टाइम के इश्यूज है यहाँ पे,
1: वो तो ऑब्वियसली
0: क्योंकि ये आती है 5:30 6 o'clock,
1: राइट,
0: एक बेटी आती है 2:30, कुछ बच्चे आते हैं 2 o'clock पे,
1: ओके,
0: तो उनके सबके टाइमिंग अलग है, लेकिन सबके टेबल पे खाना रेडी रहता है, तो वो मैं सबके साथ ही रहती हूँ खिलाने के टाइम पे, तीन छोटों के साथ, हस्बैंड का भी टाइमिंग ऐसा होता है अपना लंच लेकर जाते हैं, तो वहाँ को रात को डिनर करते हैं, तो सब ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं, साथ बैठते हैं, कोई टीवी देखता, अब क्या है ना सब जरा सा फ्रेश होना चाहते हैं, उस पर बर्डन नहीं होता हमारे, किसी को सोना है वो थोड़ी देर सो जाए, ये अपना रेस्ट करती है। माशाल्लाह बहुत यूनिवर्सिटी से पहले इनके अंदर बहुत मेच्योरिटी, माशाल्लाह भाई, पहले ये जो है इतनी हेल्प वगैरह इतनी ज्यादा वो नहीं करती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के बाद ये पूरा देखती है मेरा, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, और मैं बहुत खुश हूँ उनको यहाँ रोक के। पहले मैं चाहती थी कि चलो बाहर कहीं चली जाए बच्चे, थोड़ा मुझे भी जिम्मेदारी, लेकिन पता है आजकल की सिचुएशन हालात से बस मैं चाहती हूँ बच्ची है, 40 मिनट में पहुंच जाती है, सारे अपडेट्स देती रहती है, घर आ जाती है, तो मतलब अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह यकीन करे एक वक्त ऐसा आया कि मैं बिल्कुल सुन हो गई थी। ये हर पेरेंट्स की लाइफ में आता है, देखिए ऑन एयर सुन रहे होंगे सब लोग, 12th के बाद कितने भी प्लान बना लो
1: सब फेल है,
0: लेकिन पता नहीं क्या होता है, बता नहीं सकती, तो मेरे 6 महीने यकीन करें पूरे टाइम सिर्फ इसी में गए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर अल्लाह से बहुत दुआ मांगी और तस्बीहें पढ़ी, इतनी तस्बीहें पढ़ी कि मेरे बच्चे, जैसे मेरा काम हो गया तो छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मा आपको तस्बीह चाहिए, तो मैं कहती हूँ हाँ दे दो
1: यार। अच्छा, ओके।
0: हाँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग ऐसे करते काम हो जाता फिर थोड़ा पीछे हो जाते अब
1: ये तो बात है, ये तो जब तक जरूरत है ना तब तक बहुत बहुत उसके बाद
0: अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अब मुझसे पूछते रोज रात में अम्मा आपको तस्बीह चाहिए, मैं हाँ दे दो
1: सारा। वैसे कभी लेट आना हुआ है, मतलब जरूरत पड़ी है कि अभी लेट होने वाली हूँ, कुछ भी हो सकता है कुछ?
2: जी जी, ये तो होता है, लेकिन होता है
1: कन्विंस करना, वाज इट लाइक इट बिकम्स डिफिकल्ट? अब तो नहीं होता यूनिवर्सिटी
2: नहीं, अब तो मैं यूनिवर्सिटी हूं, बट लाइक उन्हें घबराहट ना हो या कुछ ना, तो आई कीप देम अपडेटिंग, मैं पिक्चर्स भेजती रहती हूं, आई एम कॉलिंग देम कि जी अम्मा मैं यहां पे हूं, मुझे टाइम लग जाएगा, सो कि मैं होमवर्क कर रही हूं कुछ, जी तो मैं करती रहती हूं।
1: अपने कुछ चीजें जो है मम्मी को सिखाने कुछ करते हो, लाइक डू यू शेयर मीम्स एंड एनीथिंग, डू यू शो हर कुछ ऐसा है?
2: जी कुछ रील्स होती है जो आई फाइंड फनी एंड आई नो कि हमारा लाइक ह्यूमर थोड़ा सिमिलर है, सो आई शेयर रील्स विद देम, उन्हें बहुत हंसी आती है।
1: और कुछ दिखाया है मम्मी को कुछ देखते हो तुम सीरीज और मूवीज व्हिच यू डोंट बिलीव कि उनको पसंद आई है बट यू ट्राई टू शो हर?
2: जी आई नो दिस लाइक यूट्यूब चैनल्स वगैरह, तो यू नो उसमें लाइक थोड़ी जेन जी टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है, बट मम्मा को बहुत मजा आता है तो मैं उन्हें दिखाती हूँ,
0: लेकिन मैं फिल्म वगैरह मैं बता दे मुझसे बैठ के नहीं देखा जाता एक्चुअली, 3 hours या कोई सीरियल, टाइम एक तो कम है, मैं चाहती हूँ कम टाइम है, लेकिन मैं अपना फन दूसरे टाइप से कर लेती हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ।
1: अच्छा।
0: मुझे फ्रेंड्स के साथ बैठना
1: घर में सारे सोशल है, कोई एंटी सोशल भी
0: नहीं? नहीं सब सोशल है माशाल्लाह,
1: क्या बात है,
0: खूब सोशल है, मेरे छोटे बच्चे भी सोशल है। नहीं पता क्या, हम लोग ऐसे है बैलेंस सोशल, मतलब अपने वीकेंड पे हो गया, वीक डेज में तो देखा सब लोग बिजी है, क्या है ना चाह कर भी वीक डेज में सब बिजी है, रूटीन ऐसे बने हुए, लेकिन जब वीकेंड आता है तो हम घर में भी कर लेते हैं, पार्क में चले जाते हैं, चाय पी लेते हैं, आउट ऑफ 7 पॉटलक कर लिया कि जो जहाँ है बस पहुँचो, तो मैं जरा एनर्जी डाल देती हूँ लोगों में, थके पिटे भी पहुँच जाते हैं।
1: अच्छा, आप ही ट्रिपल ए बैटरी है मैं समझ रहा हूँ
0: जी, तफरी है बस, हंसी मजाक थोड़ा ये चलता है।
1: अच्छा, एज मदर क्योंकि पूरी जिंदगी तो सैक्रिफाइस हो जाती है बच्चों की, और ये एक होता है ना कि एक लड़का होने के नाते, एक लौता बच्चा होने के नाते, आई नाउ अंडरस्टैंड, उसको भाई बहन नींद के तो है, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, अभी माँ बाप घर पे वहाँ पे तो एक रहता है।

0: कि उन्होंने भी कुछ सपने देखे होंगे, तो आप आपका कुछ सोल एम्बिशन है जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, बच्चों का वालों का कुछ अपने लिए कुछ
1: मेरे अपने लिए?
0: हाँ अपने लिए।
1: सबसे पहले मैं हर मदर को, हर लेडी को, हर किसी को कहना चाहूंगी, प्रायोरिटी में अपने आप को रखना है।
0: हाँ, तो आपका क्या सपना है?
1: मेरा है कि मैं अपने आप को एक बहुत खुश, मतलब सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है।
0: ओके।
1: जो कि हम लेडीज क्या होता है ना, सब भूल जाते हैं, बिजी इतना रखते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि मैं बिजी नहीं हूँ, मेरे माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन मैं अपना टाइम जरूर निकालती हूँ।
0: तो मी टाइम में क्या करती हैं?
1: मी टाइम में मैं अपने मतलब ड्रेसिंग का बहुत शौक है।
0: माशाल्लाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है।
1: और मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी कुछ काम वगैरह करती हूँ जी, अपना ऑनलाइन काम देखती हूँ। मेरा पैशन है ये ड्रेसेस वगैरह का, और कुछ भी जो भी ऑनलाइन मैं कर सकती हूँ।
0: अरे बहुत बढ़िया, ये कभी मत रुकिएगा, यही मैं जाना
1: चाहूंगा, नहीं रोका कभी भी।
0: वेरी नाइस। आप घर में बार्गेनिंग में कौन सबसे बढ़िया है? कभी बार्गेनिंग करते हुए
2: ऑब्वियसली मेरी मम्मा। ये जवाब आपको पता है,
0: ये जेनेटिकली नहीं दिया आपने, इनको सिखाया नहीं कैसे बार्गेनिंग?
1: लोग ऐसा मौका ही नहीं पड़ता कभी भी मॉल से कुछ ले लिया है ना। हाँ, हमारा भी अब नहीं पड़ता।
2: मुझे बहुत मजा आता है करने में, मुझे कहीं जगह मिलती नहीं, लेकिन सूख में जाती हूँ तो मैं ऐसी मजे मजे के लिए करती हूँ, चाहे मुझे लेना ही है नहीं कुछ, बस फ्रेंड्स के साथ मजे।
1: बस ये हमारा टाइम है कि अच्छे से हम अपना, मतलब हर लेडीज को देखिए, एक होता है, देखिए क्या होता है, मैंने अभी कुछ ऐसा एक अपना QNL में एक ऑडिटोरियम में एक मैंने प्रोग्राम में मैं गई थी, शरीक हुई थी, तो वहाँ पे मैं बड़ा अच्छा एक पेरेंटिंग के ऊपर वो था।
0: अच्छा।
1: जिसमें वो ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्होंने कहा कि आप ना मास्टर्स और ये PhD सब लेडीज ने कैरियर जो है बच्चों के ऊपर बिल्कुल खत्म कर दिए, वो उनको अपना कैरियर बना के बैठेंगे। मैं कहती हूँ बच्चों का कैरियर होना चाहिए, मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि आजकल लाइफ में कैरियरिस्टिक होना जरूरी, लड़का हो या लड़की,
0: स्किल आनी चाहिए
1: जी, स्किल्स बहुत जरूरी है, मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है स्किल का, तो स्किल्स भी होने चाहिए और कैरियर पे भी ध्यान। लेकिन अपने लिए जैसे मैंने देखा कुछ पेरेंट्स, कुछ लेडीज हैं जो कि बहुत ही हाई स्टडी और PhD है, घर में कोई जॉब नहीं, अब वो चाह रही है लेकिन अब उनको नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो बस मेरा ये है लेडीज से ज्यादातर कि बैलेंस बनाकर चलो, बना सकते हैं, देखिए 24 आवर्स में हम टाइम निकाल सकते हैं।
0: हाँ, हाँ, वो बहुत जरूरी है।
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।
0: और सारा क्या क्या लिया मम्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर सिमिलैरिटी है?
2: आई थिंक बीइंग सोशल।
0: अच्छा।
2: आई गॉट दैट फ्रॉम मॉम, बिकॉज अम्मी पता है किसी से भी कहीं भी बात कर लेती हैं, इट्स सो इजी फॉर हर टू सोशलाइज एंड आई लाइक दिस सो मच, बिकॉज अब मैं भी उनसे थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ, आई कैन मेक फ्रेंड्स। अब यूनिवर्सिटी में मुझे ये बहुत काम आ रहा है, लाइक
0: डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई है यूनिवर्सिटी
2: जी, लाइक यू नो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग होते हैं, इट्स इजी फॉर मी टू टॉक टू देम। मेरी जो फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी लाइक इंट्रोवर्ट टाइप, तो उनसे इतनी आसानी से बात नहीं होती, तो मैं ही दोस्ती कराती हूँ सबके आगे।
0: ये भी सही है, ये भी।
1: और एक चीज ये कहती है, अम्मा आप कहीं भी जाए तो अपना जरा सही से जाए, जैसे मैं अक्सर होता है ना ऐसी बंदा रात के 1 बजे निकल रहा है गाड़ी में बैठ के, ड्राइव भी करती हूँ माशाल्लाह से मैं, तो ये कहती है कि आपके जानने वाले हर जगह मिलते हैं।
0: ये अच्छी बात है, बुरी बात लगती
2: है? ये
0: बुरी नहीं, मतलब
2: अच्छी बात भी है थोड़ी, इतनी अच्छी बात भी नहीं है।
1: मैं क्या करूँ, मैं कहती हूँ ना कि आप लोग आ जाओ और पहचान लेते हैं मुझे लोग।
2: हम कहीं भी जाए ग्रोसरी या कहीं, मैं कहती हूँ पक्का यहाँ कोई मिलेगा हमें, और हमें मिलता है 2-3 पीपल हमें मिल जाते हैं।
0: बात है, मतलब उसके प्रोस भी हैं, कौन से
1: भी हैं। सोशल क्राइटेरिया बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, ये बता दूं आपको।
0: है, मगर लाइक
1: मैं 24 इयर्स यहाँ हो गए मुझे कंप्लीट।
0: हाँ, तो 24 साल
1: कतर में
0: तो इतना तो बनता है।
2: और कतर तो वो छोटा है वैसे भी।
1: मेरा थोड़ा सा ऑनलाइन काम भी है।
0: अरे अलीगढ़ में पूछो लोग जानते होंगे, वो इतने बाजड़ दियोगे
1: वहां तो अब भूल गए सब ज्यादातर, अब सब यहाँ जानते हैं।
0: कैसा लगता है तुम अलीगढ़?
2: अलीगढ़ मैं इतना नहीं गई हूँ, I've never been to India इतना ज़्यादा, but just like you know born and brought up यहाँ पे, मेरी यहाँ पे जो मेरे friends हैं वो मेरी family है।
0: पर कोई जगह ऐसी लगती है इंडिया में कि you want to visit?
2: इंडिया में I want to visit Delhi life, like जो local Delhi life है।
0: चलो आज जीत गए हम, बहुत-बहुत शुक्रिया। Finally
2: like I've been to Delhi mostly, अलीगढ़ मैं नहीं गई इतना, UP के side I've never been that much, I've been बहुत ज़्यादा Delhi थोड़ा-थोड़ा गई हूँ।
0: हम दिल्ली वाले यही कहते हैं, हम हमारी तरफ हर कोई आना चाहता है, बट वो जो दूसरा फैक्टर है ना, वो
2: I'm just very scared to go out.
0: Yeah, because एक different set of skill चाहिए आपको दिल्ली में survive करने के लिए। क्या तुम्हारे plans, क्या what is your ambition, main goal का है, कहाँ बढ़ रही हो तुम, नाक की सीध में किधर जा रही?
2: देखो अभी मेरे भी इतना सडन चेंज ऑफ प्लान्स हुआ है,
0: लाइक फॉर ड्रीमिंग किस चीज के बारे में करती हो कुछ है?
2: आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल, लाइक अच्छा जो भी करूँ मैं अच्छा करूँ मुझे खुशी होए बाद में आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक मैं रिग्रेट करूँ किसी चीज का सो आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग
0: देखो जैसे मैंने बताता हूँ आई गिव यू एन एग्जांपल यहाँ पे कई लोग गए और उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या गोल है तो लड़कों का तो रिप्लाई ऐसे होता है ना वो आए बोलोगे हमारा एक ही प्लान है भाई सब कुछ कर करा के पार्टी पे चले जाएंगे बढ़िया बकरे वगैरह चलाएंगे मौज करेंगे तो ऐसा कोई अल्टीमेट चीज दिमाग में आई है कि यू नो व्हाट आई विल डू ऑल दीस थिंग्स एंड दिस इज वेयर आई वांट टू बी
2: Yes, I want to be somewhere peaceful.
0: Okay.
2: Matlab, I just want to be like have a good like house, mansion, banao, flat. So, ek island mein jaake rahun sabse dur.
1: Achha.
2: I need that.
1: Actually, main kehti hu, dekhiye.
2: I need that. This is what I need.
1: बच्चों की सबकी हाई थिंकिंग होनी चाहिए
0: हाँ,
1: और वो वर्क करती है
0: हाँ करती है क्यों नहीं करती
1: मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस
0: मैनिफेस्टेशन तो इस्लाम में भी यू हैव टू मैन यू हैव टू थिंक की बहुत बड़ी नेमत है
1: यूनिवर्स में सब घूमता है और इनको सारा को जो है कतर ही पसंद था कतर में ही रहना था इसको नहीं अच्छा लगता था एक या दो बार इंडिया गई है दो या तीन बार
0: अच्छा ओके
1: तो इनको ना अल्लाह ने ऐसा असबाब बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह यही यूनिवर्सिटी में
0: तो सोशली ओके था बिल्कुल अकेले आइलैंड में रहने से
2: कभी कभी मुझे ज्यादा लोग से ज्यादा
1: यहाँ है ना बनाना आइलैंड चली जाएंगी सिंपल
0: एंटी सोशल इंडक्टेड
1: जो कभी कभी कभी आइलैंड जा सकती है आइलैंड भी है
0: ये आइडिया मत देना पर कमिंग बैक टू दिस एक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आई नो के हमारे देसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है बट देन अगेन स्लीप ओवर्स आर देयर यू नो इन दिस प्रोग्रेसिव कम्युनिटी इट इज देयर आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव इट बट कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ना उसे दूर रहने पसंद करते हैं व्हाट इज योर टेक ऑन इट कभी तुमने पिच किया है इस बारे में
2: This sleepovers, night outs, ये सब yeah. I really love them. मुझे yeah. बहुत मजा आता है in yeah. sleepovers with my friends here. But कभी कभी it's just not, I don't feel right. Like मुझे इतना sometimes I just want to distance myself. Because
0: okay.
2: I don't want to be engaged इतना ज्यादा with the engaged people in my life.
0: Yeah.
2: मुझे खुद problem होने लगती है.
0: Yeah.
2: And I find it very disturbing. Fair, you know, I ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार.
0: Okay.
2: Like I usually just distance myself.
0: जाने में या फिर बुलाने में किसी को घर पे?
2: बुलाने में तो I have no इतराज. No. बिल्कुल भी इतराज नहीं है मुझे.
0: बुलाया कभी?
2: हाँ, everyone's welcome to my place.
0: Very nice.
2: पार्टी हम मेरे घर पार्टी वार्टी सब करते हैं हम. बट मुझे जाना कभी कभी थोड़ा जहर लगता है यू नो किसी और का घर और दूसरे रूल्स वगैरह और कभी क्या पता किसी की कितनी स्ट्रिक्ट फैमिली है और यू नेवर नो यू कांट डू
0: कौन सा रूल ब्रेक कर रही हो
2: हां वही तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट बिकॉज उनके पेरेंट्स की नजर में हम बुरे हो गए या कुछ यू नेवर नो कभी कुछ
1: इनकी फ्रेंड्स माशाल्लाह से मुझे बुलाती हैं
0: उनसे भी दोस्ती कर लिया
1: हाँ जब मीट पे बात करती
2: हूँ तो मम्मा को बहुत पसंद करती है
1: बुलाती है मुझे
0: अच्छी बात है तो उनको भी रोल मिलते
1: हैं मम्मा को बुलाओ थोड़ा सा
0: उनको भी रोल मिलते हैं खाने के लिए
1: जब वो आते हैं तो उनको भी मैं जब ये जाती थी ट्यूशन तो मैं देती थी पैक करके मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं मेरी आदत है खिलाने पिलाने की मेरे हस्बैंड की
0: मेरा हो गया सेट अच्छा तो तुम्हारा क्या कहना है अपनी जनरेशन में डू यू हैव अ मैसेज फॉर देम जो जो तुम्हारे इस फेज से गुजर रहे हैं लाइक यूनिवर्सिटी थोड़ा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है ना व्हेन यू
2: जी जी
0: कम आउट एंड यू गो टू
2: यूनिवर्सिटी
0: बहुत बड़ा चेंज है राइट उसमें क्या पॉकेट मनी का भी सीन है तुम्हारा कैसा सीन चल रहा है पहले तो ये बताओ
2: नहीं नहीं पॉकेट मनी इट्स ऐसी कोई वो नहीं है जो मुझे जरूरत होती है जस्ट आस्क हिम
0: ऐसे कोई हफ्ता महीने का
2: नहीं
0: व्हिच इज इन अ वे गुड अच्छा आप बताओ कि तुम्हारा क्या क्या मैसेज है व्हाट यू सी अराउंड एंड तुम्हें क्या लगता है क्या जरूरत है चेंज
2: आई थिंक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी सोशल सोशल होना बहुत जरूरी है जो भी इंट्रोवर्ट्स हैं दिमाग में लेके बैठे हैं कि नहीं हम तो बस अपनी क्लास जाएंगे वापस आ जाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज में दोस्त चाहिए
0: आप तो चाहिए
2: हर क्लास में दोस्त चाहिए कभी तुम कुछ स्किप कर दो या कुछ वही तुम्हारी हेल्प करेंगे जो छोटे मोटे क्विज होते हैं उस बोस्ट में भी तुम्हारी दोस्त हेल्प
0: नेटवर्किंग बेसिकली आजकल सीखनी बहुत जरूरी है
2: एंड कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो फ्यूचर में कितना काम आता है यू नेवर नो किसका रेस्टोरेंट है हमें डिस्काउंट मिल जाए
1: डिस्काउंट बहुत ढूंढते हैं लोग जहाँ भी जाते डिस्काउंट ढूंढते
0: कुछ गलत नहीं मैं तो बिल्कुल इसके
1: स्टूडेंट मैंने कहा था कि स्टूडेंट टाइम में स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए क्या आपके पास है 100 जाके चुपचाप शॉप पे स्पेंड कर लिया नहीं मैं कहती हूँ पहले ढूंढो सारे ऑफर हम एक साइड में गाड़ी पार्क करते हैं कहते हैं ऑफर ढूंढो फिर ऑफर ढूंढते हैं
0: कभी आपने इनके वो सेट किया है कि महीने में इतना इतना खर्चा हाथ खर्चा
1: नहीं ये खुद ही माशाल्लाह बहुत समझदार है और ये ज्यादातर घर का प्रेफर करती है इन्होंने पहले ट्राई किया बाहर फिर जब इन्होंने देखा कि वही चीज जो अम्मा बना रही है बाहर महंगी
2: नहीं मुझसे यूनिवर्सिटी में नहीं खाया जाता वहाँ के कैफे का बहुत गंदा खाना था आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी बहुत लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह और बहुत ओवरली एक्सपेंसिव
0: होता है। इतना चटोरा खाना बना रही है तो फिर क्या?
2: जी वही मुझे तो, और सारी मेरी फ्रेंड्स कहती है यार सारा आज तुम क्या लाई हो, दो दो हमें भी दो।
1: मैं इनको वैसे ही देती हूँ जैसे ना, जैसे ब्रोकलीज हो गई, कैरेट्स हो गए, स्टीम करके सॉटे करके जो रेस्टोरेंट में मिलते
0: हैं, फैंसी भी दिखे और
1: फैंसी भी दिखे, जी रोल्स हो गए ये सब, तो वो फिर अच्छा है ना, वो खुद ही इनकी चॉइस है, खुद ही नहीं खाती।
0: अच्छा
1: वो कहती मैं ये मनी सेव करूंगी तो मैं कुछ और बाय कर लूंगी।
0: और आप देखती होंगी आपकी बहुत सारी दोस्तों के उनके भी बच्चे हैं, उनको देख के ना कई बार होता है ना कि यू लर्न समथिंग, आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे अराउंड, मतलब मैं भी ना हूं और मैं इस चीज को समझती हूं, बट व्हाई आर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आपका क्या मैसेज है आपके उस फेज में जितनी भी है औरतें, हाँ, जो माँ है, हाँ, उनको क्या मैसेज है?
1: मतलब मेरा मैसेज यही है कि अब जैसे मेरी फैमिली है तो मैं अपने ही हिसाब से उनके नेचर के हिसाब से एडजस्ट करती हूँ,
0: राइट,
1: तो मैं कंपैरिजन नहीं करती,
0: नहीं कंपैरिजन नहीं मगर फिर भी
1: मतलब मैं, लेकिन मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, जैसे डिसिप्लिन हो गया और टाइम टेबल, जैसे बच्चों का, जो बच्चे माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हैं उनकी माया उनके साथ सपोर्ट और हेल्प कर रही है, मुझे इतनी ही खुशी होती है अल्लाह गवाह जितने मुझे अपने बच्चे की खुशी है। मैं हर बच्चे को सेलिब्रेट करती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर बच्चे को अलग अलग सेलिब्रेट, इवन मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी।
0: कमी क्या लगती है आपको आजकल, जैसे आप देखती होंगी आप बहुत सारे लोग जो है अभी पेरेंटिंग में, हम लोग उनको अभी भी सीखने की जरूरत है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है ना,
1: ड्रॉबैक्स
0: में क्या क्या लगता है जो आपको लगता है कि आपकी फेज में जितने भी लोग हैं उनको समझने की जरूरत है, कुछ ऐसा है?
1: बस अंडरस्टैंडिंग अगर है फैमिली में,
0: कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ,
1: कॉन्वर्सेशन भी जरूरी है बच्चों के साथ, और बच्चे ना मुझे ये लगता है कि फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली लोग कहेंगे कि फिर रेस्पेक्ट नहीं करते, ये चीज ज्यादा
0: ये ज्यादा आती है, यस यस।
1: तो आपका इतना ऑरा होना चाहिए कि इतनी हिम्मत नहीं हो, मेरा मैं फ्रेंड हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि बच्चे छोटे वाले एक डायलॉग बोलते हैं हमारे यहाँ कि बदतमीजी नहीं करना बेटा, शरारत शरारत कर सकते हो बदतमीजी नहीं, वो मुझे नहीं बर्दाश्त, ये पांचों बच्चों को मालूम।
0: आंखों का डर चलता है आज भी?
1: आंखों का इतना नहीं चलता फ्रेंकली, हस्बैंड का बहुत ऑरा हाई है माशाल्लाह, वो तो बस है, लेकिन वो मारते भी नहीं कुछ नहीं, लेकिन है मुझसे तो कम, हाँ पर्सनैलिटी मुझसे थोड़ा सा, बच्चे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बदतमीजी नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं बर्दाश्त बिल्कुल भी
0: नहीं है। सही है, इशारों का चलता है कुछ जोर के?
1: मेरा इशारा नहीं चलता
2: फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंकली,
0: पर ये भी सही है,
1: मेरा इतना नहीं चलता इशारा।
0: हाँ इसमें क्या करता
1: है, हस्बैंड से कभी कभी हेल्प मांगती हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैंने बस ये स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ, बड़ी बेटी हो या कोई भी, जो भी बैक आंसर देगा उसकी फिर हफ्ते भर की चीजें खराब होने लगती है।
0: तो सारा सबसे बड़ी है?
1: जी ये बड़ी है।
0: तो तुमने हुकुम चलाया है अपने भाई बहनों का?
2: जी एक्चुअली मैं एक बार में बिल्कुल थर्ड पेरेंट वाली वाइब आ गई थी, मेरे तीन छोटे सिबलिंग्स थे, उनमें माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक साल का गैप है उनमें, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में मेरे ऊपर भी लाइक बहुत ज्यादा लोड आ गया था।
1: लेकिन उससे ये बहुत ज्यादा सीखा है सारा तुमने।
0: वो तो है, वो तो ऑब्वियसली
1: माशाल्लाह ऑर्गेनाइज बहुत है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज करती है चीजों को।
0: जैसे एक और चीज देखी जा रही है आजकल, मेरी एक दोस्त है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जब उनका उनकी एक बेटा है वो भी 8-10 साल का हो गया, उसके बाद फिर उनका एक और बेटा हुआ, अभी क्या है कि उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि अरे मेरी जगह लिलीज ने,
2: जी जी
0: अब तो मेरी टेंशन सारी की सारी चली गई, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है?
1: मैं मेरे साथ ही एक्सपीरियंस है,
0: ऐसा हुआ है,
1: मैं आपको अपने फोटो दिखा सकती हूँ जिस तरह मैंने मैनेज किया आप फोटो से अंदाज और वीडियो से लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: जो कि मेरी बेटी बनाया करती थी, हाँ, क्योंकि तीन मेरे छोटे थे।
0: अच्छा,
1: तो उस टाइम पे मैं इस तरह हैंडल करती,
0: अटेंशन डिवाइडेड,
1: जी जी, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र, पता नहीं मैं तो कहती हूँ, अच्छा अक्सर मैं सुनने को मुझे मिला है इंडिया में भी यहाँ भी कि पेरेंट्स जो है थोड़ा सा वो हो जाते, लेकिन मैं हर बच्चे की अलग जिम्मेदारी और हर किसी का अलग टाइम है, कभी हुई होगी कमी, लेकिन पता
2: आई थिंक मम्मा ने हमेशा सब बहुत अच्छे से मैनेज करा है, शी हैज मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, हर सबको लाइक यू नो सेपरेट अटेंशन दिया हुआ है, व्हिच हैज हेल्प्ड अस ओवर द इयर्स ऑब्वियसली।
0: माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेन पार्ट ही रहता है ना
1: कि बच्चे भी बता सकते हैं, क्योंकि हम तो कहेंगे नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो बहुत अच्छा कोई भी नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं, वो देखिए वो
1: कमी है,
0: वो गलती भी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो होना ही है, लाजिम है,
1: सारी जिम्मेदारी यहाँ देखिए, हर मैं सारी जो भी यहाँ पे बाहर लेडीज रहती हैं बच्चों के साथ, तो कोई यहाँ तो है नहीं, जैसे किसी ने मुझे कहा रहे आपके बच्चे सलाम नहीं कर रहे जब छोटे थे, तो मैंने कहा दादी या फुप्पी तो है नहीं कि एक साइड में बिठा के सलाम सिखाती रहती, मैंने कहा जब ये बड़े होंगे तो बहुत अच्छा सलाम करेंगे, डोंट वरी, तो वो सिखाया हस्बैंड ने भी, तो लेकिन अब करते हैं
0: माशाल्लाह,
1: थोड़ा सा जैसे समझ आ गया, पता है क्या कुछ एज में बच्चे थोड़ा सा डिस्टरबेंस करेंगे, शैतानी करेंगे,
0: न्यूक्लियर फैमिली ना,
1: लेकिन जैसे थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होंगे ना, वो खुद ही माशाल्लाह सोसाइटी को देख के समझते हैं आजकल के बच्चे,
0: नो डाउट नो डाउट,
1: बहुत फर्क देखा मैंने बच्चों में, तो होता है, लेकिन वही सबको कम्फर्टेबल रहो, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पर आपको रोकना है, जहाँ चीजें वो तो करेंगे पेरेंट्स, फिर वो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करेंगे बच्चे,
0: जाहिर सी बात है,
1: वो तो है जरूरी।
0: कभी सारा जिद करेगी इस चीज को लेकर?
2: जिद ऐसी कोई जिद नहीं थी, बस इसकी जिद थी कि ये मुझे बैग चाहिए या वो मुझे
0: वो तो
2: मिल जाता है, मिल जाता है, पर वैसी कोई मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं।

0: बन मैं कर दी थी बस
1: हाँ वो तो चलता
0: है अब बड़े मैच्योरिटी के बाद तो माशाल्लाह बहुत
2: मैं पता नहीं किस चीज की जिद करूं आई थिंक कोई वो नहीं है पर आई थिंक कतर में कोई इवेंट चल रहा था कुछ तो मेरे दिल चाहते जाने के तो वहां पे तो ऐसे जिद कर
1: वो बनता है बट लास्टली मैं तुम दोनों को कहना चाहूंगा वैसे क्या
2: वैसे कोई कुछ नहीं था
1: वैसे ठीक है वैसे ये तो चलती
0: इनको इवेंट वगैरह में जाना होता है ना तो बेचैन हो जाती है इनको अच्छे लगते हैं इवेंट
2: जैसे ट्रेविस स्कॉट आया था यहाँ मेरा तो बहुत दिल था जाने का
1: नहीं नहीं ठीक है अगली बार बहुत सारे इवेंट्स आएंगे इंशाल्लाह जाओगे तुम पर कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों का यहाँ पे आने का कोई भी बता
0: बहुत ही अच्छा रहा बहुत रिलैक्स रहा और बड़ा अच्छा लगा दिल की बात करके और सही मतलब माशाल्लाह सही है कि पता नहीं ऑडियंस को हमारी बात किस तरह होगी लेकिन जो भी था वो जेन्युइन था और अच्छा लगा आपसे मिलके भी अच्छा लगा बहुत ही कंफर्टेबल किया आपने सबसे पहले
1: मैंने तो बोला था आपसे
0: माइंड रिलैक्स हो गया पहले ही
1: थैंक यू सो मच
0: घबराए नहीं हम लोग बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए
1: बड़ी मेहरबानी
0: और बस ये है कि
1: चलता रहे
0: पेरेंट्स को सबको बस मैं भी यही अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि ज्यादातर वही है कि आजकल की जो सोसाइटी है ना क्योंकि सोसाइटी में बच्चे उस लेवल पर ना पहुंचे वो किसी और से मशवरा नहीं लेने लगे
1: वेरी नाइस तो यही लाइन जो है वो बॉटम लाइन है हमारे
0: मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है हर चीज में मुझे बताते हैं मशवरा लेते हैं बस ये चीज नहीं आनी चाहिए कि बच्चे अपने दिल की बात किसी और से कर रहा है वो अब वो आप किस तरह मैनेज करेंगे आपकी फैमिली का होता है ना हर किसी का नेचर हर किसी की बस वहाँ बच्चा किसी और से ना अपने दिल की बात शेयर करे जो कि उसे कोई और गलत राह दिखा दे यहाँ तक हमें
1: एडवाइस लेने के लिए आप बने रहे बस
0: वही चीज
2: बस आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कि मेरे थोड़े स्केड्यूल से हटके थोड़ा सा मुझे टाइम मिला अपने यहाँ मेरी कोई अभी आउटिंग भी नहीं हो रही थी तो और मुझे बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा लाइक यू नो जनरेशनल गैप या डिफरेंसेस वगैरह बहुत टाइम से इस पे किसी ने बात नहीं करी तो आई थिंक ये अच्छा था मुझे अच्छा लगा यहाँ पर
0: अंडरस्टैंड तो देखिए हमें करना पड़ेगा जनरेशन गैप को हम पिछली चीजें ला नहीं सकते
1: अरे कैसे ला देंगे हाँ वो सुनेंगे भी नहीं
0: और हम भी चाह रहे हैं नई चीजों में आना आसानी हो गई ना हमारे लिए एक सेकंड में सब काम होते हैं
1: सीखना पड़ेगा साथ साथ कदम से कदम मिला
0: अल्लाह का शुक्र है मैं तो चलती हूँ बराबर बच्चों से पूछो आप तो मतलब अल्लाह का शुक्र है एंजॉय करती हूँ
1: नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके सच में वक्त का पता नहीं लगा हमने एक्चुअली मैं 30 मिनट्स बात करी विदाउट एनी ओमिट और एडिट रिक्वायर्ड जज़ाकअल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए अपना ख्याल रखिए बेहद
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीत एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीत टू हैबिट हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
4: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर दिल से देसी

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक, एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों फिलहाल 4:01 मान लो मेरा भाई।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: यार इतने दिन से जी रहे हैं लेकिन पता नहीं चला ये अगस्त का महीना कहाँ गया। अभी तो शुरू हुआ था यार, आज 17 तारीख भी हो गई, मतलब 10-15-13 दिन में आने वाली भी है फिर तो। अरे वो नहीं, सैलरी आने वाली। आप लोग तो यार, ये इंसान के बाद जो काम होता है ना वही इंसान जो है सोचता है कि हाँ अच्छा। मैंने देखो आने वाली की बात करी, आप क्या सोच बैठे। मैं नहीं लूंगा वो नाम, लेकिन मैं सेफ खेलते हुए सैलरी की बात कर रहा हूँ यार, आप लोग भी। खैर, द रिक्वेस्ट शो में इस्तकबाल है आप सभी का, और हर रोज़ की तरह आज भी लाजवाब थीम है। और मुझे लगता है कि जो हमें सुनने वाले लोग हैं उनके हिसाब से आज 70-80% हमें जो लोग होते हैं उनको गानों से मोहब्बत है, और उन गानों से मोहब्बत है जो उन्होंने अपने दौर में सुना है। तो उसी दौर के गाने लेकर एक बार फिर से मैं वापस आ गया, जैसे पिछले 3 हफ्ते से कर रहा हूँ, कि संडे को जब आता था तो वो पुराने वक्त के गाने लेकर आता था। और आज मैं सोचा, कल तो मैंने किसी और के गाने चला लिए, लेकिन आज मैंने सोचा कि ठीक है मंडे का दिन है, गाने थोड़े से 90s के हो जाते तो बाबू भैया मजा ही आ जाता, तो क्यों नहीं। अपन गाने जो है आज की थीम लेकर आ गए हैं। आज जो गाना प्ले होगा वो बॉलीवुड के हिट गाने जो 90s के थे, ठीक है, बॉलीवुड के हिट गाने जो 90s के थे वो ही गाने, यानी कि अब 89 वाला गाना नहीं चलेगा, लेकिन 90-91 से लेकर 99 तक के जो गाने हैं वो आपके लिए चल जाएंगे। बॉलीवुड के हिट गाने, लाजवाब झाइयां गाने होंगे, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और 666-22-107 यहाँ से आपको एंट्री लेनी है भाई साहब, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पास नहीं मांगेगा, बस 666-22-107 ये कोड है और यही व्हाट्सअप का नंबर है, बस इस पे आ जाओ और अपने मर्जी के गाने की बात कर लो।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, Only on FM 107, दिल से देसी।
1: 100% चार्ज हो जाने वाला मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है, लोगों के मैसेज की तरफ हल्लू से कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले ईशान भाई का मैसेज, सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईशान भाई ने सलाम करने के बाद यूसुफ भाई ने किया, ओके सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे इवनिंग, हैप्पी मंडे इवनिंग आपको भी मेरा भाई। फजील भाई, हम वो बदनसीब लोग हैं जो हैं ना, वो आते हैं ना सैलरी। ऐसे कैसे हो सकता है यार, सैलरी तो आती होगी हैं, अच्छा इंसेंटिव आता होगा आपका है। ऐसा ना कहो यार, कह रहे ना वो आती है ना सैलरी, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं मानता यार। मुदस्सर मंगा आप तो, या फिर ये बिजनेस वाले लोग होंगे, ये सैलरी देते हैं। बाबर बाप है तो भारी भर कम लोग हमें सुनने वाले हैं जी। गाना है महबूबा, ओ महबूबा इज ऑल्सो अ रियली ग्रेट सॉन्ग, ब्रदर प्लीज प्ले दिस वन टू। ओके मैं काशिफ भाई ढूंढता हूँ जरा ये गाना महबूब। अरे यार ये महबूबा के नाम से बहुत सारे गाने हैं यार, मैं कब तक ढूंढ ढूंढ के मेरी उंगलियां घिस जाएंगी ये लोग, लेकिन नहीं भाई बताएंगे कि कौन से मूवी का है। महबूबा ओ महबूबा किधर हो तुम, मतलब ये गाना मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला कोई सुन ले कर, अरे भैया कैसी बातें कर रहे। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, एक ओ मेरी महबूबा है, एक है महबूबा 1964 का गाना है। अब ये जो है मेरे को छानबीन करवाएंगे भाई साहब बहुत ज़्यादा। अब इसमें तो आर्टिस्ट का नाम भी नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक सिंगल आर्टिस्ट होता तो मैं समझ जाता। 2001 का 90 मेरी महबूबा है परदेश का, ठीक है, फिर 76 का 67, 2001 75 89, बहुत पुराने गाने भाई, 90s के कोई गाने मेरे को दिख नहीं रहे, एक ही दो गाने 94 की या हबीबी महबूबा तेरी महजबी। सोनू निगम का गाना है ये वाला, थोड़ा और क्या कहते हैं उसे, इन्फॉर्मेशन के साथ आइए, अधूरी इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती है भाई साहब, और मेरे लिए तो ज़्यादा खतरनाक होगी अगर मैंने ये गाना प्ले कर दिया तो। कोड़ा मैन आगे बैठा हुआ है, और कोड़े वाले आदमी जब फ्री रहते हैं ना तो उनको और दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता, अब उन्होंने कोड़े में एक एक दो दो कील लगाना शुरू कर दिया। अगर मैंने बाकी 13 दिन जो बचे हैं, हालांकि पूरे 13 दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अगस्त के महीने में जितने दिन बचे ये बच बच के हल्के हल्के कदम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इन्होंने अपने कोड़े में लगा लिया है कील, और कहीं वो कोड़ा पड़ गया मेरे को भाई बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आओ। गुड मॉर्निंग लिखा इसी के साथ अजहर भाई ने। हाउ आर यू फजील भाई? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं मेरा भाई, और गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारा गुड मॉर्निंग। मैं कल से यही करूँगा, 3 बजे उठ गया हूँ, सो कर उठूंगा 3 बजे और 4 बजे यहाँ पे। देर से उठूँ, कम से कम तुम्हारा गुड मॉर्निंग तो सही रहे। हुसैन भाई कहते हैं सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? लगा दो फिर तुझे देखा तो ये जियाना सनम। ओफ, 90s के बारे में बात हो और ये गाना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने ये गाना रिक्वेस्ट नहीं किया और 90s की बात भी हो गई तो फिर कोड़े वाले मैन को आपकी तरफ भेजना पड़ेगा मुझे, है ना। चलो ठीक है, मैं हुसैन भाई ये वाला गाना भी देख लूँगा, अगर मुझे मिल जाता तो ये गाना प्ले कर देंगे। तुझे देखा तो ये जाना फ्रॉम अलिफ, अलिफ की आसिफ। ठीक है, दो लोग हैं जिन्होंने एक ही गाना कहा है तो अब प्ले करना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी हो गई। अच्छा, कोड़े वाला भैया इस बात पे भी कोड़े गरम कर लेता है कि अरे दो लोगों ने कहा फिर भी तुमने गाना नहीं प्ले किया, करना पड़ता है। मेड इन इंडिया बाई अलीशा, ये कौन सा गाना है बताओ? ये कोई अरे हमें पता है अलीशा आप इंडिया की होंगे या होंगी, लेकिन क्यों ये गाना ऐसा गुजारिश करें जो थोड़ा फील दे यार, अपने दिल को अपने इमोशन को बाहर निकाल कर रखे। ठीक है, मेरे इंडिया ही सही, क्या कर सकते हैं भाई, कोड़े वाला अपना काम करने लगता है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, पैसे आएंगे तो वो आएगी ना सर, पर अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो फिर, अरे मेरा भाई। और सर हमारे तो ना सैलरी आ रही है ना वो आ रही है। भाई मैं अपनी शुरुआत वाली बात वापस ले लूँ क्या? सॉरी सॉरी बोल के भी क्या दिल का दर्द कम किया जा सकता है ना? मुश्किल है अरबाज भाई, कोशिश करो सैलरी ही आ जाए। आगे बढ़ते हुए खादिम भाई कहते सलाम वालेकुम, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। ओम वो, ठीक है ये गाना भी अपन देखेंगे, अगर मिल जाता है तो बिल्कुल ये गाना भी प्ले कर देंगे। फिर आसिफ कमाल ने कहा है तुमसे मिलकर ना कहे कुन और भी कुछ याद आता है, मूवी प्यार झुकता नहीं। ठीक है, बाकी गाना भी हम ढूंढते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे महबूबा, वो महबूबा वाले भाई ने कुछ और तो लिखा नहीं है। फिर उसके बाद एक है भाई आपसे बात करने के लिए, कौन सा बटन दबाना है उसके लिए है 4434377 और पैसा लगता है। ठीक है, बाकी आप अपना नंबर दे दो, इधर से मैं टाइप कर दूंगा भाई, अपने पास फ्री का बैलेंस है, काहे को खर्च करना है। ठीक है, मैं हुसैन भाई का गाना ढूंढ रहा हूँ, कौन सा है ये? तुझे देखा तो ये जाना सनम, दो लोगों ने कर लिया इसका रिक्वेस्ट इस गाने का। तुझे देखा तो ये, तुझे देखा एकदम ही उदित बन जाऊंगा क्या मैं? किस मूवी का है ये यार? बहुत ही फेमस मूवी थी, लता और कुमार सानू ने गाया ना, हाँ DDLJ, वही मैं गाऊँ यार, मेरे को याद क्यों नहीं आ रही है?

0: बाकी जिनको हुआ है उनके लिए दीवाना ही होता है।
1: मुझे देखा तो ये जाना सनम,
2: और जिनको नहीं होता उनके लिए बेगाना होता है। आए हाय, आओ लता जी को और कुमार सानू को सुनते हैं यार, इधर उधर की बात बाढ़ में गई। फिलहाल FM 107 पे फजील के साथ है। अगर आप गाने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नंबर है 666।

हाय हाय, ये होता है गाना और ऐसे होती है डिमांड। हांजी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। और देखो, ये डीडीएलजे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम 1995 में आया था। अब क्या है, दर्जनों रिक्वेस्ट आ गई है, एक से बढ़कर एक गाने आपने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन सारी बात तो ये है कि 90s का गाना आपने रिक्वेस्ट नहीं किया। कोई बहुत पुराना गाना कह रहा है, कोई एकदम ही 2002 का कह दे रहा है। एक भाई ने शोले का कहा है, वो महबूबा ओ महबूबा वो वाला कह रहा है जो शोले का था, 1975 में आई थी। भाई कहाँ चले गए आप, इधर कदम रखो मेरा भाई। तो इतने पुराने गाने आपने रिक्वेस्ट किए हैं कि अपन प्ले कर नहीं सकते, है ना। तो ऐसे गाने रिक्वेस्ट करिए जो 90s के बाद के गाने रहे हों। 90s के बाद कोई तो आपने देखा होगा ना, सुना होगा, मूवी देखी होगी, तो वो गाने अगर आप मुझसे कहें तो मैं प्ले जो है ज़रूर कर दूंगा। फिलहाल और भी जो गाने हैं वो, अच्छा एक और चीज़, एक और ये बात कि दर्द भरे गाने वो रिक्वेस्ट ना करो मेरा भाई, बहुत दुख हो जाएगा ना फिर। और भी लोग हैं ज़माने में, तो आप थोड़ा अच्छा वाला गाना रिक्वेस्ट करें। दर्द, आंसू, पीड़ा, ये यार इसको दूर रखें। एक भाई, अच्छा खुद यूसुफ भाई ने 2002 की मूवी का गाना रिक्वेस्ट, गुना एक मूवी आई थी 2002 में, उसका गाना रिक्वेस्ट कर दिया। फिर एक और भाई हैं, उन्होंने 2018 का रिक्वेस्ट कर दिया। तो ये नए ज़माने के गाने, पुराने ज़माने ऐसा मत मिलाओ भाई, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सिर्फ तुम ये गाना कहा है मेरा वाला तो 90s का है। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी देखा अब्रार भाई, एक मुलाकात ज़रूरी है, मैं देख लेता हूँ कि ज़रूरी है कि नहीं। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम 1919, सिर्फ तुम मूवी का ट्रैक है। तो हाँ, ये वाला देखो मिल गया था मुझे, एक बार में मिल जाता है। तो ऐसे गाने रिक्वेस्ट करो जो आसानी से अपन प्ले कर सके। कोयला मूवी का कहा है एक भाई ने, अब कोयला जो है देखना पड़ेगा, कोयला की स्पेलिंग KOY से कर लेते हैं, हाँ इसी से मिला है, तन्हाई तन्हाई, देखो ये भी मिल गया। तो अबरार भाई का गाना आ रहा है और फिर कोयला वाला कहाँ गया, नाम तो नहीं लिखा है भाई ने अपना, लेकिन जरा लिखा है, अब जरा इनका नाम तो नहीं होगा, जरा अगर आप अपना नाम जरा से लिख दे मेरा भाई तो आसान हो जाएगा। और ये गाना अबरार का और इनका आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद और भाई ने रिक्वेस्ट किया है एक गाना, पहला नशा, ओ साधना सरगम उदित नारायण की आवाज़ में।

हाय हाय, ये भी गाना बड़ा लाजमी है प्ले करना। और ये रिक्वेस्ट किया है, नाम तो लिख दिया अगर मेरे लिए, फिर जाना पड़ता है प्रोफाइल छाटना बीनना पड़ता है मेरे को। ये किस भाई ने रिक्वेस्ट किया है ये, ठीक है। अच्छा तो वाजिद भाई हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया इस गाने को। तो अपन पहला नशा तीसरे नंबर पे आएगा, तन्हाई तन्हाई जो आ रहा है वो जरा भाई ने रिक्वेस्ट किया है। एक मुलाकात ये गाना है अब्रार के रिक्वेस्ट पे, एंजॉय करें। बाकी 90s के गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, 90s के गाने, ठीक है। से लेकर 1990 से लेकर 1999 तक जो कहोगे वो प्ले कर देंगे आज। सैड गाने से थोड़ा बचो, बाकी ठीक। सुन रहे FM 107 दिल से देसी।

पहला नशा साधना सरगम की आवाज उदित नारायण का साथ एफएम 107 पे ये गाना आपने सुना। यहाँ ऐसे गाने सुनने के बाद दिल को मिलता है सुकून, यहाँ आता है मजा भाई साहब। और बाकी गाने भी हमने तैयार कर लिए हैं एफएम 107 के शो में, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने तैयार रखे हैं। वेल, आखिरी तीन गाने चलने वाले हैं, उसके बाद हम गेम पर आ जाएंगे पहचान कौन। और ये तीन गाने कौन से होने वाले हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत से लोगों के गाने जो है वो रह गए हैं। माजरत मेरा भाई, मैं कोशिश करूंगा कि आपके गाने हम प्ले कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाने छूट ही जाएंगे। इतने सारे रिक्वेस्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, बट सही वक्त पे सही गाना। अब देखिए क्या होता है, डिटेल अगर आप अपना गाना चलाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल भी लिख दिया करें, क्योंकि यहां पर उस नाम के बहुत सा, अब जैसे एक भाई ने कहा सनम का गाना प्ले कर दो, तो मैंने ढूंढा काफी वक्त तो मिला ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा और फिल्टर लगाते हैं तो मिल जाता है। कभी कभार ये फिल्टर लगाने के बाद भी नहीं मिलता। उन्होंने लिखा सनम मूवी का आंखों में दिल, आंखों में नींदे न दिल। अब ऐसे में भैया इतने ज्यादा अलग अलग वक्त पे मूवीज आई हैं, सनम तेरी कसम, सनम है, और सनम तेरी कसम के दो चार और गाने, फिर दीवाना भी आ गया, क्योंकि मेरे फिल्टर इस तरह से लगे हुए। तो ऐसे में थोड़ा डिटेल अगर आप दे देंगे ना कि फलाना मूवी के और ये गाने का प्रॉपर नाम, तो आसान हो जाता है। फिर अगर आपको ये पता कि किस सिंगर ने गाया है तो भी आसान हो जाएगा। आखिर ये इनका वाला गाना मिल गया है, लेकिन कुछ लोग बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये फला गाना जो है वो प्ले कर दो। अब भाई ढूंढते रहो, छह गाने आ जाते हैं भाई उस नाम से, कभी कभार तो छह नहीं बीस बीस बीस तीस आ जाते हैं उसी नाम। अब कहे दिल तो पागल है, एक भाई ने अभी, हाँ सलीम भाई ने लिखा वो, लेकिन अब जाके लिख रहा है ये मूवी है और फलाना गाना है, पहले सिर्फ आधा नाम लिख कर चले गए थे। तो डिटेल अगर लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। बाकी गाना प्ले करते हैं, सबसे पहले है ओ जाने जाना, ये गाना एक भाई ने रिकॉर्ड फाइनली मिल गया है, और कहाँ गए वो भाई अभी देखता हूँ मैं उनका। फजू भाई प्लीज प्ले एनी सॉन्ग फ्रॉम सनम, हाँ ये वाला तो चलो दूसरे नंबर गाना है, आंखों में नींदे ना दिल, ये मिल गया, सॉरी इन्होंने आंखों में नींदे ना दिल ये लिखा, इन्होंने लिखा सनम का कोई भी गाना। फिर उसके बाद एक भाई थे कहाँ गए, उन्होंने तो डांटा भी था मेरा वाला गाना कहाँ है, कहाँ गए यार, अभी तो थे यार। खैर कोई बात नहीं, अगर आप सुन रहे हैं भाई एंजॉय करें इस गाने को। और ये गाना है ओ जाने जाना, कमाल खान सलमान खान का ये मूवी का ट्रैक है। हाँ इनका नाम मिल गया, हीरू भाई है, जी के हीरू भाई हैं, और फिर आंखों में नींदे ना दिल ये वाले भाई हैं के एम खान, और फिर है टिप टिप बरसानी वलीद भाई की रिक्वेस्ट है। तो ये तीन गाने एंजॉय करें, और फिर जिंगर रह गया है मजरत मेरा भाई, नेक्स्ट टाइम प्ले करेंगे अपन अगले हफ्ते, ठीक है इंशाल्लाह। और थोड़ा जल्दी आया करें मेरा भाई, और फिर कई लोग तो इस बात से मिस कर गए कि उन्होंने हजार के बाद के गाने या फिर 90s 90 के पहले के गाने रिक्वेस्ट कर दिए हैं।

क्या बात है टिप्पी बरसफानी ये गाना, और हम तो दुआ भी कर रहे हैं कि यार बरस जाओ भाई साहब, हम तो इंतजार में हैं। अभी भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप, इस्तकबाल आप सभी का। ये शो द रिक्वेस्ट शो अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी पहचान कौन

कौन गेम खेलना बाकी है। वेल, यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो जमानों से गाने के शौकीन रहे हैं, और 90s के गाने तो किसने नहीं सुने होंगे, और अगर आप 2000 के बाद की भी पैदाइश है तो आपको आसानी से 90s के गाने सुनाई दिए होंगे, आप फैन होंगे, और कई लोग फैन हैं। यार मैं देखो ऐसा तो नहीं है 2000 के बाद की पैदाइश है, लेकिन 1995 के बाद की तो पैदाइश है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई मैंने। तो अगर देखा जाए तो मुझे भी 80, 85, 90s, 95 के गाने याद हैं और बहुत ही शौक से सुनता आ रहा हूँ, बजाए नए जमाने के गानों के। यार पुराने गानों में बात ही ऐसी थी, क्या कर सकते हैं। तो उसके बावजूद जब ये पुराने गाने आज चलते हैं तो अपने लोगों को पता होता है कि गाने का नाम क्या है, किसने गाया है, अलका है, उदित है, या फिर सोनू है, तो सारे गायकार अपने को याद है। चलिए शुरू करते हैं इस गेम को खेलना, जहां पर नए लोगों को बता दें, जहां पर होता सिंपल सा काम है, एक सिंपल सी लाइन जो है मैं लेकर आता हूं, उसे प्ले करता हूं, और आपको बताना होता है गाने का नाम या गाने का हुक क्या है। गाने का नाम बताइए और जीत जाइए पहचान कौन गेम। वेल, कुछ करना ज्यादा नहीं है, अपन म्यूजिक प्ले करेंगे और म्यूजिक को सुनने के बाद आपको बताना है गाने का नाम। नंबर है 666-22-107। तो पहला गाना रेडी है? कहाँ मैं देख कहा रहा, आप उधर देख रहा हूँ यार, लाइट पर, रेड लाइट पे तुम ध्यान ना दो, इधर देखो, इधर इधर अपनी वाली ग्रीन हो रही है।

बस इतनी सी आवाज से आपको गायकार तो पता चल गया होगा, लेकिन गाने का नाम क्या है ये आपको बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे। जल्दी जल्दी बताइए, अपन इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से प्ले कर देते हैं।

बस बस बस, अब आपको बताना है, आपसे पता चल जाएगा कौन कितना डूबा है कौन कितना नहीं है। सबसे पहले जवाब आया यूसुफ भाई का और बिल्कुल सही जवाब है, और फिर दानिश आज़ाद ने सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद सना ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंड देन मुबीन ने भी सही जवाब दे दिया है। आपका नाम उर्मिला है या बता रहे हैं कि उर्मिला ने गाया, हीरू भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उर्मिला शायद उन्होंने गायकार का नाम बताया। फिर उसके बाद एक और जवाब है बिल्कुल सही, इनका नाम है आसिफ आलम, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद फलक एसआर के ने भी गाने में कोई भी गलती नहीं बताई है, बिल्कुल सही है। अरमान ने भी बता दिया है कि कैसे वो सही जवाब दे सकते हैं। अजमल ने भी सही जवाब बताया है। फिर शेरानी नाम है, क्या है नाम है भाई, अलाउद्दीन शेरानी, ओके हाय हाय क्या नाम है भाई, मज़ा आ गया सुनकर, बिल्कुल सही नाम है आपका और बिल्कुल सही जवाब भी है। सलाउद्दीन ने भी लंबा जवाब दिया है, बताओ लंबा क्यों कह रहा हूँ। फलक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये दूसरे वाले फलक है, नॉर्मल वाले फलक। फिर दिलबर अली ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, हिशाम ने सही जवाब दिया है, और एक और है मैसेज, एहसान अली ने सही जवाब दिया है, सुनू ने सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा, इमरान साहब ने भी सही जवाब दिया, हसन ने सही जवाब दिया है, और कौन है, हाँ तो सब ने सही जवाब दिया है। प्राइज अजमल भाई, प्राइज है ना, ये प्राइज है, देखो ताल से ताल मिला, अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया है, और जो प्राइज के लिए पूछ रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास प्राइज है, बस आपको लेना पड़ेगा आके, बस सारा मसला ये, लेकिन कोई आया नहीं अभी तक तो हमने दिया नहीं है। कोड़े वाले भाई जो हैं सामने बैठे रहते हैं, उनका नाम है कोड़ा मैन। जब भी आप आ जाएं, बस गेट पे आपको नाम बताना है कि शो में पहचान कौन गेम जीते थे, कोड़ा वाला भाई खुद उधर जाता है फिर। बाकी अब आपकी अपनी मर्जी है, जब दिल करे आप। अच्छा ये अभी यहाँ रहेंगे है ना, मतलब 18-15 दिन अभी ये हैं, फिर अमिता आएंगी 4-5 के इस शो में, और जब अमिता आएंगी तब भी ये रहेंगे, शायद रहेंगे है ना, बाकी तो समय पे समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल एक और गाना है पहचान कौन का, इसे गाने को सुनिए, इस गाने को गौर से अपने कान में, अपने दिल में, अपने जज्बातों में समाइए, और फिर बताइए गाने

अरे भैया भाई से तो डरना पड़ेगा, भाई जो टुकड़े कर देगा तो फिर भाई तो वैसे भी मालूम है आप भाई बहन के लिए कितना भी ऐसा मोहब्बत से रहता हो, लेकिन भाई जैसे ही घर के बाहर कदम निकालता है ना खूंखार हो जाता है यार। भाइयों के अंदर एक अलग से रगों में खून दौड़ रहा होता है, घर में सही रहता है बाहर निकल के विलन हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। और सॉरी भाई, आजकल सोशल और इंटरनेट का ज़माना है, हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ। फिर उसके बाद थैंक्स ब्रो शेरानी ने कहा है तारीफ़ के लिए, बिल्कुल अरे तारीफ के काबिल, आपका नाम तो तारीफ के काबिल। आप ये मत कहिए थैंक्स, हमें नहीं कहिए, आप अपने घर वालों को कहिए कि क्या नाम रखा है यार, लोग सुनते हैं तो ऐसा आप ऐसा नाम रखे हुए आपको लोग दोस्त बना जबरदस्ती कह रहे दोस्त बन जाओ मेरे। बाकी आते हैं इस गाने की तरफ, और बिल्कुल सही बताया सबसे पहले दानिश आज़ाद ने और फिर यूसुफ भाई ने, गाने का एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताया लेकिन नाम बता दिया है, एक्चुअली हुक बता दिया है। हिशाम भाई ने बिल्कुल सही बताया है और फिर अजमल ने भी सही बताया है। अजमल भाई बिल्कुल सही बताया, अगर आपको तारीफ तारीफ के साथ साथ आपको गिफ्ट चाहिए तो आप हमारे FM 107 के मेन गेट पे आ सकते हैं, बाकी कोड़ा मैन उधर चला जाएगा। फिर बिल्कुल सही बताया है सना ने भी, सना अलका लिखा हुआ है, अलका ने गाया, ओ अच्छा पहला वाला। फिर उसके बाद फलक एसआर के ने भी बिल्कुल सही बताया है, अरमान ने सही बताया है और सोनू ने भी गाने को बिल्कुल सही बताया है। अखियों से गोली मारे KM खान भाई, क्या हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद एक और है मैसेज, सिद्दीक साहब ने भी बिल्कुल सही बताया है, कोड़ा का मतलब पूछा है एक भाई ने, अच्छा सॉरी सना ने। अच्छा आप मतलब पहले बहुत दिनों बाद सुन रहे होंगी या फिर आप पहली बार सुन रही हैं, कोड़ा मैन कौन है? कोड़ा मैन जो कोड़ा लेकर चलता है ना, ये वो है और ये हमारे स्टूडियो के इस पार बैठे रहते हैं, तो जब भी मैं अगर रिक्वेस्ट से हटकर किसी और का गाना दिया, थीम से हटकर गाना प्ले कर दूं, तो कोड़ा मैन कोड़ा तैयार करता है ऐसे तेल वेल लगा के, है ना। फिर उसके बाद वो चाबुक जिसे कहते हैं ना, चाबुक या कोड़ा, वो मेरे ऊपर चलाते हैं, तो जिसको भी गिफ्ट चाहिए तो वो कोड़ा मैन जो है वो लेकर जाते हैं यहाँ से, हाँ नहीं ऑयल ऑयल साथ में लेकर जाते वही गिफ्ट है, ये नए लोगों के लिए नहीं है, पुराने वाले लोगों के लिए है ये। बाकी एक और ये मैसेज है, बिल्कुल सही है, एहसान अली ने सही जवाब दिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, नहीं यार छोड़ो ये सब बातें नहीं करेंगे हम, आपने जो मूवी बताई है गाना बताया, ये गाना बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, खैर क्या ऑफिस का, खैर अपनी जगह बातें, लोगों ने कहा है किसी डिस्को में जाएं, गाने का नाम है एक्चुअली में

हाँ जी, गाने का नाम बताइए, गाने का नाम क्या है जल्दी से, नंबर 666-22-107। गाने का नाम बताना है आपको, और सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही बताया है, दानिश आज़ाद ने, यूसुफ ने सही बताया है, मुबीन ने भी, मुदस्सर ने सही बताया है, हाय लिख दिया है, और हाय की ज़रूरत नहीं है उस बिलाल भाई, जल्दी से जवाब बताओ। हिशाम ने बिल्कुल सही बताया है, फिरसाना ने भी बिल्कुल सही बताया है, फलक एसआरके ने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए बता दिया कि अरे हम तो बहुत पुराने हैं यहाँ के, सोनू ने मूवी का नाम बता दिया, मूवी का नाम नहीं, आपको गाने का नाम बताना है। फिर किस भाई ने, हस ने बिल्कुल सही बताया, टाई वाई पहन एकदम तैयार रहते हैं, थोड़े से ये पैसे है, नहीं बिल्कुल नहीं, जब सब चीटिंग कर रहे हैं तो अलग बात है, देखो चीटिंग में मज़ा नहीं है, फिर वैसे मोस्टली लोग मुझे लगता है चीटिंग कर रहे हैं, आज का तो बहुत आसान है, और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है चीटिंग तो नहीं करते, जिनको नहीं पता है वो ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन चीटिंग नहीं करते भाई, मुझे 95% लोग पर भरोसा है, 5% में दो चार लोग आते हैं जैसे मुबशिर मुबीन, बाकी

अपनी अपनी जनता ये चीटिंग नहीं करती है। फिर एक और ये जवाब है किस भाई ने दिया है, हैदर अली ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और एक और है वलीद भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। गाने का नाम

0: रास्ते में है उसका घर। बिल्कुल सही जवाब है मोस्टली लोगों का, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो सही जवाब दिया, जिन्होंने तीन के तीन, फलक एसआर के हैं, हिशाम भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, हसन भाई ने सही जवाब दिया, मुबीन भाई ने आई डोंट नो चीटिंग करी या नहीं करी, लेकिन सही जवाब दिया इन्होंने, तीन के तीन सही जवाब हैं। यूसुफ भाई ने सही जवाब दिया, दानिश आज़ाद ने, सिद्दीकी साहब ने सही जवाब दिए, बहुत ही उम्दा, लेकिन एहसान अली ने दो सही जवाब दिए, फिर उसके बाद ये वाला गाना सही जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या बात क्या बात क्या बात, आप बॉम्बे आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दोस्तों दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ, और तैयार रहिएगा इस खास पहचान कौन गेम के लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तीन के तीन सही जवाब दें, और चीटिंग ना, चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी एंजॉय करें FM 107। इंशाल्लाह मुलाकात कल शाम 4 बजे, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ओके क्लास, फोकस फोकस इधर फोकस एवरीबॉडी। 5 to 5 o'clock, ओके। 2 घंटे की पिकनिक के लिए प्रिंसिपल साहब ने अनाउंस कर दिया है, ये 2 घंटे की पिकनिक के लिए सब 2-2 रियाल देंगे, ओके। बंटी मैं बात कर रहा हूँ ना बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप पीछे बैठ के क्या मुरमुरे खा रहे हो बेटे? मैं आऊँ अभी, पीछे आऊँ मैं? परेशान कर दिया है क्लास ने भाई मेरे को। म्यूजिक चलाओ यार, मैं नहीं कर रहा।

किसी को भी बिना एंटरटेनमेंट के जान को नहीं देते भाई, क्या हाल है, बढ़िया। बाकी मैसेज मुझे मारे धोरे कर दिया करो, व्हाट्सएप का नंबर लिख लो 666-221-07 भाई। कहते कि एकदम सा जाइए आप, दो घंटों के साथ मौज करा देंगे, वहाँ धुआं डाल देंगे, मौसम बदल देंगे, जैसे बाहर का थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा तो बदला है। मैं बताऊँ कि अब मैं कल से तैयारी कहने की, मैं इतना परेशान हुआ, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिल रही। मैं कहा अरे ये क्या हो गया, मगर जो मुझे आज कहानी मिली ना भाई, ओए, जितने लोग इमोशनल हैं पब्लिक में, जितने लोग आई, उनको मैं इतना कहना चाहूँगा, आज आपके लिए कहानी है भाई, जो थोड़े से इमोशनल है, भारी कहानी है आज की, वजन ज़्यादा है इसका, तराजू में तोलोगे ना तो सारी कहानियाँ इसके आगे भी थोड़ी फीकी पड़ सकती है। एक मैसेज आया मेरे पास, सलाम वालेकुम कबीर भाई, हम लाइन में लग गए, प्रेजेंट लगाओ। भाई लगा दी भाई प्रेजेंट भाई की, बहुत सारा प्यार भाई को। खान साहब लिखते हैं और सेंड मी और फॉरन आई विल सेंड टू कतरी। थैंक यू मेरा भाई, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद भाई, मैं बढ़िया भाई। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हीरू भाई, क्या हाल है भाई हीरू के। और अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है, गुड इवनिंग। कल वाली क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, आप कह रहे थे लंबी है, यकीन करो सुनते ही जा रहा था लेकिन टाइम का पता नहीं चला, क्या ही दिमाग यूज़ किया पायलट और इमरजेंसी लैंडिंग को सेफ लैंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, रियली हैट्स ऑफ टू हिम। और आपको क्या, आपको ऐसी ज़बरदस्त वे में स्टोरी सुनाते रहे, फिल्म चल रही हो, बहुत सारा प्यार और नेक विशेज़ आपके लिए। मलिक वकास साहब बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मैसेज है, गुड इवनिंग कबीर, आई वाज ऑन लॉन्ग वेकेशन, आफ्टर लॉन्ग टाइम हियरिंग यू एंड एंजॉइंग योर शो, यमन फ्रॉम नेपाल। यमन फ्रॉम नेपाल, दो दो कंट्री के नाम एक साथ, माशाल्लाह। यमन भाई बढ़िया डीप ही लाई भाई ने, कैसी रही छुट्टियाँ भाई की। और एक मैसेज है, कबीर सर क्लास में सॉन्ग अलाव है तो कह रहे थोड़ा स्मोक भी कर ले, बताओ अभी ये क्या नाम है इनका, जरा नाम नोट करो। कामरान बच्चे आपको जो है घर से डायरी में साइन करा के लेके आना प्लीज, ये नहीं चलेगा। आप टीचर से बोल रहे हैं 10 रुपए के ढोल बजा दो, ये सब बदतमीजी है। वालेकुम अस्सलाम मुबशर मुबीन साहब। और मैसेज किया है एक भाई ने, इनका नाम है इकराम हसन साहब, इकराम हसन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, इमरान हाशमी के बिगेस्ट फैन है क्या। जी शुएब भाई एकदम कट्टर वाला फैन हूँ भाई मैं। और एक मैसेज है, ग्रेट भाई बहुत इन्जॉय किया, ये बॉय कल की स्टोरी मिस हो गई थी। अच्छा जी, और एक फोटो आया मेरे पास, कॉर्निश का सीधा भेजा भाई ने, कह रहे हैं मौसम बढ़िया भाई, बढ़िया तो लग गया आज की, आज का मौसम का ती सूत्र हो रहा है। और एक और मैसेज है अबू यूसुफ भाई का, वालेकुम अस्सलाम। एक भाई लिखते हैं, वेटिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच। सोनू भाई ने मैसेज किया, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, और फैयाज भाई वालेकुम अस्सलाम प्रेजेंट लगाते हुए। और किसी का मैसेज में सुनिए, सलाम कबीर हाशमी ब्रदर। आसिफ भाई बहुत सारा प्यार, थैंक यू कबीर भाई, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये जो है जिस लड़के ने मैसेज किया है, एक सेकंड को भाई, अरे यार ये व्हाट्सएप ने मुझे अलग दुखी कर रखा है, खोलने को नहीं देता भाई, एक सेकंड रुको। ये करण भाई आपका रैप सुना, करण भाई बहुत बढ़िया रैपर हैं फ्रॉम नेपाल, बहुत बढ़िया रैप करते हैं। करण भाई मैंने आपका जो है गाना अपनी टीम को भेजा है, अप्रूवल आ गया तो आपका गाना भी चला दूंगा भाई मैं, ठीक है। बढ़िया करते हो यार, काम ऐसे ही करते रहो। एक में से कबीर भाई 2 रुपये का ढोल बजाते हैं और स्टूडेंट हाजिर हैं, नाइस स्टोरी, नेवर फेल्ट इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, थैंक यू सो मच सैयद फिरोज़ भाई, ये आपकी मोहब्बत है। और भाई आज का मौसम बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद तो यही है कि बढ़िया हो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, द वेदर इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टुडे, फील्स लाइक द होल डे इज इन गार्डन। काश भाई ज़्यादा तारीफ नहीं कर दी अभी अपने मौसम की, ठीक है इसका मतलब ये थोड़ी है, आपने तो कहता ही एकदम इसको इतना काशिफ मैंने खूबसूरत बता दिया, ऐसे पहाड़ों में रह रहे हम सब। कह रहे कतई गार्डन वाला हो रहा है एकदम बढ़िया सा, बैठ के मैं तो पारिक से बैठा रहा हूँ, पारिक में बैठा रहा हूँ, घर ही ना जाऊं। 974 वाली पब्लिक के लिए, वो पब्लिक जो सबसे अलग है, सारे शो से सबसे अलग पब्लिक हमारे ही पास है, बहुत सारा प्यार भाइयों को।

0: चारा ऑन टॉप।
1: थैंक यू सो मच भाइयों, मैं आप मिलूंगा 11 मिनट 2 सेकंड के बाद बहुत सारे प्यार के साथ, एंड सीधा कहानी शुरू करेंगे, बिकॉज आज की कहानी इज क्वाइट स्पेशल एंड क्वाइट अ हैवी वन। तो अगर आप जो है थोड़े इमोशनल हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तैयार रहिए। एक मैसेज है भाई, थोड़ा मोटिवेट करो ना, कुछ कर रहा थोड़ा नुकसान करके बैठ गया। भाई मोटिवेशन, भाई ये नहीं करना आता, मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं इतने कहूँगा गलती हो गई है भाई, ये वक्त भी निकल जाएगा, इतना ही है भाई। एक मैसेज है, आपकी स्टोरी ना मिलना तो आसमान और धरती को एक होने जैसा है। आई आई आई क्या है? आए और 11 मिनट के लिए गायब, भाई वो शाम के अधिकार है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक मैसेज है दिल से देसी, थैंक यू सो मच ढोल वाइब्स। देखो भाई मोटिवेशन अगर आपने लिखा है मुझे कि थोड़ा नुकसान करके बैठ गया, भाई देखो ना तो मेरे मोटिवेशन देने से वापस आएगा, ना आपके दुख रहने से नुकसान वापस आएगा, भूल जाओ, समझ लो इट वॉज बाउंड टू हैपन, और एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, हर चीज़ की वजह है, वेरी सिंपल। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है भाई। बाकी मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जाना नहीं है, इसके बाद सीधा कहानी आएगी क्योंकि। सो स्टे ट्यून्ड।

0: Desi.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवाना को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

भाई मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि आवारापन का आपका रिव्यू क्या है। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एहसन उबैद कुरैशी साहब। भाई देखो, मैं इमरान हाशमी का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं बायस्ड हूँ ऑब्वियसली, और आवारापन उनके लिए है लिटरली जिन्होंने आवारापन वन देखी है और जो इमरान हाशमी के कट्टर फैंस हैं। अगर इन दोनों सूरत हाल में अगर आप अपने आप को पाते हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपको शायद उतना क्या कहते हैं वो ना फील हो रहा है भाई क्या देख लिया, भाई मौज आ गई, तो धरती हिल गई, वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी। बट इफ़ यू आर अ फैन, इमरान हाशमी का फैन है, ही हैज़ डन एवरीथिंग इन हिज पावर जो मूवी को अच्छा रख सके। ओनली प्रॉब्लम वॉज दिशा पाटनी एंड अ लिटिल बिट हेयर एंड देयर इन द स्टोरी। पर भाई मैं फैन हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगी, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। इमरान हाशमी को वापस देखने को मिला आवारापन के लुक में, आई एम रियली हैप्पी। उनका कुर्ते वाला जो लुक है मूवी के स्टार्टिंग में, वो मैं ईद पे कॉपी भी करने वाला हूँ। तो ये है सीन, ये था मेरा रिव्यू। खान साहब लिखते हैं, चाचू भाई हमें कॉल नहीं उठा पाऊंगा जो लोग मुझे कॉल करें, क्योंकि हमें फॉरन स्टोरी पे आना पड़ेगा, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि अजान अभी मगरिब जल्दी होने लगी है। कह रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं मौसम के बारे में, मैं कॉल उठाने की क्या होगा, मैं समझा नहीं। और एक मैसेज, कबीर भाई मिस ड्राइव थ्रू वाला सॉन्ग, अच्छा दैट ड्राइव थ्रू वो जो पहले चलता था। करण भाई थैंक यू भाई, आपको याद है। ओके सो जो लोग आज की कहानी लाइव सुनने वाले हैं, सबसे पहले तो मुझे बता दें कि आप लाइव सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ठीक है? बिकॉज आज की कहानी थोड़ी सी इमोशनल होने वाली, इट्स गोइंग टू मेक योर हार्ट मेल्ट। तो अगर आप इमोशनल हैं तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि कहानी बहुत सीधी सीधी है। कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये का होगा वो का होगा वो सब नहीं है, लेकिन ये कहानी है बहुत हैरत अंगेज, इसीलिए मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। हुसैन साहब लिखते हैं, हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। ऐसा लग रहा है अंडरटेकर की तरह उन्होंने जमीन से हाथ बाहर निकाला और बीच वाला हम रेडी है भाई, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रोमो वीन वाला मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, लेट्स प्ले दिस वेरी वेरी शॉर्ट प्रोमो और फिर मिलते हैं। इसरार भाई थैंक यू सो मच। ऑलराइट

हाँ जी अब आए गए हैं तो कहानी भी सुन लीजिएगा 666-221-07 वैसे तो नंबर है, आप मेरे साथ इस कहानी के दौरान लगातार जुड़े रहिए एंड मैं भी जरा ऑन कर लेता हूँ ये हमारे लिए रिकॉर्डिंग। और भाई वो वाह भाई नहीं, वो ऐसी नॉर्मल सा प्रॉब्लम है भाई तो भाई आपको ठीक ठाक ग्रैप कर लेता। अच्छा तो अब जरा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन मेजरली आज की कहानी क्योंकि हमेशा की तरह असली है, आज की कहानी भी असली है एंड इसमें बहुत कुछ है बाबा। तैयार हैं हम? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आइए वॉल्यूम को जरा 22 पे ले जाइए। सो जो आज का किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे ले चलता हूं। मैं आपको ले चलता हूं कहानी की बिल्कुल जड़ पे, जहां से बिल्कुल शुरू होती है कहानी। तो तारीख थी 15 नवंबर 1999, 15th of October। इस वक्त एटलांटा जॉर्जिया यूएसए में एक लड़का था मार्कस मिचेल, 19 साल का। ये कम उम्र में बाप बन गया था और जिससे मोहब्बत करता था वो दुनिया से चल बसी थी, लेकिन इसकी एक बेटी थी छोटी। एंड मार्कस मिचेल नाम का ही बंदा 19 साल का, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहता था, तो ही वॉज कंप्लीटिंग हिज ओन थिंग्स एज वेल। वो फ्रेशमैन था एक कॉलेज में, मोर हाउस कॉलेज उसका कॉलेज का नाम था। और मिचेल मार्कस कोई ऐसा नहीं नॉर्मल दिखने वाला बंदा, 6'2" का, समझ रहे आप, अच्छी खासी हाइट, एथलेटिक, कैरिज्मेटिक, एक खूबसूरत स्माइल कैरी करने वाला बंदा, एक ऐसा शख्स जो अगर एक कमरे में बैठा हो और बहुत सारे लोग हों तो आपको बंदा याद रहेगा। और ऊपर से उसने एक खास चीज अपने साथ करी थी, उसने अपने दांत, अपर जो दांत होते हैं तो लेफ्ट साइड का एक दांत जो था उस पर गोल्ड क्राउन लगवा लिया था। असली गोल्ड नहीं था मगर वो दिखता था जैसे उसने गोल्डन एक दांत करवा लिया। इसके लिए भी उसने 3 महीने कैंपस जॉब्स जो होते हैं कॉलेज के अंदर वहां से उसने कमाई करके लगवाया था। अब जो मार्कस की मां थी डायना, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हर माँ जैसे रिएक्ट कर दी, वैसे ही डायना ने रिएक्ट किया। डायना बोली, ये बेटा ये क्या है, ये बर्बादी है पैसों की, ये क्या दांत पे तुमने करा लिया। पर जैसे हर बच्चा अपनी माँ को रिस्पॉन्स देता है, स्पेशली हम लड़के, मार्कस ने वैसे ही बोला माँ प्लीज कूल लग रहा ना, देखो जाने दो ना, क्या ना। अब मानेगा ठीक है कोई बात नहीं, एंड दे बोथ स्माइल्ड। उसके बाद मार्कस ने बोला, मैं लाइब्रेरी से नहीं फिर अपने दोस्त के पास जाऊंगा और मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। तो ये इतना कोई शॉकिंग नहीं था डायना के लिए सुनना, पर कौन सा दोस्त, ये डायना ने पूछा नहीं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे पूरा पूरा भरोसा रहा है, वो कभी ऐसी वैसी हरकतें करता नहीं है। तो रात को लाइब्रेरी जो थी मोर हाउस की, उसकी कॉलेज की, वहां से वो निकला तकरीबन 8 बजे, लोगों ने उसे वहां देखा था। और उसके बाद उसने कहा था कि अपने दोस्त से मिलने जाएगा, तो मां को पता था कि 12-1 तो बज जाएंगे रात के, तो वो टेंशन में नहीं थी। तो मार्क्स 8 बजे निकला, अगले दिन नहीं आया घर पे। सुबह माँ इंतजार में थी कि शायद लिया होगा, शायद आ जाएगा, और वो अपने आप को दिलासे दिए जा रही थी। एक दिन पूरा निकल गया, वो जाके रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनका बेटा घर नहीं आया है, तो ऑब्वियसली पुलिस वालों ने रिएक्ट किया, अरे मैडम 24 घंटे कहाँ हुए हैं, ठीक है 24 घंटे हो भी जाए, जवान

आपका आ जाएगा वापस, आप घर जाइए, और उनको घर भेज दिया। दो दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तीन दिन बीत गए, तीन दिन, और अब डायना, अब वो अपने आप को दिलासा नहीं दे पा रही थी। वो पुलिस वालों के पास वापस गई, उन्होंने बोला कि नहीं आप समझ नहीं रहे, तीन दिन हो चुके हैं, तीन दिन, मेरा मार्कस ऐसा नहीं है, वो बता के जाता है, आप ढूंढिए। और पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश करी, एक ऑनेस्ट कोशिश। तीन दिन के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखी, मार्कस की गाड़ी, और ये गाड़ी जो थी एक हॉस्पिटल, ग्रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी पार्किंग लॉट में मिली। जब गाड़ी मिली तो गाड़ी की चाबी इग्निशन में थी, मार्कस का जो वॉलेट था वो पैसेंजर सीट पर रखा हुआ था, और मार्कस का जो फोन था, मार्कस का फोन वो जो कप होल्डर होता है उसमें रखा हुआ था। मगर एक चीज मिसिंग थी, मार्कस खुद मिसिंग था, उसके कुछ अते पते नहीं थे। अटलांटा की पुलिस ने बहुत कोशिश करी और फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। मार्कस के प्रोफेसर्स, मार्कस के टीममेट्स, उसके क्लास वाले, उसके दोस्त, सबसे बातचीत करी, और सबने एक ही बात बोली। उन्होंने बोला, सर मार्कस मिचेल एक ऐसा लड़का था जिसकी दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती है। पुलिस वाले ने बोला, कुछ तो बताइए। तो बोले, सर मार्कस हमेशा खुश रहता था, वो बहुत फोकस्ड लड़का है, वो जो भी करता है बड़ी प्लानिंग के साथ करता है। आई हैव नेवर सीन हिम सैड, कभी उसे दुखी देखा ही नहीं। और सबने ये बोला कि मार्कस ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को बता के ना जाए और खुद अपनी मां को ना बताए, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये पॉसिबल नहीं है सर। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, दे वर ट्राइंग, कितनी कोशिश करें। और 6 हफ्ते इन्वेस्टिगेशन चली, हॉस्पिटल के शेल्टर्स, तमाम बस स्टेशंस, कोई भी आई विटनेस नहीं, किसी ने उसे कहीं आते जाते बैठते उठते देखा ही नहीं, और ना ही कोई लाश मिली कि एक क्लोजर मिल जाता। तो ये केस जो था वो कोल्ड होता जा रहा था। एक माँ जो घर पे बैठी थी वो जवाब चाहती थी कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ। इतने में एक डिटेक्टिव साहब थे और उन्हें बोला गया कि आप डायना को समझाइए, क्योंकि वो बार बार हर रोज पुलिस स्टेशन आ रही हैं, हम समझ रहे हैं कि वो बेचैन है, मगर आप जाके उनको जरा समझाइए। तो ये जो डिटेक्टिव साहब थे ये गए उनके पास और उनको एक बात कही जो डायना को बहुत चुभी। उन्होंने बोला, देखिए मैम, मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं, आपका बेटा अभी घर नहीं लौटा है, लेकिन टीनेजर्स ऐसा करते हैं मैडम, वो आपको नहीं बताएंगे, वो भाग गया होगा कॉलेज से, कॉलेज का प्रेशर होगा, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, वो चला गया होगा, नौजवान है, अरे आ जाएगा वापस, आप टेंशन मत लीजिए, घर पे रहिए, बार बार पुलिस स्टेशन मत जाइए, वो भी क्या करेंगे बेचारे, कम बैक। पर ये किसी मां को बताना जिसका बेटा ऑलमोस्ट 3 महीनों से गायब है, उसको क्या समझ में आएगा। और डायना जानती थी, वो तो मां है ना, उन्हें पता है उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता कि उन्हें बिना बताए कहीं गायब हो जाए, कुछ तो हुआ है। एंड वो इस बात को हटा नहीं सकती, कोई और होता तो शायद भुला देता, मगर वो मां है। एंड शी ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने खुद से कोशिश करना शुरू करी। जगह जगह जाकर उन्होंने पोस्टर्स लगाए, हर पोल पर, हर एरिया में, बसेस पकड़ पकड़ के जगह जगह जाके उन्होंने पोस्टर्स लगाए, कोई जगह नहीं छोड़ी। और हर साल जब भी उसका बर्थडे आया मार्कस मिचेल का, तो उन्होंने केक भी काटा, और इस गम में नहीं कि वो शायद वापस नहीं आएगा, इस खुशी में कि वो ढूंढ लेंगी, इस उम्मीद में कि वो आएगा, मेरा लड़का ऐसा नहीं है। एंड शी वाज लिटरली डूइंग एवरीथिंग इन हर पावर। अपनी हैसियत से ज्यादा महंगे इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए डायना ने कि उनका बेटा उन्हें मिल जाए। सपोर्ट ग्रुप्स में गई, हर जगह गई, और ये काम उन्होंने जानते कब तक किया, 25 सालों तक, 25 years, 25 years क्या होते हैं, एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने कोशिश ना की हो। उन्होंने अपने बेटे मार्कस का जो कमरा था उसको हाथ तक नहीं लगाया, उसको वैसा का वैसा ही रखा, उसकी कॉलेज की जर्सी, मोर हाउस जर्सी, वो अपनी जगह पर टंगी रही, कमरे में उसके जूते जिस जगह पे थे उसी जगह पे रहे, उसकी ट्रॉफीज जो धूल खा रही थी 25 सालों तक,

उसको टच तक नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। लोग बोलते रहे डायना को, अरे मूव ऑन, लेट गो, अपनी जिंदगी जियो। और 25 सालों तक लोग यही कहते रहे, मगर डायना वो नहीं मानने वाली थी। उनके पास मार्कस मिशेल को छोड़ के गया था अपनी बेटी। 25 साल बीतने के बाद कहानी को आगे ले जाता हूं। डायना जो थी अभी 52 साल की हो चुकी थी, 52 years old, और इस वक्त वो एक बतौर नर्स के तौर पे एक जगह काम कर रही थी, और एक बहुत ही मामूली से अपार्टमेंट में रही थी। बहुत ही मॉडेस्ट अपार्टमेंट था, ज्यादा शोशेबाजी नहीं। और उन्होंने इतने सालों तक ना सिर्फ अपने बेटे को ढूंढा, बल्कि अपने ग्रैंड चाइल्ड को, अपनी जो उनके कलेजे का टुकड़ा थी मार्कस की बेटी, उसको कोई कमी नहीं होने दी। अभी वो बेटी भी 18 साल की हो चुकी थी, जिसका नाम था जैस्मिन। जैस्मिन ने अपने बाप मार्कस को कभी नहीं देखा, बस अपने बाप को जाना डायना की कहानियों के जरिए। उसकी दादी ने जो भी उसके बाप के बारे में बताया, बस वही उसके लिए सब कुछ था। फोटोज देखती थी अपने बाप के, वो यंग मार्कस मिचेल जिसके लेफ्ट दांत को उसने सोने का रंग करवाया था। एंड डायना जब जैस्मिन को देखती थी तो उन्हें बेटे की याद हर पल आती थी। वही आंखें, वही बात करने का तरीका, वही जिद्दी पना। उन्होंने कभी उसकी पढ़ाई में, उसके खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। फिर एक दिन यह हुआ कि 18 साल की जैस्मिन ने अपनी दादी डायना से एक जिद कर ली। ये जो जिद थी ये बड़ी अलग किस्म की जिद थी, क्योंकि उसकी दादी को, डायना को टाइम ही नहीं होता था। पर दादी प्लीज, दादी माँ एक जगह एग्जीबिशन है, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो डायना ने बोला, बेटा कहाँ मेरे पास टाइम है, तुम जानती हो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, इतना कुछ चल रहा है, कहाँ जाऊँगी, तुम जाओ। और सोना, नहीं दादी आप मेरे साथ चलेंगे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। एंड देयर वाज दिस एग्जीबिशन जो पास में थी। अब वो सोच रही थी जिस तरह की एग्जीबिशन है मैं वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। पर फिर वो जब अपने बेटे मार्कस को कभी जिंदगी में मना नहीं कर पाई, तो उसकी बेटी जैस्मिन को, जो बिल्कुल उसकी शक्ल उसके जैसी हर एक चीज लेकर इस दुनिया में आई, उसको कैसे मना कर देगी। डायना ने उसको कहा, ठीक है जैस्मिन हम जाएंगे, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो हम वहां से फौरन चले जाएंगे। एंड जैस्मिन ने अपनी दादी की बात सुनी और बोली मुस्कुरा के, ठीक है दादी चलो तो सही। और फिर आने वाला जो सैटरडे था, उस सैटरडे की सुबह को डायना ने अपने लिए और जैस्मिन के लिए 2 टिकट्स बुक किए। अब ये दादी और जैस्मिन, ये दोनों पहुंचे इस एग्जीबिशन में। जब एग्जिबिट में पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों तरफ भीड़ी भीड़, भरी पड़ी है पब्लिक। यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज से हैं, सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं। और सब यहाँ पे खास चीज देखने के लिए आए हैं, जिसे देखने के लिए डर लग रहा था खुद डायना को। दरअसल ये एग्जीबिशन जो थी, ये कुछ अलग एग्जीबिशन थी। ये एग्जीबिशन थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये वो एग्जीबिशन थी जहां पे ह्यूमन बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्लास्टिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बॉडीज होती हैं, डोनर्स होते हैं, अपनी बॉडी को रखते हैं और दिया जाता है, और फिर पढ़ाई के लिए दी जाती है। तो डायना को बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार अभी मैं उनके अपने बेटे के ख्याल में है वो, और उनकी जो ये उनके बेटे की जो है जैस्मिन बेटी है यहाँ पे लेके आ गई है। वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी पूरे टाइम। उनका सर झुका हुआ था। फर्स्ट रूम में गई, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया जा रहा था, ये देखो वेंस देखो, आर्टरी देखो, ये दिल का हिस्सा है, रेड ब्लू कलर में समझा रहे थे। और जैस्मिन जो थी वो बहुत एक्साइटिंगली सब कुछ पढ़ रही थी। जो नीचे प्ले कार्ड्स लगे होते हैं ना, आपने देखा एग्जीबिशन में म्यूजियम जब हम जाते हैं तो कोई भी चीज रखी होती है तो उसके नीचे उसके बारे में लिखा होता है, जैस्मिन वो पढ़ रही थी। और डायना तो देख भी नहीं रही थी। डायना के लिए सब बॉडीज नहीं थी, ये किसी का बाप है, किसी का भाई है, रिश्ते ढूंढ रही थी। शी वाज वेरी वेरी इमोशनल। और फिर रूम आफ्टर रूम चीजें बदलती नहीं। इस एग्जिबिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए जा रहे थे, नर्वस सिस्टम पढ़ाए जा रहे थे। और फिर पहुंचे वो जैस्मिन और डायना

एथलेटिक डिस्प्ले में। यहां पर रनर्स, जिमनेस्ट, उन सब की बॉडी, बास्केटबॉल प्लेयर्स, इन सब की बॉडी को प्रिजर्व करके यहां पे रखा गया था। और सबके अलग अलग पोजेस भी थे, लीप शॉट मारते हुए पोज था बास्केटबॉल प्लेयर का। जैस्मिन ने फौरन अपनी दादी को देखा और बोली, दादी ये देखिए। दादी जो थी वो देखना नहीं चाहती थी क्योंकि डायना की नजर अभी भी जमीन की तरफ थी। शी डिडंट वांट टू लुक, ये क्या है। वो खुद एक नर्स है बट उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। मगर फिर उनकी नजर एक बॉडी पर पड़ी, इस पूरी की पूरी भीड़ में, एग्जिबिट में, एक बॉडी पर जिसके राइट एंकल पर, टखनों के पास उन्होंने देखा मेटल लगा हुआ, एक टाइटेनियम प्लेट। अगर टांग टूट जाती है, एंकल टूट जाता है तो पिंस लगाई जाती, टाइटेनियम पिंस, वो लगी हुई देखी। सर्जिकल स्क्रूज उन्हें नजर आए एंड वो थोड़ी देर के लिए एकदम जम सी गई, एकदम ठंडी पड़ गई। वो उन्हें याद आया उनका बेटा मार्कस बास्केटबॉल खेला करता था और बास्केटबॉल खेलते हुए उसके चोट लगी थी एंड शी रिमेंबर्ड कि वो बहुत खतरनाक चोट थी। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, एक्सरे करवाया और वो काफी वक्त तक लंगड़ा के भी चल रहा था और अपने आप को बता रही थी, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कहाँ जोड़ रही हूँ चीज़ों को, आई शुड नॉट डू दैट। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, उनकी नज़र फिर इसी एग्जिबिट में, इस स्पेसिमेन पे पड़ी, उसकी टांग पे पड़ी, जो फीमर वाला हिस्सा होता है टांग का, वहां पे उन्होंने देखा तो उनको नजर आया कि फ्रैक्चर्ड लाइन नजर आ रही है, ठीक जैसे मार्कस की थी। मार्कस की टांग 12 साल की उम्र में टूट गई थी, इमरजेंसी सर्जरी, वो हफ्तों तक प्लास्टर, वो बेचैनी, वो सब उन्हें याद आ रही थी। सोच रही थी कि मैं पागल तो नहीं हो रही हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं कहां आई हूं, मैं क्या बात कर रही हूं, क्या जोड़ रही हूं। पर डायना रुकने नहीं वाली थी, उन्होंने फिर और देखना शुरू किया इसको और वो लोअर स्पाइन एरिया जो था वो उस तरफ गई। एग्जीबिशन में सब लोग देख रहे कि इनको अचानक क्या हो गया और वो स्पाइन एरिया में गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उन्होंने नीचे देखा, नीचे एक प्ले कार्ड, जो चीज के बारे में बताता है ना, कोई चीज अगर रखी होती म्यूजियम में, वही प्ले कार्ड बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंसानों में नॉर्मली स्पाइन में 5 लंबर वर्टिब्रे होते हैं लेकिन जो आप देख रहे हैं इसमें 6 हैं। ये बहुत ही एक अलग रियलिटी है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। और उन्हें याद आया डायना को कि उनके बेटे मार्कस के साथ एक कंडीशन थी, उसके साथ भी यही था, 6 लंबर वर्टिब्रे। और ये बात उन्हें याद आया कि बचपन में पता लगी थी जब वो अपने फिजिकल टेस्ट के लिए गया था और 13 साल का था। देन शी केम टू नो अबाउट दिस और फिर वो जैसे जैसे डर के मारे, बिकॉज शी वॉज वेरी नर्वस कि मैं ये क्या देख रही हूं, 25 साल की चीजों को अभी कैसे कनेक्ट कर पा रही हूं इससे जो एग्जीबिशन में है। और फिर वो चेहरे की तरफ गई और इतनी ज्यादा लाइट्स थी क्योंकि दिस वॉज लाइक अ म्यूजियम, इतनी सारी लाइट्स में डायना ने चेहरा देखा। ऑब्वियसली चेहरा खाल वाल नहीं होती, सबको रिमूव कर दिया जाता है, बट व्हेन शी सॉ, उन्हें लेफ्ट साइड पे अपर दांत में वो गोल्ड का किया हुआ नजर आया, एग्जैक्टली लाइक मार्कस मिचेल। 4 चीजें एक रैंडम एग्जीबिशन में, मेडिकल एग्जीबिशन में 25 साल बाद उनके बेटे से मैच हो रही थी। जो सामने रेलिंग होती है ना, जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, आप रेलिंग को पकड़ के देखते हैं ना कि यार इस तरफ क्या है, उस रेलिंग को उन्होंने जोर से पकड़ा हुआ था। जैस्मिन जो थी, जब उसने अपनी दादी को देखा तो वो पास आई, उनकी बोली, दादी आप ठीक तो हैं? एंड वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में थी, जैसे कहीं खो गई हो। उन्होंने जैस्मिन की तरफ देखा और बेटी इधर आओ, ये देखो, ये दिख रही तुम्हें, ये पिंस, ये दिख रहा है फीमर एरिया, फ्रैक्चर्ड एरिया, और सब कुछ गिनाया जैस्मिन को और बताया, ये बिल्कुल तुम्हारे बाप मार्कस के साथ ऐसे ही था। जैस्मिन ने जब ये सुना, शी वाज लिटरली शॉक्ड और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। उसकी जो आवाज थी वो भी ब्रेक होने लगी, बिकॉज वो चुप हो गई यार, क्या बोले वो इस पे। उसे 2 मिनट के लिए तो ऐसा भी लगा कि कहीं उसकी दादी ये सब बॉडीज आसपास देख के शायद कहीं किसी ट्रॉमा में तो नहीं चली गई है। होता है कि हर किसी का गम डील करने का तरीका अलग अलग होता है, मे बी शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट क्योंकि 25 साल से वो मार्कस को ढूंढ रही है।
दोनों के दोनों कुछ देर के लिए चुप थे, पर दोनों के दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि कहीं कहीं मार्कस मिचेल तो नहीं। दादी ने बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी भीड़ में जहां पे हजारों लोग आए हुए थे, उन्होंने वहां पे एक स्टाफ को बुलाया। चलती हुई आई एक नौजवान खातून और फिर दादी ने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी बेटा, ये जो एग्जिबिट में है, ये वाली जो बॉडी है एथलीट वाले सेक्शन में, आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा और? तो वो जो वहां पे स्टाफ मेंबर थी उसने बोला स्माइल करते हुए, हाँ मैम ये तो हम नहीं बता पाएंगे, डोनर्स की इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, हम आई एम रियली रियली सॉरी। पर डायना ने उसकी तरफ देख के बोला और इस बार थोड़ी अथॉरिटेटिव वे में बोला, देखो बेटा ये मेरा बेटा हो सकता है, मैं इसलिए पूछ रही हूं, बस प्लीज मुझे बता दो। और जो स्टाफ मेंबर सामने खड़ी थी उसके चेहरे पे से वो सारी स्माइल गायब हो गई। तो उसने फिर भी जवाब दिया, वो बोली मैम देखिए आई एम रियली सॉरी, ये जो जितने स्पेसिमेन आप देख रही हैं जी मैम, ये एक एग्जीबिशन है, ये सर्टिफाइड, ये मेडिकल सप्लायर के थ्रू आते हैं, ये सारे मेडिकल डोनर्स हैं, मैं आई कैन नॉट हेल्प यू। डायना ने उसके हाथ को पकड़ा और बोली प्लीज बेटा समझो, 25 सालों से मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, और ये बॉडी में जितनी भी चीजें हैं ये सब मैच हो रही हैं उसी से। अब जब ये होने लगा, जो भीड़ थी उसकी अटेंशन पूरी की पूरी डायना पे आ चुकी थी, सब के सब ये देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जो एम्प्लॉय थी उसने फौरन अपने सुपरवाइजर को बुलाया, सुपरवाइजर फौरन आया और बहुत इरिटेट हो चुका था वो। डायना ने बोला प्लीज आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, प्लीज अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, पर वो जो सुपरवाइजर था उसने मना कर दिया, बोला मैम नहीं, क्या मजाक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत प्राइवेट होती है डोनर्स की, आपको पता होना चाहिए, और वो मान नहीं रही थी। डायना ने बोला बेटा आप समझिए मेरी बात को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं एक मरतबा रिकॉर्ड चेक कीजिए, एक मरतबा। उसने सिक्योरिटी को बुला लिया, निकालो इसको यहां से, और 52 साल की डायना को सिक्योरिटी वाले जैस्मिन के सामने, 18 साल की वो बच्ची मार्कस की बेटी पोती उसकी, दोनों को वहां से बाहर निकाला सबके सामने, सारे कैमरा सारे लोग सभी देख रहे थे, बाहर निकाल दिया उन्हें। और जब बाहर आई डायना, बाहर वो खड़ी थी लेकिन कांप रही थी, और जैस्मिन जो 18 साल की थी उनकी पोती, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा लग रहा जैसे कोई क्राइम किया हो। डायना ने मुड़ के बिल्डिंग की तरफ देखा और बोली जैस्मिन मैं तुम्हें बता रही हूं बेटा, वो मार्कस ही है। और जैस्मिन जो कि ऑब्वियसली बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, उसने फोन निकाला और बोली दादी अगर आप कह रही हैं ना तो हम प्रूफ करेंगे। जैस्मिन ने अपनी दादी की मदद करी, घर जाके सारे रिकॉर्ड्स निकाले मार्कस मिचेल के, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसका एक्सरे, उसका जो फ्रैक्चर हुआ था, सारी की सारी चीजें, एक एक चीज डायना ने संभाल के रखी थी उसके बचपन से, एक एक चीज, भले उस पर धूल लगी हो लेकिन कोई भी फाइल खोई नहीं थी। मां का दिल ऐसा होता है, एक एक चीज। और डायना ने फौरन लॉयर से कांटेक्ट करना शुरू किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, बहुत सारे कॉलर्स तो माने ही नहीं, फोन ही काट दिया। कुछ बहुत पोलाइट थे लेकिन फिर उन्होंने कहा मैडम देखिए ये सब बातों में मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, या मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। और कुछ जो थे उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप पागल हो गई हैं, ये कैसा केस है, आप कुछ भी बोल रही हैं, और फोन रख दिया। लेकिन फिर एक जगह कॉल लगी, और ये कॉल लगी एंजेला ब्रुक्स को। ये सिविल राइट्स की एक लॉयर थी अटलांटा में, और डायना ने उसे सब कुछ बताना शुरू किया। एंजेला उन लॉयर्स में से नहीं थी जो ना सुने, एंजेला ना हंसी, ना मजाक उड़ाया, ना डायना को टोका और ना फोन रखा। उन्होंने बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुना, और बात खत्म होने के बाद एंजेला ने उनको कहा कि आप सारी की सारी फाइल्स मुझे भेजिए। और एंजेला ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को शुरू कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी पिटीशन फाइल करनी होगी कोर्ट में, उस एग्जीबिशन के खिलाफ जो भी लगी हुई है, कि कहीं वो बॉडी को ट्रांसफर ना कर दें। एग्जीबिशन है ना, वो कभी भी शिफ्ट हो सकती है, कहीं ले जाएंगे वो दूसरी कंट्री में, तो उससे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा।
और ये उम्मीद थी कि वहां जाके डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। मगर हुआ ये कि जब उन्होंने एग्जीबिशन वालों के खिलाफ ये केस फाइल किया तो उनके भी लॉयर्स थे कंपनी के, वो आ गया है और उन्होंने बहुत सारी बातें करी डायना के खिलाफ। उन्होंने बोला अरे ये डायना ये बेचारी बूढ़ी हो चुकी है ना, गम है, इनका गम खाया जा रहा है, उनको 25 साल हो चुके हैं ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये जहां कुछ बॉडी दिखती है कुछ भी दिखती है इन्हें लगता है इनका बेटा है। जज साहब ऐसा थोड़ी होता है। और डायना इस वक्त मजबूर एक मामूली नर्स कोर्ट रूम में बैठी हुई थी, उसके आसपास महंगे सूट्स में लड़ रहे थे ये कॉरपोरेट लॉयर्स, और ये सारे के सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे उनके गम को कंफ्यूजन बता रहे थे, पागलपन बता रहे थे। जज ने भी उनकी पिटीशन को रद्द कर दिया, डिनाई कर दिया, कहा कि कोई टेस्टिंग नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं है। वो कुछ बोलने के लायक नहीं रही थी। जब वो बाहर आई तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, ये स्टोरी वायरल हो गई, मगर उस पॉजिटिव नेचर के साथ वायरल नहीं हुई जिस तरह से कहानियां होती हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन इस 52 साल की लेडी का लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने लालची बोला, किसी ने पागल बोला, किसी ने बोला कि इसको पैसे चाहिए क्योंकि ये एक नर्स है, इसको कहाँ कुछ मिल रहा होगा, डोनर की इज्जत नहीं करती है, तमाम बातें उसे सुनाई गई। लेकिन डायना एक एक वर्ड पढ़ा उन्होंने, एक एक कॉमेंट और एक एक लफ्ज लोगों का, दुनिया का तेज छुरी की तरह उनके दिल पे लग रहा था, पर वो रुकने नहीं वाली थी। डायना ने फिर से अपनी हैसियत के पार जाके एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया, एक डिटेक्टिव, फॉर्मर डिटेक्टिव जिनका नाम था रेमंड टॉरेस, और उन्होंने चार्ज भी नहीं किया, उन्होंने तुरंत भरोसा दिखाया डायना पे और उनकी सारी रकम उन्हें वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं पता लगाता हूं, और फिर जब पता लगाने लगे डिटेक्टिव रेमंड तो उन्हें बहुत सारी चीजें मिली, एक मकड़ी की जाली की तरह बहुत सारी लेयरिंग और कनेक्शन समझ में आ रहे थे। उन्हें पता लगा कि कोई भी नहीं बता सकता कि बॉडियां कहां से आ रही हैं, कहां से आ रही थी बॉडीज। फिर एक कनेक्शन मिला एक सप्लायर का जिसका कनेक्शन था ग्रेडी हॉस्पिटल के साथ, वही हॉस्पिटल जिसके पार्किंग लॉट में मार्केस की गाड़ी मिली थी। इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर एक साथ में जुड़े इन डिटेक्टिव के साथ और उन्होंने काफी इसमें इंटरेस्ट लिया, एग्जामिन किया हर एक चीज को, नोटिस किया और कंपनी को भी, और फिर ये स्टोरी एक शहर से निकल के पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में फैल गई। अभी बात सिर्फ डायना की इमेजिनेशन पे नहीं रखी थी, जो लोग इतनी बातें सुना रहे थे वो चुप थे और साथ देने वालों की आवाजें बुलंद हो रही थी। अब बात थी कंपनी पर कि वो डीएनए क्यों नहीं करने दे रही, और यही सवाल उठाया जा रहा था कि अगर आप इतने सही हैं तो डीएनए करने दो ना। और ये प्रेशर, जो पॉजिटिव प्रेशर बना, इसके चक्कर में पुलिस को वापस ये केस ओपन करना पड़ा। डिटेक्टिव ने रिव्यू किया सब कुछ, एक एक चीज, और पता ये लगा कि 1999 में क्या हुआ होगा। तो मार्कस के बारे में पता किया ग्रेडी हॉस्पिटल के मॉर्ग डिटेल्स के बेसिस पे, आर्काइव रिकॉर्ड्स होते हैं कौन कौन हॉस्पिटल में रहा होगा उस वक्त। तो अक्टूबर 18, 1999 एक बॉडी हॉस्पिटल के पास पाई गई जो कि अनआइडेंटिफाइड थी, मतलब नोबडी न्यू कि कौन है, क्या नाम है इसका, कोई आईडी नहीं थी। मगर मॉर्ग की डिटेल्स में लिखा गया एक ब्लैक मेल, 21 साल से 25 साल उम्र, और कॉज ऑफ डेथ सर पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, किसी ने हमला किया। मगर इन लोगों ने बॉडी ढूंढने की, वो उसका कौन है क्या नाम है ये ढूंढने की कोशिश नहीं करी, और एक ब्रोकर को ये बॉडी दे दी मार्कस मिशेल की, और सप्लाई चेन की वजह से ये एग्जीबिशन, वो मेडिकल एग्जीबिशन का हिस्सा बनी। एंजेला ब्रुक्स जो मेन लॉयर थी डायना के साथ, उन्होंने केस वापस फाइल किया और कोर्ट को इस बार सुननी पड़ी, डीएनए रिपोर्ट की मांग की गई। ये 2 हफ्ते बहुत भारी थे, बहुत भारी थे, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट आनी थी। डायना जो 25 साल से इंतजार कर रही थी, जो महज एक इत्तफाक की वजह से एक एग्जीबिशन में गई थी, एक जवाब के लिए उन्हें 2 हफ्ते रुकना था। वो सो नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी,
और फाइनली जब ये दो हफ्ते पूरे हुए और उनको एक कॉल आई, हर हैंड्स वर शेकिंग शिवरिंग, कहां पर रही थी वो? उनकी पोती जैस्मिन उनके साथ थी। डायना ने फोन उठाया एंड उधर से जो बंदा था उसने कहा, मैम इट इज अ मैच, और डीएनए मैच हुआ। डायना अपने घुटनों के बल गिर गई और बहुत बहुत बुरी तरह रोई। 25 साल बाद उन्हें पता लगा कि उनका बेटा आखिर कहां है, जिसे वो ढूंढ रही थी उसे प्रिजर्व करके एक सब्जेक्ट की तरह, अट्रैक्शन की तरह टूर पे ले जाया जा रहा था। मार्कस को एग्जीबिशन से तुरंत रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया। एक बाप, एक बेटा, एक इंसान जिसका कई सालों से नाम नहीं था, उसका फाइनली फ्यूनरल रखा गया। मार्कस के लिए इस बार उसके फ्यूनरल पे पूरा का पूरा शहर आया था। जितने भी लोग आ सकते थे उतने लोग मौजूद थे। जैस्मिन जो मार्कस की बेटी थी, जिसने कभी अपने बाप से कभी बात नहीं करी, जब वो छोटी थी तब वो इस दुनिया से चला गया था, जैस्मिन ने सबके सामने स्पीच दी। उसने स्पीच में कहा कि मैं अपने डैड से नहीं मिली, वो महज मेरे लिए एक कहानी की तरह है, फोटोज में है, मेरी दादी की बताई हुई यादों में है, और मेरी दादी ने हार नहीं मानी। दुनिया के खिलाफ आज लड़के उन्होंने मुझे भी एक अलग इंसान बना दिया। और डायना ने जो कैस्केट में लेटा मार्कस था, उसकी बॉडी थी, उसके पास झुककर डायना ने कहा, सॉरी मार्कस बेटा, टाइम लगा तुम्हें ढूंढने में, पर यू फाइनली होम। इसके बाद लॉ सूट लगा कंपनी पे, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, नो वन वॉन्ट्स टू ओन इट, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि इस पूरी दुनिया डायना की तरफ थी। बहुत सी फैमिलीज को इस चीज पे जज हुआ और बहुत सी फैमिलीज एग्जीबिशन वालों के पीछे आज भी पड़ी हैं, आज भी ये केस ओपन है। और डायना ने कहा, मुझे कोई केस से फायदा उठा के पैसे नहीं कमाने, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। डायना, उन्होंने जो दिखाया रेजिलियंस, उसने सब कुछ बदल दिया। रूल्स बदल गए कि डोनर का नाम रिवील करना पड़ेगा इन केसेस में, और डायना की वजह से ही, जिसका 25 सालों तक कोई नाम तक नहीं जानता था, वो मार्कस मिशेल अब कहानियों के जरिए दुनिया जानती रहेगी आज के बाद भी। ये था किस्सा मार्कस मिशेल का, और ऑफ कोर्स द हीरो ऑफ द स्टोरी डायना मिचेल का। यह किस्सा आपके हवाले। 666-22-107 भाई मेरे तो दिल पे लगी थी ये कहानी, एंड आई होप आपको भी उतनी अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो आई कैन नॉट टेल यू, आई फेल्ट रियली रियली गुड ये कहानी सुनाते हुए। ओके, तो मिलते हैं भाई सब, एक गाने का मुलाकात होती है, जाना आपने नहीं है। 666-22-107 काफी टाइम बाद अफसाना खान, रफ्तार, सलीम सलीम।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हाँ जी, तो 6:02 हो लिए भाई, कहानी कैसी लगी जरूर बता देना 666-221-07 पर। म्यूजिक

0: बातचीत मिल गई है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहानी में दिल भी लगी ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये हुआ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है मेरे पास, कबीर भाई कल वाली भी कहानी भेज देना, भेज देंगे भाई। और एक नंबर स्टोरी लिखी है भाई ने, थैंक यू सो मच अली भाई फ्रॉम हरियाणा। मणि भाई ने भी लिखा है, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। और मैसेज आया, अरे माज भाई क्या बात है, रैप की तारीफ आज, ए बॉय। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे की स्टोरी भी बैठ के भाई सुनो बैठ के, कल वाली स्टोरी भाई बहुत कती जहर थी। एक कॉल तो आ रही है लेकिन जल्दी निपटाने पड़े, एक और कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
1: अल्लाह का शुक्र है, सरफराज बात कर रहा हूँ।
0: जी सरफराज भाई बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो और
1: आंख में आंसू भी आ रहे थे, रोंगटे भी खड़े हो रहे थे कहानी सुन।
0: यही चाहिए, इसी का पैसा मेरा भाई। यही फील आनी चाहिए। मैंने तभी पहले बोला था भाई,
1: ये एक सीख मिले कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
0: हाँ भाई एकदम, मतलब जिद्दी होना चाहिए इंसान को कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी।
1: माँ तो माँ होती है भाई,
0: बेशक भाई बेशक। तो ये कहानी बड़ी खास थी इसलिए मुझे पता था इसका थोड़ा असर ज्यादा पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लगा क्या पूछ ले।
1: सोचने पे आपने मजबूर कर दिया, कहानी सोचने में मजबूर हो गया इंसान, इमोशनल हो गया। मैं गाड़ी खड़ी करके जो है कहानी सुनने लगा, मैं सुन लूंगा तभी अब गाड़ी निकालूंगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये सुन के मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: पूरे के पूरे नंबर हैं आपके, सेहत अदा करे,
0: आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी जमान में रखे, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत
1: जी भाई,
0: ख्याल
1: रखिए। बस मैं बोला यार बता दूं कबीर भाई, यार कहानी से चीर के रख
0: दिया। हाय हाय हाय, आ तो डिस्टिंक्शन से पास हो गया भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला।
1: वही है वही भाई,
0: ओके ख्याल रखिए
1: बस भाई, इंशाल्लाह। ओके
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद जो है कुछ और मैसेजेस भी हैं, 10 on 10 में सारी के सारे मैसेज पढ़ूंगा। बहुत दिनों बाद माज भाई भी है, माज भाई थैंक यू सो मच। अभी क्या, क्योंकि अजान का वक्त होने वाला है तो कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी, जाना अपने ही नहीं, बेस्ट जगह पर है आप, स्टे का ट्यून्ड। हबीबी मिका सिंह अली कुली मिर्जा।

मैं कुछ नाम ले दूं जल्दी से, मिका सिंह, अली खुली मिर्जा, दोनों साथ में इश्कम, और कुछ मैसेजेस हैं। ताहिर खान साहब को अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। एम के भाई लिखते हैं, भाई मॉम के लिए वर्ड नहीं आ रहा, थैंक यू सो मच भाई, आपको भी अच्छी लगी कहानी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चेक वेर आई एम गोइंग लॉन्ग ड्राइव विद स्टोरी, मजा आ गया, थैंक यू सो मच मुबीन भाई, कहानी कैसे लगी वो बताइएगा, एंड लंबा सफर बढ़िया है, कहानी सुनते सुनते कट जाएगा। अरबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और एक भाई हैं उनको भी काफ़ी चली, गुलाम राजिक साहब ने मैसेज किया है, और तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं 10/10 नाइस स्टोरी, डिलीवरी वाज ऑसम, थैंक यू सो मच भाई। तमस्तु मैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच बहना, और बाकी मैसेज कुछ देर में, क्योंकि अभी अजान का वक्त है, इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में मुलाकात होगी, जाना आपने ही नहीं, एकदम सॉलिड जगह पर हो बढ़िया वाली, ठीक है, जाना नहीं यहाँ से, बस स्टे।

0: देखते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
1: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: देसी।
1: मूवी की स्टार्टिंग भाई इमरान हाशमी बाइक पर, ब्लैक कुर्ता भाई साहब, और ये गाना क्या अरे यार मजा ही आ गया भाई साहब। तो फिर आओ 6:14 पर।

भाई कितने भी गाने बन जाएं, इसका तोड़ नहीं है, है ही नहीं. Not because I am a fan, but है नहीं भाई. Competition को नहीं भाई, तो फिर आओ FM 107 पर. मैं बता रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ट्रॉफी दे दी हो. मेरे पास एक बहुत प्यारा मैसेज आया, सबसे पहले वो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आज मैंने कुछ तो हासिल कर लिया. कई मरतब ऐसा होता है ना कि आप शो करके घर जाते हैं तो आपको लगता है आज तो भाई कुछ लटगाड़ी है. आज यही हुआ है. एक मैसेज आया मेरे पास और ये राणा बब्बर भाई का मैसेज है. वो लिखते हैं कि आज तो स्टोरी मैंने पैसेंजर को भी सुनाई, वो कैब चलाते हैं, और कह रहे हैं फुल स्पीकर ऑन करके लोडेड पूरा पैसेंजर को सुनाई, और जाते ही वो टिप्स देके गया स्टोरी की वजह से. इसका मुकाबला कोई कर सकती है क्या ट्रॉफी भाई? भाई थैंक यू सो मच राणा भाई, दिस इज सच अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. इससे बड़ी चीज मेरे लिए आज की तारीख में तो नहीं हो सकती. थैंक यू मेरा भाई. मैं जितना भी थैंक यू लिख लूँ इस पर वो कम ही है. थैंक यू सो मच, आपने आने वाले पूरा हफ्ता मेरा सेट कर दिया भाई. अब मेरा मूड कोई ख़राब कर नहीं सकता, ऐसा कर दिया आपने तो मैं बड़ा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. वो लिख भी रहे लव यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपका और मेहरबानी कि आपने, और पैसेंजर का नाम मुझे पता नहीं है बट वो जो भी है सुन के उतरे उनको ही मेरा बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस अवार्ड.

सावाजी भाई यही सवाल है जो भी राणा भाई ने मुझे बताई। मुझे हमेशा रहता है कि कोई अगर पैसेंजर आता होगा तो जिन्हें मेरे कैब वाले भाई उन्हें वॉल्यूम कम करनी पड़ती है, बट व्हेन इट रेजेस और कोई सुन लेता है तो ये बहुत बड़ी जीत है भाई। मतलब किसी पैसेंजर ने गानी सुन ली तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार भाई लगे। हाँ ना फिर है मेरा भाई। तो हैदर भाई फ्रॉम पाकिस्तान लिखते हैं, नोबडी कैन एक्सप्लेन द पेन एंड इमोशंस ऑफ अ मदर बट स्टिल यू एक्सप्लेन इट वेरी डीपली, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर हार्डेस्ट वर्क, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। हैदर भाई फ्रॉम पाकिस्तान, हैदर भाई को बहुत सारा प्यार। परत भाई कह रहे हैं कबीर भाई प्रोमो चला के रोने क्या रोने लगे कि आप हौसला रखो, आप डिजर्व करते हो भाई, आपकी तारीफ करना बनता है, भाई को बहुत सारा प्यार क्या। और लिखते हैं आज की स्टोरी जबरदस्त थी, सबर किया डायना ने और वो सही था, बहुत मुश्किल काम होता है ये। करण भाई कह रहे हैं कि भाई कबीर भाई वो खिलर नहीं पकड़ा गया, नहीं भाई वो पकड़ा नहीं गया, उसकी वजह ये रही कि 25 साल बीत चुके थे तो डायना ऑलरेडी वो थक चुकी थी, शी डिडंट वांट टू हैव अनदर फाइट, वो पूछे थे चलो छोड़ो। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, वो लिखते हैं कबीर भाई इमोशनल स्टोरी बहुत ही खूबसूरत, एक माँ की कोशिश और जिद ने आखिरकार अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढ लिया। सही कहते हैं कि माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। ज़बरदस्त सैड एंडिंग, बेटा जिंदा नहीं मिला, दुनिया भर के लोगों की बातें सुनकर उसने पर हार नहीं मानी, हैट्स ऑफ टू द मदर। और इनका भी वही सवाल है कि जो उनके बेटे के साथ हो उसको क्या उसको ढूंढा गया, नहीं ढूंढा गया, नहीं बिकॉज अपेरेंटली शी डिडंट से यस टू इट, उन्होंने बोला कि मैं अभी खर्चा नहीं कर सकती क्योंकि केस करने पर भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, खर्चा है, लॉयर है, फलाना ढिमकाना है, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो। तब बस मैंने वॉल्यूम बढ़ा के रखी थी, थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मैसेज किया है उमर भाई, लिखते हैं स्टोरी अमेजिंग थी, सैल्यूट टू मार्कस मदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। और नसीम साहब लिखते हैं अच्छा है, थैंक यू सो मच। फिर सलाम वालेकुम अस्सलाम जुमेरा तिरन साहब, थैंक यू। फिर नाइस स्टोरी एक भाई लिखा है, ये लिखा समीर भाई ने, नया स्टोरी लिखा, नया स्टोरी। और अरबाज भाई लिखते हैं भाई मुझे घर जाना है, कहानी सुनकर माँ की याद आ गई है ना। और लॉन्ग स्टोरी मुबशिर मुबीन भाई लिखी सुनी है कहानी, इसके बाद जो है सलाम ब्रो गुड इवनिंग, वेरी सैड स्टोरी, मैं मास डोनेशन किया होगा लेकिन उसको मारा किसने, फिर वही नहीं पता अब्दुल नवीद भाई, पता नहीं किसने क्या किया। इफ्तिकार भट्टी साहब ने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, उन्हें बहुत अच्छी लगी कहानी। मणि भाई का तो मैसेज पढ़ चुका मैं, इनके अस्सलाम वालेकुम भाई, सुपर स्टोरी, फील लाइक रेनिंग आउटसाइड बट नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग विल हैपन ब्रो, नथिंग रे बाबा। और हिशाम साहब लिखते हैं भाई जवाब नहीं है आपका, सुपर सुपर, थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार क्या। सिद्दीकी साहब लिखते हैं इमोशनल कर दिया यार तुमने, स्टोरी वेरी गुड बट वेरी इमोशनल, थैंक यू भाई। यही मकसद था ये स्टोरी चुनने का हीरो भाई, सो काम कर गया, मतलब अपना तो पैसा वसूल हो गया। और यूसुफ भाई कह रहे हैं कि एक बात कबीर, इमोशनल स्टोरी सभी को टच करती है, इट टच्ड माय हार्ट एज वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सराहना बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ की जब मेहनत लगती है, क्योंकि ये सारी कहानियाँ इन पर मेहनत बहुत लगती है। आप दो लोग भी अगर मैसेज कर देते ना कि यार अच्छी कहानी अच्छी, तो इट फील्स ग्रेट, क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं नहीं मेरा तो काम है, वो बात भी नहीं है, काम है अपनी जगह, बट आई डोंट ट्रीट इट एज अ वर्क, ये लगता ही नहीं मुझे काम, इसलिए पूरे दिल से ढूंढता हूँ कहानी। और आप लोग इतना प्यार देते हैं तो बहुत मज़ा आता है, मज़ा ट्रिपल हो जाता है। एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई मेरी तरफ से, हैं किसको तरफ से, सलाम मोहम्मद कलीम सलीम, अच्छा। और एक मैसेज है, इफ्तिकार भट्टी मेरे कंप्यूटर का नाम था, अच्छा कंप्यूटर टीचर का, मैं कहूँ इफ्तिकार भट्टी आपके कंप्यूटर का नाम था। नया AI मार्केट में आया इफ्तिकार भट्टी .AI। अरे यार तेरे को मुझे अपने फॉर्म में आना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या है इमोशनल कर दिया आप लोगों ने भी, इतना प्यार देके, तो जरा वापस अपनी बात आता हूँ मैं, ये गाना लगाऊंगा तभी मैं अपने फील पे आ पाऊंगा। ओके क्या पूरे बकरे की तरफ से आपको सलाम, बकरा, अच्छा बकरा की तरफ से, मैं डर गया ना, बकरे की तरफ से सलाम करो मुझे, रुको मुझे अपने जोन में आ जाता हूँ, ये गाना मुझे अपने जोन में ले आएगा। डाणा न्योली वाला जगाने

हाँ जी आलिया रे भाई साहब लटकाड़ के तैयार है हम तो। और भाई बढ़िया चल रहा है भाई, रास्ता में को आके वो वाह बादल दिख रहे थे भाई, कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो वेट ही कर रहा था। और बारिश की परेशानी क्या है ना, जब मैं स्टूडियो में होता हूँ या घर में होता तब होती है बारिश, मैं बाहर निकलता तो होती नहीं, पता नहीं क्या परेशानी। हाँ कर लो जो क्रैक कर लो इस पर, मुझे पता है कुछ मन में आ रहा होगा आपके, बोल लो।

सवाल से तो नहीं, फर्क भाई कह रहे हैं पापी लोग है ना इसलिए बारिश हो रही है। अरे मेरे घर वाले तो शरीफ है, उनके लिए तो बूंदाबांदी हो जानी चाहिए फरत भाई। वो तो बेचारे कतई मासूम है एकदम, गाय क्या बताऊं मैं कतई। अच्छा पहले खबरों की तरफ बढ़ते। सो कतर को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तीसरी प्लेस पे आया है कतर एक बहुत ही खास खास मुकाबले में। 20th एडिशन ऑफ मोहम्मद सिक्स इंटरनेशनल प्राइज फॉर द मेमोराइजेशन रिसाइटेशन तजवीद और इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली कुरान। और ये जो कॉन्टेस्ट हुआ ये मोरक्को में हुआ एंड काफ़ी शानदार कॉम्पिटिशन रहा एंड कतर ने इसमें तीसरा जो स्थान है, तीसरी जगह जो है वो हासिल करी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा हमद मेडिकल कॉरपोरेशन से खबर आई, उन्होंने एक्सपेंड की है अपनी डेंटल सर्विसेज को। अलखोर हॉस्पिटल जो है और आयशा बिन हमद अल अतिया हॉस्पिटल, यहाँ पर अपनी डेंटल सर्विसेज को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट क्लिनिक्स को अब 8 कर दिया है, अब 8 ट्रीटमेंट की क्लिनिक्स हैं। और जो जो एक्सपेंशन है इससे बहुतों को फायदा होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज मिलेगी स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्विसेज के लिए पूरे नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि वहां पे लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, तो ऑब्वियसली आपकी डेंटल केयर का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। एंड इसके अलावा ये लग्जरी वॉचेस और इन सब पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ऑक्शन बहुत जल्दी लगने वाला है ये वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स को लेके, जिसमें व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ गाड़ी गुड्डी है भाई, और बाइकें भी हैं, और साथ में ये जो मज़ादार ऐप है इसके ज़रिए घड़ियों को भी ऑक्शन किया जाएगा। जो पहला ऑक्शन होने जा रहा है वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स का, अगर आपको शौक है, ये तो मेरा कलेक्टिबल्स है याद से मैंने 40 साल पहले लिया ऐसा कुछ, अगर आपको शौक है तो ये कल ही को है, 17 तारीख हो गई ना, 18 तारीख को यानी कल को शाम 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे तक ये पूरा ऑक्शन रहेगा। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं, तो उस पर नज़र रखिएगा, मज़ादात ऐप पे ये आपको मिल जाएगा। तो ये भाई साहब आपके ऊपर है, आप देख लीजिए। बाकी मैं ज़रा मौसम पे नज़र डालने वाला था, मैंने कहा सबसे पहले तो अपनी ऐप ही देख लूँ, किसी की क्यों सुनूँ भाई मैं। तो अभी मोस्टली क्लियर ही बता रहा है, 37 degrees फॉर नाउ, 33 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर ठीक ठाक है, ह्यूमिडिटी का लेवल भी 47% है, विच इज़ ओके। देखो जब तक मेरे चश्मे पे भाप नहीं आ रही है, धुंध नहीं आ रही है, तब तक मैं मानता हूँ मौसम बढ़िया ही है भाई, अभी थोड़ा सुकून है। एक मैसेज है घर वालों को भी, हमारी वजह से बारिश नहीं हो रही। नहीं सर, अगर सारे मुल्क में भी एक बुरा आदमी हो तो उसकी वजह से बारिश नहीं होती। देख रहे हैं आप बॉस, देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं, इनको सुना रहा हूँ मैं कहानी कैसे लगाते हैं मुझे। अरबाज भाई बहुत बढ़िया कह रहे, घर वालों को भी हमारी वजह से बारिश नहीं हो रही। 42 दिखा रहा है ना आपको गाड़ी में, ज़्यादा ही दिखाएगा, इट्स ऑलवेज लिटिल मोर। और एक मैसेज आ रहा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अमर यासिर साहब को मिल जाएगी कहानी, बेफिक्र हो जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है। 666-22107 नंबर वैसे तो, और आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा एकदम। और बढ़िया सा भाई, एक ऐसा रिमिक्स लगाऊंगा ना, बची कुची गर्मी भी भाग लेगी भाई। क्या मिक्स किया इस गाने को यार, क्या मिक्स किया गया, बढ़िया रिमिक्स है यार ये। और फहीम अब्दुल्ला की आवाज, मैं इनका गाना तलाश रहा था, काशी अवारापन में भी एक गाना गा देते हैं अवारापन 2 में, बट नंदलेस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: Nonica Mix. देखो क्या है ना, मेरे पास ही मैसेज आया है, एक तबस्सुम मैन लिखती है, सैयारा वाले सदमे में है आवारापन के गाने सुन के। अरे बहन, ये लोग क्या समझेंगे सैयारा वाले, क्या आवारापन क्या चीज है। मैं तो थिएटर में चिल्लाने वाला था पहली पिक्चर की तरह, आलिया। अरे यार, हमारा जहाँ प्लान था ना जाने का, हम लोग जाने वाले थे वहां पे, क्या कहते हैं, एशियन टाउन में जाना पड़ा, एकदम सोफिस्टिकेटेड थिएटर में, तो मैं सीटी भी नहीं बजा पाया यार, एक चीज मिस हो गई। कौन आ रही है? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: भाई के क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है यार।
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया।
1: हाजरी नहीं लगी यार।
0: शानदार शानदार, क्या चल रहा है मेरा भाई?
1: बस कुछ नहीं यार भाई, निकले थे बाहर को देखा है उनका मौसम, मौसम कैसा हो रहा है? मौसम तो बड़ा शानदार जबरदस्त हो रहा है, मगर गर्मी बहुत बुरी है।
0: तो फिर मौसम कैसे बढ़िया हो रहा है?
1: नहीं, मौसम यार देखने में बढ़िया हो रहा है, वैसे फील करने में बढ़िया ना हो रहा।
0: हाँ, गाड़ी के अंदर एसी में बैठ के मौसम बढ़िया लग रहा है खिड़की से। ऐसे तो हर रोज ही बढ़िया है, कोई टेंशन थोड़ी है।
1: ना ना, जैसे जैसे वो रेनी वाला फील आ रहा है ना, हाँ। जैसे बारिश हो सकती है तो मौसम हो रहा है।
0: बस हो सकती में तो खुश हो जाते हैं कतर में सब, कि हो सकती है।
1: भाई भाई इतनी खुशी बेहतर है
0: ना, इतनी ज्यादा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए खुशी, वो भी अच्छी चीज नहीं।
1: ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो फिर वो शर्मा जाएगी, फिर आएगी नहीं, कोई फायदा नहीं।
0: अग्री अग्री अग्री, ये बात तो मानता हूँ।
1: और बताइए कबीर भाई कैसे?
0: बस बढ़िया भाई, एकदम शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह, एक नंबर चल रहा है सब कुछ।
1: मन गया यार, बहुत दिन हो गया भाई से बात ही नहीं हो पा रही यार, निकलना ही नहीं हो रहा, तो मन लगा निकले होंगे बात करके। देखा
0: आज नींद पूरी कर ली? मुझे लगा इतने टाइम से भाई एकदम बढ़िया नींद खेच रहे होंगे, जब ये आ ही नहीं पाए।
1: मैं तो भाई रोज भाई साहब रोज सुबह को नाश्ता वाश्ता करा 8:30 बजे तक, फिर सो गया, उठता हूँ 2 बजे लंच करता हूँ, फिर एक राउंड निकाल लेते हैं, फिर उठते हैं 5 बजे के बाद में।
0: यही यही जिंदगी चाहिए यार, इसके लिए कहाँ एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी मेरे को, ये बताओ। कैसे
1: एप्लीकेशन गुजरा भाई साहब, बस तक भी रहेगी कहाँ ले जाए, अब कैसे सही जगह लेकर आइए।
0: अच्छा ऐसा है क्या भाई? बढ़िया यार,
1: हाँ
0: क्या बोल सकते हैं आप, क्या है, कोई बोल सकता है क्या?
1: भाई आप बोल तो रहे हैं यार।
0: नहीं भाई, नहीं भाई, हमारी का मतलब भाई, आप बड़े आदमी है यार।
1: यार तुम यार इमरान हाशमी के फैन हो गए यार, तुम सैयारा के गाने बजा रहे हो बड़े यार।
0: इससे पहले जो मैंने भर भर के बजाया इमरान हाशमी, तब तो सुनानी है, एक सैयारा गाना पकड़ लिया।
1: हाँ तो वो पकड़ेंगे हम तो,
0: इससे पहले लगातार, इससे पहले लगातार जो है चले हैं गाने आवारा बन के लगातार, समझ रहे हैं आप, 6-6 मिनट।
1: चलो फिर 26 को,
0: मैं देख के आ गया, फैन हूँ मैं, 26 को चल रहा।
1: अरे वो 26 की बात कर रहा हूँ भाई साहब, 26 अगस्त की है।
0: 26 अगस्त को कहाँ चल रहा हूँ? मतलब
1: लेजेंडो वाली लड़ाई में।
0: लेजेंडो वाली लड़ाई में?
1: हाँ आ रही है ना भाई साहब, टॉक्सिक चल रहा।
0: नहीं भाई, थैंक यू सो मच, मुझे ना देखनी भाई,
1: देखनी तो वो देखो मार का धार धूल।
0: देखो मुबारक हो, मैं समझ गया पिक्चर क्यों चल रही है ऐसी वाली। अब समझ में आ गया मेरे, अब मुझे क्लियर हो गया, हमारा अपन अगर पिटी होगी पहली वाली तो क्यों पिटी होगी। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। समझ गया मैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ,
1: मैं ठीक हूँ,
0: इसी गम में जीना चाहता हूँ मैं, हमारा अपन की काफी
1: है।
0: मैं तो हमारा अपन देख के आ गया फर्स्ट डे भाई। थिएटर में चिल्लाने वाला था वो, आलिया कंट्रोल करते हैं दूसरे, तो इसलिए मैं सीटी नहीं बजा सकता था, क्योंकि बिंदु बोलता वरना बजा देता।
1: वो अपने साथ भी एक बार ऐसा हुआ, अभी वो जो चल रहा था ना मैच, फुटबॉल चल रही थी, वो हम उसमें जो है ना फेस्टिवल विलेज में बैठा हुआ ना स्क्रीन पे देख रहे थे। अब भाई साहब वो इतना तो पता नहीं है कि कौन सा सीन पे कब तक चिल्लाना है, कब तक सीढ़ी बजा दी है, क्या है क्या नहीं। अब वो गोल से टाइप का हुआ, अब चिल्ला गया था मेरी तरफ को देख रहा है, गोल हुआ नहीं।
0: इसीलिए भाई मैं खुद बता रहा हूँ ना, चूंकि हमारे जहन में था कि हमारा अपन देखेंगे एशियन टाउन में, पर हमारे एक भाई ने थोड़ा सा टोपी पहना दी हमें, तो हमारी चीज चेंज हो गई, हमें प्लेस वेंदोम जाना पड़ गया, वेंदोम चले गए, वहां तो सोफिस्टिकेटेड क्राउड, तो हमने कहा यार अब यहाँ पे हम आलिया भी नहीं चिल्ला सकते हैं, सीटी भी नहीं बजा सकते हैं, चुपचाप बैठ के पॉपकॉर्न दबा के पूरी पिक्चर देखी है, पर ठीक है घर पे चिल्लाएंगे जब घर पे आएगी मूवी, तो
1: देख
0: देख के चिल्लाएंगे।
1: कुछ दो चार हफ्ते की बात है
0: भाई, मैं तो पिछली पिक्चर की तरह वो रेत भी लेके आऊंगा, मट्टी लेके आऊंगा, हाथ में से गिरते हुए दिखाते ना पहले सीन में आलिया, वो भी मट्टी गिराऊंगा मैं घर पे, देखो तुम।
1: भाई भी राय साहब जो है ना झाड़ू पोछा हाथ में दे देंगे कि लो साहब
0: कोई बात नहीं भाई, ये तो करके रहूंगा मैं, ये मेरे को करना है चीप थ्रिल्स।
1: हाँ, काम करके परेशान हो रहा है, थक रहा है, और भाई साहब बट्टी लेकर आ रहे हैं कि लो उड़ा रहा है ले सफाई कर लिया
0: नहीं पर भाई देख क्या हो यार, अगर आपने नहीं देखी और अपन टॉक्सिक से तो एक गुना बेहतर ही है
1: मैं जो ऐसा ऑनलाइन देख रहा हूँ रात को लेट के देखूंगी।
0: अब मुझे पता है दूसरी बात से क्या समझ में आया कि पायरेसी क्यों नहीं रुक रही है इंडिया में
1: भाई साहब डेट पे जो है ना V2 में है कि बिल्कुल क्लियर।
0: अच्छा
1: हाँ, रात को लेट के देखेंगे।
0: घर वालों ने मना किया है अब ऐसे लोगों से बात करने से, पर मजबूरी है मेरी खुलेआम भाई चलो देख क्या हो, पर बताना मुझे टॉक्सिक का। पर मैं तो अभी
1: परमिशन मिल जाए पहले जाने की।
0: अरे मिल जाएगी
1: ना यार, यहाँ से तो कोई टेंशन नहीं है मैडम की, हमारी अपनी वाइफ की, वो जाने नहीं देती है ना, हम कहीं भी रहे।
0: अब आवारापन जैसी पिक्चर पूछेंगे तो इंसान जाने भी दे, टॉक्सिक देखने जानी है, ये कोई बात होती है? आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं यार, क्या बताऊं मैं
1: भाई साहब बड़ा मक्खन वक्खन लगाना पड़ेगा जब जाके परमिशन मिलेगी।
0: ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ऑल द बेस्ट।
1: ओके थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू
0: सो मच मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। तो जयस भाई तो जा रहे हैं टॉक्सिक देखने, भाई मैं पूरे हफ्ते वारापन के ख्वाब में रहना चाहता हूँ, कैसे मैं तो वहीं जाना है, खुद नहीं भी चलोगे तो दूसरे को चिल्लाते सुनना है। अरे बहन जाओ, आपने अभी तक नहीं देखी ना वारापन, तो बस बहन आप जाओ देख के आओ, और फरहत भाई भी चिल्ला रहे आ जा वो ना उस टाइम पे देखा था जो बच्चे थे ऑब्वियसली, जब वारापन पहली वाली आई थी, और भाई एक एक चीज ऐसी छप गई थी ना दिमाग में, ऐसी बुशर्ट पहनूंगा, ऐसी जैकेट पहनूंगा भाई मैं वो जो एक उसमें तो फिर आओ का रिमिक्स उन्होंने ब्लैक डेनिम पहनी ना, वो तक लेके आया था आपका भाई, ये पहनूंगा भाई बढ़िया एकदम रेगिस्तान में खड़ा होके, कोशिश भी की थी मुंह में मट्टी चली गई सारे अंदर का इमरान हाशमी धरा का धरा रह गया, पर आई वॉन्ट टू ट्राई दैट यू नो एटलीस्ट, बट आई लव्ड इट, मजा आया। हाँ ब्लैक वाली भाई, वो डेनिम जैकेट थी पूरी की पूरी। जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम, जुल्कनैन साहब सोच रहे होंगे क्या बातें चल रही हैं, कैसे बच्चे हैं आजकल के चलो थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ। तो जो जो शख्स मुझसे कह रहे थे, एक दो भाइयों ने बोला कि मोटिवेशन चाहिए, भाई इस गाने से बढ़िया मोटिवेशन तुमको कोई नहीं दे सकता, कोई दे नहीं सकता। शाउट आउट टू पाकिस्तान, शाउट आउट टू द रैपर्स इन पाकिस्तान, तलहंजुम। एक जो है गाना मैं अभी कुछ देर में लगा रहा हूँ, ये पैं पे पैं पे पैं पे पैं जो बजा है ये मुझसे गलती से बजा है, ज़्यादा जोश में नहीं आ रहा ना सोचा कि मोटिवेशन के नाम पे सर्कस दिखा रहा है ये रहा असली मोटिवेशन, समझो क्या भाई के आपको ज़रा संभल कर अगर भाभी ने सुन लिया तो नहीं भाई वो समझती है ऐसी बात थोड़ी इतना कहूँगा जो भी मेहनत कर रहा है भाई बहन दोनों को लगा रहे, देखी जागी भाई ठीक है।
2: If I go, let him know, I said, लड़के लगा रहे।

0: में एक रूह दो जिस्म में. Let them know के कोई मर के भी मरे ना. Let them know यहाँ मौत की भी किस्म है.
1: ऐ लड़के लगा रहे यंग स्टनर्स स्ट्रेट आउट ऑफ पाकिस्तान.

शाबाशी तो मिलती रहेगी, पर आपने इतनी शाबाशी दे दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी भी दिल से सुनी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मैसेज है मेरे पास, कबीर भाई हम भी हिप हॉप नाइट कुछ करते हैं ना कतर में, क्या बोलते हैं भाई हिप हॉप नाइट के लिए? करण भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं कोशिश की थी एक बार ही बहुत फेल्ड कोशिश थी, बिकॉज जैसे आप रैप करते हैं मैं तीन लोगों को और जानता हूँ, तो हम कुल मिला के 6 रैपर्स हो गए। क्या करें यार, थोड़ा और भीड़ चाहिए भाई, रैपर्स थोड़े और इकट्ठे हो जाए फिर जरूर करूंगा मैं। नसीम भाई लिखते हैं स्टोरी भेजो, 84 किलोमीटर भाई साहब। नसीम भाई भेजता हूँ मैं आपको, और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज किन्होंने किया है, नाम नहीं लिखा है लेकिन ठीक है मैं समझ सकता हूँ। और एक मैसेज है, भाई साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, एक नंबर, शानदार शानदार। और कुछ मैसेजेस और हैं, लेकिन उससे पहले आज कौन कौन से दिन मार्क्ड किए गए हैं कैलेंडर के हिसाब से बता देता हूं। तो इंटरनेशनली आज है नॉन प्रॉफिट डे। ये नॉन प्रॉफिट डे उन लोगों के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इस ये यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे आपको। बाकी थ्रिफ्ट शॉप डे है, हमारे ऐसे चोर बाजार भी कहते हैं, वो भी थ्रिफ्ट स्टोर जैसा है। ब्लैक कैट अप्रिसिएशन डे, काली बिल्ली नज़र आए तो उसकी तारीफ कर देना, एप्रिसिएशन डे है। इसके अलावा वेनिला कस्टर्ड डे है, फिर क्या है, बुलिंग नो वीक, ओके, फिर आई लव माय फीट डे, पैरों से प्यार करो अपने, और बाकी कोई आपके मतलब का दिन नहीं, मेरे मतलब का दिन है। मैसेज भाई आप कहाँ नहीं सेंड करते हो, मेरे जितने दोस्त व्हाट्सएप में हैं सबको सेंड करता हूँ, सब लोग सुनकर बोलते हैं कहाँ से लाते हो भाई। मैं बोलता हूँ 107 पर अपना कबीर है भाई, मेरा भाई, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिए। सरफराज आलम भाई, सारे दोस्त यहीं पर ही, बाहर के हैं सारे, गेट टुगेदर पॉसिबल है मेरी जान। करण भाई ज़रूर, क्या साइफर पॉसिबल है, साइफर करने का ही मन है करण भाई, दैट इज़ द मेन आइडिया। बाकी चलिए मेरे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे मिलेंगे। अभी तो 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, एंड दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मां सलामा।

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: उधर नाबलस के जनूब में वाक़ कसरा कस्बे में 3 फिलिस्तीनी ख़ानदानों के घरों का इसराइली मुहासरा मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी है। शाम के जनूबी इलाके दराए के मग़रबी देही हिस्से में वाक़ आबदीन गांव में इसराइली फ़ौज ने कई फ़ौजी गाड़ियों बख्तरबंद गाड़ियों और पैदल फौजी दस्ते के साथ पेशकदमी की है। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली और 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 को बाद में रिहा कर दिया गया जबकि 2 बदस्तूर ज़ेर हरासत हैं। इस दौरान हौज़े अरमुक के इलाके की फ़िज़ा में इसराइली जासूसी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें भी जारी रही हैं। रूस और यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक यूक्रेन ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर रूसी हमलों की इत्तला दी है, जिनके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए जबकि शहरी तंसीबात और घरों को भी नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब रूस ने बताया है कि बेलगोरोद के इलाके में वालोइस्की ज़िला के कोलोस्को कस्बे पर यूक्रेनी हमले में 6 अफराद हलाक हुए। उधर रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसकी अफवाज ने ओडिशा की बंदरगाह में 3 माल बरदार बहरी जहाज़ों और 2 समुंदरी आयल टैंकरों को निशाना बनाया जिन्हें यूक्रेनी मुसल्ह अफवाजें इस्तेमाल कर रही थी। और हमारे न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर, जमहूरिया कोंगो में जारी एबोला वायरस की वबा से मुतालिक हुकाम ने बताया है कि अब तक 2,325 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,945 तक पहुंच गई है। इस तरह मौजूदा वबा ने 2018 से 2020 के दौरान फैलने वाली साबका वबा में होने वाली अमवात की तादाद भी तजावज़ कर ली है। साबिका वबा में 3,381 मुतासरीन में से 2,299 अफराद हलाक हुए थे। कोंगो के मकामी हुकाम के मुताबिक मौजूदा वबा मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा हलाकत खेज वबा बन गई है। नशरी के अख्तिताम से कबल एक बार फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमो अमीर ने इंडोनेशिया के यौम आज़ादी के मौके पर सदर ब्राबो सुबियांतो के नाम तहनीती पैगाम इरसाल किया है। इसके अलावा नायब सुमो अमीर और वजीर आज़म वजीर खारजा ने भी इसी मुनासबत से इंडोनेशिया के सदर के नाम तहनीती तर रवाना किया। वजीर आज़म वजीर खारजा से कतर के दौरे पर आए हुए ग्रेनाडा के वजीर आज़म डिकन मिचल ने मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मुस्तहकम और फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। और नायब वजीर आज़म वजीर ममलकत बराए दिफाई उमूर ने तुर्की के वजीर कौमी दिफा यशार गोलर से टेलीफोन पर रबते के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर बातचीत की। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 के स्टूडियो से तकनीकी मामिन अब्दुल्ला सुवेदी और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। शो शुरू करने से पहले बता दूं माहौल पता कैसा है। आज के शो का माहौल ऐसा है जैसे वो मेले में देखा है आपने, आइए आइए आइए, आखिरी मौका, बिल्कुल वैसा ही फील है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल आखिर में पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बिल्कुल एंड में चल रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो फिर नुकसान किसका है? मेरा तो है नहीं भाई, आपका ही है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू कतर 2026 2026। देखो क्या है, मैं जब से शो कर रहा हूँ तब से मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे गर्मियों में मौका मिला करने का, जून से मैं ये करता आ रहा हूँ और लगातार मैं कह रहा हूँ स्टेकेशन। आप खुद थक गए होंगे, जब आता है तब ये बोलता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस जो है ना अपने अपने मुल्कों में नहीं मिलेगा। हम तो जाते नहीं कहीं पे, अगर इंडिया चले गए तो कौन सा होटल में जाके रहेंगे। यहाँ पे ना ये मौका है, स्टेकेशन का अपना एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस करने का जो बिल्कुल चांस है वो लास्ट बिल्कुल आखिरी घड़ी, हाथ ही निकल गया पूंछ बाकी है। तो उससे पहले पूंछ भी निकल जाए आप स्टेकेशन का मजा लीजिए, क्योंकि कई सारे होटल्स में अभी भी ऑफर्स जारी हैं। तो विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, कल्ले कल्ले जाना है जी कोई गाल नहीं है, और दोस्तों के साथ जाना है, ग्रुप बना के जाना है, मेल फीमेल व्हाटएवर विच एवर वे यू वांट, आप जा सकते हैं स्टेकेशंस के लिए। अलग अलग होटल्स में अलग अलग रिजॉर्ट्स में बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स हैं। जिन्हें नहीं पता स्टेकेशन वो टर्म, जो लोग नए आए हैं भाई, यहाँ के कल्चर में इम्बाइब हो चुका है, और बड़ा जरूरी है कि स्टेकेशन कम से कम जिंदगी में एक मरतबा कतर में किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कतर रिलैक्सिंग, बिल्कुल अलग दुनिया है ये। तो जो लोग सोच रहे हैं कि चलो बर्थडे वीक है या बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, व्हाई नॉट थ्रो इट समवेयर वेयर यू कैन जस्ट स्टे। जरूरी थोड़ी है कि केक ही काटा जाए भाई, वो वहाँ पे थोड़ी देर तो पैसे वैसे बचा के मजा करो जाके, बढ़िया पूल में कूदो नाचो गाओ, और स्पेशली जो लोगों की फैमिलीज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, इन्जॉय योरसेल्फ। एंड ये सबसे पहले मैं बताता हूँ हमेशा स्टेकेशन के, बिकॉज आई फील अगस्त के खत्म होते होते ये ऑफर्स भी चले जाएंगे, और फिर जब मौसम चेंज होगा तब बोलेंगे यार चलो अगले साल देखेंगे। सो ये पछतावा ना हो, एंड यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं इतना कर रहा हूँ जी, मैं वो हूँ मिडिल मैन, बता सकता हूँ मैं आपको, मेल मैन समझ लीजिए, डाकिया डाक लाया तो भाई मैं वही खत आपको पढ़ के बता दिया है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे बढ़े।
0: कतर 2026।
2: अब देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस पूरे पूरे अगस्त में हैं, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो चुके होंगे जब आप मुझे सुन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं। तो सब इवेंट्स के बारे में बात करेंगे इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऑर्डर वाइज चलूंगा कि अगस्त की पहले सितंबर की पहले, नहीं, आई विल जस्ट गो अहेड विद द फ्लो, तो गेट रेडी। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। और आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, दोहा वाला कबीर के नाम से मैं मिल जाऊंगा आपको। बस वो स्पेलिंग यार थोड़ा ठीक कर लो यार, मेरी स्पेलिंग पता नहीं लोग डबल ई आर क्यों लिखते हैं, KABIR, प्लीज प्लीज ढूंढ लो ना यार, अच्छा बंदा हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहला इवेंट ऑन द लिस्ट है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल 2026। ये बेस्ट काइंड ऑफ इवेंट है मेरे लिए। मेरा गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मेरे एक्साइटमेंट बहुत हाई है, बिकॉज आई फील जितने भी शॉपिंग इवेंट्स कतर में आते हैं ये सबसे फायदेमंद है। इसमें सारा का सारा सामान शॉपिंग करके नक्की करो, साल भर की छुट्टी। मैं इतना वेट करता हूँ कि कोई ऐसा फेस्टिवल आएगा और शॉपिंग फेस्टिवल में जाऊंगा और बढ़िया मौज काटूंगा। तो भाई ये जो हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल है ये अगस्त के आखिर तक है, 31 अगस्त तक है, एक को शुरू हो चुका था, और ये हर मॉल में, मतलब ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी में कहो तो वेरियस मॉल्स अक्रॉस कतर, तो ऑलमोस्ट हर मॉल में आपको मिलेगा। कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपकी शॉपिंग के लिए बहुत सारा डिस्काउंट, वो भी भर भर के। और ये जो हाला समर कैंपेन है ये कतर फीचर कर रहा है एक्सक्लूसिव शॉपिंग ऑफर्स के साथ, लीडिंग मॉल्स में आपको मिलेगा, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स पर हैं।

अच्छा खासे ब्रांड्स पर हैं। इनके अलावा सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, इसमें डाइनिंग डेस्टिनेशंस पे आपको प्राइसेस मिलेंगे। इसमें जो कुछ लोकेशंस जो प्रोमिनेंटली मेंशन की गई हैं, उसमें है प्लेस वन डोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलाजियो सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल, वेस्ट वॉक, जीवान, हायत प्लाजा और अल हजम। इन तमाम जगहों पर भर भर के डिस्काउंट्स हैं, सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू वुड मिस दिस वन। एंड इसी के साथ जो जो स्पेंडिंग के ऊपर जो मिलता है ना, वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं। सो अ स्पेंडिंग ऑफ मिनिमम 200 कतरी रियाल किसी भी पार्टिसिपेटिंग डेस्टिनेशन पे आपको एक वीकली रेफल ड्रॉ में भी शामिल कर सकती है। सो अगर आप किसी वीकली रेफल ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं, पर्ची कटा लेते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत भर भर के इनामात भी हैं। प्राइजेस में इंक्लूडिंग 5 cars और बहुत सारे और भी प्राइजेस। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू मॉल, गर्मी भी बहुत है, बनता है भाई, इस गर्मी में आदमी चाहता है मैं ना निकलूं और निकलूं तो सिर्फ मॉल की तरफ निकलूं, तो दिस इज योर चांस, ये है फायदा उठाने का मौका। और इसका जो है पूरा फायदा उठाइए, यू शुड गो टू मॉल्स एंड पूरे मंथ लॉन्ग एक्टिविटी का हिस्सा बनिए। बाकी तो मैं एक और हिदायत दूंगा आपको, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पता डिड आई टेल यू के, चलो ये लास्ट में बताता हूँ, जस्ट रिमाइंड मी, ओके नहीं बताया, चलो भाई बता दूंगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस बात को लेकर। ओके, इस बार मॉल्स में जो फूड आउटलेट्स हैं, जो जितने फूड कॉर्नर्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, इनमें ऑफर्स बड़े खास हैं। सो नॉट जस्ट योर शॉपिंग पार्ट, बट इवेंचुअली आपको भूख लगेगी मॉल में घूमते घूमते, तो वहां पर भी है। मगर ये 200 कतरी रियाल का जो मिनिमम स्पेंड है और रेफरल ड्रॉ, ये वहां पे लागू नहीं होता, ठीक है, तो से फोकस रखिएगा। सो ये है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल 2026 इज हियर टिल 31st ऑफ अगस्त। आगे बढ़ते हैं। Qatar 2026। अगला जो इवेंट है वो लोकल डेट्स फेस्टिवल सूक वाकिफ का, और ये खत्म हो चुका है। वाँ, वाँ, वाँ। जो नहीं गए वो नहीं गए, लेकिन भाई जो गए हैं उन्होंने मौज आ गई बढ़िया वाली। ये ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में हुआ, 25 जुलाई से शुरू हुआ था और 10 अगस्त तक बहुत बहुत खूबसूरती से चला, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। एंड इट वॉज ओपन टू ऑल, सो जो लोग नहीं गए उन्हें मैं थोड़ा सा जलाना चाहता हूँ। इसमें बहुत कुछ था, जो लोकल कतरी खजूर हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे, और इस फेस्टिवल सेलिब्रेट वैसे भी कर रहा था कतर के नेशन वाइड एग्रीकल्चर लेगेसी को। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे एक गोल्डन डेट्स बास्केट कॉम्पिटिशन भी हुआ, और ये कॉम्पिटिशन बहुत यूनिक था। इसमें जो लोकल डेट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए थे, जो फार्मर्स थे, वो सारे के सारे इसमें थे। और इसमें ये था कि आपको बास्केट चूज करनी है जिसमें 5 टाइप के अलग अलग डेट्स होंगे, और आप जो है कैश प्राइजेस जीत सकते थे। तो जो लोग जीत गए, पर आपने डेट्स फेस्टिवल अगर मिस कर दिया तो आपने खजूर शेक नहीं पिया, आपने उसका जैम नहीं देखा, आपने भाई सब कुछ नहीं देखा। तो अब आप मार्केट में जाइए, खरीदिए। बाकी जो लोग गए हैं, प्लीज इफ यू कैन टैग अस इन योर फोटोज, डू टैग अस। कभी भी आपका मन करे, वो होता ना कि फोन की गैलरी को क्लियर करने के लिए पुराने फोटोज देखते हैं, समटाइम्स यू फील कि ये बढ़िया फोटो आया, ये मैंने डाला क्यों नहीं, तो जो अपलोड करें तो हमें टैग कर दीजिएगा FM107 Qatar, एंड वी वुड नॉट माइंड एट ऑल, इनफैक्ट वी विल रीपोस्ट इट इंशाल्लाह। अब जरा आगे बढ़ते हैं। Qatar 2026। अगला जो है कतर टॉय फेस्टिवल 2026, ये एक्टिविशंस पूरे कतर में जारी है और मल्टीपल लोकेशन से, कोई एक हो तो बताऊं। तो 1 जुलाई से पूरा सिलसिला शुरू हुआ और 30 सितंबर तक चलने वाला है, सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक। अगर आप इनके पेज पे जाके देखेंगे या फिर आप कतर कैलेंडर के इंस्टाग्राम पेज पर जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएंगी। कतर टॉय फेस्टिवल एक ऐसा शानदार फेस्टिवल है जहाँ पे कई सारे एक्साइटिंग एक्टिवेशंस हैं, जिसमें कैरेक्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग लोकेशंस पे है। तो जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये मिस्टर बीन समर फन विद टेडी एंड बीन, ये भी हुआ अल हजम में। फिर बारबी समर, उसकी क्या टैगलाइन, क्या बड़ी कमाल की टैगलाइन थी, हाँ, इज मोर कलरफुल विद बारबी, समर इज मोर कलरफुल विद बारबी। इसका लोकेशन रहा सिटी सेंटर, और ये रखा गया है वीकडेज में इनफैक्ट दोपहर के 2 से रात के 10, और वीकेंड्स पे दोपहर के 2 से रात के 11। और इसमें प्राइसेस भी भाई, अगर आप 100 कतरी रियाल का खर्चा करती हैं, पर्ची कटवाती हैं, सेम मॉल में एंटर होते हैं, तो आपको रेफल ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आप उसमें भी जीत सकते हैं। सारे के सारे बच्चे जो सेम फैमिली के हैं कैन एंटर, सिर्फ एक रसीद की वजह से, एक रिसीट एंड यू आर ऑल इन। एंड ऑल्सो इसके अलावा जब आप जोन का हिस्सा बनेंगे तो उसके बाद आप रीएंटर भी कर सकते हैं एक और रिसीट कटवा के। इनफैक्ट मुआना का भी यहाँ पे शो है।

जिसका टाइटल रखा गया है सेट सेल ऑन अ समर एडवेंचर विद मोआना. बच्चों को बहुत पसंद है भाई मोआना. मैंने जिस हिसाब से वो देखे हैं, क्या कहते हैं उसे, कॉस्प्ले, मोआना के बहुत सारे कॉस्प्ले और बच्चे माशाल्लाह अपने प्यार लगते हैं उस कॉस्प्ले में. ये होने वाला है दोहा फेस्टिवल में. एंड दिस इज लाइक एवरी वीक, हर दिन है, वीक डेज में 12 से 10 और फिर वीकेंड्स में 1 से रात के 12. दोहा फेस्टिवल सिटी में है, पिक्सार और इसके अलावा प्लेस वेंदोम में है. इसमें भी एंट्री फ्री है एंड अगेन द सेम थिंग, 100 कतरियाल्स अगर आप स्पेंड करते हैं यू विल गेट समथिंग रियली स्पेशल. एंड 3 बच्चों के लिए एवेंजर्स द समर सेव द अर्थ लाइक एन एवेंजर, वो वाला भी शो है जो मॉल ऑफ कतर में है. फिर फ्रूट निंजा है, स्लाइस थ्रू समर लाइक ट्रू निंजा, ये विलाजो में. फिर टाइनी बिल्डर्स, एस्ट्रोवर्स और फिर फनकेड, ये सब कुछ है. लैंडमार्क मॉल इसमें शामिल है, इसमें पर्ल आइलैंड और जिवान आइलैंड शामिल है, वेस्ट वॉक है, एवरीथिंग इज देयर. इट इज जस्ट कंप्लीट क्रेजी मैन. ये महीना जब खत्म हो जाएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, बच्चे अभी जब स्कूल लौटने के लिए आएंगे तो उनके जहन में कोई मेमोरी होनी चाहिए, तरोताजा उनको करने के लिए आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा. ये तो भाई देखो बहुत स्वीट प्रेशर है, इस बहाने आप भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, वरना तो आपको फोन पकड़ा के उन्हें खाना खिलाना पड़ता है. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे मैंने दिखाया लोगों को. आई होप के आपने ही सिचुएशन सॉल्व कर ली हो. नहीं करिए और ये करना चाहते हैं तो यहाँ पहुंच जाइए, एटलीस्ट बच्चे बाकी दुनिया से दूर, फोन से दूर मजे कर पाएंगे. सो वी आर पार्ट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स. अब जरा आगे बढ़ते हैं जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और बच्चे तो डेफिनेटली इंजॉय करने ही वाले हैं. सो द नेक्स्ट इवेंट इज कलर वर्स एक्सपीरियंस 2026. जब से मैं शो कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं मेरे ख्याल में आधे एपिसोड से इसी बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये फेस्टिवल बहुत बहुत शानदार जा रहा होगा. मैं अभी तक इसका हिस्सा बना नहीं हूँ, बट आई हैव सीन वीडियोस. सो कतारा कल्चरल विलेज का जो साउथ पार्किंग एरिया है, वहां पे शुरू हुआ कलर वर्स एक्सपीरियंस 2026. 19 जुलाई को शुरू हुआ और 15 सितंबर तक रहने वाला है. सो अभी भी यू स्टिल हैव टाइम. और ये इवेंट है शाम के 4 बजे से रात की 11 बजे तक. इसका अनाउंसमेंट की थी कतर कैलेंडर ने और उन्होंने बताया कि ये किस तरीके का एक्सपीरियंस होगा. तो उन्हीं के शब्दों को मैं बयां कर देता हूँ. उन्होंने कहा ये नेक्स्ट जनरेशन इमर्सिव एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन होगा. बेसिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे आप हिस्सा ले सकते हैं, लाइक एन एक्सपीरियंस वेयर यू आर अ पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट वॉचिंग इट हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आइज, मगर आप उसका हिस्सा भी होंगे. सो ये जो एक्सपीरियंस है ये विजिटर्स को इन्वाइट करता है. आप जाएंगे इसमें एक बहुत ही इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जैसे अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो यहाँ पर भी पूरी एक जर्नी है, पूरी एक कहानी है और जो आपको ले जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ कलरामा. इसके रंग आए और उन रंगों को भरने की जिम्मेदारी आपकी है और आपका रोल होगा एज रीस्टोरर्स. सो रीस्टोरर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे कहानी के साथ और रिएक्टिवेट करते चले जाएंगे कोर आरजीबी कलर सिस्टम को, जिसकी वजह से कलर धीरे धीरे इस कहानी में चढ़ते चले जाएंगे. एंड आपको सामना करना पड़ेगा बहुत सारे मॉन्स्टर्स का, जिनको नाम दिया गया है मंजर्स, जो आपके रास्ते के सबसे बड़े रोड़े होंगे. तो उनसे लड़ना है आपको और उसके बाद रंग भर देना है इस दुनिया में. भाई बहुत गजब की चीज है, वीडियो देखना एक बारी, आपको भी पसंद आएगा. तो ये रखा गया है वीकडे 4 से रात के 10 बजे, फिर वीकेंड्स पे शाम की 4 से रात के 11 बजे और इसकी लोकेशन है कतारा साउथ पार्किंग. अच्छा एज ग्रुप बता दूं, आप देख सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को आगे आना होगा. मिनिमम जो एज है वो 4 साल की है, मिनिमम एज 4 साल के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस एंड ये जो पूरा एक्सपीरियंस इट विल बी गाइडेड बाय द होल अथॉरिटी. एंड इसी के साथ साथ रीस्टोरर्स जो है वो कंपटीशन में एक दूसरे का भी सामना करेंगे एंड रिएक्टिविटी करेंगे. रेड ग्रीन ब्लू कलर सिस्टम पूरा का पूरा ऑन करेंगे एंड इस पूरी दुनिया में रंग भरेंगे. तो बच्चों के लिए ड्राइंग का या यूं कहूँ कलर भरने का ये एक और एक्सपीरियंस है. टेक्नोलॉजी जब देसी चीज़ों के साथ, नॉर्मल चीज़ों के साथ मिल जाती है तो कमाल कर देती है. एंड स्टोरी टेलिंग से बेहतर आई डोंट थिंक कि आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं. मुझे बहुत पसंद है स्टोरी टेलिंग पर्सनली एंड आई फील जब वो आपसे इंटरेक्ट कर पाती है, आप उसको फील कर पाते हैं कहानी को और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो नहीं सकता. एंड दिस डेफिनेटली गोज अ माइल. तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये उन लोगों के साथ जरूर जिनके घर पे बच्चे हैं मिनिमम 4 साल के, एंड दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
अब जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं. आई डोंट नो आप मुझे कब सुन रहे होंगे, मे बी ये सब कुछ हो चुका होगा, बट बिलेटेड सबको इनवाइट, सॉरी बिलेटेड विश करना चाहूंगा. इनवाइट तो मैं क्या ही करूंगा, लेट मी सी द कैलेंडर. मैं अभी आपसे बात करते करते कैलेंडर देख रहा हूँ. हाँ जी, तो ये मामला निपट गया.

0: पाकिस्तानी भाइयों को और मेरे फेलो इंडियंस को सबको मेरी तरफ से बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे. आई नो के शो उसके एक दो दिन बाद आया है, बट बनता तो है भाई, मैं विश क्यों ना करूं. तो इस बीच भी काफी सारे इवेंट्स हो चुके होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं. तो एक टाइम रोको होटल अलवकरा में, वहां पे अगस्त फिएस्टा रखा गया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड इट इज फ्री. और इसके साथ साथ ये पूरा मंथ जो सेलिब्रेशन का है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, इसके इतने पैशनेट लोग हैं भाई, भर भर के इवेंट्स हैं भर भर के होटल्स में. और अगर आप गए होंगे तो आपको पता है, और मुझे बताइएगा जरूर जो जो इसका हिस्सा बने, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ये इवेंट सारे हो चुके हैं व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ. तो ठीक है, एडवांस में नहीं, सॉरी, belated happy independence day to my fellow indians and also mere pakistani bhai bahno ko bahut sara pyar. Okay, moving on. Qatar 2026. Ab dekhiye, agar aapko arabic language aati hai, achhi lagti hai aur aap samajh pate hain, to aap jante hain ki arabic humor alag level ka hai bhai, bahut alag level ka hai. Main arabic zuban itne acche se nahi bolta hi nahi hu, in fact main samajh leta hu, but jo puri tarah se isme well versed hain उनके लिए बहुत जबरदस्त एक इवेंट आया है, विच इज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो इन कतर. साले अल नवावी परफॉर्म करने वाले हैं अब्दुल अजीज नासर थिएटर में 10 सितंबर को और रात के 9 से 11 तक. और काफी सारी बातें चल रही थी कि अब आएंगे. सो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग वेट. और साले अल नवावी इज गोइंग टू परफॉर्म, ही इज ब्रिंगिंग हिज हिट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल गैबूबा, और ये लेके कतर में आ रहे हैं. इसमें बहुत सारी फ्रेश कहानियां हैं और ब्रूटली रिलेटेबल ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है वो उसमें यूज करने वाले हैं. गैबूबा जो वो कहानी सुनाएंगे, गैबूबा ये जिंदगी के रैंडम और उन मोमेंट्स की बात करती है जो होते दिखने में ट्रेजिक हैं पर उनमें से हंसी निकल आती है. तो डेफिनेटली इफ यू अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज, ये आपके लिए, तो आप इनको ऑनलाइन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड अरबिक, दिस इज योर टाइम टू एक्सप्लोर इन द रियल्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी अरबी जुबान में. ये भाई बहुत नया एक्सपीरियंस था. अगर मुझे अरबी आती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जाता. सो इफ यू नो और अंडरस्टैंड और स्पीक, आपको तो भाई यहाँ जाना ही जाना चाहिए. सो वन नाइट न्यू मटेरियल एंडलेस लाफ्स, साले अल नवावी लाइव इन दोहा 10 सितंबर को. और इसके टिकट जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कतर कैलेंडर पर जाके देख सकते हैं. 10 सितंबर रात के 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का ये पूरा उनका स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल है जो कतर में होने जा रहा है. लोकेशन बता देता हूँ, अब्दुल अजीज नासिर थिएटर में. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. जो लोग पब्लिक जाने वाला है मेरे को टैग जरूर करो. कोई ट्रांसलेटर हो तो भाई बता देना क्या क्या हुआ, वरना फिर जब वीडियो आ जाएगा तब तो हम देख ही लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई. Qatar 2026. अब क्या है कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का इवेंट है लुसल बॉलीवुड में, क्योंकि कतर किसी भी जगह को ऐसे ही नहीं बना देता. हर जगह इवेंट कुछ होते ही रहते हैं गर्मियों सर्दियों, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो 5K नाइट डैश 2026 होने वाला है लुसल बॉलीवुड में, और ये होगा 10 अक्टूबर को. अभी टाइम है, बट आई स्टिल वांटेड टू टेल यू, 10 अक्टूबर रात के शाम के 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक ये होगा. एंड यू जस्ट हैव टू बी रेडी. इसमें कोई इमिट नहीं जी, बुरी रेसिंग होगी, बढ़िया डेजलिंग स्काईलाइन को क्रॉस करते हुए लुसल बॉलीवुड की, जिसमें ग्लोइंग लाइट्स होंगी, जबरदस्त म्यूजिक होगा और नॉन स्टॉप एनर्जी वाइब बनी रहेगी जैसे कतर में हमेशा बनी रहती है. अब ये अनमिसेबल क्यों है भाई, रेस तो हर जगह होती है, मैं ये क्यों, मतलब मुझे रीजन चाहिए, मैं क्यों ना मिस करूं. तो अनलिमिटेड एडिशन रेस टी शर्ट यहाँ पे बांटी जाएंगी जो आपको मिलेंगी हर रजिस्ट्रेशन के साथ ही. इसमें ऑन रूट म्यूजिक जोन्स भी लगाए गए हैं, जब आप भाग रहे होंगे तो बीच में म्यूजिक भी चलेगा, हर एक बीट के थम्पिंग पर आप भाग रहे होंगे पूरे जोश खरोश के साथ. और इसमें जो पेसिंग ग्रुप्स हैं वो रखे गए हैं, इसी के साथ साथ चेयरिंग बैंड भी रखा गया है, और फिर रेस विलेज पार्टी भी रखी है. इसमें डीजेज हैं, खाना पीना है, बहुत सारे खेल हैं, चिल जोन्स बनाए गए हैं, और यहाँ पे लेट जाने का कोई सिस्टम नहीं हुआ है, बहुत हाई एनर्जी एमसीज रखे गए हैं. तो तैयार हो जाइए इस इवेंट के लिए. ये होगा 10 अक्टूबर को, और विच इज ऑन सैटरडे है, और शाम के 4:30 बजे से होगा रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक, मतलब इसी के आसपास चलेगा. आई थिंक एक्सटेंड ये लोग करेंगे डेफिनेटली. तो डिस्टेंस होगा इसका 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, और रजिस्ट्रेशन जो डेडलाइन दी गई है कि आप कब तक रजिस्टर कर सकते हैं वो है 6 अक्टूबर की डेडलाइन। तो 6 अक्टूबर से पहले पहले शाम के 6 बजे से आप कर सकते हैं। 4:30 बजे रेस विलेज ओपन हो जाएगा, 6 बजे 1 किलोमीटर की बच्चों वाली रेस होगी, बच्चे इसमें दौड़ेंगे। शाम के 7 बजे 5 किलोमीटर का डैश होगा और 8:30 बजे अवार्ड सेरेमनी बाकायदा रखी जाएगी और साथ में विनर्स को इनाम भी दिए जाएंगे। सो दिस इज योर टाइम टू रन। सॉरी अंदर कर रहा है पर कभी कभी निकल आता है, आई एम रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ।
1: Qatar 2026।
0: तो जी अगला इवेंट भी भागने का ही है, बढ़िया सा है भाई इवेंट ये वाला भी। इसका नाम है भाई रन द डोम 2026, रन द डोम 2026। ये एस्पायर डोम में होगा 28 अगस्त से 29 अगस्त, सो एक दिन और सुबह के, इनफैक्ट दो दिन, सॉरी एक दिन बोल दिया मैंने, दो दिन होगा 28 और 29 को और सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक होगा। इसमें भी आपको भागने का मौका मिलेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखने का मौका मिलेगा, मगर डोम के अंदर इनॉग्रल रेस होगी। बाकायदा एस्पायर जोन फाउंडेशन इनवाइट करता है सारे रनर्स को कि आप आएं, और ये कमाल की 4.80 किलोमीटर्स की मल्टी लेवल इंडोर कोर्स का हिस्सा बने और वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशन में भागे। तो आपको गर्मी में नहीं भागना यार, फुल एसी है भाई। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं अगस्त में और 500 ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं तैयार होंगे इस अनफॉरगेटेबल कम्युनिटी रनिंग इवेंट के। एस्पायर जोन फाउंडेशन ने इस पर बयान भी दिया, उन्होंने कहा दे आर रियली रियली प्राउड टू लॉन्च रन द डोम, और बहुत ही इनोवेटिव कम्युनिटी रनिंग डोम है ये, और इसमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने की कोशिश है, सोशल एंगेजमेंट हो, लोग आपस में मिलें अलग अलग कम्युनिटी के, और फिजिकल फिटनेस बनी रहे। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए है। रिक्रिएशन रनर्स इसमें शामिल होंगे, बहुत मशहूर एथलीट्स आएंगे और नौजवान लोग जो स्पोर्ट्स में उतरेंगे और आग ला देंगे जी। इसमें कुछ की हाइलाइट्स दी गई हैं, इंडोर रूट है, फुली एयर कंडीशन है, जैसे मैंने कहा हाई एनर्जी रेस एनवायरनमेंट बनाया गया है, कम्युनिटी स्पिरिट को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी फ्रेंडली एक्टिविटीज रखी गई हैं, डेडिकेटेड सेशंस हैं, अलग सेशंस हैं विमेन के लिए और ओपन कैटेगरीज हैं सारे एज ग्रुप के लिए, इवन फॉर द बिगिनर्स एंड सीजनड रनर्स। तो अगर आपको लगता है मैं तो भागता ही नहीं हूँ, इस योर टाइम, यहाँ पे बिगिनर्स के लिए भी अलग से सेक्शन रखा गया है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल ट्रैक है तो आप मेन एथलेटिक अरीना से शुरुआत करेंगे, अंडरग्राउंड ट्रांजिशन रखा गया है और रिटर्न और फिनिश का जो पूरा सेक्शन है बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तो जो रेस है वो शेड्यूल्ड है 28 अगस्त को, सबसे पहले विमेन रेस होगी सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक, एंड उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट मेल फीमेल स्टाफ विल गेट अ पार्ट of the organizing and media coverage team, जो भी कवर करने जाएंगे उसका मतलब ये है कि अलग से आपको पास दिया जाएगा। इसके अलावा ये रेस जो है खत्म होगी तो ओपन रेस होगी दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे के बीच में, बस सैटरडे को 29 अगस्त को वापस ओपन होगा मामला सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक, एंड बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज के बीच में ये रेस होगी। सो टन्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। अब जरा अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वाइट समथिंग दैट मेरे मतलब It is really, really special to me.
1: Qatar 2026.
0: So 3-2-1 sports e-sports lounge शुरू होने वाला है, और इनफैक्ट ये जो इवेंट है अभी चल रहा है, शुरू तो मेरे लिए हुआ है, मैंने अभी तक कैसे नहीं देखा ये। ये है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। सो 3-2-1 ई स्पोर्ट्स लाउंज ये लगाया गया और 20 मई से शुरू है 31 दिसंबर तक, भाई पूरा साल खींच दिया भाई, सुबह के 9 से रात के 9। और अभी तक अगर आप नहीं गए तो यहाँ पे टिकट परचेसिंग का तरीका बता दूं, आप अंदर जाके वॉक इन आप टिकट ले सकते हैं, कतर म्यूजियम, मीडिया सिटी सेंटर, ये सारे इसका हिस्सा बनेंगे, बने हुए हैं इनफैक्ट, और हाई एंड पीसी गेमिंग्स हैं यहाँ पे, काफी सारे स्टेशन लगाए गए हैं, जो गेमर्स हैं असेंबल, जैसे मैंने कहा मैंने मतलब कहा है। सो 12 प्रीमियम गेमिंग पीसीज का सेटअप है यहाँ पे एंड सारे के सारे अपडेटेड हैं। इसके अलावा जो पीसी गेमर्स हैं उनका तो चलो है अलग जनता, हमारी दुनिया में भी है। कंसोल गेमिंग जोन भी बनाए गए हैं, 5 डेडिकेटेड कंसोल स्टेशन हैं, प्लेस्टेशन 5, निंटेंडो स्विच सेटअप भी रखा गया है, मल्टीप्लेयर और पार्टी गेमिंग और कैजुअल प्लेयर सबके लिए।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी के एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, आज का ये एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा मिस्टीरियस और थोड़ा सा एडवेंचरस भी, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उन जजीरों के बारे में जो रात के अंधेरे में समंदर में खो गए, या फिर जो सिर्फ कुछ घंटों या दिनों में समंदर की लहरों में डिसअपीयर हो गए। जरा सोचिए साथियों, आप एक दिन समंदर के किनारे खड़े हैं, लहरों का शोर सुन रहे हैं, हवा की ठंडक महसूस कर रहे हैं, और फिर कल रात तक जो जमीन आपके सामने थी वो अब पूरी तरह से समंदर के नीचे चली गई। ऐसा सुनते ही लगता है ना कि जैसे कोई कहानी हो या फिर कोई पुरानी फैंटेसी स्टोरी, लेकिन साथियों ये बिल्कुल सच बात है और ये फेनोमिना नेचर के सबसे हैरत अंगेज राजदारियों में से एक रहा है। साथियों, ये सिर्फ एक नेचुरल स्पेक्टिकल नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि जमीन और समंदर हमेशा एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम का हिस्सा है। आइलैंड ये छोटी जमीन के टुकड़े जो कभी हमारी आँखों के सामने खड़े होते हैं, किसी भी वजह से किसी भी वक्त डिसअपीयर हो सकते हैं। ये डिसअपीयरेंस सिर्फ लहरों या समंदर के लेवल की वजह से नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर की फोर्सेस, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और क्लाइमेट के सडन चेंजेस भी इसके पीछे का सबब बन सकते हैं। और ये सिर्फ जियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फिनोमेना नहीं है, ये इंसानों के लिए भी एक लेसन है। यानी हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन नेचर के फोर्सेस के सामने ये स्टेबिलिटी टेम्पररी हो जाती है। साथियों, आइलैंड्स का डिसअपीयर होना हमें ये याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है और कभी भी कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रहती। इस फिनोमिना का सबसे फैसिनेटिंग पहलू ये है कि आइलैंड्स रात के अंधेरे में एक सडन इवेंट के नतीजे में या फिर कुछ दिनों में ही डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी बिल्कुल गुम हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक पल के लिए कि आपके सामने एक जमीन का टुकड़ा था और अगली सुबह तक वो कहीं समंदर की लहरों में गुम हो गया। ये सोच ही कितनी हैरत अंगेज लगती है ना, और इसी वजह से ही तो ये कॉन्सेप्ट हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इतना प्रोवोक करता है। तो भाई, आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे कि आइलैंड डिसअपीयरेंस के बारे में साइंस क्या कहती है, नेचर के फोर्सेस कैसे काम करते हैं और कैसे समंदर अपनी ताकत से जमीन को रीशेप कर देता है। और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फिनोमिना हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया कितनी डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल है। तो साथियों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रात के अंधेरे में खो जाने वाले आइलैंड्स, समंदर के राज और नेचर की वो फोर्सेस जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने काम कर रही हैं। क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ हैरतअंगेज फैक्ट से नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाले आइडियाज और पर्सपेक्टिव से भरा होगा। साथियों, जजीरा यानी आइलैंड वो जमीन का टुकड़ा होता है जो समंदर के बीच में उभरता है, यानी जमीन कुदरती तौर पर समंदर की सतह से ऊंची निकल आती है और मुख्तलिफ कुदरती अमाल के जरिए अपनी शक्ल और वजूद इख्तियार कर लेती है। आइलैंड्स यानी जजीरों का तज्जिया सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं है साथियों, बल्कि ये समंदरी इकोलॉजी और इंसानी मईशत के लिए भी बहुत अहम है। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे आम तरीका जजीरा बनने का ये है आतिश फिशा अमल। जब जेरे समंदर वॉल्केनो फटता है तो पिघला हुआ लावा समंदर की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है और एक नया जजीरा तैयार करता है। इस तरह के जजीरे आमतौर पर पत्थर और लावा के मिक्सचर से बने हुए होते हैं और पहली दफा उभरते वक्त ये बहुत नाजुक और समंदरी लहरों के लिए वल्नरेबल होते हैं। दूसरा तरीका है समंदरी रेत और मिट्टी का जमा होना। दरिया और समंदर की लहरें रेत और मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। वक्त के साथ साथ ये जमा होता हुआ माल जमीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक नया जजीरा बन जाता है। ये तरीका ज्यादातर सैंड बार्स और कोस्टल आइलैंड्स में देखा जा सकता है। साथियों, तीसरा इंटरेस्टिंग तरीका है मरजान चट्टानों का फॉर्मेशन। साथियों, कोरल रीफ्स असल में समंदरी जानदार होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं। ये सब्सटेंसेस समंदर में हार्ड होकर चट्टान बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये चट्टानें आइलैंड की बुनियाद बन सकती हैं। साइंस के मुताबिक रीफ्स से बनी आइलैंड्स मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं और ये इकोसिस्टम के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम भी करती हैं। लेकिन जजीरे की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती साथियों। समंदर की लहरें, तूफान और टाइड्स आइलैंड्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। साथियों, कोस्टल इरोशंस के जरिए आइलैंड्स के साइज ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि USGS के मुताबिक समंदर की सतह में इजाफा और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न से कई आइलैंड्स पूरी तरह कम भी हो जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह बढ़ रही है। यानी इसमें 21st सेंचुरी के शुरू होने से अब तक तकरीबन 2 सेंटीमीटर इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई, हमारे इस एपिसोड का मकसद ये समझना है कि आइलैंड्स सिर्फ खूबसूरत लोकेशंस नहीं बल्कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए क्रिटिकल हैं। आइलैंड्स के तहफ्फुज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम किया जा रहा है, जैसे कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स और कोरल रीफ रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स। तो साथियों, ये याद रखें कि हर जजीरे की अपनी एक कहानी होती है। यानी कभी ये वॉल्केनिक इरप्शन से उभरते हैं, कभी रेत और कोरल की मदद से जिंदगी पाते हैं और हमेशा समंदर के साथ एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं। आइलैंड्स हमें सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि रेजिलियंस और अडेप्टेशन के लेसन्स भी सिखाते हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें जजीरों से मुतालिक। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। और आज हम बात कर रहे हैं आइलैंड्स के बारे में। साथियों, गवादर के पास समंदर में 24 सितंबर 2013 को एक अजीबोगरीब कुदरती फिनोमिना हुआ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुआ। इस दिन बलूचिस्तान में एक जबरदस्त जमीन हिलाने वाला वाकया हुआ, यानी अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक के नतीजे में समंदर के नीचे से मीथेन गैस का एक जखीरा सरफेस पर उभर कर सामने आया और इसी प्रोसेस में एक नया जजीरा जिसे नाम दिया गया जलजला को समंदर से उभरा। साथियों, जलजला को एक मड वॉल्केनो था जो नॉर्मली समंदर के नीचे

0: हुआ होता है। जब ये उभरा तो साइंटिस्ट और लोकल लोग इस कुदरती अनोखी कहानी को ऑब्जर्व करने के लिए अट्रैक्ट हुए। इस जजीरे की लंबाई तकरीबन 175.7 मीटर थी, चौड़ाई में ये 160.9 मीटर और ऊंचाई में 15 टू 20 मीटर थी। और ये गवादर के हिंगोल इलाके के पास समंदर में 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर था। इस जजीरे की फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत फैसिनेटिंग था साथियों। समंदर के नीचे मीथेन गैस प्रेशर के जरिए सरफेस पर उभरता है और साथ ही रेत और मिट्टी को भी ऊपर ले आता है, जिससे जजीरे की शक्ल बनती है। साइंटिस्ट के मुताबिक जलजला कोह का केस दुनिया के रेयर एग्जांपल्स में शामिल है, जहां अर्थक्वेक और मीथेन गैस के इंटरैक्शन से टेम्पररी आइलैंड उभरते हैं। साथियों, जजीरों का उभरना सिर्फ कुदरत के खेल नहीं बल्कि इकोलॉजी के लिए भी इंटरेस्टिंग साबित हुआ। मीथेन गैस की वजह से जजीरे का सरफेस थोड़ा टॉक्सिक और फ्लेमेबल था, लेकिन समंदर के आसपास मछलियों और दूसरे मरीन लाइफ का आना भी शुरू हो गया। इसमें लोकल फिशिंग कम्युनिटी को इस टेम्पररी आइलैंड से कुछ फायदा भी हुआ, क्योंकि ढेर सारी मछलियां जजीरे के आसपास जमा होना शुरू हो गई थीं। लेकिन जलजला को का वजूद बहुत टेम्पररी था साथियों। समंदर की लहरें और टाइडल करंट्स ने इस जजीरे को सिर्फ चंद महीनों में कमजोर कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक ये जजीरा 2016 तक पूरी तरह से समंदर में डूब गया। इस डिसअपीयरेंस ने साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद दी कि मड वॉल्केनो आइलैंड्स कितनी अनस्टेबल नेचर के होते हैं और कैसे समंदर के असरात उनकी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। भाई, जलजला को का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे जमीन की तब्दीलियां और समंदर के डायनामिक्स एक टेम्पररी आइलैंड क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसे मड वॉल्केनो से मीथेन और दूसरे गैसेस रिलीज होते हैं जो समंदर और एटमॉस्फेयर पर भी असर डालते हैं। तो भाई, इस केस स्टडी ने ग्लोबल रिसर्चर्स को मरीन जियोलॉजी और नेचुरल डिजास्टर स्टडीज के लिए नई इंसाइट दी। जलजला को की कहानी हमें कुदरत की अनोखी क्रिएटिविटी और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स का एहसास दिलाती है साथियों। ये हमें याद दिलाती है कि समंदर और जमीन का रिश्ता कितना डायनेमिक और अनप्रिडिक्टेबल है। गवादर के इस अजीब जजीरे ने सिर्फ एक साइंटिफिक मार्वल क्रिएट नहीं किया बल्कि कुदरत की अनोखी कहानी को भी दुनिया के सामने पेश किया। आज के इस एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक अर्थक्वेक ने समंदर से नया आइलैंड उभारा और फिर कुदरती फोर्सेस कैसे उसे वापस समंदर में ले गईं। जलजला को सिर्फ एक टेम्पररी जजीरा नहीं बल्कि कुदरत का एक इंटरेस्टिंग और हैरान कुन तजुर्बा था, जो हम सबके लिए लर्निंग और फैसिनेशन का सोर्स है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर और ढेर सारे आइलैंड्स भी एक्सप्लोर करेंगे। सुनते रहिए सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओनली ऑन FM 107।
1: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। साथियों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोहाचरा आइलैंड की, जो इंडिया के वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस डेल्टा में वाकई था। ये पहले एक छोटा सा मगर आबादी वाला जजीरा था, जहां लगभग 6,000 से ज्यादा लोग रहते थे और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो लोग मछली पकड़ने और खेती का सहारा लेते थे। ये जजीरा कुदरती तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट और दरिया के बीच में उभरा हुआ था और लोगों की मेहनत से ये एक पुरसकून और खुशहाल बस्ती बन चुका था। लेकिन समंदर की लहरों और क्लाइमेट चेंज के मिले हुए असरात ने आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन को खतरे में डाल दिया, जिसका सबसे पहला निशान ये था कि समंदर की लहरें और टाइडल करंट्स आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की जमीन को गायब करने लगे। 2006 तक सैटेलाइट इमेजेस और साइंटिफिक स्टडीज ने ये साबित किया कि लोहाचरा आइलैंड पूरी तरह डूब चुका है और ये दुनिया का पहला ऐसा इनहेबिटेंट आइलैंड बन गया है जो क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से परमानेंटली खो गया, जिसकी वजह से इसके रिहायशी लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहलाए गए और उन्हें सागर आइलैंड और करीबी इलाकों में अपना नया घर बसाना पड़ा। साथियों, ये हिजरत सिर्फ फिजिकल रिलोकेशन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी, रिवायात और सोशल स्ट्रक्चर के लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज थी, क्योंकि लोग अपने घर, जमीन और पुराने ताल्लुकात

हो चुके थे और उन्हें नई एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज के साथ अडॉप्ट करना पड़ा। दोहाचा आइलैंड का डूब जाना सिर्फ समंदर की लहरों का नतीजा नहीं था, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के जरिए समंदर की सतह में

0: अगर हम क्लाइमेट चेंज और कोस्टल मैनेजमेंट पर फोकस ना करें तो इस रीजन के और भी जजीरे डूब सकते हैं और लाखों लोग अपनी जिंदगी के लिए मजबूर हो सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस और फील्ड स्टडीज ये भी साबित करती हैं कि सुंदरबंस के इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव हैं और छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे सी लेवल राइज, सॉइल इरोजन और साइक्लोन्स इस रीजन के इनहेबिटेड आइलैंड्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट को पूरी तरह मुतासर कर रही हैं। साथियों, लोहाट्रा के डूब जाने ने ग्लोबल कम्युनिटी को क्लाइमेट चेंज के इंसानी पहलू से भी आगाह किया, क्योंकि इसके रिहायशी सिर्फ एनवायरनमेंट के असरात का शिकार नहीं हुए बल्कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी ड्रामेटिकली बदल गई। आज भी सुंदरबंस के कई जजीरे जैसे कोरामाना आइलैंड लोहाट्रा के करीब सिमिलर रिस्क का सामना कर रहे हैं और रिसर्चर्स और एनजीओस इस रीजन में एडेप्टिव मेजर्स और स्टेबल प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। साथियों, लोहाट्रा आइलैंड की कहानी सिर्फ एक जजीरे के डूबने की कहानी नहीं है बल्कि ये हमें ये समझाती है कि कुदरत की तब्दीलियों और क्लाइमेट चेंज के असरात इंसानी बस्तियों को कितना गहराई से मुतासर करते हैं और हमें अपने एनवायरनमेंट और कोस्टल एरियाज की हिफाजत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अहमियत को समझाने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें नेचर और क्लाइमेट के साथ समझदारी और बैलेंस के साथ रहना चाहिए, वरना हम अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए इर्रिवर्सिबल लॉसेस फेस कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे मुख्तलिफ और कई जजीरों के बारे में। सुनते रहिए सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107।
1: आप सुन रहे हैं Exploring Extraordinary, RJ Safa के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: Welcome back साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ Exploring Extraordinary on FM 107। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दुनिया भर में समंदर और जमीन का रिश्ता बहुत डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स है और इसके असरात न सिर्फ नेचुरल लैंडस्केप्स पर बल्कि इंसानी बस्तियों पर भी दिखाई देते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे जजीरों के बारे में जो समंदर की लहरों और क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से अपने वजूद को खो चुके हैं और कैसे ये फिनोमेना हमारे लिए एक वार्निंग का पैगाम है। साथियों, पैसिफिक ओशंस के सोलोमन आइलैंड्स में कई छोटे छोटे जजीरे समंदर की शिद्दत और बढ़ते हुए सी लेवल की वजह से डूब चुके हैं। यकीन जानिए कि पहले ये आइलैंड्स बस्तियां बने हुए थे जहां लोकल कम्युनिटीज अपनी जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन समंदर की लहरों और टाइडल करंट्स ने आहिस्ता आहिस्ता इन जजीरों को गायब कर दिया। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक दुनिया के कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स की पॉपुलेशन में लगभग 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जो राइजिंग सी लेवल्स से डायरेक्ट मुतासर हो सकते हैं। सोलोमन आइलैंड्स के एग्जांपल्स हमें ये दिखाते हैं कि ना सिर्फ जमीन का फिजिकल वजूद खत्म हो सकता है बल्कि इंसानी जिंदगी और सोशल स्ट्रक्चर्स भी कोलैप्स कर सकते हैं। कई फैमिलीज को अपने घर और रिवायात छोड़कर मेन लैंड या दूसरे आइलैंड्स पर रिलोकेट होना पड़ता है और इस तरह के लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहलाने लगते हैं। साथियों, इसी तरह बांग्लादेश के सुंदरबंस में भी आइलैंड जैसे लोहाट्रा और घोरामारा डूब चुके हैं और इन रीजन्स के लोगों को नई जिंदगी के लिए एडजस्ट होना पड़ रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 21st सेंचुरी के अंदर और भी छोटे छोटे आइलैंड्स और कोस्टल विलेजेस डूब सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस और साइंटिफिक स्टडीज से ये साबित हुआ है कि आइलैंड्स की डिसअपीयरेंस सिर्फ लोकल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल फिनोमिना है जो क्लाइमेट चेंज, कोस्टल इरोशंस, मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन और सी लेवल राइज के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का नतीजा है। साथियों, एक मजे की बात बताऊं, कुछ आइलैंड्स जो कि पैसिफिक में वाकई हैं, टेम्परेली उभर भी जाते हैं और फिर डूब भी जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस मड वॉल्केनोज और टेक्टोनिक एक्टिविटीज का भी नतीजा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जमीन और समंदर का रिश्ता हमेशा चेंज होता रहता है और इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज इसलिए बहुत अहमियत रखती हैं ताकि लोग और नेचर दोनों सरवाइव कर सकें। तो भाई साथियों, ग्लोबल नजर हमें ये सिखाती है कि समंदर की लहरें और क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी क्रिटिकल हैं। हर डूबते हुए आइलैंड के पीछे एक कहानी है, कहानी लोगों की रेजिलियंस, एडेप्टेशन और सर्वाइवल की। ये फिनोमिना हमें याद दिलाता है कि हमें

क्रिटिकल हैं। तो भाई अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस साइंटिफिक सफर में शामिल हों। तो भाई बताइए कि आपने कभी किसी जजीरे को समंदर में डूबते हुए देखा है या फिर कोस्टल एरियाज की तब्दीलियों को अपने आसपास ऑब्जर्व किया है। अपने ख्यालात और तजुर्बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर। साथियों साइंस के जरिए हम ना सिर्फ नेचर को समझ सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी और एनवायरनमेंट को भी बेहतर प्लान कर सकते हैं। समंदर की तब्दीलियां और जमीन की हैरत अंगेज बातें हमें ये सिखाती हैं कि नेचर के साथ हारमोनी और बैलेंस के साथ रहना कितना जरूरी है, वरना आइलैंड और कोस्टल कम्युनिटीज अपनी एग्जिस्टेंस को रिस्क में डाल सकती हैं। ग्लोबल नजर, साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबली और इंटेलिजेंटली इंटरैक्ट करें ताकि हमारी जमीन और समंदर दोनों सस्टेनेबल और सेफ रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। सुनते रहें FM 107। अल्लाह हाफिज़।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
3: स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी.

0: अच्छा देखा जाए तो क्लब लेवल फॉर अरबी के साथ उन्होंने कई सीजन्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और कतर स्टार्स लीग में अपनी कंसिस्टेंसी से पहचान बनाई है। कतर की कौमी टीम के लिए भी उनका रोल काफी अहम रहा है, जहां वो एशियन कॉम्पिटिशन में कतर की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। अहमद फती उन खिलाड़ियों में से हैं जो फ्लैशी स्टाइल के बजाय सिंपल और इफेक्टिव फुटबॉल पर यकीन रखते हैं। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट उन्हें कतर फुटबॉल के एक रिलायबल नाम बनाती है। आने वाले सालों में भी उनसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खाने को सेहतमंद तरीके से पका सकते हैं। आज हम दो ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो दुनिया भर में सेहतमंद खाना पकाने के बेहतरीन तरीकों में शुमार होते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग है और स्टीमिंग है। ग्रिलिंग में खाना बराह रास्त जो हरारत पर पकाया जाता है और इसमें बहुत कम या बिल्कुल कम ऑयल इस्तेमाल होता है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हमारे घर में रोजाना बहुत सी चीजें खत्म होती हैं, हो जाती है ना, जैम की बोतल हो गई, सॉस की बोतल हो गई, अचार का कंटेनर हो गया, कॉफी का डब्बा या किसी और ड्रिंक की बोतल हो गई। अच्छा, अक्सर हम इन्हें खाली करने के बाद सीधा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये खाली जार्स और बॉटल्स सिर्फ कचरा नहीं होते, बल्कि दोबारा काम आने वाली यूजफुल चीजें भी बन सकती हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और एक छोटी सी आदत के साथ हम इन कंटेनर्स को नई जिंदगी दे सकते हैं साथियों। अच्छा, तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि आज का इको स्विच हम रीयूजिंग जार्स एंड बॉटल्स के ऊपर कर लेते हैं बात, यानी पुरानी बॉटल्स और जार्स को दोबारा इस्तेमाल करके वेस्ट कम करना। अच्छा, यहाँ पर ना पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। आजकल हम बहुत सी पैकेजिंग वाली चीजें खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट के साथ एक कंटेनर या पैकेजिंग होती ही होती है। जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो अक्सर औकात क्या होता है, हम कंटेनर को फेंक देते हैं बेकार समझकर। इससे वेस्ट बढ़ता है और नए कंटेनर्स बनाने के लिए मजीद रिसोर्सेज और एनर्जी का यूज होता है। साथियों, ग्लास जार्स और बॉटल्स खास तौर पर ऐसी चीजें हैं जो अक्सर मजबूत होती हैं और अगर साफ करके रख ली जाएं तो तकरीबन कई चीजों में कहती हूँ रीयूज हो सकती हैं। अब मसला ये नहीं है कि हमारे पास चीजें कम है, मसला ये है कि हम अक्सर उनकी दोबारा यूज की वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई, इस मामले में सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जार और बॉटल्स को रीयूज करने के कुछ सिंपल आइडियाज हैं। देखें, पहली चीज तो ये जो मैं खुद भी करती हूँ, किचन स्टोरेज के लिए इन्हें यूज करें। खाली जो ग्लास जार्स होते हैं उनको आप मसाला रखने के लिए, ड्राई फ्रूट्स स्टोर करने के लिए, या पास्ता या ग्रेन्स रखने के लिए, मतलब जो ड्राई चीजें होती हैं उनके लिए आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इससे नए प्लास्टिक कंटेनर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भाई, दूसरी चीज ये है, प्लांट पॉट्स बनाएं। मतलब ये कि छोटी बॉटल्स और जार्स को क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट करके छोटे छोटे प्लांट्स या हर्ब्स जो होते हैं ना, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन हर्ब्स जैसे कि आपका हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, उनके लिए आप यूजफुल तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आप ऑर्गेनाइजिंग के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। ये मेरी फेवरेट चीज है भाई। घर में छोटी चीजें जैसे बटन्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, क्राफ्ट मटेरियल्स हो गए, या वो छोटे छोटे हेयर एक्सेसरीज होती हैं लड़कियों की, पोनी और मजे मजे के क्लिप्स या पिंस, आप इनको इन जार्स में रख कर उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चौथी चीज ये है कि भाई, आप इन्हें डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। अपने अंदर के पिकासो को जगाओ भाई। क्रिएटिविटी के साथ पुरानी बॉटल्स को कैंडल होल्डर्स, फ्लावर वास, डेकोरेटिव पीसेस, ये इन चीजों में बदले जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने करके देखा है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीफिल कल्चर अपनाएं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सेम बॉटल्स या जार्स को रीफिल करना पॉसिबल होता है, इससे पैकेजिंग वेस्ट कम हो सकती है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाना साथियों, तो बहुत से लोग अब अपने घरों में रीयूज कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज कॉफी जार्स को किचन ऑर्गेनाइजर्स बना लेती हैं, मेरी तरह। कुछ लोग पानी की बॉटल्स को प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, हाँ ये भी मैंने कर देखा है, बहुत यूजफुल है। कुछ क्रिएटिव लोग जार्स को डेकोरेट करके बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर आइटम्स बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक सिंपल ग्लास जार जो पहले डस्टबिन में जा रहा था, अब किचन की डेकोरेशन या स्टोरेज का हिस्सा बन सकता है। भाई, यही तो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है, पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसे नई पर्पस देना। तो साथियों, आज का हमारा इको स्विच चैलेंज ये है, आज आप अपने घर में ये झांकें, जरा देखें कि कितने एम्प्टी जार्स या बॉटल्स मौजूद हैं। उनमें से कम अज कम एक चीज को तो रीयूज करने की कोशिश की जा सकती है। और हमें जरूर बताएं, आप अपनी पुरानी बॉटल्स और जार्स को किस तरीके से यूज करना पसंद करेंगे, स्टोरेज में, प्लांट्स या डेकोरेशन में, किस चीज के लिए। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हर खाली जार कचरा नहीं होता, कभी कभी वो एक नया मजबूत सॉल्यूशन होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिस इज देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे गुस्से के रिएक्शन को कंट्रोल करने के बारे में। गुस्सा एक फितरी जज्बा है, लेकिन असल हिकमत ये है कि हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं। अक्सर इंसान गुस्से में फौरन रिएक्ट कर देता है, जो बाद में नदामत का सबब बनता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से के वक्त सब्र और खामोशी इख्तियार करें। थोड़ा रुक जाना, पानी पीना या जगह बदल लेना भी मददगार होता है। रिएक्शन को कंट्रोल करना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है। जो इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है, वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकता है। गुस्से में दिया गया रिएक्शन रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कंट्रोल उन्हें बचाता है। आज का अमल यह है कि जब भी गुस्सा आए, फौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा सा रुक के सोचें और फिर रिएक्ट करें। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पे आरजे माविश के साथ।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ रोबोटिक्स की. क्या रोबोट्स फ्यूचर बिजनेस, क्या फ्यूचर का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगा? जी हाँ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर और रिटेल इंडस्ट्री तक एंट्री ले चुके हैं. इनकी एंट्री घरों में भी हुई है लेकिन उतनी कॉमन नहीं. लेकिन फ्यूचर में रोबोट्स रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैंडल करेंगे जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव रोल्स पर फोकस रखेंगे. यहाँ वेयर हाउसेस में रोबोट्स प्रोडक्ट पिक करने, पैक करने का काम तो कर ही रहे हैं. होटल्स में रोबोटिक असिस्टेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक सिस्टम सर्जरीज में डॉक्टर की मदद कर रहे हैं. वहीं फ्यूचर के टाइम में रोबोट्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट लोकेट करने, उन्हें हेल्प करने, शेल्फ करने में और रीस्टॉक करने में भी मदद करेंगे. लॉजिस्टिक कंपनीज एआई पावर्ड रोबोट्स के जरिए ऑर्डर्स को पहले से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस कर सकेंगी. एक बड़ा सवाल भी मेरे जहन में आया, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के बढ़ते हुए रोल को देखते हुए बिजनेस को ह्यूमन वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी के दरमियान बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? देखिए, आज हम एआई की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, रिटेल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की बात करते हैं. अगर आप 2035 की दुनिया को सोचें, इमेजिन करें, तो आपके नज़दीक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या सामने होगी? कौन सी ऐसा चेंज है जो हमें और आपको डरा सकती है, घबरा सकती है? तो इसमें एक बड़ा चेंज है रोबोट्स का. दोस्तों, आज हम जिस दौर में रहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो करी और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. इन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन. पहले रोबोट्स सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज में हमें दिख रहे थे, आज जैसे मैंने कहा बैंक्स हो, होटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स के साथ हर जगह नज़र आते हैं. देखिए, ऑटोमेशन का मकसद रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को जो है वो परफॉर्म करवाना है. इससे कंपनीज की एक तो टाइम की बचत होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है और एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है. मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स कंपनीज का वेयर हाउस में रोबोट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, शेल्फ से उठाना, पैकिंग करना कितना कंपनी के लिए यूजफुल होता है. जो काम पहले घंटों में होता था अब मिनटों में होता है. रिटेल सेक्टर में भी रोबोट्स का रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, होटल्स हो या एयरपोर्ट्स हो. आपने देखा है कि रोबोटिक असिस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ होटल्स में रोबोट्स गेस्ट को रूम तक गाइड करते हैं या फिर रूम सर्विस डिलीवरी करते हैं. इसी तरह एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटिक पैसेंजर्स को क्विक चेक इन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है. लेकिन जब

रोबोटिक और ऑटोमेशन की बात होती है तो अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या रोबोट्स ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस कर देंगे। हकीकत ये है कि रोबोट्स उन कामों को ऑटोमेट करेंगे जो रिपीटेटिव और रूटीन नेचर के हैं, जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसे रोल्स पर फोकस करेंगे। फ्यूचर में नए प्रोफेशंस भी क्रिएट होंगे, रोबोटिक इंजीनियर्स होंगे, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट होंगे, एआई ट्रेनर्स होंगे, स्मार्ट सिस्टम मैनेजर्स होंगे। ये टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करेगी लेकिन साथ ही नई जॉब्स भी पैदा करेगी। आने वाले 10 सालों में हम ऐसी कंपनीज देखेंगे जो ह्यूमंस और रोबोट्स के कॉम्बिनेशन से काम करेंगी। रोबोट्स स्पीड और एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे, वहीं ह्यूमंस इमोशंस और डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। दोस्तों, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन का इस्तेमाल नहीं है बल्कि बिजनेस एफिशिएंसी और इनोवेशन का एक नया चैप्टर भी है। जो ऑर्गेनाइजेशंस इन टेक्नोलॉजी को समझकर अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव, फ्यूचर रेडी होंगी। फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्कप्लेस वो होगा जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट मिलकर काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: स्कैम अलर्ट।
1: भाई अगर आपके ऊपर उधारी हो गई है और मैं वो उधारी चुका दूं तो क्या बात है भाई फजील, आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे मैं हूं फजील और इस शो का नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। वेल दोस्तों, आजकल देखा गया है कि डेबिट कार्ड का कम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग ज्यादा करने लग गए हैं, और ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आपके साथ कैसा फ्रॉड हो सकता है इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट, मेरे कई दोस्त हैं जिनका 50,000 53,000 60,000-70,000 तक क्रेडिट हो गया, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके पास रिमाइंडर आता रहता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। कुछ लोग हैं 10,000-20,000 वाले भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का एकदम स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आज का फ्रॉड अवेयरनेस है, मैं उनके लिए बताने वाला हूं जिनके ऊपर क्रेडिट है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50,000-60,000 का क्रेडिट है, आपके पास कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि आपके बैंक में आपके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड है उस पर इतना हजार रुपए है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कॉल है सिर्फ आपके लिए जिसपे आपके क्रेडिट पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट 5% या 10% नहीं 50-60% या 70% तक डिस्काउंट बताते हैं, और आपकी आंखें हो जाती बड़ी और आपको लगता है, हैं वो जो छप्पर फाड़ के मेरे लिए किस्मत खुलने वाली थी वो आज का दिन है, 50-60% या 70% का डिस्काउंट मेरे क्रेडिट पे। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपए का क्रेडिट है मेरे सर पे, तो मुझे सिर्फ 20,000-25,000 या हो सकता है 10-15,000 देना पड़े। तो आप ऐसे में फंस जाते हैं और आपको लगता है बिल्कुल इस बैंक के तरफ से कॉल आया है, क्रेडिट भी नंबर सही बताया है, डिटेल्स भी मेरी सही बताया है, लेकिन ये सारी डिटेल्स

0: आपकी कॉम्प्रोमाइज वक्त वक्त पे होती रहती है और आप अब फंस चुके हैं। ऐसे में आप एक्चुअली करते ये हैं कि आप उसको डिटेल्स देते हैं, आखिरी में वो आपसे मेन सेंसिटिव जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है वो मांगता है, और आपको लगता है 10-15 हजार 20 हजार रुपए दे के ये क्रेडिट सर से उतारो। और एक मजे की बात यहां पर ये है कि वो जो कॉल करता है आपको और कहता है कि 50-60% या 70% का डिस्काउंट है, वो आपको सिर्फ आज की मोहलत देता है। और ये बहुत ज्यादा वायरल वाला स्कैम चल रहा है, और आज की मोहलत में भी आपको टाइम देता है, आपको सोचने का मौका देता है। अगर उसने दोपहर में 11, 12, 1 बजे कॉल करी है, शाम को 6 बजे भी कॉल करके आपको सेम बात बताएगा और कहेगा ये बस खत्म होने वाला है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करना है ये क्रेडिट। अगर आपको अपने सर से उतारना है तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उतारिए। तो आपको 12-1 बजे कॉल करके सेम सिचुएशन बताएगा, सेम जानकारी देगा, और एक को 5 से 6, ताकि आपको भरोसे में लिया जाए और कहा जाए कि आज आखिरी दिन है। जल्दबाजी में आप सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उससे शेयर कर देते हैं और सारा पैसा गायब। वेल, बचा कैसे जाए इस फ्रॉड से, इस स्कैम से, इस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, 3 बड़े ही मेन अहम मुद्दे हैं बचने के लिए। पहली बात तो आपके पास कॉल आएगी और 50-60% का जो डिस्काउंट है ये अनरियल है। खुद सोचिए किसी पर आप उधार हैं और वो उधार में इतना बड़ा डिस्काउंट तो नहीं देगा, ये रेड फ्लैग है। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए, ऑनलाइन जब भी पेमेंट आप करें तो देखें वो ऑथेंटिक पेमेंट के लिए कहता है या नहीं। दूसरा ये है कि ऑनलाइन पेमेंट में भी आपको ये देखना होगा कि आप अपनी तरफ से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि OTP, CVV नंबर ना शेयर करें। तीसरा ऑप्शन, भाई साहब ये सबसे ज्यादा सिंपल है किसी भी स्कैमर को पहचानने के लिए, जब आपके लिए कोई जल्दबाजी कर रहा हो, जब आपको स्कैमर्स जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो जल्दी करो ये कर रहे हैं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए ये एक तरह का स्कैम है। और कई बार आपकी जो असली बात है, आपकी जो असली क्वेश्चन है जिससे स्कैमर्स को परेशानी होती है, वो कट कर देते हैं और असल जो उनको चाहिए होता है, जो सवाल का जवाब उनको चाहिए होता है, वो उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है वो आपसे QID नंबर, जैसे मेरे पास अभी 3 दिन पहले कॉल आया, वो मुझसे QID नंबर कंफर्म कर रहा था और मैं बार बार QID नंबर चेंज कर रहा था, लेकिन फिर वो मुझसे QID नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे थे। तो ऐसे में वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मुझे QID नंबर करेक्ट चाहिए, और मैं जानबूझ के हर बार QID नंबर में एक डिटेल या एक डिजिट चेंज कर रहा था। तो बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना है और होशियार रहना है, किसी भी तरह का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। और नए जमाने के स्कैम से बचाने के लिए शो को मैं रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा FM 107 पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिल से देसी देसी स्कैम अलर्ट।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ हमारा वीकली प्रोग्राम, जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे साथ प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं कतर के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल के सफर पर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने सब कतरियों का सर फख्र से ऊपर किया है। एक कहानी जो ताकत, तवज्जो और तकदीर का इजहार करती है। ये कहानी है एक जवान की जो दुनिया के सामने आया और सिर्फ एक बारबेल ही नहीं उठाया बल्कि पूरी कौम के ख्वाब भी उठाए। उनका नाम है फारिस इब्राहिम अलबख, जिन्हें बहुत से लोग मैसो हसोना के नाम से भी जानते हैं। वो शख्स जिसने टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में तारीख दर्ज की। दोस्तों, फारिस पैदा हुए जून 4, 1998 को एक ऐसे खानदान में जो वेटलिफ्टिंग से मोहब्बत करता था। उनके वालिद इब्राहिम हसोना 3 मरतबा ओलंपियन रह चुके थे इजिप्ट के लिए, एक ऐसे शख्स जो ग्रेटनेस का ताकुब करना जानते थे। बचपन में फारिस अपने वालिद को ट्रेनिंग करते और दूसरे लिफ्टर्स को कोच करते देखते। बार बेल की आवाज, चौक डस्ट और एक कामयाब लिफ्ट के बाद तालियों की गूंज, ये सब उनकी दुनिया का हिस्सा बन गया था। उन्होंने एक मरतबा कहा था, आई फेल इन लव विद द साउंड ऑफ वेट्स हिटिंग द फ्लोर, और ये आवाज उनकी जिंदगी का लहजा बन गई। फारिस का सफर एक नया मॉडल ले गया जब उनका खानदान कतर शिफ्ट हुआ। यहाँ उन्हें मिली अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, डेडिकेटेड कोचेस और एक कौम जो स्पोर्ट्स एक्सेलेंस में सरमायाकारी कर रही थी। कतर एस्पायर्स एकेडमी और कतर वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जरिए उन्होंने अपनी सलाहियत को निखारा। वो सिर्फ वेट नहीं उठा रहे थे बल्कि वो एक्सपेक्टेशंस उठा रहे थे। अपने 3 एज ईयर्स तक वो हेडलाइंस में आने लगे, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने लगे, यूथ रिकॉर्ड तोड़ा। इन सब चीजों के साथ उन्होंने ये सिग्नल दिया कि कुछ खास आने वाला है। चलिए जल्दी से अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 31 जुलाई 2021 टोक्यो जापान द ओलंपिक गेम्स। दुनिया के अजीम तरीन एथलीट्स खामोशी में इकट्ठा हुए थे। भाई, पैंडेमिक की वजह से कोई चेयरिंग वगैरह, क्राउड वगैरह नहीं था, सिर्फ कैमरास की हल्की सी आवाज और मुकाबला जीतने की धड़कने। फारिस अलबख ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा मेंस 96 केजी वेटलिफ्टिंग फाइनल के लिए। पुरसुकून, मुतमईन और उनकी निगाहें बार बेल पर जमी हुई थी। इस मैच में उन्होंने उठाया 177 किलोग्राम बेमिसाल टेक्निक के साथ। फिर आई क्लीन एंड जर्क, इवेंट का सबसे मुश्किल हिस्सा, उन्होंने उठाया 225 किलोग्राम, एक ओलंपिक रिकॉर्ड। और जब टोटल हुआ तो 402 किलोग्राम। फारिस अलबख बन गए कतर के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। उस लम्हे ओलंपिक लाइट्स के नीचे कतरी फ्लैग बुलंदी पर था, उनकी आंखों में आंसू का समंदर था। सारी जिंदगी की मेहनत, कुर्बानी और यकीन आखिर

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ। तो दोस्तों, जब ये खबर कतर में फैली तो गलियों में जश्न का समा था। दोहा कॉर्निश से लेकर अल वाकरा तक हॉर्न्स बजने लगे, फ्लैग्स लहराने लगे और लोगों ने खुशी से चीयर किया। पब्लिक वॉइसेस चारों तरफ गूंज गईं और ये स्लोगन कुछ थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ कतर, ही मेड अस ऑल प्राउड, अवर यूथ नाउ हैव अ हीरो। कतर ने पहले भी ओलंपिक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे, मगर गोल्ड

कभी नहीं जीता था। फारिस अलबख ने उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। कतर का फख्र एक नई तारीख का आगाज हुआ जब फारिस अलबख ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं जीता बल्कि पूरे मुल्क की ये जीत थी। उस लम्हे ने हर कतरी को एक नई उम्मीद दी। एस्पायर एकेडमी के हॉलवेज में तालियां बजने लगी, स्पोर्ट्स क्लब में नए ख्वाब सजने लगे और हर स्कूल के ग्राउंड में एक नया जज्बा पैदा हुआ। मीडिया ने उन्हें हीरो करार दिया और सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी लिफ्ट्स को दोबारा देखा, उनके इंटरव्यूज को शेयर किया और उनकी मेहनत को सैल्यूट किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एथलीट्स और आम लोग सब ने एक ही बात कही, ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये कतर का मुस्तकबिल है। फारिस का सफर अब सिर्फ उनका ही नहीं रहा, अब हर वो नौजवान जो जिम में पहली बार बारबेल उठाता है उसके दिल में एक ही आवाज होती है, अगर मैं सो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, उनकी ताकत के बावजूद फारिस अलबख अपनी ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन के लिए भी मशहूर हैं। इंटरव्यूज में वो अक्सर शर्माता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई देते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं अपने कोचेस, अपने वालिद और कतर स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। उन्होंने एक मरतबा कहा, आई वॉन्टेड टू मेक माई फादर प्राउड बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक कतर प्राउड, द कंट्री दैट गेव मी एवरीथिंग। उनकी कहानी सिर्फ वेट्स उठाने की ही नहीं, ये वैल्यूज उठाने की कहानी है, डेडिकेशन, रेस्पेक्ट और नेशनल प्राइड की। वो हर लिफ्ट के साथ एक पैगाम देते थे कि असली कुवत सिर्फ जिस्म में नहीं होती बल्कि दिल और नियत में भी होती है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है हर उस शख्स के लिए जो ख्वाब देखता है और उन्हें हकीकत में बदलना चाहता है, मेहनत, सब्र और वफादारी के जरिए। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। चलिए जी, अब एक रुख करते हैं कतर के गोल्डन एरा ऑफ स्पोर्ट की। फारिस का गोल्ड मेडल एक टर्निंग पॉइंट था कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। भाई ये उस वक्त आया जब कतर पहले ही एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभर रहा था। वर्ल्ड इवेंट्स होस्ट करना, टॉप फैसिलिटीज बनाना और एस्पायर एकेडमी और टीम कतर जैसे प्रोग्राम के जरिए एथलीट्स को तरबियत देना, ये सब उस सफर के हिस्से थे। एशियन गेम्स से लेकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 तक कतर ने साबित किया कि वो सिर्फ चैंपियंस को होस्ट नहीं करता, वो उन्हें क्रिएट भी करता है। फारिस अलबक की जीत उस जज्बे का निशान बन गई, एक पैगाम हर अरब नौजवान के लिए कि ड्रीम बिग, ट्रेन हार्ड, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, कतर की स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेडल्स के लिए ही नहीं, ये कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इसका मकसद है हेल्थ का फरोग, यूथ एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। स्पोर्ट्स सेक्टर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, टूरिज्म और ग्लोबल इवेंट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम्स और ट्रेनिंग अकेडमीज, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वगैरह। फारिस का गोल्ड मेडल एक प्रूफ था कि ये विजन काम करता है, कि जब पैशन और पॉलिसी मिलते हैं तो चैंपियंस पैदा होते हैं। तो दोस्तों, वहीं आज जब फारिस किसी भी जिम में दाखिल होते हैं तो जवान लिफ्टर्स रुक जाते हैं, उन्हें देखते हैं। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक रोल मॉडल बन चुके हैं। एक जवान जो दो कौमों को अपने दिल में लेकर चला, इजिप्ट अपने खून से और कतर अपने फख्र से, और अपनी ताकत के जरिए उन्हें एक कर दिया। भाई हर दफा जब वो गोल्डन रिप्ले चलती है कि वो जब बारबेल उठा रहे हैं, सीधे हो रहे हैं और रोर कर रहे हैं, कतर को याद आता है कि क्या कुछ मुमकिन है जब ख्वाब मिलते हैं अज्म से। तो दोस्तों, सिर्फ 17 साल की उम्र में फारिस एक वर्ल्ड क्लास जूनियर लिफ्टर बन चुके थे, यूथ रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे और इंटरनेशनल मेडल्स जीत रहे थे। 2016 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेडलाइंस बनाई और 2019 तक वो दुनिया के सबसे ताकतवर लिफ्टर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। टोक्यो में मंच के लिए स्टेज तैयार हो रहा था, मगर उनका सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। इंजरीज, स्ट्रिक्ट डाइट्स और घंटों की मेहनत ने उनकी हदों को और उनके सब्र को आजमाया। फिर आया पैंडेमिक, जिम्स बंद, इवेंट्स कैंसिल और हर तरफ अनसर्टेनिटी, लेकिन फिर भी वो ट्रेन करते रहे और वो यकीन रखते रहे। दोहा के ट्रेनिंग हॉल से लेकर टोक्यो के ओलंपिक स्टेज तक फारिस अलबक का सफर एक मिसाल है, एक यकीन है, डिसिप्लिन और सपोर्ट मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कतर सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखता है, वो उन्हें हकीकत में भी बदलता है। वो सिर्फ एम्बिशन का मुल्क नहीं, वो अचीवमेंट का मुल्क है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट

लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर स्वस्थ से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट. हदीब टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
2: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा.

0: इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: नादा जैसे हो तुम वैसे ही तुम

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना आसा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। इस वाकये में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं है। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम।